सुप्रभात, हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 की आषाढ़ माह की तीसरी तिथि, तदनुसार 23 जून 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:56 हो रहे हैं। अब हमारी आज की प्रसारण सभा आरंभ होती है।

ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है, FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। सवेरे के 6 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे।

0: प्रथम की भावना से निर्देशित रही हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान में लिए गए निर्णय और कार्रवाई सदियों तक देश के भविष्य की आधारशिला रहेंगी।
1: भारत जो कर रहा है वो आने वाले 1000 वर्ष का फ्यूचर लिखने वाला है और यही दुनिया के लिए सबसे बड़ी भारत की गारंटी है। भारत फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है, एक क्रेडिबल इकोनॉमी भी है।
0: प्रधानमंत्री ने G7 शिखर सम्मेलन में अपनी हाल की भागीदारी का उल्लेख करते हुए कहा कि विश्व नेताओं ने राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत के प्रति भारत की अटल प्रतिबद्धता को समझा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की चेतना में सदियों से सहेजी गई स्मृतियां जीवंत हैं। वर्तमान में उठाए गए कदम अगले 1000 वर्षों के लिए भविष्य को आकार देंगे। सरकार के 12 वर्ष के सेवा कार्यों का स्मरण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अब देश के लगभग 45,000 गांवों तक मोबाइल कनेक्टिविटी पहुंच चुकी है। श्री मोदी ने कहा कि आज कुछ लोग संविधान की बात उठाते हैं, लेकिन जब वे सत्ता में थे तो नक्सलग्रस्त क्षेत्रों में संविधान का नाम लेने पर ही गोली तक मार दी जाती थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान और मेक इन इंडिया जैसी पहल इस कारण सफल हो सकी है क्योंकि देश के लोगों ने राष्ट्र को सर्वोपरि रखा और देश के प्रति कर्तव्य निभाए। आर्थिक सुधारों से मध्यम वर्ग को मिल रहे लाभों का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कर राहत उपायों से परिवारों की कर मुक्त आय बढ़ी है। भारत और मोरक्को के बीच आतंकवाद रोधी संयुक्त कार्य समूह की दूसरी बैठक कल नई दिल्ली में हुई। बैठक की सह अध्यक्षता विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव डॉक्टर विनोद बाहड़े और मोरक्को के राष्ट्रीय न्यायिक पुलिस ब्रिगेड के प्रमुख हिशाम बाली ने की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने सूचना साझा करने, क्षमता निर्माण और बेहतर कार्य प्रणालियों के आदान प्रदान के माध्यम से आतंकवाद के खिलाफ द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नैफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। उम्मीद है कि ये पोर्टल नीलामी संबंधी गतिविधियों को सुव्यवस्थित करने और किसानों, सदस्य संस्थानों और हितधारकों के हित में बेहतर डिजिटल मंच प्रदान करेगा। लखनऊ आग हादसे में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और इनमें से 4 को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया। अलीगंज के एक एनिमेशन कोचिंग सेंटर में हुए इस हादसे में 15 विद्यार्थी मारे गए और 9 घायल हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज के लिए संभावित हाजियों के आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने हज नीति 2027 जारी करते हुए कहा कि आवेदन हज कमेटी ऑफ इंडिया के पोर्टल और हज सुविधा ऐप के जरिए ऑनलाइन जमा किए जा सकते हैं, जिससे ये प्रक्रिया ज्यादा आसान और सुलभ हो जाएगी। फीफा विश्व कप में इस समय अमेरिका के फिलाडेल्फिया में ग्रुप 1 के मुकाबले में फ्रांस और इराक के बीच मैच चल रहा है। इससे पहले ग्रुप जे के मैच में अर्जेंटीना ने ऑस्ट्रिया को 2-0 से हराया। दोनों गोल अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी ने किए। इसके साथ ही मेसी ने 18 गोल के साथ जर्मनी के मिरोस्लाव क्लोज का 16 गोल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और विश्व कप के इतिहास में सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। FIH प्रो लीग के शुरुआती मुकाबले में आज भारतीय पुरुष हॉकी टीम का सामना पाकिस्तान से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं, FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। सवेरे के 6:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए आज का चिंतन। विषय, जीवन का सत्य, जीवन का मिथ्या तत्व। वाचन स्वर रजनीश गुप्ता का।
3: जगत का मिथ्या तत्व यही है कि वो प्रतिक्षण परिणामी है, सत होते हुए भी विनाशी और क्षण भंगुर है। ये शरीर पत्ता है, ये पत्ता किस समय मुरझा जाएगा कहा नहीं जा सकता।

0: उसी प्रकार शरीर किस समय क्या हो जाएगा कहा नहीं जा सकता। वृक्ष हमें छाया और फल देता है, साथ ही उससे लकड़ियां निकालकर उपयोग में लाई जाती हैं। माया से भी जगत का नाना वस्तु समुदाय निर्मित होता है और यही जीवों को भोग रूपी फलों को परमेश्वर के नियंत्रण में रहकर उत्पन्न करती है। विषय वासना के भांति भांति के फल इसी में लगते हैं। वृक्ष बीज रूप में अपनी सत्ता को स्थित रखता है। जीवन क्षण भंगुर है, इसी के भीतर आत्मा रूपी महाधन निहित है। वो इसे लेकर गतिमान है, इसके साथ काम क्रोध मद लोभ मोह ये पांच चोर उस महाधन को चुराने के लिए साथ चल रहे हैं। पांच ज्ञानेंद्रियां और पांच कामेंद्रियां इस शरीर रूपी कारवा की स्थिति को विकृत करने के लिए सदैव तत्पर रहती हैं। मन को आकर्षणों से हटाने से, प्रभु भक्ति में शरीर की चिंता न करने से भगवत प्राप्ति का पथ प्रशस्त हो जाता है। जीवात्मा उसी परमात्मा का अंश है, इसके भीतर किसी प्रकार की सांसारिकता का उदय होने पर भी उस अंशी में किसी प्रकार की विकृति पैदा नहीं हो सकती। जिस तरह जल में दूसरा पानी मिलने पर विकार नहीं आता, आत्मा सर्वव्यापी है, सब में है, जगत और ब्रह्म का संबंध अपरिहार्य है। जगत माया के ब्रह्म जाल में फंस रहा है, क्योंकि सद्विवेक के अभाव में जड़ जगत का ऐसा प्रवर्तन सहज है। मनुष्य जब तक जीवित रहता है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और इसके लिए वो संसार को धोखा देने में भी कोई कसर नहीं रखता। इतने सब कुछ के बाद भी प्राण इस नश्वर शरीर को छोड़ जाते हैं। इस माया विषयक मिथ्या दृष्टिकोण के परिहार हेतु ज्ञान की उदात्त विशाल और प्रखर धारा का प्रभावित होना आवश्यक है। सत्य के पूर्ण स्वरूप का दर्शन कर लेने पर चेतना पूर्ण आनंद देने वाली हो जाती है। अखंड आनंद के इस आकर्षण को मुक्त जीव की चेतना फिर कभी नहीं छोड़ती। ज्ञान का नाम विद्या और कर्म का नाम अविद्या है। ज्ञान से भिन्न कर्म है। इन दोनों का उपयोग साथ साथ करना है। इन्हें हम विज्ञान और कला भी कह सकते हैं। केवल ज्ञान और कर्म का कोई फल नहीं है, फल तो ज्ञान पूर्वक कर्म है। कर्तव्य परायण होकर मनुष्य मृत्यु को भूल जाता है। अमरता पाने के लिए मनुष्य को आगे बढ़ना होगा, समष्टि में अपने को मिटाना होगा। अमरता तो अध्यात्म ज्ञान से प्राप्त हो सकती है और वही वास्तव में विद्या है।
1: अभी आप सुन रहे थे चिंतन, विषय था जीवन का सत्य, जीवन का मिथ्या तत्व, वाचन स्वर रजनीश गुप्ता का। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है FM 100.5 MHz पर।

0: अब हमारे श्रोता जहां, हम भी वहां। आप उत्तराखंड के किसी भी कोने में क्यों न हो, आप हमें सुन सकते हैं। देश विदेश में भी आप हमारे साथ होंगे। 100.5 AIR FM देहरादून पर गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें न्यूज ऑन AIR प्रसार भारती ऑफिशियल ऐप AIR न्यूज प्लस लाइव और AIR देहरादून सेलेक्ट करें और सुने हर पल हर जगह आकाशवाणी देहरादून।
1: FM 100.5 MHz पर ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। सवेरे के 6:10 हुए हैं और अब सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। सर्वप्रथम करते हैं मातृभूमि को वंदन।

अभी आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है FM 100.5 MHz पर।

आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना FM 100.5 MHz पर। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है।

अभी आप सुन रहे थे सरस्वती वंदना, कार्यक्रम चल रहा है वंदना और ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है FM 100.5 MHz पर।

आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.5 MHz पर।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है, FM 100.5 MHz पर। अब सुनिए रामचरित मानस गान।

श्री रामचरित मानस जैसे विशाल ग्रंथ की रचना करने में गोस्वामी तुलसीदास जैसा विनयी भक्त अपने को सर्वथा अक्षम तथा असमर्थ पाता है। उनका कहना है, मेरा भाग्य छोटा है और अभिलाषा बहुत बड़ी। मन में भरोसा इस बात का है कि उनकी कविता में श्री राम का प्रताप है, और भला संग मिलने पर बड़प्पन किसने नहीं पाया।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। FM 100.5 MHz पर ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में सवेरे के 6:40 हुए हैं और अब सुनिए श्री रामचरित मानस गान।

श्री रामचरितमानस जैसे विशाल ग्रंथ की रचना करने में गोस्वामी तुलसीदास जैसा विनयी भक्त अपने को सर्वथा अक्षम तथा असमर्थ पाता है। उनका कहना है, मेरा भाग्य छोटा है और अभिलाषा बहुत बड़ी। मन में भरोसा इस बात का है कि उनकी कविता में श्री राम का प्रताप है, और भला संग मिलने पर बड़प्पन किसने नहीं पाया।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है FM 100.5 MHz पर। और अब सुनिए अब हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा।

0: आज रात्रि 9:15 पर सुनेगा कार्यक्रम स्पॉटलाइट। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होगा। रात्रि 10 बजे सुनिएगा कार्यक्रम खेल दर्पण, जिसे आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से रिले किया जाएगा। आज रात्रि 10:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आपकी फरमाइश, और रात्रि 9:30 पर सुनेगा कार्यक्रम विज्ञान पत्रिका। शैल संगीत का कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 7:30 पर, जिसके अंतर्गत आप सुनेंगे विविध कलाकारों के स्वर में गढ़वाली लोकगीत। प्रातः 8:15 पर सुनेगा मॉर्निंग न्यूज आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। प्रातः कालीन सूचना पर एक कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 8:30 पर। सुबह 9:05 पर सुनेगा सदाबहार फिल्मी की। सुबह 9:40 पर समय रहेगा कार्यक्रम सदाबहार फिल्मी गीतों का। कार्यक्रम फिल्म संगीत आप सुन पाएंगे सुबह 10:02 पर, दोपहर 1:20 पर, शाम 7:40 और रात्रि 8:30 पर। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से सुनेगा कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी सुबह 9:10, सुबह 10:30 पर, सुबह 11:10 पर, दोपहर 12:10 और दोपहर 1:10, दोपहर 3:10 और शाम 4:10 पर। सुबह 10:40 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम लोक संगीत, जिसके अंतर्गत आप सुनेंगे कृपा निधन सिंह के स्वर में भोजपुरी लोकगीत। कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश आप सुनेंगे सुबह 11 बजे। दोपहर 12:30 पर सुनेगा कार्यक्रम महिला जगत, जिसके अंतर्गत आप सुनेंगे गर्मी के मौसम में त्वचा संबंधी समस्याएं और निदान विषय पर डॉक्टर निधि गुप्ता से किरण जोशी की बातचीत। प्रायोजित कार्यक्रम NCERT सुनेगा दोपहर 1:30 पर। दोपहर 2:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सैनिकों के लिए। दोपहर 3:02 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम गाने नए तराने फिल्मी गीत। शाम 4:02 पर सुनेगा कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत, जिसके अंतर्गत हम आपको सुनवाएंगे उस्ताद अली अकबर खान का सरोदवादन राग भीम पलासी में। आज शाम 4:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम एक कलाकार में अभिनेता राज बब्बर पर केंद्रित गीत। युवाओं का पसंदीदा कार्यक्रम युवाणी आप सुनेंगे शाम 5:10 पर। पर्वतीय अंचलों का कार्यक्रम ग्राम जगत आप सुनेंगे शाम 5:45 पर। शाम 7 बजे प्रस्तुत किया जाएगा कार्यक्रम कृषि जगत। रात्रि 8:15 पर सुनेगा कार्यक्रम सुगम संगीत, जिसके अंतर्गत आप सुनेंगे डॉक्टर देव प्रसाद कर के भजन। प्रातःकालीन सूचना पर कार्यक्रम नमस्कार देहरादून सुनेगा सुबह 8:30 पर। तो श्रोताओं, ये थी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है, FM 100.5 MHz पर। स्टूडियो की घड़ी से सवेरे के 6:55 होने को हैं और अब आप सुनेंगे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: EM आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। भारतस्य द्रुतगत्या वर्धमानस्य विश्वसनीय वैश्विक शक्तिरूपेण परिवर्तनस्य प्रेरक शक्तिः राष्ट्र प्रथमस्य सिद्धान्तः एव अस्तीति प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना उक्तम्। नवदिल्ल्याम् एकेन निज वार्तावाहिन्या आयोजिते सम्मेलने सम्बोधयन् प्रधानमन्त्री श्रीमोदी अवदत् यत् विगत दशके देशस्य उपलब्धयः विश्वासे स्थिरतायां बृहत्तर वैश्विक कल्याणाय प्रतिबद्धतायां च निहिताः सन्ति।
2: भारत जो कर रहा है वो आने वाले 1000 वर्ष का फ्यूचर लिखने वाला है और यही दुनिया के लिए सबसे बड़ी भारत की गारंटी है। भारत फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है, एक क्रेडिबल इकोनॉमी भी है।
1: सम्प्रति G7 शिखर सम्मेलने स्वस्य सहभागितायाः उल्लेखं कुर्वन् सः अवदत् यत् राष्ट्रियहितं सर्वोपरि स्थापयितुं भारतस्य अविचल प्रतिबद्धतां वैश्विकनेतारः स्वीकृतवन्तः। सर्वकारस्य 12 वर्षाणां कार्यकालस्य उल्लेखं कुर्वन् प्रधानमन्त्री अवदत् यत् स्वच्छभारत, मेक इन इण्डिया, खादिप्रचारः, स्थानीय उत्पादानां समर्थनम् इत्यादयः उपक्रमाः सफलाः अभवन्, येन नागरिकाः राष्ट्रनिर्माणस्य भावम् अङ्गीकृतवन्तः। प्रधानमन्त्री अवदत् यत् सद्यः एव केषुचित् वर्षेषु प्रायः 25 कोटिशः जनाः निर्धनवर्गात् बहिः समागताः, येन विशालः नव मध्यमवर्गः उद्भूतः, आर्थिकक्रियाकलापाश्च प्रवर्धिताः। लखनऊनगरे 15 छात्राणां मृत्योः दुःखद अग्निघटनायाः अनन्तरं द्रुतकार्याचरणस्यान्तर्गतम् आरक्षकाः गतरात्रौ 6 जनानां विरुद्धं FIR इति पञ्जीकृतवन्तः, तेषु 4 च निगडिताः। मुख्यमन्त्रिणः योगी आदित्यनाथस्य निर्देशानुसारं लखनऊ विकास प्राधिकरणस्य अग्निशामक विभागस्य विद्युत् विभागस्य च 4 अधिकारिणः अपि निलम्बिताः अभवन्। लखनऊनगरे अग्निघटनायाः सन्दर्भे अलीगंजनगरस्य आरक्षकैः BNS तथा उत्तरप्रदेश अग्निशामक सेवा अधिनियमस्यान्तर्गतं प्रासंगिकखण्डेषु 6 अभियुक्तानां अन्यांच उत्तरदायी जनानां विरुद्धं FIR पञ्जीकृतम् अस्ति, यत्र ह्यः दुःखद अग्निप्रकोपः अभवत्। तस्मिन् भवने अनधिकृत निर्माणस्य विषये 16-2000 वर्षे विध्वंसादेशः प्रसारितः आसीत्, परञ्च मासद्वयाभ्यन्तरे एव आदेशः निरस्तः अभवत्। एतदतिरिच्य राज्यसर्वकारेण अग्निघटनायाः उच्चस्तरीय अन्वेषणस्य आदेशोऽपि प्रदत्तः। घटनायाः अन्वेषणार्थं SIT इति विशेष अन्वेषण दलस्य निर्माणमपि कृतमस्ति। दलं 7 दिनेषु एव स्वस्य प्रतिवेदनं समर्पयिष्यति। ह्यः अपराह्णे दुःखद अग्निघटनायां न्यूनातिन्यूनं 15 जनाः मृताः, तेषु अधिकतया 16-25 वर्षीयाः छात्राः आसन्। अलीगंजनगरस्य पुरैनिया क्षेत्रे एकस्य आपणस्य उपरि कार्यरते एनिमेशन कोचिंग केन्द्रे अग्निप्रकोपः अभवत्, येन छात्रेषु आतंकः उत्पन्नः। 9 व्रणिताः छात्राः किंग्स जॉर्ज चिकित्सकीयं विश्वविद्यालये KGMU लखनऊ इत्यत्र प्रवेशिताः च सन्ति, अधिकांशाः श्वासावरोधेन मृताः। भारतस्य हज समित्या हज 27-2000 कृते तीर्थयात्रिभ्यः आवेदनपत्राणि आमन्त्रितम्। नीत्याः विमोचनं कुर्वन् अल्पसंख्यक कार्यमन्त्री किरेन रिजिजुः ह्यः अवदत् यत् यात्रिणः भारतीय हज समिति पोर्टल तथा हज सुविधा एप माध्यमेन च आवेदनपत्राणि ऑनलाइन माध्यमेन प्रेषयितुं शक्यन्ते, येन प्रक्रिया अधिका सरला सुलभा च भविष्यति। FIH प्रो लीग लंदन राउंड इत्यस्य उद्घाटन क्रीडायां भारतीय पुरुष हॉकी दलम् अद्य पाकिस्तान दलम् सम्मुखी करिष्यति इति वार्ताः।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्वसनीय विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक रहा है। नई दिल्ली में कल निजी मीडिया हाउस के सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्वसनीयता, स्थिरता और वैश्विक हित के लिए प्रतिबद्धता पिछले दशक में भारत की उपलब्धियों के मूल में रही है। G7 शिखर सम्मेलन में भागीदारी का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि विश्व नेताओं ने राष्ट्रीय हितों की प्राथमिकता

0: सर्वप्रथम की भावना ही केंद्र में है। स्वच्छ भारत अभियान से लेकर मेक इन इंडिया, खादी खरीदने पर जोर, स्थानीय वस्तुएं खरीदने पर जोर, ये सारे इनिशिएटिव इसलिए सफल हुए क्योंकि देश की जनता ने देश को सबसे ऊपर रखते हुए अपना कर्तव्य निभाया।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल के वर्षों में लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी से उभरे हैं। श्री मोदी ने सस्ते आवास, कर सुधार, स्वास्थ्य देखभाल योजना और बेहतर शहरी बुनियादी ढांचे का उल्लेख किया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने नई दिल्ली में कल ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक में चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। बैठक में दोनों देशों के संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में हुई प्रगति सहित आपसी सहयोग के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। श्री डोभाल ने कहा कि भारत और चीन के बीच स्थिर, भरोसेमंद और सकारात्मक संबंध दोनों देशों के बीच विश्वास और बेहतर समझ को मजबूत करने में सहायता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने हाल के घटनाक्रमों की समीक्षा की और सकारात्मक संबंधों की दिशा में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। भारत और मोरक्को के बीच आतंकरोधी संयुक्त कार्य समूह की दूसरी बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने सूचना साझा करने, क्षमता निर्माण तथा बेहतर कार्य प्रणालियों के आदान प्रदान के माध्यम से आतंकवाद के खिलाफ द्विपक्षीय सहयोग और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस दौरान 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 अलंकरण दिए जाएंगे। सुविख्यात टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी, पार्श्व गायिका अलका याग्निक और क्रिकेट खिलाड़ी रोहित शर्मा पद्म पुरस्कार पाने वालों में शामिल हैं। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नेफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। यह पोर्टल नीलामी प्रक्रिया में पारदर्शिता, दक्षता और सुगम संचालन को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उम्मीद है कि यह पोर्टल नीलामी संबंधी गतिविधियों को सुव्यवस्थित करने और किसानों, सदस्य संस्थानों तथा हितधारकों के हित में बेहतर डिजिटल मंच प्रदान करेगा। लखनऊ अग्निकांड में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इनमें से 4 को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया। अलीगंज के एक कोचिंग सेंटर में हुए इस हादसे में 15 विद्यार्थियों की मौत हो गई थी और 9 अन्य घायल हो गए थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने वार्षिक श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए परामर्श जारी किया है। यह यात्रा 3 जुलाई से 28 अगस्त तक आयोजित की जाएगी। कैलिफोर्निया में आज से शुरू हो रहे अमरीकी ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारत की अगुवाई करेंगे। लक्ष्य सेन पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में बेल्जियम के जूलियन कैरागे से खेलेंगे। महिला सिंगल्स में भारत की 7 खिलाड़ी मुख्य ड्रॉ में शामिल हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Subhadra Ramachandran. Prime Minister Narendra Modi has said the principle of nation first has been the driving force behind India's transformation into a fast-growing, credible and reliable global power. Addressing a summit organized by a private media house in New Delhi, Prime Minister said the country's achievements over the past decade were rooted in trust, stability and a commitment to the larger global good.
0: भारत फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है, एक क्रेडिबल इकोनॉमी भी है और भारत राइजिंग पावर के साथ साथ सुपर पावर तक ले गए। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि भारत रिलायबल पावर है। मैं अभी 2-3 दिन पहले जी समिट से लौटा हूं और दुनिया का हर नेता, हर देश इस बात को भली भांति समझता है कि आज के भारत के लिए नेशन फर्स्ट ही सबसे बड़ा

ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है, FM 100.5 MHz पर। अब सुनिए कार्यक्रम लोक रसधार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोक रसधार FM 100.5 MHz पर। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है और अब सुनिए प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं नीता कांडपाल। पहले मुख्य समाचार। सरकार ने जूनियर हाई स्कूल शिक्षकों को प्रस्तावित त्रिस्तरीय ढांचे में शामिल करने की घोषणा की। शिक्षकों के विभिन्न लंबित प्रकरणों के निस्तारण के लिए समिति गठित की जाएगी। कर्णप्रयाग विवाद मामले में उत्तराखंड पुलिस ने निष्पक्ष और पारदर्शी जांच का आश्वासन दिया। दोनों मुकदमों की विवेचना हरिद्वार जिले को सौंपी गई। कुमाऊं में भूमि धोखाधड़ी के मामले पर सख्ती, 77 मामलों की समीक्षा के बाद 30 मामलों में मुकदमा दर्ज करने के निर्देश। और देहरादून महायोजना 2041 पर प्राप्त सुझावों और आपत्तियों के निस्तारण के लिए 6 जुलाई से जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रदेश भर के जूनियर हाई स्कूल शिक्षकों को शिक्षा विभाग के प्रस्तावित त्रिस्तरीय

0: में शामिल किया जाएगा। विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने देहरादून में विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन योजना से वंचित शिक्षकों को लाभ देना तथा अशासकीय विद्यालयों में पीटीए शिक्षकों की मांग से संबंधित प्रस्ताव भी जल्द मंत्रिमंडल के समक्ष लाया जाएगा। बैठक में डीएलएड प्रशिक्षित शिक्षा मित्रों को समान कार्य के लिए समान वेतन देने और अशासकीय विद्यालयों में मानदेय प्राप्त शिक्षकों को तदर्थ नियुक्ति प्रदान करने सहित अन्य विषयों पर विचार विमर्श किया गया। इन प्रकरणों के निस्तारण के लिए महानिदेशालय स्तर पर एक समिति गठित करने का निर्णय लिया गया। राज्य पुलिस ने कहा कि पिछले दिनों कर्णप्रयाग में सिख श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों के बीच हुए विवाद के मामले में निष्पक्ष पारदर्शी तथा न्यायसंगत कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। गढ़वाल परिक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक राजीव स्वरूप ने पत्रकारों को ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हेमकुंड साहिब यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सम्मान पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है। श्री स्वरूप ने कहा कि उत्तराखंड पुलिस सभी समुदायों की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करती है और प्रत्येक मामले में कानून के अनुरूप निष्पक्ष पारदर्शी और न्यायसंगत कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि थाना कर्णप्रयाग में दर्ज दोनों मुकदमों की निष्पक्ष पारदर्शी और स्वतंत्र विवेचना सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जांच चमोली जिले से स्थानांतरित कर हरिद्वार जिले को सौंपी गई है।
1: दिनांक 16/6/2026 को जनपद चमोली के कर्णप्रयाग में सिख श्रद्धालुओं एवं स्थानीय व्यक्तियों के मध्य विवाद के पश्चात मारपीट की जो घटना हुई थी उसमें सिख श्रद्धालुओं के विरुद्ध थाना कर्णप्रयाग में एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था। पुलिस मुख्यालय स्तर पर निर्णय लिए गए हैं जिसमें घटना में घायल सिख श्रद्धालु के पिताजी की शिकायत पर उनके साथ कथित मारपीट करने वाले अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध दिनांक 20/6/2026 को थाना कर्णप्रयाग में FIR दर्ज की गई है। थाना कर्णप्रयाग पर पंजीकृत उपयुक्त दोनों अभियोगों की निष्पक्ष पारदर्शी एवं स्वतंत्र विवेचना सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विवेचनाएं चमोली जनपद से हरिद्वार जनपद को स्थानांतरित की गई हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न सिख संगठनों द्वारा सिख श्रद्धालुओं के साथ स्थानीय पुलिस के कथित आचरण एवं व्यवहार के आरोपों की जाँच DIG श्री यशवंत सिंह चौहान के सुपुर्द करते हुए उन्हें 2 सप्ताह में आख्या प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया है। उत्तराखंड पुलिस सभी समुदायों की धार्मिक भावनाओं का पूर्ण सम्मान करती है तथा प्रत्येक प्रकरण में कानून के अनुरूप निष्पक्ष पारदर्शी न्याय संगत कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध है।
2: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध है।
0: कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने काठगोदाम में लैंड फ्रॉड कमेटी की बैठक की। बैठक में भूमि धोखाधड़ी से जुड़े 77 मामलों की विस्तार से समीक्षा की गई। विभिन्न जिलों से प्राप्त मामलों की जांच के बाद कुमाऊं आयुक्त ने 30 मामलों में मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि भूमि धोखाधड़ी से संबंधित मामलों की रिपोर्ट जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के माध्यम से समिति तक पहुंचती है, जिसके बाद प्रत्येक मामले की गंभीरता से समीक्षा की जाती है।
3: मामले अलग अलग जिलों से आए थे जिसमें हम एक तो रिपोर्ट मांगते हैं तहसील से, DMs के थ्रू वो रिपोर्ट आती है। आजकल हमने पैरेलली SSPs को भी हम रिपोर्ट दे रहे हैं कि वो भी इसको प्रोब कर ले। तो उस सब के बाद जो रिपोर्ट्स आज यहाँ पे आई थी, कुल मिला के 77 मामले ऐसे थे जो हमने रखे थे आज की बैठक के लिए, जिनमें रिपोर्ट मांगी गई थी और यहाँ पे जो कमेटी बैठी उन्होंने इसको डिसाइड किया। तो हमने 30 मामलों में पाया कि ये लैंड फ्रॉड के मामले बनते हैं और इसमें मुकदमा दर्ज होना चाहिए, तो उसको कमेटी ने आज अप्रूव कर दिया है। इसके बाद ये FIRs दर्ज हो जाएंगी और इसमें जो इन्वेस्टिगेशन है वो आगे चलेगी।
0: श्री रावत ने कहा कि यदि सुनियोजित तरीके से भूमि धोखाधड़ी के मामले सामने आते हैं तो संबंधित लोगों के विरुद्ध संगठित अपराध के तहत भी बड़ी कार्रवाई की जाएगी। MDDA देहरादून महायोजना 2041 पर प्राप्त आपत्तियों और सुझावों के निस्तारण के लिए 6 जुलाई से 21 जुलाई तक विभिन्न स्थानों पर जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित करेगा। MDDA ने सभी संबंधित नागरिकों से अपील की है कि वे अपने अपने सेक्टर के लिए निर्धारित तिथि और स्थान पर उपस्थित होकर अपने सुझाव और आपत्तियां प्रस्तुत करें। प्राधिकरण का कहना है कि जनभागीदारी से देहरादून की भावी विकास योजनाओं को अधिक प्रभावी, संतुलित और जनहितकारी बनाने में सहायता मिलेगी। एक रिपोर्ट।
4: महायोजना 2041 देहरादून के सुनियोजित, संतुलित और सतत विकास की आधारशिला है। इसमें आवासीय, व्यावसायिक, संस्थागत, औद्योगिक, हरित क्षेत्र, परिवहन व्यवस्था तथा आधारभूत सुविधाओं के विकास से जुड़े विभिन्न प्रावधान शामिल किए गए हैं। जनसुनवाई के माध्यम से नागरिकों को देहरादून के भावी विकास से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर अपनी राय रखने का अवसर मिलेगा। जनसुनवाई प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त सुझावों और आपत्तियों का परीक्षण कर आवश्यकता अनुसार महायोजना में संशोधन और परिमार्जन किया जाएगा। आकाशवाणी देहरादून के लिए समाचार कक्ष से वीरेंद्र दत्त गैरोला।
0: पौड़ी की जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया की अध्यक्षता में कल कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जनता मिलन कार्यक्रम में विभिन्न विभागों से संबंधित 19 शिकायतें दर्ज की गयी। जिलाधिकारी ने अधिकांश शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कराया, जबकि शेष प्रकरणों में संबंधित अधिकारियों को निर्धारित समयावधि में कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कार्यक्रम के दौरान पेयजल समस्या का मुद्दा उठाए जाने पर जिलाधिकारी ने संबंधित क्षेत्र का निरीक्षण कर नियमित पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने, स्थायी समाधान के लिए कार्ययोजना तैयार करने तथा अंतरिम व्यवस्था के तहत टैंकरों के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
5: लगभग 22-23 शिकायतें आई थीं और उसमें 3-4 शिकायतें पानी की भी थीं और इसमें लोग आज ही वहाँ पे एक्सीएन को भी भेजकर इस प्रॉब्लम का क्या कारण है और कैसे समाधान किया जा सकता है हम लोगों ने बोला है। और इसके अतिरिक्त भी कुछ एकाध गांव की भी इस प्रकार से समस्याएं आई हैं, तो जल संस्थान के जो एक्सीएन थे उनके संज्ञान में भी था, तो उसमें कुछ अस्थायी व्यवस्था फिलहाल के लिए कर देंगे और परमानेंट व्यवस्था भी वहाँ पे शीघ्र ही 8-10 दिन के अंदर हम लोग अवश्य सुनिश्चित करेंगे। और इसके अतिरिक्त जो शेष कुछ श्रीनगर एरिया की रोड आदि की समस्याएं आई थी, तो उसके लिए भी कुछ में नई रोड सैंक्शन के संबंध में थी और कुछ रोड की क्वालिटी को लेकर थी, तो जो सैंक्शन वाली है उसको तो शासन हम लोग भेज देंगे, लेकिन जो रोड क्वालिटी वगैरह से रिलेटेड समस्याएं हैं उसको हम लोग तत्काल सुनिश्चित कराएंगे।
0: और अब एक नजर आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। लखनऊ के अलीगंज में ट्रेनिंग कोचिंग सेंटर में आग से हुई जनहानि की खबर को सभी समाचार पत्रों ने प्रमुखता से सचित्र प्रकाशित किया है। इस खबर पर अमर उजाला की सुर्खी है, लखनऊ में आग से 15 छात्रों की मौत। नगरासू गुरुद्वारा प्रकरण में हिंदुस्तान का शीर्षक है, निहंगों ने छत से किया पथराव, पुलिस ने एक दबोचा। नीरिट एग्जाम पर नवोदय टाइम्स लिखता है, बिहार में 9 सॉल्वर पकड़े, कतर में भारत भारतीयों की मौत। इस शीर्षक के साथ दैनिक जागरण लिखता है कि एलएनजी प्लांट में मरम्मत के दौरान अचानक हुआ धमाका। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने जूनियर हाईस्कूल शिक्षकों को प्रस्तावित त्रिस्तरीय ढांचे में शामिल करने की घोषणा की। शिक्षकों के विभिन्न लंबित प्रकरणों के निस्तारण के लिए समिति गठित की जाएगी। कर्णप्रयाग विवाद मामले में उत्तराखंड पुलिस ने निष्पक्ष और पारदर्शी जांच का आश्वासन दिया। दोनों मुकदमों की विवेचना हरिद्वार जिले को सौंपी गई। कुमाऊं में भूमि धोखाधड़ी के मामले पर सख्ती, 77 मामलों की समीक्षा के बाद 30 मामलों में मुकदमा दर्ज करने के निर्देश। और देहरादून महायोजना 2041 पर प्राप्त सुझावों और आपत्तियों के निस्तारण के लिए 6 जुलाई से जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन पूर्वाह्न 10:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
6: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार FM 100.5 MHz पर। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में 7:30 होने को है और अब आप सुनेंगे कार्यक्रम शैल संगीत।

0: अरे वाह, पुराना सोना कितना शुद्ध होता था ना दादी।
1: सोना आज भी शुद्ध है उस पर अगर हॉलमार्क अंकित है।
2: आप भी ध्यान रखें, सोना हमेशा BIS प्रमाणित ज्वेलर से ही लें। बिल अवश्य लें और जांच लें कि बिल पर अंकित और आभूषण पर अंकित शुद्धता समान है। अधिक जानकारी के लिए लॉग इन करें bis.gov.in पर।
3: रविंद्र ये बताओ, सरकार की योजनाओं की पूरी जानकारी कहाँ मिलेगी?
4: अरे रागनी, धामी सरकार ने जनहित में जारी की है पुस्तक मेरी योजना।
3: सच में, क्या क्या है उसमें?
4: शिक्षा, स्वास्थ्य, किसान, महिला, युवा, हर योजना आसान भाषा में एक ही पुस्तक में। मेरी योजना, जानकारी भी अधिकार भी।
5: मेरी योजना पुस्तक आप डिजिटल रूप से uk.gov.in पर प्राप्त कर सकते हैं।
6: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम शैल संगीत आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। और शैल संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम आपको सुनवा रहे हैं विविध कलाकारों के स्वर में गढ़वाली लोकगीत।

कार्यक्रम चल रहा है शैल संगीत आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम शैल संगीत के अंतर्गत गढ़वाली लोकगीत जिसे हम आपको सुनवा रहे हैं मधु चमोली, मुकेश शर्मा और लिली ढोंडियाल के आवाज़ में। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है FM 100.5 MHz पर।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम शैल संगीत के अंतर्गत विविध कलाकारों के स्वर में गढ़वाली लोकगीत। यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है FM 100.5 MHz पर।

विविध कलाकारों के स्वर में आप सुन रहे हैं गढ़वाली लोकगीत कार्यक्रम, चल रहा है शैल संगीत आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से।

0: आप सुन रहे थे विविध कलाकारों के स्वर में गढ़वाली लोकगीत। कार्यक्रम चल रहा था शैल संगीत। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है और अब सुनिए समाचार प्रभात आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक बल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ अग्निकांड में 4 अधिकारियों को निलंबित किया, 4 और आरोपी गिरफ्तार। उर्वरक ले जा रहे 4 जहाज हॉर्मुज जल डमरू मध्य पार करने के बाद भारतीय बंदरगाहों की ओर बढ़े। कतर ने रास लाफान LNG विस्फोट में 12 भारतीय नागरिकों की मौत की पुष्टि की। और कैलिफोर्निया में आज से शुरू हो रहे US ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारत की अगुवाई करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के तेजी

से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्वसनीय विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक रहा है। नई दिल्ली में कल निजी मीडिया हाउस के सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्वसनीयता, स्थिरता और वैश्विक हित के लिए प्रतिबद्धता पिछले दशक में भारत की उपलब्धियों के

0: की प्रतिबद्धता में सफल हुई है।
1: पिछले 12 वर्षों के जो भी सिद्धियां देश की रही है उनके मूल में राष्ट्र प्रथम की भावना ही केंद्र में है। स्वच्छ भारत अभियान से लेकर मेक इन इंडिया, खादी खरीदने पर जोर, स्थानीय वस्तुएं खरीदने पर जोर, ये सारे इनिशिएटिव इसलिए सफल हुए क्योंकि देश की जनता ने देश को सबसे ऊपर रखते हुए अपना कर्तव्य निभाया।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल के वर्षों में लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी से उभरे हैं। श्री मोदी ने सस्ते आवास, कर सुधार, स्वास्थ्य देखभाल योजना और बेहतर शहरी बुनियादी ढांचे का उल्लेख किया। देश की मजबूत अवसंरचना पर बल देते हुए श्री मोदी ने कहा कि वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत रेलगाड़ियां विस्तारित राजमार्ग और हवाई अड्डों से संपर्क व्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है।
1: 2014 में करीब 28 लाख लोग हर रोज मेट्रो से सफर करते थे, आज करीब 1,28,00,000 लोग हर रोज मेट्रो से सफर कर रहे हैं। अब वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत जैसी अच्छी सड़कों, अच्छे हाईवे से समय तो बच ही रहा है, गाड़ियों की मेंटेनेंस पर होने वाला खर्चा भी कम हुआ है। बीते वर्षों में एयरपोर्ट की संख्या डबल हुई है, इससे कई छोटे छोटे शहरों में भी मिडिल क्लास को हवाई यात्रा की सुविधा पहली बार मिली है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत में अभूतपूर्व अवसर सृजित हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि 140 करोड़ भारतवासियों के सामूहिक प्रयासों से विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।
1: भारत आज रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार हो चुका है, ये गति आगे और तेज होगी कि हमारा सपना जितना बड़ा है हमारे प्रयास भी उतने ही विराट होंगे और 140 करोड़ देशवासियों का यही साझा प्रयास विकसित भारत बनाकर रहेगा।
0: राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने नई दिल्ली में कल ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक में चीन की विदेश मंत्री वांग यी के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। बैठक में दोनों देशों के संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में हुई प्रगति सहित आपसी सहयोग के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। श्री डोभाल ने कहा कि भारत और चीन के बीच स्थिर, भरोसेमंद और सकारात्मक संबंध दोनों देशों के बीच विश्वास और बेहतर समझ को मजबूत करने में सहायता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने हाल के घटनाक्रमों की समीक्षा की तथा सकारात्मक संबंधों की दिशा में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि आज 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 अलंकरण दिए जाएंगे।
2: इस वर्ष केंद्र सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार प्राप्त करने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 सम्मान मरणोपरांत प्रदान किए जाएंगे। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। आज राष्ट्रपति 65 विशिष्ट हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित करेंगी। इनमें टेनिस के दिग्गज विजय अमृतराज, अभिनेता ममूती, गायिका अलका याग्निक और भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा जैसे प्रमुख हस्तियां शामिल हैं। वर्ष 1954 में स्थापित किए गए यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर घोषित किए जाते हैं। पद्म पुरस्कार कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, सामाजिक कार्य, विज्ञान, लोक प्रशासन तथा व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान को मान्यता देने के लिए प्रदान किए जाते हैं। सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: हमारी विशेष श्रृंखला पीपुल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों में पद्म पुरस्कार पाने वाले सम्मानित व्यक्तियों के जीवन, उनके कार्यों और समाज में उनके योगदान की जानकारी दी जा रही है।
3: मैराब का काम सीखा, अंगूरी का काम सीखा है, मोटी चिकन मामूली का काम, तो इसमें सबसे बारीक काम एक मरूरी का ही होता है, तो मरूरी का काम जो है लगातार नहीं किया जाता है, ये बहुत ही फाइन वर्क होता है।
4: जब हमारे मेजॉरिटी कम्युनिटी का यूथ और माइनॉरिटी कम्युनिटी का यूथ वो एक दूसरे को समझने की कोशिश करे, वो ये जाने कि कश्मीर का जो एक नॉर्मल सिख के लिए वही गुलदस्ता जो कश्मीर जिसमें हमारे गांधी जी को किरण नजर आई थी या भारत का ताज के रूप में ये जो था, उसी गुलदस्ते को फिर से उजागर करने के, उसको बनाने के लिए हमने प्रयास करा।

0: ये विशेष कार्यक्रम आज सवेरे 9:10 से आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल 100.1 पर प्रसारित किया जाएगा। श्रोता इन्हें न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR के आधिकारिक YouTube चैनल पर भी सुन सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। लखनऊ अग्निकांड में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इनमें से 4 को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के 4 अधिकारियों को भी निलंबित कर दिया गया है। अलीगंज पुलिस ने BNS और उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत 6 नामजद आरोपियों और अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ FIR दर्ज की है। राज्य सरकार ने आग की घटना की उच्च स्तरीय जाँच के आदेश दे दिए हैं। घटना की जाँच के लिए एक विशेष जाँच दल SIT का गठन किया गया है, जिसके सदस्य 7 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। SIT में अतिरिक्त मुख्य सचिव धर्मार्थ कार्य, पर्यटन और संस्कृति अमृत अभिजात और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक लखनऊ जोन प्रवीण कुमार शामिल हैं। कल दोपहर लगी भीषण आग में कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें ज्यादातर 16 से 25 साल की उम्र के छात्र थे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नेफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। इससे नीलामी संबंधी गतिविधियों को सुगम बनाने और किसानों तथा कृषि संस्थाओं के हित में नेफेड की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध होगा। सहकारिता मंत्रालय ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान श्री अमित शाह कई महत्वपूर्ण डिजिटल और किसान केंद्रित पहल का भी शुभारंभ करेंगे। यूरिया, डाई अमोनिया फॉस्फेट और सल्फर लेकर आ रहे 4 भारतीय मालवाहक जहाज होर्मुज जलडमरू मध्य सफलतापूर्वक पार कर चुके हैं। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अनुसार ये जहाज अब देश के विभिन्न बंदरगाहों की ओर बढ़ रहे हैं। इनमें आंध्र प्रदेश के कृष्णापट्टनम और काकीनाडा बंदरगाह, ओडिशा का पारादीप बंदरगाह और गुजरात का मुंद्रा बंदरगाह शामिल हैं। दोहा स्थित भारतीय दूतावास ने बताया है कि कतर के अधिकारियों ने रास लाफान क्षेत्र में रविवार रात हुई दुर्घटना में 12 भारतीय नागरिकों की मौत की पुष्टि की है। दूतावास ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। घटना में घायल सभी लोगों को उचित चिकित्सा उपचार मिल रहा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने भारतीय नागरिकों सहित अन्य लोगों की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोहा स्थित भारतीय दूतावास कतर के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और भारतीय नागरिकों के परिवारों की सहायता कर रहा है। कतर की सबसे बड़ी गैस रिफाइनरी में हुए विस्फोट में 13 लोग मारे गए और 66 अन्य घायल हो गए। जम्मू कश्मीर पुलिस ने वार्षिक श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए परामर्श जारी किया है। यह यात्रा 3 जुलाई से 28 अगस्त तक आयोजित की जाएगी। कश्मीर से जम्मू जाने वाले वाहनों को सवेरे 11:30 बजे से पहले नवयुग सुरंग पार करने की अनुमति नहीं होगी। वहीं जम्मू से कश्मीर जाने वाले वाहनों को प्रतिदिन दोपहर 3 बजे के बाद सुरंग में प्रवेश नहीं मिलेगा। परामर्श में घाटी के कई महत्वपूर्ण स्थानों के लिए समय सीमा भी तय की गई है। और अब खेल समाचारों के साथ हैं आनंद पाठक।
2: कैलिफोर्निया में आज से शुरू हो रहे अमरीकी ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। लक्ष्य सेन पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में बेल्जियम के जूलियन कैरागी से खेलेंगे। किदाम्बी श्रीकांत अपने पहले दौर के मुकाबले में चीनी ताइपे के लियाओ जुओ फू का सामना करेंगे। वहीं महिला सिंगल्स में भारत की 7 खिलाड़ी मुख्य ड्रॉ में शामिल हैं। 17 वर्षीय तन्वी शर्मा जर्मनी की यवोन ली के खिलाफ अपना अभियान शुरू करेंगी। महिला डबल्स में ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद पहले दौर में स्पेन की पाउला लोपेज और लूसिया रोड्रिगेज का सामना करेंगी। वहीं हॉकी में FIH प्रो लीग के शुरुआती मुकाबले में आज भारतीय पुरुष टीम का सामना पाकिस्तान से होना है। उधर फीफा विश्व कप में फ्रांस ने इराक को 3-0 से हरा दिया है। वहीं न्यूयॉर्क में नॉर्वे ने सेनेगल को 3-2 से हराया। इस बीच आज सवेरे 8:30 बजे से जॉर्डन और अल्जीरिया के बीच मैच खेला जाएगा। इससे पहले अर्जेंटीना ने ऑस्ट्रिया को 2-0 से हराया। दोनों गोल अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी ने किए। इसके साथ ही मेसी 18 गोल के साथ जर्मनी के मिरोस्लाव क्लोस का 16 गोल का रिकॉर्ड तोड़कर विश्व कप के इतिहास में सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं।
0: मौसम विभाग ने अगले दो दिन तक असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के उप हिमालयी क्षेत्र और सिक्किम में बहुत तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार, अरुणाचल प्रदेश, तटवर्ती कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, गोवा, ओडिशा, तेलंगाना, केरल और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी ऐसी ही स्थिति रहेगी। हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बृहस्पतिवार तक तेज हवाएं चलने और गरज के साथ वर्षा का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
3: धन्यवाद मुकेश। अमेरिका और ईरान के बीच समझौते की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, अमेरिका ईरान के बीच बात बनी, 60 दिन में होगा अंतिम समझौता। ईरान के तेल से पाबंदी हटी, स्विट्जरलैंड के बुर्गेन स्टॉक रिसॉर्ट में घंटों चली वार्ता। बातचीत सकारात्मक और रचनात्मक माहौल में हुई, जेडी वेंस ने बैठक को ऐतिहासिक बताया। पंजाब केसरी ने तनाव के बीच उम्मीद शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, जेडी वेंस अमेरिका के भावी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हो सकते हैं। उन्हें डोनाल्ड ट्रंप का राजनीतिक उत्तराधिकारी माना जा रहा है। अगर शांति समझौता विफल रहता है तो ट्रंप इसका पूरा दोष वेंस पर डाल देंगे। ये शांति समझौता वेंस के राजनीतिक करियर के लिए दोधारी तलवार बन चुका है। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने इस्तीफे का ऐलान किया। बर्नहम ने पीएम पद की दावेदारी पेश की। स्टार्मर बीते 10 साल में ब्रिटेन के पीएम पद से इस्तीफा देने वाले छठे व्यक्ति। जनसत्ता की सुर्खी है, लखनऊ के अलीगंज में इमारत में लगी आग, 12 बच्चों समेत 15 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री ने हालात का जायजा लिया, जांच के लिए SIT गठित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए पीड़ितों की हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। दैनिक जागरण ने लापरवाही की आग शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, बहुत दिन नहीं हुए जब देश की राजधानी में अवैध होटल में आग से 20 से अधिक लोग मारे गए थे। माना यह गया था कि इस घटना से सीख ली गई होगी, लेकिन लखनऊ की आग से पता चलता है कि ऐसा नहीं किया गया।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक बल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ अधिकरण कांड में 4 अधिकारियों को निलंबित किया, 4 आरोपी गिरफ्तार। उर्वरक लेकर आ रहे 4 जहाज हुरमुज जलडमरू मध्य पार करने के बाद भारतीय बंदरगाहों की ओर बढ़े। और कैलिफोर्निया में आज से शुरू हो रहे US ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारत की अगुवाई करेंगे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सुनील वर्मा। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेज प्रिंसिपल ऑफ नेशन फर्स्ट has been driving force behind India's transformation into a fast-growing, credible and reliable global power. President Draupadi Murmu to confer Padma Awards during second round of civil investiture ceremony at Rashtrapati Bhavan today. Uttar Pradesh government suspends 4 officials in connection with Lucknow fire incident. 4 accused arrested. 4 ships carrying fertilizers heading towards Indian ports after crossing Strait of Hormuz. Qatari authorities confirmed death of 12 Indian nationals in Ras Laffan LNG explosion. And Lakshya Sen and Tanvi Sharma to lead India's challenge at US Open Super Badminton Tournament beginning today in California. Prime Minister Narendra Modi has said the principle of nation first has been the driving force behind India's transformation into a fast-growing, credible and reliable global power. Addressing a summit organized by a private media house in New Delhi, the Prime Minister said the country's achievements of the past decade were rooted in trust, stability and a commitment to the larger global good.
4: भारत फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है, एक क्रेडिबल इकोनॉमी भी है, और भारत राइजिंग पावर के साथ साथ सुपर पावर तक ले गए। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा, कि भारत रिलायबल पावर है। मैं अभी दो तीन दिन पहले जी समिट से लौटा हूँ और दुनिया का हर नेता, हर देश इस बात को भली भांति समझता है कि आज के भारत के लिए नेशन फर्स्ट ही सबसे बड़ा मंत्र है, सबसे बड़ा सिद्धांत है।
5: Referring to his recent participation in the G7 summit, Mr. Modi said, world leaders recognize India's unwavering commitment to putting national interests first, a philosophy that continues to shape the country's policies and development agenda. Highlighting the government's 12 years in office, the Prime Minister said, initiatives such as Swachh Bharat, Make in India, promotion of Khadi and support for local products succeeded because citizens embrace the spirit of nation building.
4: पिछले 12 वर्षों के जो भी सिद्धियां देश की रही है उनके मूल में अगर आप तराजू से तोलोगे हर निर्णय, हर कदम, हर प्रयास, उनके मूल में राष्ट्र प्रथम की भावना ही केंद्र में है। स्वच्छ भारत अभियान से लेकर मेक इन इंडिया, खादी खरीदने पर जोर, स्थानीय वस्तुएं खरीदने पर जोर, ये सारे इनिशिएटिव इसलिए सफल हुए क्योंकि देश की जनता ने देश को सबसे ऊपर रखते हुए अपना कर्तव्य निभाया। देश के नागरिकों को मैं सलाम करता हूं।
5: मिस्टर मोदी सेड Nearly 25 crore people had moved out of poverty in recent years, leading to the emergence of a large new middle class and boosting economic activity.
4: 25 crore log garibi se bahar nikle hain, new middle class mein aaye hain, to iska fayda keval un parivaron tak nahi rehta, balki middle class ka bhi isme fayda hota hai. क्योंकि ये नया कंज्यूमर है जो इकोनॉमी को ड्राइव करता है, उसे अल्टीमेटली मिडिल क्लास के लिए अवसर बनते हैं। यानी गरीबी कम होना केवल वेलफेयर का ही विषय नहीं है, यह अवसरों के विस्तार की गाथा है, नई एस्पिरेशन की प्रेरणा है।
5: President Draupadi Murmu will present the Padma Awards during the second civil investiture ceremony at Rashtrapati Bhavan this evening. Padma Awards, one of the highest civilian awards of the country, are conferred in three categories, Padma Vibhushan, Padma Bhushan and Padma Shri. The President will confer 65 Padma Awards today. A report.
6: This year, the government has announced a total of 131 Padma Awards. These include 5 Padma Vibhushan, 13 Padma Bhushan and 113 Padma Shri Awards. Among the awardees, 19 are women, while 16 individuals will be awarded posthumously. The Padma Awards, namely Padma Vibhushan, Padma Bhushan and Padma Shri, are among the highest civilian awards of the country. Tennis legend Vijay Amrit Raj, actor Mamuti, playback singer Alka Yagnik and cricketer Rohit Sharma are among 65 prominent personalities who will receive the Padma Awards from the President today. Instituted in 1954, these awards are announced on the occasion of the Republic Day every year. The award seeks to recognize work of distinction and is given for distinguished and exceptional achievements in various fields and disciplines, including art, literature, education, sports, medicine, social work, science and engineering, public affairs and trade and industry. Soumya Sharan, Akashwani News, Delhi.
5: News Services Division of Akashwani is broadcasting special programs as part of our series People's Padma on Akashwani. Through these episodes, we bring insights into the lives and contributions of Padma awardees.
7: I find the idea of a human milk bank, and I started then the first human milk bank in Asia.
8: Designed many equipment for measurement of materials, actually characterization of the materials like resistivity, thermoelectric power, which is a very sensitive property. All these things we developed it ourselves at a very, very low cost.
9: मैं 10-12 वर्षों पहले मित्र सिखाए लगलू बनाता माल इकड़ो व्यवसाय नहीं.
10: I started learning the tarpa when I was 10 to 12 years old. This ancient art is a matter of pride for us Adivasis, and we have preserved it.
11: My mama, when he came to know that I too have hemophilia, he used to tell me, you should become a doctor or do some research in this field.

मैदान में जो पसीना बहाते हैं वही इतिहास रचते बनाते हैं, मंजिल उनके कदम चूमते हैं जो हर चुनौती से टकराते हैं। नमस्कार देहरादून, मैं प्रियंका जीना लेकर हाजिर हूँ आपका पसंदीदा दैनिक सूचना परक कार्यक्रम। श्रोताओं, क्या आपको खेलना पसंद है? बचपन में आपने कौन सा खेल सबसे ज्यादा खेला? क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी, बैडमिंटन या फिर दौड़? जरा याद कीजिए वो दिन जब जीत से ज्यादा खुशी खेल में भाग लेने की होती थी। इन्हें खेल भावनाओं, दोस्ती, अनुशासन और उत्कृष्टता के संदेश को दुनिया भर में फैलाने के लिए, जी हाँ, हर वर्ष आज ही के दिन यानी 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। यह दिन आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत की याद में मनाया जाता है। श्रोताओं, ओलंपिक केवल खेल प्रतियोगिता नहीं बल्कि ये दुनिया के देशों को एक मंच पर जोड़ने वाला ऐसा उत्सव है जो शांति, एकता और भाईचारे का संदेश देता है। ये संदेश हमें केवल खेलों में ही नहीं बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। श्रोताओं, भारत ने भी ओलंपिक में कई गौरवशाली क्षण देखे हैं, चाहे बात हो महान हॉकी खिलाड़ी की या फिर ऐतिहासिक स्वर्ण पदक की। हमारे खिलाड़ियों ने विश्व मंच पर देश का नाम सदैव रोशन किया है। जब हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं, क्या खेल केवल खिलाड़ियों के लिए जरूरी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। खेल हमें शारीरिक रूप से फिट भी रखते हैं, मानसिक तनाव कम करते हैं, टीम वर्क सिखाते हैं और आत्मविश्वास बढ़ाते हैं। आज जब मोबाइल और स्क्रीन टाइम लगातार बढ़ रहा है, तब हर उम्र के लोगों के लिए रोज कम से कम 30 मिनट किसी न किसी शारीरिक गतिविधि में भाग लेना बेहद जरूरी हो गया है। यदि आप छात्र हैं तो खेल आपके व्यक्तित्व विकास में मदद करते हैं, यदि आप नौकरी करते हैं तो खेल आपको तनाव से दूर रखते हैं, और यदि आप वरिष्ठ नागरिक हैं तो नियमित व्यायाम और हल्की खेल गतिविधियां आपको स्वस्थ और सक्रिय बनाए रखती है। तो श्रोताओं, इस अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस पर क्यों ना हम एक छोटा सा संकल्प लें कि रोज थोड़ा खेलेंगे, थोड़ा दौड़ेंगे, थोड़ा चलेंगे और अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि जीत केवल पदक हासिल करने में नहीं बल्कि स्वयं को बेहतर बनाने में भी होती है। तो इसी के साथ ही आप सभी को एक बार पुनः अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, और लिए चलते हैं आपको कार्यक्रम में इस गीत की ओर।

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार देहरादून, आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रियंका जेना के साथ, और अब आप तक पहुंचा रहे हैं स्थानीय अखबारों की सुर्खियां। ITI की तो अग्निपथ योजना में मिलेगी रियायत, उत्तराखंड के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों से कोर्स करने वाले छात्रों को केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना में छूट मिलेगी। प्रदेश के 153 सरकारी व 82 निजी ITI में दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पीएम पोषण योजना का संबंध संस्थानों को ही मिलेगा लाभ, शिक्षा विभाग से संबद्ध अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को ही पीएम पोषण योजना का लाभ मिलेगा, शासन ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। उत्तराखंड में ट्रैकिंग रूटों की पहली बार होगी मैपिंग, प्रदेश में पर्वतारोहियों की लोकेशन का पता लग सकेगा। उत्तराखंड में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पहली बार ट्रैकिंग रूटों की मैपिंग की जाएगी। इसके लिए उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद की बोर्ड बैठक में मैपिंग करने की अनुमति दी गई। मैपिंग से ट्रैकिंग के दौरान पर्वतारोहियों के लोकेशन का पता लग सकेगा। केदारनाथ रोपवे का फाइनल अलाइनमेंट इसी माह होगा पूरा, सचिवालय में हुई बैठक में NHLML ने जानकारी साझा की। बैठक में मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट व हेमकुंड साहिब रोपवे प्रोजेक्ट के लिए वन भूमि हस्तांतरण संबंधी प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए। इग्नू में 36 विषयों में PhD में प्रवेश शुरू। इग्नू ने जुलाई सत्र के लिए 36 विषयों में PhD प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी है। डाक अदालत का आयोजन 30 जून को, इस मौके पर डाक से जुड़ी समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। और अब बात मौसम की। मौसम दून में हवाओं से राहत, 2.5 डिग्री गिरा पारा। मौसम विभाग ने आज प्रदेश भर में हल्की बारिश की संभावना जताई। कई जगह तेज हवाएं चलने के साथ आकाशीय बिजली का येलो अलर्ट जारी। तो श्रोताओं, ये थी स्थानीय अखबारों की सुर्खियां, और अब आपको बताते हैं आज का इतिहास। तो इतिहास के पन्नों से, 23 जून 2014 को आज के दिन ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क के यूनेस्को को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। इससे भारत की विरासत को वैश्विक स्तर पर नई पहचान मिली थी। 23 जून आज ही के दिन बैनाकबन की लड़ाई में स्कॉटलैंड ने इंग्लैंड पर निर्णायक विजय प्राप्त की थी। 1761 में आज ही के दिन मराठा पेशवा बालाजी बाजीराव का निधन हुआ था। 1868 में क्रिस्टोफर लेंथम शॉल्स को टाइपराइटर के लिए पेटेंट मिला था। और 1936 में 23 जून के दिन भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी प्रदीप कुमार बनर्जी का जन्म हुआ था। ये थे इतिहास के पन्नों से कुछ जानकारी, और अब बढ़ते हैं कार्यक्रम नमस्कार देहरादून में आगे, और लिए चलते हैं आपको कार्यक्रम के इस अगले गीत की ओर।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार देहरादून आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, आज 23 जून है और आज के दिन हम संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस भी मनाते हैं। यह दिन उन सभी लोक सेवकों को समर्पित है जो समाज और राष्ट्र के विकास के लिए निस्वार्थ भाव से कार्य करते हैं, चाहे वे प्रशासनिक अधिकारी हों, शिक्षक हों, डॉक्टर हों, पुलिसकर्मी हों, सफाई कर्मचारी क्यों ना हो या अन्य कोई भी सरकारी कर्मचारी। इन सभी की सेवाएं हमारे जीवन को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो श्रोताओं, लोक सेवा केवल एक नौकरी नहीं बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी और सेवा का भाव है। यही कारण है कि संयुक्त राष्ट्र ने इस दिन को सार्वजनिक सेवाओं के महत्व को पहचान देने और युवाओं को इस क्षेत्र में आने के लिए प्रेरित करने हेतु समर्पित किया है। तो हमारे सभी लोक सेवा में कार्यरत अधिकारियों को और जिम्मेदार नागरिकों को इस दिन की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ लिए चलते हैं आपको कार्यक्रम में इस अगले गीत की ओर।

श्रोताओं, अगर हम आज के दिन की बात करें तो आज 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस भी मनाया जाता है। 23 जून को दुनिया भर में विधवाओं के अधिकारों की रक्षा, उनकी समस्याओं पर ध्यान आकर्षित करने और उन्हें आर्थिक व सामाजिक रूप से सशक्त बनाने के लिए ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है। और इस तरह की महिलाओं के लिए सरकार कई योजनाएं भी चलाती हैं ताकि उन्हें आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाया जा सके। जैसे कि प्रमुख सरकारी योजनाएं हैं जो कि भारत में विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा चलाई जाती हैं। इनमें से एक है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना। ये ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित केंद्र प्रायोजित योजना है और गरीबी रेखा से नीचे की विधवाओं को केंद्र सरकार द्वारा प्रति माह आर्थिक सहायता दी जाती है। और साथ ही राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना भी इसी के तहत आती है। इस योजना के तहत कमाने वाले पति की मृत्यु के बाद आश्रित परिवार को एक मुश्त 30,000 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। और राज्य स्तरीय विधवा पेंशन योजनाएं भी चलाई जाती हैं जो कि भारत के सभी राज्य अपनी ओर से भी विधवा पेंशन चलाते हैं। उदाहरण के लिए दिल्ली और झारखंड में ये राशि अलग हो सकती है और अन्य राज्यों में ये राशि अलग होती है। तो इस तरह की कई ऐसी योजनाएं हैं जो विधवा महिलाओं के लिए चलाई जाती है। तो आज के इस दिन को संज्ञान में लेकर हमें इस तरह की महिलाओं के लिए कार्य करना चाहिए और उन्हें जागरूक करना चाहिए कि किस तरह से वो इन योजनाओं का लाभ उठा सकती हैं। इसी के साथ ही चलते हैं कार्यक्रम में इस अगले और अंतिम गीत की ओर।

श्रोतो, इस गीत के साथ ही अब वक्त हो चला है आपसे कार्यक्रम से अनुमति लेने का, और ठीक इसी वादे के साथ चलते हैं कि कल सुबह 8:30 पर फिर हाजिर होंगे कुछ नई जानकारियों को आप तक लिए। तब तक के लिए आप नोट कर लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम नमस्कार देहरादून, द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी, हरिद्वार बाईपास रोड, देहरादून। पिन है 2408001। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है namaskardehradun@gmail.com। और इसी के साथ ही अब मुझे यानी प्रियंका जैना को दीजिए अनुमति और सुनते रहिए आकाशवाणी का देहरादून केंद्र FM 100.5 MHz पर। नमस्कार देहरादून।

0: अभी आप सुन रहे थे दैनिक सूचना परक कार्यक्रम नमस्कार देहरादून। FM 100.5 MHz पर ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है और अब सुनिए कार्यक्रम जिले की चिट्ठी, क्षेत्रीय समाचार एकांश देहरादून की प्रस्तुति।
1: नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी देहरादून से जिले की चिट्ठी के क्रम में प्रस्तुत है टिहरी जिले की चिट्ठी। मैं हूं आशुतोष उनियाल और आलेख है टिहरी जिले से हमारे संवाददाता जयप्रकाश कुकरेती का। श्रोताओं, टिहरी जिले की चिट्ठी इस बार जन सुलभ विकास कार्यों, प्रशासनिक सतर्कता, शासन एवं प्रशासन द्वारा विकासात्मक कार्यों के संचालन और कृषि उन्नयन जैसी महत्वपूर्ण जनोपयोगी खबरें आपके लिए लेकर आई है। और शुरुआत करेंगे उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनंद वर्धन के 2 दिवसीय टिहरी जिले के दौरे को लेकर। श्रोताओं, अपने 2 दिवसीय टिहरी दौरे के दौरान मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने बीते 4 जून को तपोवन स्थित बजरंग सेतु का निरीक्षण कर निर्माण गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों की समीक्षा की। इसके बाद नरेंद्र नगर ब्लॉक के प्लाजडा स्थित हिलांस हिमालयन भोजनालय का निरीक्षण किया। भोजनालय संचालक बीना पुंडीर ने री परियोजना, बैंक ऋण और बिक्री संबंधी जानकारी दी। मुख्य सचिव ने परिसर में वृक्षारोपण बढ़ाने और मेन्यू को

0: टीकाकरण की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। आंगनबाड़ी केंद्र ढूंगेदार में मुख्य सचिव ने बच्चों की संख्या, खेल सामग्री और पोषण आहार की जानकारी ली। उन्होंने गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को पोषण किट वितरित की तथा बच्चों का वजन भी मापा। मुख्य सचिव ने श्रीदेव सुमन पुस्तकालय का निरीक्षण किया। उन्होंने पुस्तकालय में उपलब्ध पुस्तकों, अभिलेखों और दुर्लभ पांडुलिपियों के संरक्षण की जानकारी ली। इसके पश्चात मुख्य सचिव ने बौराड़ी स्टेडियम और प्रस्तावित बैडमिंटन हॉल निर्माण स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्माण कार्यों को गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। श्रोताओं, बीते 1 जून को उत्तराखंड में खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ हो गया है। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने सोमवार को सहसपुर ब्लॉक के ढाकी गांव से इस देशव्यापी अभियान का विधिवत आगाज किया। इसका उद्देश्य कृषि और उपजाऊ भूमि का संरक्षण करना है। और इसी कड़ी में टेरी गढ़वाल जनपद के जौनपुर विकास खंड के पंतवाड़ी गांव से कृषि मंत्री गणेश जोशी ने जनपद स्तरीय खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ किया। कृषि विभाग द्वारा आयोजित इस अभियान का उद्देश्य स्वस्थ मिट्टी, सशक्त किसान और समृद्ध भारत के लक्ष्य को साकार करना है। कृषि मंत्री ने कहा कि पूरे प्रदेश की सभी न्याय पंचायतों में खेत बचाओ अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने किसानों से प्राकृतिक खेती अपनाने का आग्रह किया। साथ ही किसानों को मिलेट मिशन से जुड़ने तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य 5,209 रुपए प्रति कुंतल पर मोटे अनाज की बिक्री के लिए सहकारिता विभाग और FPO के माध्यम से आगे आने का आह्वान किया। कार्यक्रम के दौरान किसानों ने खेतों तक पहुंच के लिए मोटर मार्ग निर्माण की मांग रखी। इस पर कृषि मंत्री ने लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर लंबी सड़क के निर्माण की घोषणा की। वहीं नागरिकों के स्वास्थ्य और जीवन की रक्षा हेतु प्रशासन ने सतर्कता अभियान के तहत टिहरी गढ़वाल में मेडिकल स्टोरों का निरीक्षण किया। जांच के दौरान जिन फर्मों में नियमों का उल्लंघन पाया गया उन पर कार्यवाही करते हुए एक फर्म के लाइसेंस के निलंबन के लिए संस्तुत किया गया, जबकि 2 फर्मों की औषधियों की खरीद बिक्री तत्काल प्रभाव से रोक दी गई। दूसरी ओर अपर जिलाधिकारी ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नंदगांव का निरीक्षण कर दवा स्टॉक, वार्डों और स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा की। भवन में लीकेज की समस्या सामने आने पर शीघ्र मरम्मत के निर्देश दिए गए। टीबी मुक्त भारत अभियान की समीक्षा में क्षेत्र में 71 टीबी मरीज चिन्हित होने की जानकारी मिली। ADM ने गर्भवती महिलाओं की नियमित निगरानी और मानसून के दौरान सुरक्षित संस्थागत प्रसव सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही टिहरी जिले की चिट्ठी खेल प्रेमियों के लिए भी एक अच्छी खबर लेके आई है। नेपाल की राजधानी काठमांडू में आयोजित 17वीं अंतर्राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता में टिहरी गढ़वाल के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए देश, प्रदेश और जनपद का नाम रोशन किया है। पूर्णानंद स्टेडियम मुनिकीरेती की खेल विभाग टीम ने प्रतियोगिता में 1 स्वर्ण, 3 रजत और 6 कांस्य पदक अपने नाम किए। श्रोताओं, जिले की चिट्ठी के अंक में इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी जिले की चिट्ठी के एक और नए अंक के साथ। तब तक के लिए अपने साथी आशुतोष उनियाल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जिले की चिट्ठी। FM 100.5 MHz पर यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार फिल्मी गीत।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम सदाबहार फिल्मी गीत। इस गीत को अपनी आवाज़ दी है तुलसी कुमार ने, संगीतबद्ध किया है प्रीतम ने और बोल थे समीर के। FM 100.5 MHz पर ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 9:10 होने को हैं और अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जा रहा है। कृपया कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें।

अभी आप सुन रहे थे पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी, आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। सवेरे के 9:40 हुए हैं और अब प्रस्तुत है सदाबहार फिल्मी गीत। तो लिए चलते हैं आपको सदाबहार फिल्मी गीतों के सफ़र में और स्वागत करते हैं श्रोताओं आपका। श्रोताओं, जीवन और सफ़र का रिश्ता बहुत गहरा होता है। हम सब अपनी अपनी मंजिलों की तलाश में चल रहे हैं, मुसाफिर हैं। कभी रास्ते फूलों से सजे मिलते हैं तो कभी चुनौतियों से भरे हुए। लेकिन जिस तरह जीवन में बसंत ऋतुओं में बसंत आता है, उसी तरह हमारे जीवन में भी सब कुछ हरा भरा और खुशनुमा लगता है, बिल्कुल बसंत की तरह कभी कभी। लेकिन उसी तरह जब हमारे जीवन में खुशी के मौके आते हैं तो हमें लगता है कि जीवन में बसंत ऋतु का आगमन हुआ है और हम सब खुशनुमा नजर आते हैं। लेकिन जीवन में पतझड़ का भी तो आना उतना ही ज़रूरी है ना श्रोताओं? जी हाँ श्रोताओं, जीवन में आई चुनौतियाँ ही तो हैं जो हमें नए अनुभव नई सीख से जोड़ती हैं। तो जीवन में पतझड़ का आना भी ज़रूरी है ताकि हम फिर से लहलहा सकें। इसलिए सफ़र का आनंद लेना ज़रूरी है, फिर मंजिल तो मिलनी ही है। चलते रहना ही जिंदगी है, रुक जाना अंजाम नहीं। हर सफ़र में छिपी है मंजिल, बस हौसलों को थामे रहना कहीं। तो श्रोताओं, इसी के साथ ही आपको लिए चलते हैं इस गीत की ओर, जिसे हमने लिया है फिल्म बागी 2 से। गीत को अपनी आवाज़ दी है जुबिन नौटियाल ने, संगीतबद्ध किया है मिथुन ने और बोल हैं सईद कादरी के।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं सदाबहार फिल्मी गीत आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से। श्रोताओं, प्रकृति का भी तो अपना एक अनोखा संगीत होता है ना, क्या आपने कभी सोचा है इस संगीत के बारे में जो प्रकृति गुनगुना रही होती है? जी हाँ, कभी पेड़ों की सरसराहट, कभी पंछियों की चहचहाट, तो कभी हवाओं की मधुर सरसरी, ये सब मिलकर ऐसा एहसास कराते हैं कि मानो पूरी प्रकृति कोई गीत गुनगुना रही हो। जिंदगी में भी तो कुछ पल ऐसे ही आते हैं ना, जैसे जब मन बिल्कुल हल्का हो जाता है, चिंताएं पीछे छूट जाती है और दिल बस उन खूबसूरत एहसासों के साथ बहना चाहता है। जैसे हवा अपने संग खुशबू और ताजगी लेकर चलती है, ऐसे में लगता है मानो हवाएं भी हमारे मन की बात कर रही हो। तो इसी के साथ चलते हैं कार्यक्रम के इस अगले गीत की ओर।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं सदाबहार फिल्मी गीत, और ये गीत अभी आपने सुना फिल्म परिणीता से सोनू निगम की आवाज़ में, और गीत को संगीतबद्ध किया था शांतनु मोइत्रो ने, और बोल थे स्वानंद किरकिरे के। तो श्रोताओं, सदाबहार फिल्म गीत आप सुन रहे हैं, और कभी आपने हमारी आंखों के बारे में सोचा है? ये सब तो हम सभी जानते हैं।

ओम की आवाज़ में, और गीत को संगीतवत किया था शांतनु मोइत्रो ने और बोल थे स्वानंद किरकिरे के। तो श्रोताओं, सदाबहार फिल्म गीत आप सुन रहे हैं। और कभी आपने हमारी आंखों के बारे में सोचा है? ये सब तो हम सभी जानते हैं।

श्रोताओं, जिंदगी हर दिन हमें कुछ नया सिखाती है। कभी परिस्थितियां शिक्षक बन जाती है तो कभी लोग। लेकिन सबसे बड़ा सबक शायद यही है कि जीवन को बोझ नहीं, एक उत्सव की तरह हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। बीते हुए कल की चिंताओं और आने वाले कल की फिक्र में हम अक्सर आज की खूबसूरती को जीना भूल जाते हैं। प्रकृति को देखिए ना, नदी बिना रुके बहती रहती है, पक्षी खुले आसमान में बेफिक्र उड़ते हैं, और हवाएं हर दिशा में आज़ादी का संदेश लेकर चलती है। वह मानो हमें यही सिखाती है कि जीवन को खुलकर जीना चाहिए और हर पल को दिल से महसूस करना चाहिए। एक छोटी सी बात, जिंदगी की किताब का सबसे सुंदर पन्ना वही होता है जिसे हम मुस्कुरा कर, खुलकर और पूरे मन से जीते हैं। तो आइए इसी के साथ पहुँचाते हैं आप तक ये अगला और अंतिम गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म दिल बेचारा से। गीत को अपनी आवाज़ें दी हैं अरिजीत सिंह और शाशा ने, संगीतबद्ध किया है AR रहमान ने, और बोल हैं अमिताभ भट्टाचार्य की।

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: जिंदगी अनमोल है। दो पहिया वाहन चलाते समय हमेशा हेलमेट पहने, चार पहिया वाहन में सीट बेल्ट जरूर लगाएं। ओवर स्पीड, गलत पार्किंग और नशे में ड्राइविंग सड़क दुर्घटनाओं का सबसे बड़ा कारण है। वाहन चलाते समय मोबाइल का इस्तेमाल ना करें और सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। अगर कहीं दुर्घटना दिखे तो घायल व्यक्ति की मदद करें और गुड स्मार्टियन बने। सुरक्षित सड़क, सुरक्षित जीवन।
2: संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन एवं सड़क सुरक्षा हल्द्वानी द्वारा जनहित में जारी।
3: The all-new Nissan Revive अब CNG में
4: ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी के साथ पाइए थर्ड रो में भरपूर स्पेस, 24 किलोमीटर पर केजी की शानदार माइलेज और पूरे सुकून के लिए 3 साल की वारंटी। लाइफ को अपग्रेड कीजिए Nissan Revive CNG के साथ 7-seater जो है 140 करोड़ भारतीयों से प्रेरित।
3: सिर्फ 6.48 लाख से शुरू। आज ही अपने नजदीकी निशान डीलरशिप पे जाए। शर्तें लागू।
2: संपर्क करें पाल निशान शोरूम हल्द्वानी, मोबाइल नंबर 8477008200।
5: अभी आप सुन रहे थे सदाबहार फिल्मी गीत FM 100.5 MHz पर। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है और अब सुनिए न्यूज़ हेडलाइंस।
6: ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप नीता कांडपाल से सुनेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। प्रदेश भर के जूनियर हाई स्कूल शिक्षकों को शिक्षा विभाग के प्रस्तावित त्रिस्तरीय ढांचे में शामिल किया जाएगा। विद्यालय शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि पुरानी पेंशन योजना से वंचित शिक्षकों को लाभ देने और अशासकीय विद्यालयों में पीटीए शिक्षकों की मांग से संबंधित प्रस्ताव भी जल्द मंत्रिमंडल के समक्ष लाया जाएगा। कर्णप्रयाग में निहंगों और स्थानीय लोगों के बीच हुए विवाद से संबंधित दोनों प्राथमिकी की विवेचना हरिद्वार ट्रांसफर कर दी गई है। पुलिस मुख्यालय ने SSP नवनीत भुल्लर को इनका पर्यवेक्षण करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा सिख श्रद्धालुओं से मारपीट और उन्हें बिना पगड़ी कोर्ट में पेश करने के आरोपों की जांच DIG यशवंत सिंह को सौंपी गई है। पुलिस मुख्यालय ने उनसे 2 सप्ताह के भीतर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा है। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट और हेमकुंड साहिब रोपवे प्रोजेक्ट के अंतर्गत फॉरेस्ट लैंड क्लीयरेंस पर तेजी से कार्य करने को कहा है। उन्होंने सभी आवश्यक सर्वे कार्य निर्धारित समय सीमा में पूर्ण कराए जाने के निर्देश दिए। MDDA ने देहरादून महायोजना 2041 पर आपत्तियों और सुझावों के निस्तारण के लिए सेक्टरवार जनसुनवाई कार्यक्रम जारी कर दिया है। ये जनसुनवाई 6 जुलाई से 21 जुलाई तक विभिन्न स्थानों पर आयोजित की जाएगी। देहरादून के जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने जिला स्तरीय परियोजना समन्वय समिति की बैठक में विभिन्न विभागों के भूमिगत कार्यों की समीक्षा की। बैठक में पेयजल निगम, जल संस्थान, विद्युत समेत 14 विभागों के प्रस्तावों पर विचार करते हुए उच्च प्राथमिकता वाले कुछ कार्यों को रात्रि 10 बजे से प्रातः 5 बजे तक सशर्त अनुमति प्रदान की गई और कुमाऊं के मंडलायुक्त दीपक रावत ने काठगोदाम में लैंड फ्रॉड कमेटी की बैठक ली। बैठक में भूमि धोखाधड़ी से जुड़े 77 मामलों की समीक्षा की गई। विभिन्न जिलों से प्राप्त मामलों की जांच के बाद मंडलायुक्त ने 30 मामलों में मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि भूमि धोखाधड़ी से संबंधित मामलों की रिपोर्ट DM और SSP के माध्यम से समिति तक पहुंचती है, जिसके बाद प्रत्येक मामले की गंभीरता से समीक्षा की जाती है। आप सुन रहे थे न्यूज़।

श्रोताओं, आपका स्वागत है कार्यक्रम फिल्म संगीत में। और ये पहला गीत हम आप तक पहुंचा रहे हैं फिल्म एयरलिफ्ट से, जिसको अपनी आवाज़ दी है अमाल मलिक और अरिजीत सिंह ने, और संगीतबद्ध किया है अमाल मलिक ने, बोल है अंकित तिवारी के।

फिल्मी गीतों का आनंद ले रहे हैं आप आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ ट्यून किया है आपने, और अगला गीत हम आप तक पहुंचा रहे हैं जिसे हमने लिया है फिल्म बिल्लू से, और गीत को अपनी आवाज़ें दी है सोहम, आकृति कक्कड़ और मोनाली ने, और इस गीत के बोल लिखे हैं गुलजार ने।

श्रोताओं, कभी कभी ज़िंदगी में कुछ रिश्ते ही ऐसे बन जाते हैं जिनका कोई नाम नहीं होता, कोई वजह नहीं होती, फिर भी दिल उनसे गहराई से जुड़ जाता है। किसी से पहली मुलाकात में ही एक अपनापन महसूस होने लगता है, जैसे बरसों से जानते हो। शायद इसी एहसास को ही तो रिश्ता कहते हैं। रिश्तों की यही अनकही डोर, यही खूबसूरत जुड़ाव इस गीत की आत्मा है। तो आइए सुनते हैं फिल्म एजेंट विनोद से ये लोकप्रिय गीत रिश्ता, जिसे संगीतबद्ध किया है प्रीतम ने और आवाज़ दी है अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल ने। माफ़ कीजिएगा, आवाज़ दी है श्रेया घोषाल ने और बोल लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने।

फिल्म संगीत का कार्यक्रम चल रहा है आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से FM 100.5 MHz पर। अगला गीत आप तक पहुंचा रहे हैं फिल्म कभी अलविदा ना कहना से, और इस गीत को अपनी आवाज़ दी है शकाफत अमानत अली ने, संगीतबद्ध किया है शंकर महादेवन ने, और बोल हैं जावेद अख्तर के।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से, और आपने ट्यून किया है FM 100.5 MHz। अगला और अंतिम गीत आप तक पहुंचा रहे हैं सोनू निगम और साबरी ब्रदर्स के युगल स्वर में, और गीत को संगीतबद्ध किया है अनु मलिक ने, बोल हैं जावेद अख्तर के, फिल्म का नाम है मैं हूं ना।

इस गीत के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत अभी ही संपन्न होता है। FM 100.5 MHz पर ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 10:30 होने को हैं और अब आप सुनेंगे पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जा रहा है।

0: बड़ी विभूतियों पर विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। आज सुनते हैं पीतल पर नक्काशी के विशिष्ट कलाकार चिरंजी लाल यादव के साथ खास बातचीत। इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं संजय तिवारी।
1: सबसे पहले तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं।
2: धन्यवाद जी।
1: जब आपको ये पता चला कि आपको चयनित किया गया है, कैसा लगा आपको उस टाइम?
2: मैं मुरादाबाद बुद्ध विहार कॉलोनी में एक प्रोग्राम लगा था, तो उसमें था। वहाँ पर जो है हमारे डीआरसी ऑफिस के योगेश कुमार जी थे उपायुक्त, और डीएम साहब थे, कमिश्नर साहब थे आनंद सिंह। उन्होंने बताया कि भाई वो घोषणा हो गई है, तो वो जो है फटाफट दौड़े दौड़े आए वो। उन्होंने सबसे पहले डीएम साहब ने और कमिश्नर साहब ने बधाई दी।
1: आपने ऐसा क्या किया है, आपके काम की क्या खासियत है, क्या काम करते हैं आप, इसके बारे में डिटेल से बताइए।
2: सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि 1970 से बराबर काम कर रहा हूँ। बीच में बहुत कठिन आई, लेकिन काम नहीं छोड़ा मैंने इस काम को देखते हुए। और जो मैंने बच्चों को ट्रेनिंग दी है, तो बोले कि भाई ये इनको जो है इनाम इनाम मिले हुए हैं पहले से ही, तो सब कुछ देख कर जो है उन्होंने ऐसा किया। ये
1: क्या क्या काम करते हैं आप, कैसी नक्काशी करते हैं?
2: जब हम 20-22 साल की उम्र में थे पढ़ाई करने के बाद, तो हम श्री अमर सिंह जी से हमने काम सीखा। ये काम सीखने के उपरांत तो वहाँ जो है 3 साल की ट्रेनिंग चली थी सरकारी, तो उसमें जो है हमने ट्रेनिंग पाई, तो 100 रुपये महीना भी हमें मिलता था और काम भी सिखाते थे वो। इसके उपरांत तो जो है हम 4-5 साल तक वो काम किया, उच्च कोटि के हमने काम सीखे, जो कि आज हमारे जो है जीवन में काम आ रहे हैं वो। और हमने मैराब का काम सीखा, अंगूरी का काम सीखा है, मोटी चिकन मामूली का काम, तो इसमें सबसे बारीक काम एक मरूरी का ही होता है। तो मरूरी का काम जो है लगातार नहीं किया जाता है, ये बहुत ही फाइन वर्क होता है, इसलिए जो है सुबह को 4-5 घंटे या 3 घंटे काम किया जाता है। हमारी संगत जो रही वो ऐसी रही कि अपने ही मतलब सीनियर के साथ रहना, उनसे जानकारी लेना, उनके पास बैठना उठना, और यारों का भी हमें ज्ञान मिला।
1: काम के सिलसिले में आप पूरे देश में भी गए हैं और देशों में भी गए हैं, तो वहाँ से क्या सीख मिली और क्या लेकर आए, क्या देकर आए वहाँ?
2: दिल्ली में गए थे, दिल्ली में जो है हमने बहुत प्रोग्राम किए हैं, कुतुब मीनार है, लाल किला है, तो वहाँ से हमें जानकारी मिली डिजाइनों की, और डिजाइन सेंटर भी घूमे हम वहाँ पर, डिजाइन लेके वो ही आइटम पर जो है उकेरा, तो नया डिजाइन माना गया, तो हम जो है घूमते घूमते जो है ऑल इंडिया में पूरे घूम लिए, अपने काम का प्रदर्शन भी किया। और राजस्थान के हैं, और बेंगलोर में चित्रकला परिषद है, चित्रकला परिषद में जो है वहाँ पर हमने जो है पुरानी इमारतों का भी डिजाइन दिया, कैसे कैसे मतलब ये टहनी बनती है, कैसे डिजाइन बनते हैं, जो झालर वहाँ बन हुई है वही झालर हमने अपने आइटम पे बनाई है, तो उससे जो है नयापन आया।
1: विदेशों में कहाँ कहाँ आप गए, क्या क्या किया आपने?
2: विदेशों में हम बांग्लादेश गए, फ्रैंकफुर्ट जर्मन सिल्वर जर्मनी
1: जी,
2: तो वहाँ पर अपने काम का हमने डेमो किया, प्रदर्शन किया और बिक्री भी की।
1: तो अब जो है मौजूदा सरकार से, विशेष रूप से केंद्र सरकार के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप?
2: केंद्र सरकार सही काम कर रही है, बढ़ावा दे रही है हस्तशिल्पियों को। इसके अलावा हम तो यही चाहेंगे सरकार जो है किसी तरह की ऐसी योजना बनाए जिससे कि ये लड़के नई पीढ़ी के बच्चे जो है काम सीखें।
1: आप क्या चाहते हैं कि नई पीढ़ी इस काम के लिए आगे आए?
2: हम तो चाहते हैं कि भाई कम से कम 30-40 बच्चों को ट्रेनिंग दें, तो उसमें से अगर 10 भी कामयाब हो गए तो काम बढ़ेगा।
1: आपने अपने घर में बच्चों को कितना ये हुनर जो है बांटा है, सिखाया है?
2: वैसे तो हमारी फैमिली में सभी लोग काम करते थे, हमारी वाइफ भी करती थी, हमारे दो बेटे हैं ये भी करते, कुप सिंह जी है, इनको नेशनल अवार्ड मिला हुआ है, स्टेट अवार्ड मिला हुआ है, ये काम कर रहे हैं और हमारा भी हाथ बटाते हैं।
1: इस काम को लेकर भविष्य कैसा दिखता आपको?
2: हाँ, भविष्य सही है, क्योंकि हमारा जो काम है वो साधारण काम नहीं है, हमारा उच्च कोटि का काम है, इसके कारीगर बहुत ही कम है।
1: तो आप चाहते हैं कि आप जैसे जो आपकी विशेषता है वो और नई पीढ़ी पे भी आए और लोग बताएं?
2: हम तो चाहते हैं कि कोई ना कोई भी हमारी मृत्यु के बाद जो है कम से कम नाम तो रहे कि भाई हमें जो है वहां से जानकारी मिली है, प्राप्त हुआ है, उनके शागिर्द हैं, काम सीखे कोई ना कोई लड़का, तो हम बता सकते हैं।
1: सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे कि वो कुछ ऐसा काम करे जो ये आपका नक्काशी का काम लोग इंटरेस्ट लें उसमें, युवा इंटरेस्ट लें?
2: हाँ, कम से कम 1 साल का तो वो ट्रेनिंग जो है प्रशिक्षण ले, वो लड़का 23 साल में कारीगर बन जाएगा वो, इसके लिए कोई ट्रेनिंग सेंटर खोले है, उसमें मास्टर में उनके पद पर जो है वो चुना, हमें चुने है किसी को चुना, तो काम सीखना चाहिए, लगन से भी काम सिखाया उस आदमी को जो है मौका मिलना चाहिए। अब मैं आपको बताऊं 1982 में मुझे मास्टर क्राफ्ट मैन के पद पर चयनित किया था, तो मैं उड़ीसा स्टेट गया था डिस्ट्रिक्ट पुरी, तो वहां मैंने लगभग 200 कारीगरों को काम सिखाया वहां पे, तो वहां कामयाब हो गए, तो मैंने 2 साल तक वहां पर रहा।
1: आपको ये काम करते हुए कुछ सम्मान भी मिले हैं, क्या क्या अवार्ड मिले हैं अब तक?
2: मैं 1970 से तो काम में जुड़ा हुआ हूँ, काम करते करते उच्च कोटि का भी जो काम है उसकी गुणवत्ता जो हासिल की है मैंने, इसके बाद में जो है स्टेट अवार्ड मुझे 2 बार मिल गया, के बाद में नेशनल अवार्ड मिला, नेशनल के बाद में शिल्प गुरु मिला, शिल्प गुरु के बाद में इसकी घोषणा हो गई। और मैंने जो अब तक प्रोग्राम किए हैं प्राइवेट नहीं किए हैं, सारे सरकारी हैंडीक्राफ्ट बोर्ड के जो एग्जीबिशन लगती हैं, ताल कटोरा, प्रगति मैदान, इंडिया गेट पे सूरज मेला है, आगरा ताजमहोत्सव है, तो मैंने ऐसे ऐसे प्रोग्राम किए हैं, तो वहाँ मेरी चर्चा होती है, सब टीवी पर दिखाते हैं।
1: आपकी क्वालिफिकेशन कितनी है और क्या क्वालिफिकेशन आड़े आई इसमें?
2: 7वीं पास किया था, मैं तो बहुत ही गरीब परिवार से हूँ जिसका की मतलब बड़ा मुश्किल था आलन पालन, तो बस पढ़ाई करने के बाद इस काम में लग गया। काम करने के बाद तो मेरे मन में यही इच्छा थी कि भाई हम जो है मजदूरी ना करके जो है सप्लाई का काम करें, खुद बना कर बिक्री करें, तो जो हमारे सीनियर थे घासीराम जी उनके साथ मिलकर मैंने काम किया ही है, तो सप्लाई का काम भी मेरा चल गया, और सप्लाई काम ऐसा चला कि अब हर स्टेट में हमारा माल जाता है, सरकारी शोरूम में मेरी सप्लाई रहती है।
1: आपके कहने का मतलब ये है कि अगर आदमी हुनर सीख ले तो बहुत ऊंचे मकाम पर जा सकता
2: है जी, तो अपना रोजगार जो है खुद मत चला सकता
1: और फेमस भी हो सकता, फेम भी पा सकता
2: जी। मुझे एग्जाम मिल गए थे वही विदिशा प्रोग्राम में, तो वो आए उन्होंने बधाई दी, बोले चिरंजीवी लाल आप ही हो क्या? मैंने कहा हाँ जी। बोले वेशभूषा से और आपके आचरण से तो नहीं मालूम होता है, तो मैंने कहा मैं तो साहब साधारण रहता हूँ, मैं तो कारीगर आदमी हूँ, तो बहुत खुश हुए वो।
1: तो ये अगर रोजगार इसमें कमाना चाहते हैं जो युवा है खास तौर से, तो उनके लिए क्या कहने चाहे?
2: देखो युवा जो है ना वो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन रुचि होनी चाहिए मन में, तो जब रुचि होगी जब तो काम कर पाएगा, रुचि है उसको कंप्यूटर काम में, तो हम उनसे कहते हैं कि भाई वो भी करो, इसमें भी तो आप थोड़ा सा समय दो, वो भी काम करेगा आपका कंप्यूटर भी।
1: तो सरकार ऐसा क्या करे जो, क्योंकि ये जो हमारी ये पीढ़ी दर पीढ़ी चीजें हैं, पुरानी चीजें हैं, बड़ी महत्वपूर्ण है और हमारी विरासत है एक तरह से ही, ये जिंदा रहे।
2: ट्रेनिंग सेंटर कौन ले चाहिए, और ऐसा नहीं नक्काशी के काम का हो, रंग भराई का हो, होल्डिंग का हो, दो दो मतलब वो रखनी चाहिए कि सिलाई का हो, बेल्डिंग का हो,
1: इसका जो पूरा काम है वो सारा सिखाया जाए
2: जहाँ जहाँ इसके उद्योग है
1: जी जी।
2: जैसे यहाँ पर पीतल का उद्योग है तो मुरादाबाद में होना चाहिए, अमरोहा में लकड़ी ढोलक का काम है तो होना चाहिए, अलीगढ़ में है जहाँ छपाई का वहाँ होना चाहिए, इससे वृद्धि भी होगी।
1: तो आपकी ये जो उपलब्धि है, ये सम्मान मिला है, तो इसका श्रेय किसे किसे देना चाहिए?
2: सबसे पहले तो मैं अपने जो गुरुजी हैं हमारे जिनसे काम सीखा है, तो उनका भी मतलब मैं वो कहूंगा कि भी पता नहीं क्या भाग्य किस्मत की बात है जो कि वहाँ से हमें काम सिखाया हमें लगन से, वो हमने भी रुचि से सीखा, और मुझे जो है इस काम के लगभग 55 साल का अनुभव है।
1: अच्छा,
2: हम बराबर काम कर रहे हैं, बीच में बहुत अड़चन आई 1980 में जब दंगा फिसाद हुए थे, तो बड़ा मुश्किल था घर से बाहर निकलना, उस समय बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा।
1: घर वालों का क्या सहयोग रहा है?
2: तो ये तो मतलब हौसला बुलंद रखते थे, यार चिंता मत करो सब हो जाएगा, कैसे खाना पीना का काम चलेगा बोलो सब हो जाएगा, तो हमारी मिसेस ने भी जो जोड़े हुए पैसे थे वो निकाले, बुरे वक्त पे जब हम ऐसे पैसे खर्च नहीं करेंगे तो कब करेंगे, तो काम चलता रहा, मतलब हिम्मत नहीं आ रही, हम काम छोड़ा नहीं, तो आज उसी की बदौलत है जो इस काम मतलब उन्नति पाई है हमने।
1: तो ये थे मुरादाबाद निवासी चिरंजीव लाल यादव, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: अभी आप सुन रहे थे वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। आज आपने सुनी पीतल पर नक्काशी के विशिष्ट कलाकार चिरंजीवी लाल यादव के साथ विशेष बातचीत। इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे संजय तिवारी। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं, पता है podcast.airnews@gmail.com।

अभी आप सुन रहे थे पीपल्स पद्मौन आकाशवाणी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया गया। FM 100.5 MHz पर ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक संगीत। लोक संगीत में आज हम आपको सुनवा रहे हैं कृपा निधन सिंह की आवाज़ में भोजपुरी लोकगीत। संगत कलाकार हैं ढोलक पर अमित धीमान, बांसुरी पर कैलाश चंद्र ध्यानी।

0: अरे वाह, पुराना सोना कितना शुद्ध होता था ना दादी।
1: सोना आज भी शुद्ध है, उस पर अगर हॉलमार्क अंकित है।
2: आप भी ध्यान रखें, सोना हमेशा BIS प्रमाणित ज्वेलर से ही लें। बिल अवश्य लें और जांच लें कि बिल पर अंकित और आभूषण पर अंकित शुद्धता समान है। अधिक जानकारी के लिए लॉग इन करें bis.gov.in पर।
3: रविंद्र, ये बताओ सरकार की योजनाओं की पूरी जानकारी कहाँ मिलेगी?
4: अरे रागनी, धामी सरकार ने जनहित में जारी की है पुस्तक मेरी योजना।
3: सच में, क्या क्या है उसमें?
4: शिक्षा, स्वास्थ्य, किसान, महिला, युवा, हर योजना आसान भाषा में एक ही पुस्तक में। मेरी योजना, जानकारी भी अधिकार भी।
5: मेरी योजना पुस्तक आप डिजिटल रूप से uk.gov.in पर प्राप्त कर सकते हैं।
6: यार BBA MBA तो करना है, लेकिन अच्छी पढ़ाई और कम फीस दोनों साथ कहाँ मिलते हैं?
7: मिलते हैं ना, इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव मैनेजमेंट देहरादून में, केंद्र सरकार के सहकारिता मंत्रालय के अधीन संस्थान।
6: अच्छा, मतलब गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं?
7: बिल्कुल नहीं, उच्च गुणवत्ता की BBA और MBA शिक्षा किफायती फीस पर।
6: और परिणाम?
7: UTU 2025 का MBA सिल्वर मेडलिस्ट भी इसी संस्थान से है।
6: वाह, ICM देहरादून, 6 ओल्ड मसूरी रोड, राजपुर, देहरादून।
8: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम लोक संगीत, जिसके अंतर्गत आज हम आपको सुनवा रहे हैं कृपा निधन सिंह के भोजपुरी लोकगीत। संगत कलाकार हैं ढोलक पर अमित धीमान, बांसुरी पर कैलाश चंद्र ध्यानी।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोक संगीत। कृपा निधन सिंह के स्वर में आज हमने आपको सुनवाया भोजपुरी लोकगीत। FM 100.5 MHz पर ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है।
1: अब हमारे श्रोता जहां, हम भी वहां। आप उत्तराखंड के किसी भी कोने में क्यों न हो, आप हमें सुन सकते हैं। देश विदेश में भी आप हमारे साथ होंगे। 100.5 AIR FM देहरादून पर गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें न्यूज ऑन AIR, प्रसार भारती ऑफिशियल ऐप AIR न्यूज प्लस लाइव और AIR देहरादून सेलेक्ट करें और सुने हर पल हर जगह आकाशवाणी देहरादून।
2: FM 100.5 यानी 100.5 MHz पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। श्रोताओं, 11 बजे ही पेश है प्रोग्राम वर्ष फरमाइश। प्रोग्राम के सभी श्रोताओं को हमारी ओर से नमस्कार। श्रोताओं, एक बार फिर से मौसम में गर्मी तेजी से बढ़ रही है, ऐसे में आप सभी स्वस्थ रहें, जागरूक रहें और सुनते रहें आकाशवाणी का देहरादून केंद्र। लेते हैं आप सभी की फरमाइश पर कार्यक्रम का ये पहला गीत। और हमारे श्रोताओं ने लगातार मैसेज हमें लिख भेजे हैं और साथ ही लगातार मैसेज लिख रहे हैं, लेकिन जो श्रोता हमारा व्हाट्सएप नंबर नहीं जानते हैं उनके लिए हम दोहरा दें। व्हाट्सएप नंबर है 7088000731। आइए लेते हैं आप सभी की फरमाइश पर कार्यक्रम का ये पहला गीत। साधु शहर राजस्थान से राम कुमार रेवाड़ और चंद्र कला रेवाड़, उत्तम नगर दिल्ली से हैं बोधराज खोरपाल, कमला रानी गीतिका और साथ में हैं भानु प्रकाश। और इसी गीत को सुनने के लिए फरमाइश हमें लिखते हैं, सेक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी कल्पित चौहान, बेबी गर्वी। साथ ही फरमाइश लिखने वाले श्रोता आप हैं, ताजपुर मोरवा समस्तीपुर बिहार से कारी राम, कारी मीना, कारी पूंजीराज, आरती आकर्षण और साथ में जयश्री। और इसी गीत को सुनने के लिए मैसेज लिखते हैं कलानूर से हैं नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक शर्मा। आप सभी की फरमाइश पर सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत, मुकेश और कंचन की आवाज़, फिल्म का नाम धर्मात्मा।

अपने श्रोताओं को याद दिला दें, 11:10 से 11:25 तक आप सुनेंगे कार्यक्रम पीपल्स पद्मा और आकाशवाणी। ये कार्यक्रम दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। ऐश्वर्या, बढ़ते हैं आप सभी की फरमाइश किसी अगले गीत की ओर। मैसेज हमारे श्रोता लिखते हैं, आप ही निज़ामाबाद तेलंगाना से एम ए वैद्रमानी डॉक्टर मोहम्मद जमीर, मोहम्मद फैसी, मोहम्मद जुनेद, मोहम्मद जुबेर, मोहम्मद मुकर्रम और साथ में इनकी बहुत सारे मित्र नलेश्वर नगर नरवेल से पी एस ए नवानकर, निर्मला और विशाल नवानकर, मलकापुर महाराष्ट्र से सोपान ताड़े, नारायण इंगले और साथ में आशीष। ये फरमाइश हमारे श्रोता हमें लिखते हैं, खेल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, नीटू लक्ष्य लाइडू कोयल मल्होत्रा, इनकी पापा जी हैं नानक चंद मल्होत्रा, रोहतक से पीयूष सिक्का कोयल डुग्गू भाविक सिक्का। साथ ही ये फरमाइश हमारे श्रोता हमें लिखते हैं, मंसूरी रेडियो लिसनर क्लब बाजार रोड मुंगी सपुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरू निशा शबिस्ता, मोहम्मद नसीब, पलक लुबना और साथ में यश मंसूरी। और इसी गीत को सुनने के लिए फरमाइश हमें लिखते हैं, गाँव पजोनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसोली, आदर्श सार्थक लोकीय चंसोलिया। साथ ही इसी गीत को सुनना चाहा है, आप हैं दंतरेंगी की भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती विनीता और साथ में है रुद्री वर्मा। और ये फरमाइश हमारे श्रोता हमें लिखते हैं, धांडी नादुरा से श्री कृष्ण बाटे, संदीप और अमूल्य बाटे। साथ ही फरमाइश हमारे श्रोता हमें लिखते हैं, नेहरू चौक पैठन से डॉक्टर सुरेश यादव, वनीता आरती, पूजा प्रसाद, सोनल, बीबी सिया यादव, जानना शहर से ही सोमनाथ यादव, गीता, ओम सुभाष और चंदन यादव और इनके परिवारजन। आप सभी की फरमाइश पर सुनते हैं आशा भोसले की आवाज़ में गीत, फिल्म का नाम है खूबसूरत।

श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश। जी हाँ श्रोताओं, ये कार्यक्रम फिर से जारी रहेगा। आप सुन रहे हैं FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का देहरादून केंद्र। 11:10 हो रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम पीपल्स पद्मावन आकाशवाणी। ये कार्यक्रम हम दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।

0: पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है हमारा विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। इसके अंतर्गत सुनिए जम्मू कश्मीर में समाज सेवा के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार के लिए चुने गए समाज सेवी ब्रिजलाल भट्ट के साथ हुई विशेष बातचीत। चर्चा का संचालन कर रहे हैं जगमोहन शर्मा।
2: नमस्कार, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे शख्सियत की जिन्हें इस वर्ष पद्मश्री जम्मू कश्मीर से समाज सेवा के क्षेत्र में देने की घोषणा की गई है। हमारे साथ हैं ब्रिजलाल भट्ट जी, आपका आज के इस प्रोग्राम में स्वागत है। आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। मैं चाहूंगा कि आप बताएं कि आपको किन किन कामों के लिए ये मिल रहा है।
3: देखिए, अभी जो आपने बताया मुबारकबाद मुझे आप दे रहे हैं, सम्मानित कर रहे हैं, जिस संस्था से मैं जुड़ा हूँ विवेकानंद राख मेमोरियल विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी, तो ऑब्जेक्टिव है मैन मेकिंग नेशन बिल्डिंग, मानव सेवा से राष्ट्र उत्थान। ये स्पिरिचुअली ओरिएंटेड सर्विस मिशन के जरिए होता है, इसलिए ये मैं समर्पित करता हूँ विवेकानंद राख मेमोरियल विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी को, जिन्होंने मुझे अवसर दिया नागडंडी के माध्यम से समाज सेवा कश्मीर में करने का। मैं ये समर्पित करता हूँ अपने जो हंड्रेड्स कार्यकर्ता मेरे साथ जुड़े हैं, काम करते हैं, हमारी एक्टिविटीज में शामिल हैं। मैं खास तौर पर ये समर्पित करता हूँ कश्मीर में जो नई पौध है, हमारा जो यूथ है उनको।
2: आपके बारे में हम जानते हैं कि आप प्रशासनिक सेवा में रहे हैं और अब आप समाज सेवा के साथ जुड़े हैं। आपका ये सफर समाज सेवा के साथ जुड़ने का कब शुरू हुआ और कैसे आप प्रेरित हुए, आपका रुझान इस तरफ किस तरह से हुआ?
3: मैं गांवों की पैदावार हूँ, अनंतनाग का रहने वाला हूँ। नागडंडी अनंतनाग से 7-8 किलोमीटर दूर है, तो बचपन से जुड़ा था, लेकिन सेवा में था, सेवा के सारा आयामों में, और खास तौर पर 90 में पलायन हो गया, निकल गए, तो उस टाइम मेरे दिल में ये बात आ गई कि ये जो सर्विस के बाद मैं कश्मीर में ही रहूं ताकि ऐसे कुछ कार्य करें जिससे ये विस्थापित समाज जो है फिर से अपने जड़ों के साथ जुड़े
2: जी।
3: तो नॉर्मल अगर आप देखेंगे 850 ये जो प्रकल्प, जिसमें नागडंडी भी एक प्रकल्प है
2: जी,
3: तो सब प्रकल्प में या जितने भी 1000 केंद्र हैं सारे भारतवर्ष में, उनमें सारे एक्टिविटी चलती रहती है। संस्कार वर्ग में हो, योग वर्ग में हो, स्वाध्याय वर्ग में हो, केंद्र वर्ग में हो, यह एक्टिविटी नॉर्मल सब यूनिट्स में चलती है। लेकिन कन्याकुमारी मैनेजमेंट ने सोचा कि इन एक्टिविटीज के साथ जो ऑब्जेक्टिव में हमारे हैं, कुछ हम ऐसे ऑब्जेक्टिव एडिशनली जोड़ें जिससे ये जो विस्थापित समाज है फिर से अपने जड़ों के साथ जुड़े, जिससे कश्मीर में पीस प्रमोट हो और इंट्रा एंड इंटर स्टेट इंटीग्रेशन प्रमोट हो फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी।
2: जी, आपने विवेकानंद की बात की, स्वामी विवेकानंद, उन्होंने पूरी दुनिया को संदेश दिया था भाईचारे का, और जैसा भारत का संदेश है वसुधैव कुटुंबकम कि पूरा विश्व जो है एक कुटुंब है। आप इस संस्था के साथ जुड़े हुए हैं जो ये काम कर रहे हैं, किन किन एक्टिविटीज के जरिए आप कश्मीर घाटी में प्यार का, अमन का संदेश पहुंचा रहे हैं?
3: हम विवेकानंद थॉट मिशन को लेके वहां काम करते हैं, तो नेशनल एक्टिविटीज में हमारा 10 दिन का योग शिक्षा शिविर होता है नागडंडी में, जिसमें 15-20 स्टेट्स का पार्टिसिपेशन होता है
2: जी।
3: आपको छोटा सा भारत नजर आता है वहां पर। स्पिरिचुअल रिट्रीट प्रोग्राम होता है, वो उसमें भी बाहर के स्टेट्स का पार्टिसिपेशन और हमारे जेकेयूटी का भी पार्टिसिपेशन होता है। वो आध्यात्म

0: उसरूप में करते हैं। हमारा संस्कार वर्ग में बच्चों का प्रोग्राम्स होते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्सेज जो कश्मीर में हम करते हैं, वहां हमारे बच्चे या बच्चियां काम करते हैं, सर्विस करते हैं, हम उनके बच्चों के बारे में सोचते हैं
1: जी।
0: तो उनको हम संस्कार वर्ग में उनके साथ उनको जोड़ना चाहते हैं, नागडंडी के साथ जुड़े भी हैं। अभी हमने 3 दिन का हमने संस्कार वर्ग में प्रोग्राम किया। ऐसे अब ये जो हम पीस प्रोसेस वहां करते हैं, पीस प्रोसेस जो मेरा मानना है, तब तक पीस प्रोसेस बिल्कुल कामयाब नहीं हो सकती जब तक सिविल सोसाइटी मीट्स ना हो
1: जी।
0: जब हमारे मेजॉरिटी कम्युनिटी का यूथ और माइनॉरिटी कम्युनिटी का यूथ उनकी नजदीकियां ना बढ़े
1: जी,
0: वो एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, वो ये जाने कि कश्मीर का जो एक नॉर्मल सी के लिए वही गुलदस्ता जो कश्मीर जिसमें हमारे गांधी जी को किरण नजर आई
1: जी,
0: उसी गुलदस्ते को फिर से उजागर करने के उसको बनाने के लिए हमने प्रयास करना है। मैं तो ये समझूंगा इस वक्त जो टॉर्च बेयरर्स कश्मीर में है, जो मैं काम करता रहता हूँ, मुझे लगता है ये यही यूथ है, चाहे मेजॉरिटी कम्युनिटी का हो या माइनॉरिटी कम्युनिटी का हो, हमें तो अब फॉलो करना चाहिए, हमें इनके पीछे पीछे चलना चाहिए। अगर हमने सोच रखी होती 89-90 में, हमने बुजुर्गों ने अपना रोल अदा किया होता तो ये 36 साल का पलायन नहीं हमने देखना पड़ता। तो इस वक्त जो यूथ काम कर रहा है, यूथ समझ गया है ICYC एक्टिविटी से कुछ नहीं निकलेगा, जो कुछ निकलेगा प्यान से निकलेगा और इसके रिजल्ट्स निकल गए। अभी मैं बता रहा हूँ अपना तजुर्बा, 2010 से मैं मुख्य सेवक के रूप में हूँ, मेरा टीम है बहुत बड़ा, उसमें हमारी मातृशक्ति भी है, उसमें हमारी युवा शक्ति भी है, तो हमने ये देखा कि इस वक्त एक चेंज नजर आई है, हर जगह हमारा ये जो दीप जल रहे हैं, जहां जहां अंधकार है वहां रोशनी हो रही है और इस वक्त आप नौजवान के हाथ में कलम देख रहे हैं। रिजल्ट है हमारा अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट है, गांव का एक नौजवान वो हमारा डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर है, कंपटीशन से आया है। इसी तरह कुलगाम में यंग बॉय कंपटीशन से आया है, श्रीनगर में यूथ है कंपटीशन से आया है, तो ये रियलाइजेशन आने लगी और खासतौर पर पेरेंट्स जो हैं वो ये समझने लगे बच्चों को हमें संस्कार वर्ग में ट्रेनिंग देनी है, पढ़ाई की ट्रेनिंग देनी है। तो इसमें मैंने आपको बता दिया योग शिक्षा शिविर होते हैं, स्पिरिचुअल रिट्रीट प्रोग्राम होते हैं, आपका ये जो बाकी प्रोग्राम यूथ मीट्स होते हैं, तो संस्कार ये नेशनल प्रोग्राम्स है, हर जगह होते हैं। एडिशनली जो हमने कश्मीर के लिए किया है वो ट्रेडिशनल जो हम इवेंट्स किया करते थे, जैसे रामनवमी का हवन है वहां हर साल होता है, नागपंचमी का हवन है हर साल होता है, ज्येष्ठ अष्टमी माता खीर भवानी का हर साल होता है, बल्कि 97 में एक हमने सोचा कि हम एक ऐसी जगह लें कश्मीर में, सेंट्रली लोकेटेड हो कश्मीर में, जहां हर साइड से हर डिस्ट्रिक्ट से आराम से लोग आ सके, ये प्रोस्पेक्टिव में हमने देखा उस टाइम के सिचुएशन को नहीं, आगे क्या होगा, तो हम ऐसी जगह का चयन करें जो मैनेजेबल हो फेयरली फ्रॉम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, हम ऐसी जगह लें जिस पर टोटल आस्था हो कम्युनिटी की, डिस्प्लेस्ड कम्युनिटी, तो खीर भवानी का चयन हो गया, वो जगह ले ली। आपको मैं बताऊं, मैं उस टाइम ब्यूरोक्रेसी में था लेकिन नागडंडी के साथ जुड़ा था, तो 2 ट्रक्स में नागडंडी से सामान आया, 300 GI शीट्स पोल्स लाए और लेबर 20-25 लाए, लेकिन वो जो हमारा यूथ है तो वहां शेड बनाया खीर भवानी में, ताकि उसके शेड के नीचे हम ये भंडारा सेवा शुरू करें, तो 97 में शुरू किया, 400-500 लोग थे, लेकिन चलते चलते इस साल हमारा 27वां साल था, तो 30,000-35,000 लोग वहां आए, विस्थापित लोग, उसमें हमारी बहनें, हमारे जो भाई बच्चे उसमें होते हैं, इतने ही मेजॉरिटी कम्युनिटी के भी वहां होते हैं
1: जी।
0: अब इट्स नॉट ओनली दैट, मैंने देखा ये जो 97 से, वैसे मैं फिर 2010 से चेयरमैन भी रहा हूं, मैं देखता रहा एवरी एनुअली ग्रेजुअल इंक्रीज, तो वहां केंद्र बना, फिर देन इट बिकेम अवर पॉइंट ऑफ कंसर्न कि इसको हम, ये जो पीस वहां खड़ा हो गया, आराम से लोग आते हैं करते हैं, ये पीस कैसे लेटरली परकुलेट हो
1: जी।
0: तो अभी आपको मैं बताऊं और खुशी है मुझे कि ये 15-20 जगह ऐसे हवन होते हैं कश्मीर में, चाहे आप बारामूला कुपवाड़ा में देखो, शुपियान मंजगांव में देखो, आप दिवसर कुलगाम में देखो, लोगरी पोरा में देखो, अकिनगाम में देखो, लुगबोन में देखो, सारे कश्मीर में ज्येष्ठ अष्टमी के ऐसे हवन होते हैं, तो पीस प्रोसेस हो गई। और ये हवन भी, इसमें जो लॉजिस्टिक सपोर्ट, हमारे स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का लॉजिस्टिक सपोर्ट रहता है इसमें, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए, हमारा सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का भी इसमें सपोर्ट एनकरेजमेंट होता है, तो ये चलते आ रहे हैं। तो ये प्रोग्राम जो हम कर रहे हैं, इसका हर साल ये असर होता है।
1: साहब जम्मू कश्मीर की हम बात करते हैं तो इसको भारत के सर का ताज कहा जाता है और अपने आप में ही एक छोटा हिंदुस्तान है क्योंकि यहाँ भी अलग अलग मजाहिब से ताल्लुक रखने वाले अलग अलग जबान बोलने वाले लोग यहाँ पर मिलकर रहते हैं। और जम्मू कश्मीर की हम पूरी बात करें, जम्मू शहर जो बसा यहाँ शेर और बकरी को इकट्ठे पानी पीते देखा, कश्मीर की हम बात करें तो वहाँ अरमदारे कश्मीर जिन्हें नंद ऋषि भी कहते हैं वहाँ पर हिंदुओं और मुसलमानों की एक जैसी आस्था रही है। आप महाराजा हरि सिंह के समय की बात करें तो वहाँ एक मुस्लिम बहुल इलाके में हिंदू राजा और सभी खुशहाल उसमें रहते हैं, ये खूबसूरती है हमारे जम्मू कश्मीर की। लेकिन बदकिस्मती से एक दौर ऐसा आया कि हम अंधेरे की तरफ चले गए, गुमराह हो गए या जिस तरह से भी। आज आप किस तरह से देखते हैं जिस तरह से जम्मू कश्मीर तेजी से खुशहाली तरक्की अमन के साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहता है?
0: देखिए मैं आपको बताता हूँ, आपने ऐसी बात छेड़ी आपने विद रेफरेंस रिकॉर्ड, मैं प्रैक्टिकली आपसे बताता हूँ। हमारी जॉइंट फैमिली थी अनंतनाग में, 40-50 लोग इस फैमिली में थे, एक साथ रहते थे, इंटीग्रेटेड थे। तो सब बच्चों का, हमारे सारे बच्चे जो हैं ईश्वर की कृपा से अच्छे अच्छे पोस्ट्स पर रहे हैं। तो हमारा ये था कि सवेरे उठना, 4:15 उठना, तो इंद्रनाग है वहां पर चश्मा है, उधर नहाना, फिर केंद्र में जाना, गुरुद्वारा में जाना, वहां से प्रसाद लेना, उसके बाद हम देवी बल था उधर प्रसाद लेना, ऋषि साहब के जियारत के पास जाना, प्रसाद लेना, वो देते थे शीरीन, वहां हम चक्कर लगा के फिर हम घर जाते थे, फिर हमें चाय मिलती थी। ऐसा मेरा ही नहीं, सब बच्चों का ऐसा होता था। यही हमारे जो मेजॉरिटी कम्युनिटी के बच्चे हैं उनमें भी यही संस्कार थे और इन संस्कारों की वजह से हमारा बचपन जो ऐसा है, मैं इस वक्त सोचता हूँ मेरे दोस्त उस टाइम कहाँ थे, वही मेजॉरिटी कम्युनिटी के बच्चे। जबानी याद, गुरुद्वारा एक जगह, मंदिर एक जगह और शेरबाग नीचे, तीनों एक जगह थे, किसी ने किसी का एक इंच नहीं खाया
1: जी।
0: अब इसको तो मैं कह रहा हूँ, और बचपन में जब हम जाते थे निकलते थे मुझे आशीर्वाद मिलता था, जो हमारे मुस्लिम मेजॉरिटी की फैमिली एल्डर्स, मेरे पिताजी के दोस्त और अपने पंडित बरादरी के जो एल्डर्स थे दोस्त, इतना हमारा भय रहता था उनका, हम गलत काम नहीं कर सकते थे। मैं मुस्लिम वाले में ही रहता था, मुसलमान का बच्चा जो मेरे से छोटा मेरे साथ तेजी से भी नहीं बात कर सकता था। अगर मैं बोलूंगा वो हो गया ये हो गया तो मैं रिवर्स गियर में जा रहा हूँ, हमको आगे चलना है। हमारे मेजॉरिटी कम्युनिटी के बच्चे और माइनॉरिटी कम्युनिटी के बच्चे जो हैं एक साथ हैं। और आपको एक खास तौर पर मैं सारे नेशन को बताना चाहता हूँ, ये जो 5-6 हजार बच्चे विस्थापित समुदाय के वहां गए हैं, आई कीप टेलिंग देम यू आर द एम्बेसडर्स, आप में हिस्ट्री में आपका नाम लिखा जाएगा। दे हैव नॉट गॉन देयर टू सर्व मॉनिटरी बेन्स के लिए, वो तो करना है, वो इसलिए गए हैं कि उनको अपनी मातृभूमि की खुशबू ने लाया है। आई हैव इंस्टेंसेस मोस्ट ऑफ देम, एक कोपाड़ा बारामूला में रोहित रैना है, वो अच्छे काम कर रहा था बाहर, तनख्वाह भी अच्छी ले रहा था, मिसेज भी सर्विस कर रही थी। ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो वापस आ गए हैं, वहां अपने कोपाड़ा में सेटल हो गए हैं, बारामूला में सेटल, ऐसे बहुत से बच्चे हमारे हैं। विपरीत परिस्थितियों के बावजूद वो वहां काम कर रहे हैं। ये जो हमारे बच्चे हैं सारे 5-6 हजार बच्चे जिनको मैंने कहा एम्बेसडर, इतने ही नए बच्चे मेजॉरिटी कम्युनिटी के, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने समझ लिया कि ये जो कंपोजिट कल्चर है ये क्या था
1: जी,
0: कश्मीरी पंडित क्या था,
1: असली खूबसूरती वही
0: वही थी, एक गुलदस्ता था, अलग अलग फूल थे
1: जी।
0: और वही होगा जो इस वक्त का मैं देख रहा हूँ। देखे रिटायरमेंट के बाद आई शुड ऑल्सो हैव बीन विद माई चिल्ड्रन, आई शुड हैव गॉन, इधर उधर सब जाते हैं। मुझे फख्र है कि आई एंजॉय द डिस्टिंक्शन कि मैंने फैसला किया उसके बाद नहीं, मुझे कुछ न कुछ करना चाहिए।
1: भट्ट साहब आखिर मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा कि आज जो माहौल है खुशनुमा माहौल है, हम तेजी से अमन की तरफ, तरक्की की तरफ, खुशहाली की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, इसमें हर एक इंसान का, हर एक जम्मू कश्मीर वासी का क्या फर्ज बनता है कि इस माहौल को और सपोर्ट करें और एक बार फिर जम्मू कश्मीर वही जम्मू कश्मीर बन जाए जो कुछ वर्ष पहले हुआ करता था?
0: देखिए एक माहौल था कश्मीर में, बच्चा कोई गलती नहीं करता था, कहीं से भी बाहर से भी शिकायत आई या कहीं से भी आभास हो गया पिताजी को या माताजी को कि बच्चे ने ये कर दिया, उसको डांटते थे
1: जी,
0: वो समझते थे, पेरेंट्स विजिलेंट थे। लेकिन थोड़ा सा मैं कह रहा हूँ ये जो वॉच नहीं रहा, ऐसा नहीं हो सकता है कि बच्चे को पेरेंट चाहे तो बच्चा कोई गलत काम करे, अगर करता है दैट इज द पेरेंट फेलियर
1: जी। नहीं, यही आप कहना चाहते हैं कि हर एक नागरिक को एक विजिलेंट होके काम करना है,
0: correct.
1: एक निगरान बनना है, अपने बच्चों पे नजर रखनी है, नौजवानों पे नजर रखनी है, ताकि दोबारा से हम पटरी पर जो आ गए हैं दोबारा से हम पथ भ्रष्ट ना हो, पटरी से ना गिरे।
0: एक चीज और बताना चाहता हूँ, दैट हैज टू बी अंडरस्टूड एंड अंडरस्टूड वेरी क्लियर, ये जो मैं कह रहा हूँ देखिए इसको कैश करने की जरूरत है। हमारा जो नौजवान इसमें कश्मीर में है उनका जोश और पेरेंट्स का होश
1: जी
0: जब एक यूनिसन में आएगा कश्मीर फिर वही गोशवारा बनेगा, कश्मीर वही फिर गुलदस्ता बनेगा, कश्मीर वही

0: फिर टॉर्च बेरर बनेगा नॉट ओनली फॉर इंडिया फॉर होल ऑफ वर्ल्ड बिकॉज वी बिलीव इन यूनिवर्सल ब्रदरहुड
1: जी।
0: और मुझे उम्मीद है भारत को विश्व गुरु ले जाने के लिए हमारे कश्मीर के यूथ का चाहे किसी भी फेथ से हो आगे आगे हमारा यूथ होगा ऐसा मेरा मानना
1: जी। तो भट्ट साहब यहाँ आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे हमारा विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी, जिसके अंतर्गत आपने सुना जम्मू कश्मीर में समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार के लिए चुने गए समाज सेवी ब्रिजलाल भट्ट के साथ हुई विशेष बातचीत। चर्चा का संचालन कर रहे थे जगमोहन शर्मा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपने प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है podcast.airnews@gmail.com।
3: पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी।
4: FM 100.5 मेगा हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। श्रोताओं 11:25 हुए, एक बार फिर से आपका सभी का स्वागत है कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश में। और लेते हैं आप सभी की पसंद पर कार्यक्रम में ये गीत। मैसेज श्रोता हमें लिखते हैं हयात कॉलोनी अररिया बिहार से फैसल इमाम मोहम्मद अफजल मोहम्मदा कमर नफीसा परवीन, रामगढ़ कैंट से हैं महेंद्र मोदी और कुलदीप कंवल, व्हाइटफील्ड बंगलुरु से भारत भूषण अंजू श्रीवास्तव देवेंद्र भूषण संस्कृति और पौरुष, करनी बलिया से आप हैं अमितेश कुमार और साथ में इनके परिवारजन, सहारनपुर रोड ITI से आप हैं ब्रिजेश कुमार सैनी, अजय सिमरन सैनी और राजेश सैनी, शांति निवास लहेगा और रेलवे से दीपक कुराड़ी कुमारी आशीष कल्पना और साथ में इनके परिवारजन, पौड़ी गढ़वाल से ही रमा रावत, साथ ये फरमाइश हमारे श्रोताओं ने लिख भेजी है। आप हैं मैसेज लिखते हैं राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति कार्तिक और आर्यन वर्मा, शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी आर्यन और कृष्ण और साथ में पीयूष स्वर्णकार, रामपुर गांव दिव्या नगल अम्बेडकर पार्क के पास से आकाश गौतम, सौरभ गौतम, कपिल भारती, गौतम करीना और स्वाति, साथ ही इसी गीत को सुनना चाहा है। गांव जाखुद राजस्थान से शंभोदयाल कटक, विमला देवी अमरजी, सुंदरलाल योगेश, दीपक और कुमारी पूजा। ये मैसेज हमारे श्रोता लिखते हैं राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ गोडानी, अर्चना ताई, हीरा मनशेंडी, प्रणय प्रसिद्धि और प्रतिभा गोडानी। साथ ही फरमाइश श्रोता हमें लिखते हैं जिला किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहनदास, आशा देवी, राघव कुमार, भानुप्रिया, वर्षा, सुमन दिवशी और कीर्ति भारती। आप सभी की फरमाइश पर सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज़ में गीत, फिल्म का नाम है कटी पतंग।

0: चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: समय 11:30 और 37 सेकंड हुए हैं। श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश आकाशवाणी की देहरादून केंद्र से। कार्यक्रम का ये अगला गीत है आप सभी के अनुरोध पर। राजधानी रायपुर से नीलू मेघ नीलम, डॉक्टर वंदना कुमार, बिट्टू कुमार साथ ये फरमाइश हमें लिखते हैं। ऊपरकोट मोहल्ला चौकुटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी निगत, परवीन शाहनवाज, सरफराज फरदीन, सुहान अरजान, अब्बान अब्बासी परिवार के सभी सदस्यगण। सहारनपुर से आशा नारंग, सोनाली और सुरेश नारंग, संबलपुर काकेर से भागोराम यादव, ज्योति ओजस्वी, ईशिका और साथ में तेजल। और इसी गीत को सुनने के लिए फरमाइश में लिखते हैं बिहारी कॉलोनी दिल्ली से तुलसी मस्किन, चैतन्य रचिता और आशीष राजा, चंडीगढ़ से राहुल खुराना रचिता और साथ में रिदान खुराना। और इसी गीत को सुनने के लिए फरमाइश में लिखते हैं तेलंगाना निजामाबाद से शेख अल्लाह बख्श, बेगम राबिया, शेख रहीमुन्ना, दानिश आसिफ शेख। साथ ही ये फरमाइश हमें लिखते हैं गांव दूल्हापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार, साथ में नकेश खातून। गंज डिंडवारा से मास्टर खिल्लू परवेज, बेगम इमराना नाज, नवाजी शेख, दानिश शेख, अमन अफरीदी और साथ में इनकी बहुत सारे मित्र। गांव हिंगड़ी आलोट रतलाम से जगदीश धाकड़, नाइमा रंजूबाई धाकड़, युवराज सिंह और साथ में शिवांगी धाकड़। और इसी गीत को सुनने के लिए फरमाइश हमारे श्रोता हमें लिखते हैं मोहल्ला बाराधरी महमूद का रामपुर से भैरव साहिब सईद, भाई राशिद, भाई असद, भाई फिरोजा, मुस्कान अफसर अली और साथ में है नगमा नाज मंसूरी। गांव करेली पुरानी मस्जिद बरेली से लाल मोहम्मद अंसारी, लालू मिस्त्री, मोहम्मद मुनाजिर अंसारी, अबरार हुसैन, अल्ताफ हुसैन अंसारी, आशिक हुसैन, मुन्ना अंसारी। आप सभी की फरमाइश पर आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत। मुकेश और हेमलता की आवाजें हैं, फिल्म का नाम है विश्वास।

कार्यक्रम का ही अखलाकीत आप सभी की फरमाइश पर रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश शर्मा और करुणा वर्मा, बीजना मुरादाबाद से राजवीर सिंह यादव, कुणाल हर्ष, मनीष अंशिका यादव, यूनुस खान और साथ में हैं सोफिया खान। सिहोरा जिला बिजनौर से आसिफ चौधरी, बेगम रिहाना, अरफात अदीब और कादिर चौधरी। और इसी गीत को सुनने के लिए फरमाइश मेलिक भेजी है दरियापुर भाबली महाराष्ट्र से गजानन येले, नवदीप विश्वदीप अशोक येले, शेरी वडनी रकोला से अरुणा, बलदेव दामोदर, आदित्य दामोदर। साथ ही इसी गीत को सुनना चाहा है गांव लसुड़िया पाता तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश से गोविंद वैष्णव, मुस्कान, दिव्या सुमन, कोमल परी, कृतिका और साथ में रमेश चंद्र डांगी। और ये फरमाइश हमारे श्रोता लिखते हैं गमरिया जमशेदपुर से रोहन जायसवाल और आर्य जायसवाल, बबूरी बाजार चंदौली से विजय जायसवाल और सरोज। साथ ही इसी गीत को सुनने के लिए फरमाइश हमारे श्रोता लिखते हैं गाड़की नगर यवतमाल से लक्ष्मण राव लोखंडे, कल्पना ताई, शैलेश, प्रतीक्षा, स्वप्निल और साथ में रक्षिता लोखंडे। और इसी गीत को सुनना चाहा है मोहाली पंजाब से बब्बल मल्होत्रा, ओम प्रकाश मल्होत्रा। साथ ही फरमाइश वाले श्रोता लिखते हैं छत्तीसगढ़ मदनपुर से श्रवण कुमार साहू, योगेश राहुल साहू, हीरावाली फाजिल का पंजाब से सुभाष गोदारा, इंदु बिमला गोदारा, पार्वती हिमांशु और साथ में इनकी परिवारजन। छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र से आप अनिल कुमार घोड़के, वैशाली प्राजक्ता वैष्णवी, गायत्री योगेश घोड़के। साथ ही इसको गीत को सुनने के लिए फरमाइश हमारे श्रोता लिखते हैं गांव भोजपुर तगर सहारनपुर से मोहम्मद इंतजार, मोहम्मद जावेद, राणा प्रधान, राहत अली और साथ में वकील अहमद। ये फरमाइश हमारे श्रोता लिखते हैं मुंदी चक भागलपुर से आप दिलीप कुमार सोनी। आप सभी की फरमाइश पर सुनते हैं लता मंगेशकर और अमिताभ बच्चन की आवाज़ में गीत, फिल्म का नाम है सिलसिला।

मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता।

ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो, यहीं कहीं हो।

कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश प्रसारित किया जा रहा है 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से। कार्यक्रम का ये अगला गीत है आप सभी की फरमाइश पर। पद्मा टाकीज नेपानगर से सुदर्शन शाह, पल्लवी प्रखर कुशलीति सुरभि, अश्विन मंगलाबेन शाह, साध्वी राजेंद्र जी शाह, गांव जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागरपुरी, राधेश्याम वंदना, भावना बिंदु गोलू, कुसुमबाई दिव्यांश और साथ में सूरज कुमार ढाक से। और इसी गीत को सुनना चाहा है आप हैं वडिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू टॉमस, पिंकी लवली और साथ में आरती अरोड़ा, बुलराणा वड़सिंगी से अमोल मानकर, शुभताई दीपाली और साथ में हैं श्लोक कुमार, लक्षनपुर छत्तीसगढ़ से विश्वनाथ साहू, पंकज तिरुपति साहू, सेक्टर 18 जगाधरी से विनय मोहन खारवान, मीनाक्षी प्लोमा, डॉक्टर ईशानी। साथ ही इसी गीत को सुनने के लिए मैसेज हमें लिखते हैं कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा, अमित कुमार हैप्पी राय, दुबिया नेवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी और साथ में है प्रांजल राय। और इसी गीत को सुनने के लिए फरमाइश श्रोता हमें लिखते हैं शाहजी नगर देगलूर नांदेड़ महाराष्ट्र से संतोष भाकरे, सुनैन्या सुकन्या और साथ पे सविता भाकरे। साथ ही ये फरमाइश हमारे श्रोता हमें लिखते हैं जिन्होंने हमें मैसेज लिख भेजा है रामगंज खडवा मध्य प्रदेश से विजय महोबिया, कविता

विशाल, विवेक, सोनू, मोनू, रानू, यीशु बाबा और साथ में इनके परिवारजन, और इसी गीत को सुनने के लिए फरमाइश हमें भेजी है। आप शेरवानी स्कूल का इंस्टीट्यूट बारा से आफ्ताब अंसारी, रियाज, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर लुबना और साथ में आलिया अंसारी। आप सभी की फरमाइश पर आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार को। फिल्म का नाम है खट्टा मीठा।

कार्यक्रम का ये अगला गीत आप सभी की फरमाइश पर कस्बा गुनूर यूपी से फारूक अली खान, फेजी फरहाज, फरहीन, फारे और ताहिरा। साथ ही मैसेज हमारे श्रोता लिखते हैं, नाज रेडियो क्लब करेली बरेली से निसार अहमद अंसारी, महजब निसार बेटी नुजहत फातिमा अबरार अंसारी, इसरार अहमद, तस्लीम रजा और साथ में इनकी मित्रगण, ये फरमाइश हमारे श्रोता हमें लिखते हैं। अनारकली बाजार जगराओ से सुनील पाठक, अमल, दीपिका, गव्य, भाई सुचा सिंह पाठक, साथ में इनके बहुत सारे मित्र, बागपत उत्तर प्रदेश से ममता ढींगिया और कुणाल ढींगिया, और इसी गीत को सुनने के लिए फरमाइश हमें लिखते हैं। आप है लाल माता सुदामा नगर अटलाई जिला झालावाड़ राजस्थान से हर्षिता रामेश्वर परमेश्वर मीनाक्षी मनोहर भाई बागरी और साथ में इनके परिवारजन। साथ ही ये फरमाइश होता लिखते हैं, चकला बाजार समानाशहर पंजाब से पप्पू राजा खुश दिल, संगीता पप्पू मैक्स, सुनीता आरजू, हंसमुख लाल, बुलबुल शक्ति और साथ पीर के परिवारजन। और इसी गीत को सुनने के लिए फरमाइश हमारे श्रोता लिखते हैं। आप हैं जिन्होंने फरमाइश लिख भेजी, उत्तम नगर दिल्ली से जयराम खुरपाल, सचिन अमन और दीपांशु। साथ ही ये फरमाइश लिखते हैं, चौटाला पंजाब से दारा पंडित, संजय शर्मा और प्रियंका। इसी गीत को सुनना चाहा है। आप हैं आज़ाद लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाब साबी राही और साथ में हैं मेहरा जहाँ, वगैरह दुख से संतोष नामदेव, सार्थक समर्थ और शौर्य नामदेव। और इसी गीत को सुनना चाहा है, रायपुर छत्तीसगढ़ से पवन कुमार साहू, क्रांति देवी, पंकज, सुष्मित, दीपिका साहू। ये फरमाइश हमारे श्रोताओं ने लिख भेजी है। कोका भिलाई से उत्तम सिंह जगेल, मोरा सनील कुमार, अजित कुमार, आयुष और साथ में है नंदिनी जगेल। और इसी गीत को सुनने के लिए फरमाइश श्रोता हमें लिखते हैं, भिवानी से हैं कृष्ण मेहरा, कोमल, किरण, कपिल और कुणाल मेहरा। ये फरमाइश होता हमें लिखते हैं, करताल हैदराबाद तेलंगाना से कानू गुला गोपाल, मयूश्री प्रवालिका, विष्णुवर्धन और साथ में है विघ्नेश। बालोदे छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामोरिया, अजय देव, तुषार डोली, बेबी पूजा, राधिका और साथ में इनके परिवारजन। ये फरमाइश होता हमें लिखते हैं, टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर, सीटी छाबड़ा, गांव झगुड़ी, जिला यमुनानगर से रणधीर बांगड़, गुरमीजो, गौरव, परवीन, युगम, वीरेन, बनराज और साथ में इनके परिवारजन। साथ ही इसी गीत को सुनना चाहा है, मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रत्नमाला आरती गौरी और साथ में ओम कुमार। और ये फरमाइश हमारे श्रोता हमें लिखते हैं, सतना एमपी से उमंग मलिक, आकांक्ष और माही मलिक, मजनू कटीला से कमल बालूच और इनके परिवारजन। आप सभी की फरमाइश पर सुनते हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में गीत, फिल्म का नाम है डॉन।

आई श्रोता, बढ़ते हैं आप सभी की फरमाइश की इस अगले गीत की ओर। मैसेज हमारे श्रोता लिखते हैं, एकलव्य नगर से वेंकटेश श्यामलाल साथ में इनके परिवारजन, कस्बा चिलकाना से मोहम्मद जरीफ अंसारी नईम, डॉक्टर आमिर अंसारी, दानिश राजा और साथ में मुन्ना नजीम। ये फरमाइश श्रोता हमें लिखते हैं, आकुड़ से विनय पिंडी बंगला, विजय शुभम पवन के संजीव डाबेराव, कस्बा चिलकाना से नदीम अंसारी, आयशा अजीम शान आलिया अरहम अंसारी और साथ में इनके परिवारजन, गुमला झारखंड से एस एम जावेश गुप्ता अंजुम साथ में नजमुल हुदा, रघुनाथपुरा जिला श्री गंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता हीना हर्षित और खुशी गोस्वामी। और इसी गीत को सुनने के लिए मैसेज हमें लिख भेजा है उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल से ओमा सिंह, महेश्वरी देवी, सोनू बोनू, राव लक्ष्मी, प्रियंका सृष्टि, बनियारो शौर्य और साथ में दिनेश। और इसी गीत को सुनने के लिए फरमाइश होता हमें लिखते हैं, आप हैं भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश शर्मा गौरव और गरिमा शर्मा, करनाल से गुरविंदर सिंह पांधा, इंद्रजीत कौर, बेबी मनमीत, मनमीत सिंह पांडा और साथ में जी एस रामगढ़िया, रेलवे रोड गंज डिडवारा से मोहम्मद कलीम जख्मी, भुवन प्रकाश गौतम, डॉक्टर दबीरुल हसनिश बेगम, शबनम अनवर और साथ में इनके परिवारजन। और इसी गीत को सुनना चाहा है नारायण स्टेट समस्तीपुर से लल्लन मिश्रा, नूतन मिश्रा, मन पाराशर, बेबी आराध्य और साथ में है लल्लू पंडित। और इसी गीत को सुनने के लिए फरमाइश मिली भेजी है जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, अंजिल सोनू, पपी भाटिया। और इसी गीत को सुनने के लिए मैसेज श्रोता हमें लिखते हैं, आपने मैसेज लिख भेजा परिमहल कासगंज से आबाद खान, नबील खान और इनके परिवारजन। सुनते हैं आप सभी की फरमाइश पर कार्यक्रम का ये अंतिम गीत। और इसी गीत को सुनने के लिए फरमाइश हमारे श्रोता लिखते हैं, विर्भ दर्भ श्रोता क्लब जलगांव जंक्शन से दिनेश काले, वंदना आदेश कुमार काले और प्रोफेसर वसुधा वज्रसेन। सुनते हैं मोनाली ठाकुर और साथियों की आवाज़ में गीत, फिल्म का नाम बागी।

इसी गीत को सुनने के लिए फरमाइश मलिक भेजी थी संजय कॉलोनी खंडवासी अब्दुल गफ्फार डावर, अब्दुल हक जियाउलत मोहम्मद उमर डावर और साथ में इनके बहुत सारे मित्र। ये फरमाइश तो हमें लिखते हैं अजमेर शरीफ से सैयद आलम हाशमी गुल्ला सलमा सदस अरहम हाशमी और साथ में मोहम्मद आलम हाशमी। और इसी गीत को सुनना चाहा है मरहरा दरवाज़ा एटर्सी नबी हसन अब्बासी नबी हसन शहनवाज नवीद हसन अब्बासी और साथ में इनके परिवार जिन साथ ये फरमाइश होता हमें लिखते हैं। आपने मैसेज हमें लिख भेजा है आप ही नई दिल्ली से गुरमीत सिंह मेहता साथ ही नजीब आवाज़ से हमारे साथ जुड़े हैं मनोज वर्मा और इसी गीत को सुनने के लिए फरमाइश होता हमें लिखते हैं। बठिंडा से प्रेम सिंह जोड़ा मंजीत कौर करणवीर करण और साथ में इनके परिवार जन साथ ही मैसेज लिखने वाले श्रोता आप हैं नेहरू पार्क निज़ामाबाद से अजीज भाई मसीन से मतीन भाई और साथ में इनके बहुत सारे मित्र जनकपुरी सहारनपुर से जोन डिकेस्टो रोजी पल और विले से डिकेस्टो और इसी गीत को सुनने के लिए फरमाइश होता हमें लिखते हैं। आपने मैसेज लिख भेजा है तेलंगाना चुटुपाल से कस्तूरी रामायडू बुमायडू और साथ में इनकी परिवारजन साथ ही ये मैसेज श्रोता हमें लिखते हैं। गांव उमेड़ा निज़ामाबाद तेलंगाना से मोहम्मद जैनुद्दीन आबिद आयश और साथ में स्नेहा भानु और इसी गीत को सुनने के लिए फरमाइश हमें लिख भेजी थी। नई बस्ती गंज डिंडवारा से मोहम्मद यासिन हाशमी नाजमा बेगम मोहम्मद तौशिफ मोहम्मद तैमू मोहम्मद कलीम अंसारी। श्रोतम इसी के साथ आज का कार्यक्रम बड़ से फरमाइश यहीं पर संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय 12 बजने को हम थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने आज सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता पर बल दिया। नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि गैर पारंपरिक खतरे अब राष्ट्रीय सीमाओं से आगे निकल गए हैं। उन्होंने कहा कि नई तकनीक, आतंकवाद के छिपे हुए रूप और साइबर खतरे तेजी से डिजिटल होते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस बैठक में मुख्य रूप से गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस दौरान 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 पद्म अलंकरण दिए जाएंगे। सुविख्यात टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी, पार्श्व गायिका अलका याग्निक और क्रिकेट खिलाड़ी रोहित शर्मा पद्म पुरस्कार पाने वालों में शामिल हैं। आकाशवाणी अपने विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। इस श्रृंखला के माध्यम से श्रोताओं को पद्म पुरस्कार विजेताओं के जीवन और उनके योगदान की जानकारी मिल रही है। ये कार्यक्रम आज 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर प्रसारित होगा। इन्हें न्यूज ऑन AIR ऐप और News on AIR के आधिकारिक YouTube चैनल पर भी सुना जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्वसनीय विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक रहा है। नई दिल्ली में कल एक सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में विश्व नेताओं ने राष्ट्रीय हितों की प्राथमिकता देने की भारत की प्रतिबद्धता को समझा है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्ष की नागरिकों की प्रतिबद्धता से उपलब्धियां हासिल हुई हैं।
1: पिछले 12 वर्षों के जो भी सिद्धियां देश की रही हैं, उनके मूल में राष्ट्र प्रथम की भावना ही केंद्र में है। स्वच्छ भारत अभियान से लेकर मेक इन इंडिया, खादी खरीदने पर जोर, स्थानीय वस्तुएं खरीदने पर जोर, ये सारे इनिशिएटिव इसलिए सफल हुए क्योंकि देश की जनता ने देश को सबसे ऊपर रखते हुए अपना कर्तव्य निभाया।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते से भारतीय किसानों, मछुआरों, कारीगरों और छोटे व्यापारियों को वैश्विक स्तर पर कारोबार करने में मदद मिलेगी। इससे रोजगार सृजन भी बढ़ेगा। एक अंग्रेजी दैनिक के लिए लिखे गए आलेख में वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने कहा कि इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होने वाला ये समझौता ब्रिटेन में भारतीय सामानों की पहुंच बढ़ाएगा। उन्होंने कहा कि इससे लगभग 99% शुल्क तुरंत समाप्त हो जाएंगे और भारत से निर्यात बढ़ेगा। अल्पसंख्यक कार्य और मत्स्य पशुपालन तथा डेयरी राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने केंद्रीय मंत्री परिषद से इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तत्काल प्रभाव से उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। प्रवर्तन निदेशालय कथित शिक्षक भर्ती परीक्षा में धोखाधड़ी मामले में चेन्नई, तिरुचिरापल्ली, कोयम्बटूर और मदुरई में 18 परिसरों पर तलाश अभियान चला रहा है। निदेशालय ने बताया कि ये कार्रवाई केंद्रीय अपराध शाखा द्वारा वर्ष

नमस्कार बहनों, स्वागत है आप सभी बहनों का अपने कार्यक्रम महिला जगत में, और मैं हूं आपके साथ कार्यक्रम में बीना रावत। और बहनों, आप स्वस्थ होंगी, साथ ही बुजुर्ग और बच्चों का ध्यान भी रख रही होंगी, क्योंकि बहनों इस चिलचिलाती धूप और गर्मी अपने साथ सिर्फ पसीना ही नहीं बल्कि थकान, डिहाइड्रेशन, सिरदर्द, थकान, मुंह सूखना, कब्ज होना और त्वचा में रूखापन आने लगता है। तो समझिए कि हम पानी कम पी रहे हैं, या बहनों कुछ पानी पीने के बाद भी अचानक फिर प्यास लग जाना, उठते बैठते चक्कर आ रहे हैं, या कुछ काम नहीं कर रहे हैं फिर भी कमजोरी महसूस हो रही है, किसी भी काम पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहे हैं और पाचन की समस्या भी उत्पन्न हो रही है, पेट में ऐंठन की शिकायत भी हो रही है, तो जान ले कि हमारे शरीर में पानी की कमी हो रही है। और बहनों, यदि पानी की कमी लंबे समय तक बनी रहे तो स्थिति और भी खतरनाक हो सकती है। जैसे कि हाथ की त्वचा को हम चुटकी से खींचें तो वह तुरंत अपनी सामान्य अवस्था में नहीं लौटती, और अचानक रक्तचाप कम हो जाता है और दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं, आंखें अंदर की ओर धंस जाती हैं, और जैसे हमारे अंदर भ्रम की स्थिति, चिड़चिड़ापन या बेहोशी महसूस होना पानी की अधिक कम होने के भी गंभीर खतरे हैं। और बहनों, यदि बच्चों की बात करें तो जैसे रोते समय बच्चों के आंखों से आंसू न आए, या डायपर काफी समय तक सूखा रहे, बच्चा अधिक सुस्त है या रो ही रहा है, तो हमें समझ जाने की जरूरत है कि शरीर में पानी की कमी है। तो बहनों, इन सभी लक्षणों को देखते हुए पानी की कमी से बचने के लिए हम दिन भर पर्याप्त पानी पिएं, और हाँ, पानी की कमी को पूरा करने के लिए जूस नहीं बल्कि फलों का ज़्यादा हम प्रयोग करें, क्योंकि फलों में कई प्रकार के विटामिन और मिनरल्स भी रहते हैं, और यही पोषक तत्व शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को और भी मजबूत करते हैं और कई बीमारियों से बचाते भी हैं, ऊर्जा का भी अच्छा स्रोत है। तो बहनों, हमें जानने की आवश्यकता है कि पानी की उचित मात्रा जहाँ हमें स्वास्थ्य समस्याओं से निजात दिलाती है, वहीं शरीर में पानी की कमी कई गंभीर बीमारियों का बुलावा भी देती है। तो फिर अगर यदि लक्षण गंभीर हों तो तुरंत चिकित्सक से संपर्क भी करें। और बहनों, आप खूब पानी पीती रहें, स्वस्थ रहें और सुनती रहें अपना कार्यक्रम महिला जगत।

0: बहनों, अभी आपने सुना ये प्यारा सा गीत। और हाँ बहनों, आज 23 जून को हम अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के रूप में मना रहे हैं। और बहनों, ओलंपिक का इतिहास भी बहुत पुराना है। कहते हैं कि ओलंपिक पर्वत पर खेले जाने के कारण इस खेल का नाम ओलंपिक पड़ा। और यह दिवस यानी 23 जून 1894 को पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC की स्थापना की स्मृति में मनाया जाता है। और इस समिति के संस्थापक बैरान पियरे कुबर्टिन को आधुनिक ओलंपिक खेलों का जनक माना जाता है। और हर साल पर होने वाले ओलंपिक खेल के वर्ष का नाम ओलंपियाड भी जाना जाता है। और यही ओलंपिक खेल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाली बहु खेल प्रतियोगिता है। इसी खेल के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शक्ति और शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने का उद्देश्य है। आज 23 जून को हम उत्कृष्टता, मित्रता, सम्मान के ओलंपिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मना रहे हैं। और इन खेलों के ही माध्यम से संपूर्ण विश्व को एकजुट अंतर्राष्ट्रीय भाईचारा बढ़ाना और वैश्विक शक्ति में योगदान के साथ साथ प्रमुख उद्देश्य और आदर्श की विश्व शक्ति में सभी देशों के युवाओं का निष्पक्ष खेल प्रतिस्पर्धा के मंच पर लाकर आपस के मतभेद और राजनीतिक दूरियां भी मिटाना है। शारीरिक मानसिक क्षमता का विकास तथा अनुशासन व खेल भावना का प्रसार के साथ साथ बिना किसी भेदभाव के जाति, धर्म, लिंग या राष्ट्र के सभी खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का समान अवसर प्रदान करना भी है। और हाँ बहनों, यदि ओलंपिक खेल में हम अपने देश की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले खेलों में भारत गोल्ड मेडलें, रजत और कांस्य पदक भी जीत चुका है। तो बहनों, हम भी कार्यक्रम के माध्यम से खेलों के महाकुंभ ओलंपिक खेल के खिलाड़ियों को शुभकामनाएं प्रेषित कर रहे हैं। और जो उस मंच तक पहुंच रहे हैं जो अगले ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन अमेरिका के लॉस एंजिल्स में 2028 में होंगे, उनके भी उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। उनके उज्जवल भविष्य के साथ साथ देश का नाम सदा ऊँचा रहे। और बहनों, अब हम कार्यक्रम में शामिल कर रहे हैं भेंटवार्ता। गर्मियों में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं और उनके निदान, डॉक्टर निधि से बातचीत कर रही हैं किरण जोशी।
1: बहनों, आज हमारे साथ हैं डॉक्टर निधि गुप्ता, जो कि एक डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। और आज हम इनसे बात करने जा रहे हैं विषय गर्मी में त्वचा की समस्या एवं निदान। तो सबसे पहले डॉक्टर, आपका हमारे कार्यक्रम महिला जगत में बहुत बहुत स्वागत है।
2: जी धन्यवाद।
1: डॉक्टर साहब, गर्मी के इस मौसम में हम अपनी त्वचा का किस तरह से ख्याल रख सकते
2: हैं? देखिए, त्वचा को ख्याल रखने के लिए जो 3 बेसिक स्टेप है, क्लीनिंग, सफाई बहुत जरूरी है, फिर मॉइस्चराइजर, उसमें एक कंडीशनर की अगर आपकी स्किन बहुत ऑयली है तो आप वो एक स्टेप अवॉइड कर सकते हैं। और इसके बाद जो थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है सनस्क्रीन। सनस्क्रीन का इस्तेमाल बहुत बहुत जरूरी है, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, बट क्योंकि गर्मी में धूप बहुत ज्यादा होती है, बहुत लंबे टाइम के लिए होती है, तो सनस्क्रीन का इस्तेमाल बहुत ही ज्यादा जरूरी है।
1: जी मैम, गर्मी के इस मौसम में धूप और गर्मी के कारण ऐसी कौन कौन से रोग हैं जिनसे हमें परेशानियां हो सकती है?
2: त्वचा से संबंधित अगर मैं बात करूं तो धूप की वजह से देखिए सबसे कॉमन तो आप देखते हैं झाइयां बन जाती है, चेहरा काला हो जाता है, कई कभी कभी फोटो बर्न या सन बर्न जिसको हम बोलते हैं, सफेद सफेद धब्बे बन जाते हैं चेहरे पे, ये तो सबसे कॉमनली आपको दिख जाएगा। दूसरा जो है घमौरियां, जो आपको बचपन में किसी न किसी को एक्सपीरियंस हुआ होता है कि घमौरियां होती है, बहुत खुजली होती है उसमें, और जब खुजली होती है तो उसके बाद उसमें फोड़े फुंसी होने बहुत नॉर्मल है। पसीने के साथ जो खुजली होती है, जैसे ही हम खुजली करते हैं उसके ऊपर सेकेंडरी जो हमारी त्वचा पे बैक्टीरिया रहते हैं उनका इन्फेक्शन हो जाता है, तो उससे फिर फोड़े फुंसी बन जाते हैं, तो ये एक सीक्वेंस में इन्फेक्शन हो जाता है। अगर मैं इनसे ध्यान रखने की बात करूं तो देखिए, जो मैंने पहले बोला सनस्क्रीन, तो आपकी झाइयां, फोटो बर्न, सन बर्न, फोटो टैन जो है, ये सब आपका एक ही इसका इलाज है और वो है सनस्क्रीन। आपकी स्किन के अकॉर्डिंग उसका टाइप कैसा होना चाहिए, उसकी टाइमिंग कैसी होनी चाहिए, उसको लगाने के लिए किस मेथड का यूज करना है, वो सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी जो आजकल की पब्लिक है वो सनस्क्रीन यूज तो करते हैं बट वो ये नहीं समझ पाते कि कौन सा यूज करना है, कैसे लगाना है और कितने टाइम बाद उसको रिपीट करना है, इसलिए वो इस्तेमाल तो कर रहे हैं बट उसका फायदा उन्हें नहीं मिल पा रहा। फोड़े फुंसी के लिए हम लोग नॉर्मली जो हमें एंटीबायोटिक्स देनी होती है वही दी जाती है। और अगर मैं घमौड़ियों की बात करूं तो देखिए, इसका एक ही सिंपल इलाज है कि मरीज को ज्यादा धूप में, गर्मी में, जो बच्चे दोपहर में खेलने के लिए निकल जाते हैं वो उनकी आदत उनको छोड़नी ही पड़ेगी, ठंडे मौसम में रहना ही घमौड़ियों का मेन इलाज।
1: जी निधि जी, आपने सनबर्न की बात करी है, तो सनबर्न यानी जो धूप से हमारी स्किन जल जाती, तो उसको बचाव के लिए आपने सनस्क्रीन बताई, उसके अलावा भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम घर में यूज करके सनबर्न जैसी चीज से बच सकते हैं?
2: देखिए, एक तो है आपका जिसको हम कहते हैं केमिकल प्रोटेक्शन, वो आप सनस्क्रीन यूज कर रहे हो। दूसरा है फिजिकल प्रोटेक्शन, इसमें देखिए अगर आप हैट लगा लेते हो जो बहुत ही घेरा बहुत चौड़ा हो, जिसकी एक शेडो आपके अपने फेस पे आती हो, वो एक दूसरा बचाव का तरीका है। तीसरा, क्योंकि आजकल पॉल्यूशन भी बहुत है तो लोग वैसे ही मास्क लगा लेते हैं, तो वो भी अपने आप में एक तरीके से प्रोटेक्शन का काम ही करता है। तो ये तीनों ही मेथड हैं जिसमें आप धूप से बच सकते हो।
1: डॉक्टर जी, बच्चों और बुजुर्गों की त्वचा देखभाल करने के लिए इस गर्मी के मौसम में क्या कुछ विशेष ध्यान रखना पड़ता है?
2: देखिए, बच्चों में क्या है कि फोड़े फुंसी उनमें ज्यादा जल्दी हो जाते हैं, बिकॉज छोटे बच्चे अपना खुद का ध्यान नहीं रख पाते, थोड़ा सा पसीना आने पे वो खुजली कर लेंगे, तो उनमें फोड़े फुंसी की प्रॉब्लम बहुत जल्दी हो जाती है। और बुजुर्गों की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, पसीना जब इकट्ठा हो जाता है तो अगर इकट्ठा होने वाली जगह जैसे आपके अंडर आर्म्स में या नेक की साइड्स में, तो वहां पे वो स्किन को इरिटेट कर देता है। अगर आपने शर्ट पहनी है तो कॉलर का फ्रिक्शन होगा, तो वो उसकी वजह से भी स्किन इरिटेट हो जाती है। तो उन लोगों के लिए मैं बोलूंगी कि एक तो उनका फर्स्ट तो वही है कि आप एकदम मिड आफ्टरनून का जो टाइम है उसमें कहीं भी आना जाना जितना हो सके आप अवॉइड कीजिए, ठंडे एनवायरमेंट में बैठिए। और दूसरा ये है कि आप एक सिंपल एंटीफंगल पाउडर्स जो आते हैं, क्योंकि पसीना इकट्ठा होता है तो वहां पे दूसरी कॉम्प्लिकेशंस जो होती है वो फंगस इन्फेक्शन बन सकता है, तो जो एंटीफंगल पाउडर आते हैं बहुत कॉमनली आपको मिल जाएगा, वो आप रूटीन लाइफ में एटलीस्ट गर्मियों में आप इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए।
1: जी डॉक्टर साहब, इस गर्मी के मौसम स्किन जिनकी ड्राई है और ऑयली स्किन, तो उनको भी कुछ परेशानियां झेलनी पड़ती है, मोस्टली जो ऑयली स्किन वाले, तो आप उनके लिए बताना चाहेंगे कि उन्हें इस गर्मी के मौसम में अपनी स्किन को अच्छा रखने के लिए क्या करना चाहिए?

0: मैम सही कहा आपने, जिनकी ऑयली स्किन है वो ज्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं, बिकॉज गर्मी में ऑयली स्किन प्लस स्वेट और ह्यूमिडिटी, जैसे हमारे देहरादून का सीजन भी वैसा ही है, तो उसमें उनके पिंपल की प्रॉब्लम ऑलरेडी होती है और एक्ने ब्रेकआउट गर्मियों में बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो देखिये इसमें एक तो पहली चीज ये है जो हमारा यूथ नहीं समझता, कि वो कोई भी जो टीवी में एडवर्टाइजमेंट में कि ये अच्छा मॉइस्चराइजर है या ये अच्छी जेल है ये लगा लो या घर का कुछ लगा लो, नो डाउट घर में आप लोग जो एलोवेरा वगैरह लगाते हैं बट उसमें आपका डस्ट का अदर पोल्यूटेंट का कंटामिनेशन हो जाता है। सो अल्टीमेटली आपके स्किन पे आप सब कुछ एक साथ लगा रहे हो, नॉट ओनली एलोवेरा जेल, आप साथ में जो डस्ट और दूसरी जो पार्टिकल्स उस प्लांट पे आए हैं वो भी आप अपने फेस पे लगा रहे हो, तो वो उस प्रॉब्लम को और बढ़ा देता है। तो बेसिकली जो एक्ने वाले लोग हैं उनके लिए है कि आपका फेस वॉश वैसा होना चाहिए जो ऑयली स्किन के लिए प्रिस्क्राइब किया जाता है, जो डॉक्टर्स ही सही से आपको बता पाएंगे, और उसके बाद सेम वे एक्ने प्रोन स्किन के लिए अलग टाइप के सनस्क्रीन आते हैं, तो उनको स्पेशली वही यूज करने चाहिए जो एक्ने वालों की ऑयली स्किन के लिए बने होते हैं।
1: मैम कहा जाता है गर्मी में आप जितना लिक्विड इंटेक करेंगे, आप जितना पानी पियेंगे, जूस पियेंगे, आपकी स्किन के लिए उतना अच्छा है, आप हाइड्रेट भी रहेंगे, बट कहीं ना कहीं फिर भी हमारी स्किन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो उनके लिए आप क्या बताना चाहोगे?
0: मैम पानी तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, डिहाइड्रेशन अपने आप में ही आपको एक एजिंग वाला लुक दे देता है, उसमें रिंकल्स जल्दी बनने शुरू हो जाते हैं, तो पानी अपने आप में ही बहुत जरूरी है। उसके अलावा आप जो है अगर ध्यान रखने वाली बात है तो वही है कि आप अगर फेस वॉश भी करते हैं तो फेस वॉश में जैसे लोग साबुन यूज कर लेते हैं, वो स्किन को इवन समर में हो सकता है फॉर फ्यू मिनट्स वो अच्छा लगे बट एट द एंड वो स्किन को और खराब करेगा, ड्राई कर देगा, कई बार बहुत ज्यादा साबुन लगाने से दाने निकल जाते हैं, तो उन चीजों को आपको अवॉइड करना है।
1: निधि जी बाजार में मिलने वाले स्किन प्रोडक्ट कितने सही हैं हमारी त्वचा के लिए और उन्हें कितनी हद तक हमें यूज करना चाहिए?
0: देखिए मैम बाजार में जो प्रोडक्ट मिलते हैं वो सब एक तरीके से मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के तहत ही बिकते हैं, तो उसमें कहीं भी ये नहीं समझाया जाता कि आपकी त्वचा कैसी है और उसके लिए ये कैसा रहेगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है कि जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हैं वो अपने आप में कुछ स्किन प्रोडक्ट कंप्लेंट्स को जनरेट कर देते हैं, उनकी वजह से स्किन प्रॉब्लम्स हो जाती है, तो स्पेशली खासकर जिनकी स्किन ऑलरेडी सेंसिटिव है, जिनके ऑलरेडी पिंपल्स की प्रॉब्लम है या किसी भी किस्म की और स्किन की प्रॉब्लम है, उनसे मैं खास रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप प्लीज डॉक्टर से मिलके जो मेडिकेटेड जो स्पेशली आप लोगों की स्किन के लिए ही बनाए गए प्रोडक्ट्स हैं वही इस्तेमाल कीजिए। दूसरे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में बहुत सारे ऐसे केमिकल्स डाले जाते हैं जो अपने आप में एक्ने को प्रमोट कर देते हैं, जिसको हम लोग कोमेडोजेनिक सब्सटेंसेस बोलते हैं, तो कई बार आप अपनी स्किन को ना चाहते हुए भी अनजाने में ही आप वो लगा लेते हैं और आपकी और मुसीबत वाली प्रॉब्लम उसमें ज्यादा शुरू हो जाती है।
1: मैम हमारी जो महिलाएं हैं वो घर या बाहर उनको जाना ही होता है अपने काम, तो घर में रह के भी और बाहर निकलते समय ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो उन्हें ध्यान रखनी की जिससे उनकी स्किन पे कोई परेशानी या प्रॉब्लम ना हो?
0: ये मैम बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। घर की जो हमारी महिलाएं हैं वो अपना ध्यान वैसे भी खुद से कम रखती हैं, तो मैं बहुत ही बेसिक चीजें बता रही हूँ। सबसे पहली बात तो ये है वो ये ना सोचें कि हम बाहर नहीं जा रहे तो हम सनस्क्रीन क्यों लगाएं। देखिए सनस्क्रीन ऐसा है कि अगर आपका थोड़ा सा भी धूप का एक्सपोजर है, चाहे आप 10 मिनट के लिए स्कूल से बच्चे को लेने के लिए जा रही हैं या 5 मिनट के लिए छत पे जा रही हैं, आपकी स्किन को सनबर्न करने के लिए उतनी धूप भी सफिशियंट है, तो सनस्क्रीन की इंपॉर्टेंस कहीं खत्म नहीं होती, वो आपके लिए भी उतना ही जरूरी है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है जो हमारे घर में बहने काम करती हैं, वो बार बार उनके साबुन में और सर्फ और विम इन सब में जो उनके बार बार हाथ धोती हैं या कॉन्टेक्ट में आते हैं ये प्रोडक्ट, इनकी वजह से हाथों की स्किन बहुत खराब हो जाती है। इसके लिए मैं उनको बोलूंगी कि एक अच्छा मॉइस्चराइजर, अगेन एक बार आपको डॉक्टर से मिलना पड़ेगा, जो कि उससे ज्यादा जरूरी है बचाव। तो जैसे मैंने फेस के लिए बचाव बोला कि सनस्क्रीन लगाइए, वैसे मैं हाथों के लिए बोल रही हूँ कि ग्लव्स आते हैं, आप सिंपल प्लास्टिक के रबर के जो दस्ताने आते हैं वो पहनिए और वो पहन के आप अपना काम कीजिए, तो लॉन्ग टर्म में आपके नाखून, आपकी स्किन, जो हाथों की स्किन है वो बच जाएगी। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो एक मॉइस्चराइजर डेफिनेटली यूज कीजिए, अदरवाइज ये भी एक ऑप्शन है आपके पास। ऐसे सनस्क्रीन भी आते हैं जो सनस्क्रीन प्लस मॉइस्चराइजर का काम करते हैं, तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकती हैं, पर क्योंकि आप घर में रहती हैं तो इसका मतलब आप ये मत समझिए कि सनस्क्रीन आपके लिए जरूरी नहीं है, वो आपके लिए भी बहुत जरूरी है।
1: जी मैम आज आपने हमारी महिलाओं को इतनी सारी स्किन से रिलेटेड जानकारियां दी, उसके लिए निधि जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आशा करते हैं हमारी बहन अपनी स्किन का बहुत अच्छे से अब ख्याल भी रखे।
0: जी धन्यवाद।
2: श्रोता बहनों अभी आपने सुना इस भेंट वार्ता का पुनर्प्रसारण। गर्मी के मौसम में त्वचा संबंधी समस्याएं और निदान, इस स्वास्थ्य संबंधी भेंट वार्ता में डॉक्टर निधि गुप्ता से बातचीत कर रही थी किरण जोशी। बहनों पति पत्नी गृहस्थी की गाड़ी के दो पहियों के समान होते हैं, एक भी यदि कमजोर पड़े तो गृहस्थी की गाड़ी डगमगाने लगती है, तो सोचो कि वह स्थिति कितनी भयंकर होती होगी ना, जब जीवन की गाड़ी का एक पहिया ही ना रहे। जी हाँ बहनों हम बात कर रहे हैं विधवा बहिन महिला की, जिसको कि हर वर्ष 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि पति की मृत्यु किसी भी महिला के लिए अत्यंत दुखद और जीवन परिवर्तनकारी घटना होती है। क्योंकि बहनों, यह केवल एक प्रिय व्यक्ति के बिछड़ जाने का दुख नहीं है, बल्कि कई बार जीवन की पूरी संरचना बदल जाने का भी अनुभव है। महिलाओं के लिए आर्थिक सुरक्षा, सामाजिक पहचान और भावनात्मक सहारे के अचानक समाप्त हो जाने का भी क्षण होता है। हालांकि आज का समाज प्रगतिशील है और आगे बढ़ रहा है, फिर भी कई जगहों पर विधवा महिलाओं को भेदभाव, उपेक्षा और सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ता है। कुछ समाज में आज भी इनसे जुड़े ऐसे रूढ़िवादी विचार मौजूद हैं जो एक विधवा महिला को सम्मान और अधिकारों से वंचित करते हैं। कई बार उन्हें पारिवारिक संपत्ति में उचित अधिकार नहीं मिलता, सामाजिक आयोजनों से दूर रखा जाता है और उनके निर्णय लेने की क्षमता पर भी संदेह किया जाता है। तो बहनों, ऐसी परिस्थिति में न्याय, गरिमा, आर्थिक शक्ति जैसे प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाते हैं। बहनों, न्याय का अर्थ हम केवल कानूनी अधिकार की उपलब्धता को न समझें, बल्कि प्रत्येक विधवा महिलाओं को समान अवसर प्राप्त हो, उसे भी शिक्षा, स्वास्थ्य, संपत्ति और रोजगार और सामाजिक सुरक्षा का वही अधिकार मिले जो समाज के अन्य नागरिकों को प्राप्त है। विभिन्न सरकारी योजनाएं आर्थिक सहायता, पेंशन और आजीविका के अवसर प्राप्त करने का प्रयास करती है, फिर भी आवश्यक है कि इन सारी सुविधाओं की पहुँच बहुत आसान हो। न्याय के साथ साथ हमारे लिए उसकी गरिमा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है कि एक विधवा महिला भी सक्षम, सम्मान्य और अधिकार संपन्न नागरिक है जितना कि अन्य कोई व्यक्ति। विधवा महिला को भी आर्थिक निर्भरता, वित्तीय निर्णय लेने की क्षमता और संसाधनों पर अधिकार रहे, बैंक तक पहुंच रहे और संपत्ति पर अधिकार होता है तो वह अपने को सुरक्षित और आत्मविश्वासी महसूस करती है। हमें आज यह भी समझने की आवश्यकता है कि विधवा महिला केवल सहायता की पात्र नहीं है, बल्कि समाज के विकास में सक्रिय भागीदारी भी है। वह आत्मविश्वासी भी महसूस करती है। और हमें आज यह भी समझने की आवश्यकता पड़ रही है बहनों, कि विधवा महिला केवल सहायता की पात्र नहीं है, बल्कि समाज के विकास में सक्रिय भागीदारी भी है। बच्चों का पालन पोषण करती है, आजीविका अर्जित करती है और समुदाय को मजबूत भी बनाती है। उनके अनुभव, संघर्ष और उपलब्धियां समाज के लिए प्रेरणा स्रोत हैं।

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: अरे वाह, पुराना सोना कितना शुद्ध होता था ना दादी।
2: सोना आज भी शुद्ध है, उस पर अगर हॉलमार्क अंकित है।
3: आप भी ध्यान रखें, सोना हमेशा BIS प्रमाणित ज्वेलर से ही लें। बिल अवश्य लें और जांच लें कि बिल पर अंकित और आभूषण पर अंकित शुद्धता समान है। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें BIS.gov.in पर।
4: बहनों, गर्मियों के दिन है, ठंडा पेय पदार्थ पीने की इच्छा होती है और उन पेय पदार्थों में छाछ भी एक बेहतरीन पेय पदार्थ है जो कि पेट के लिए बहुत फायदेमंद होता है। तो बहनों, आओ अब चलते हैं रसोई घर में और छाछ के लिए हम आवश्यक सामग्री नोट कर लें। इसके लिए गाढ़ा या खट्टा दही आधे से डेढ़ कप, ठंडा पानी 2 से 3 कप गाढ़ेपन के अनुसार, और भुना हुआ जीरा 1 छोटा चम्मच, काला नमक स्वादानुसार और बारीक कटी हुई हरी मिर्च 1/2 अगर तीखा आपको पसंद है, पुदीने की पत्ती या हरा धनिया थोड़े से बारीक कटे हुए और बर्फ के टुकड़े 4 से 5। अब बहने हम इसे बनाने की विधि नोट कर लें। एक बड़े बर्तन या मिक्सी के जार में दही डालें, इसे मथनी या चम्मच की मदद से अच्छे से फेंट लें ताकि कोई गांठ ना रहे। अब इसमें ठंडा पानी और बर्फ के टुकड़े डालें, इसे तब तक मथें जब तक कि झाग न बनने लगे। अब इसमें भुना हुआ जीरा पाउडर, काला नमक, सफ़ेद नमक, हरी मिर्च और

पुदीना, हरा धनिया डालें। सबको अच्छी तरह मिलाएं और आपकी अब ठंडी ठंडी और मसालेदार छाछ बनकर तैयार है। इसे गिलासों में डालें और ऊपर से थोड़ा सा भुना हुआ जीरा छिड़क कर सर्व कर लें। तो बहनों, ये थी छाछ की रेसिपी। और अब चलते चलते सुनते हैं फिर एक प्यारा सा गीत।

0: दोपहर 1:10 पर सुनिए का कार्यक्रम पीपल्स पद्म और आकाशवाणी। ये कार्यक्रम हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। इस समय दोपहर के 1 बजने को है। अब थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार जिन्हें हम दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ निफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि निफेड किसानों की सेवा कर रहा है।
2: नाफेड ने एक प्रकार से nafix.in, दृष्टि, ERP और नाफेड कल्याण, ये चार पहलों की शुरुआत, तो वो क्रांतिकारी इसलिए कि नाफेड जो 2014 में बंद होने की कगार पर आ गया था, आज नाफेड ये सारी पहल कर 500 करोड़ के मुनाफे के साथ, 30,000 करोड़ के टर्नओवर के साथ देश के 74,00,000 किसानों की सेवा कर रहा है।
1: इस पोर्टल की शुरुआत नीलामी प्रक्रिया में पारदर्शिता, दक्षता और सुगमता बढ़ाने में महत्वपूर्ण कदम है। इससे नीलामी संबंधी गतिविधियों को सुगम बनाने और किसानों तथा कृषि संस्थाओं के हित में नेफेड की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजित डोभाल ने आज सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता पर बल दिया। नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक में श्री डोभाल ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि गैर पारंपरिक खतरे अब राष्ट्रीय सीमाओं से आगे निकल गए हैं।
3: We need to be cognizant of the new security threats and challenges.
4: हमें सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है। गैर पारंपरिक खतरे राष्ट्रीय सीमाओं से आगे निकल चुके हैं और पारंपरिक जवाबी कार्रवाई से निपटने के लिए उन्होंने अपने बचाव के तरीके भी विकसित कर लिए हैं। नई और क्रांतिकारी तकनीकें, आतंकवाद के छिपे हुए रूप और तेजी से डिजिटल होती दुनिया में साइबर खतरे, ये सभी हमारे लिए एक बड़ा खतरा है।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस दौरान 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 पद्म अलंकरण दिए जाएंगे। पद्म पुरस्कार विजेताओं पर आकाशवाणी अपने विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। इस श्रृंखला के माध्यम से श्रोताओं को पद्म पुरस्कार विजेताओं के जीवन और उनके योगदान की जानकारी मिल रही है। ये कार्यक्रम FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर प्रसारित होगा। इन्हें न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में अलनीनो के मौसम पर पड़ने वाले प्रभाव और कृषि पर इसके असर की समीक्षा के लिए एक बैठक की। बैठक में कई राज्यों के कृषि मंत्रियों, सचिवों, जिला कलेक्टरों और अधिकारियों ने भाग लिया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री चौहान ने कहा कि अलनीनो की संभावित स्थितियों को देखते हुए सरकार किसानों के हितों की रक्षा करने और कृषि तथा खेती पर पड़ने वाले किसी भी प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। अयोध्या में राम मंदिर में प्राप्त दान के गबन के आरोपों की जांच कर रहे विशेष जांच दल SIT ने उत्तर प्रदेश सरकार को अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सौंप दी है। ये रिपोर्ट लखनऊ संभागीय आयुक्त विजय विश्वास पंत ने अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह संजय प्रसाद को सौंपी। अधिकारियों ने बताया कि जांच अभी जारी है। अयोध्या राम मंदिर में प्राप्त दान के दुरुपयोग के आरोपों के सामने आने के बाद मंदिर ट्रस्ट के अनुरोध पर उत्तर प्रदेश सरकार ने इस महीने की 13 तारीख को SIT का गठन किया था। प्रवर्तन निदेशालय शिक्षक भर्ती परीक्षा में कथित धोखाधड़ी मामले में चेन्नई, तिरुचिरापल्ली, कोयम्बटूर और मदुरई में 18 परिसरों में तलाश अभियान चला रहा है। निदेशालय ने बताया कि यह कार्रवाई केंद्रीय अपराध शाखा द्वारा वर्ष 2017 में दर्ज की गई प्राथमिकी पर आधारित है। पुलिस ने इस मामले में 2021 में आरोप पत्र दाखिल किया था। अमेरिका ने भारत की M777A2 अल्ट्रालाइट होविट्जर तोपों के रखरखाव के लिए $23 करोड़ के पैकेज की घोषणा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच रक्षा साझेदारी लगातार बढ़ रही है और वो प्रस्तावित बिक्री

अभी आप देश गान सुन रहे थे। 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। 1:10 होने को है। अब थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।

आप सुन रहे हैं फिल्म 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का देहरादून केंद्र। 1:20 हो रहे हैं, आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म संगीत।

ये थे लता मंगेशकर और किशोर कुमार, फिल्म का नाम था आंधी। गीतकार थे गुलजार और संगीतकार थी आरडी बर्मन। आइए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत, आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज़ में, फिल्म का नाम बातों बातों में।

0: सुनिए
1: कहिए कहिए
0: सुनिए सुनिए
1: कहिए कहिए
0: सुनिए कहते सुनते बातों बातों में प्यार।
2: श्रोताओं, इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न हुआ। FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर हवा आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। 1:30 हो रहे हैं। लीजिए अब सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
1: आप सभी श्रोताओं को आपके साथी अजीत का नमस्कार, जोहार, जय हिंद। श्रोताओं, आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुंदर विचार जो हमें भेजा है धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने। लिखते हैं, गांव की मिट्टी में वो ताकत है जो इंसान को अपनी भाषा, संस्कृति और जड़ों से जोड़े रखती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुविचार के लिए। तो आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का, यवतमाल महाराष्ट्र से क्षितिज संदीप कोल्हे, गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलाऊ दास, जय दास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी, और तहसील ठियोग जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान। बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आप सबका संदेश भेजने के लिए। आपसे यही निवेदन रहेगा हमारा कि इसी तरह से बने रहिए उमंग कार्यक्रम के साथ। स्वागत है एक बार फिर से, और आइए अब चलते हैं हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। श्रोताओं, पिछले सप्ताह हमने चर्चा की थी भारत की विभिन्न झीलों के बारे में, याद है ना। हमने बात की थी मणिपुर की अनोखी झील लोकटक, हिमालय की सुरम्य वादियों में बसी मानसरोवर झील, ओडिशा की चिल्का झील और कश्मीर की डल झील की। आशा है आपको जरूर पसंद आई होगी। तो आइए अब चलते हैं आज की चर्चा में। श्रोताओं, इस सप्ताह उमंग कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको ले चलेंगे भारत के विचित्र, रहस्यमयी और अनूठी गुफाओं में। सचमुच बड़ा ज्ञानवर्धक और मनोरंजक होगा उनके बारे में जानना, है ना। लेकिन पहले आपको ये तो बता दें कि हम गुफा को भौगोलिक रूप से परिभाषित कैसे करेंगे। तो आइए सुनते हैं इसकी परिभाषा। श्रोताओं, आम बोलचाल की भाषा में हम झील, पर्वत, लगून, मानसून जैसे शब्दों को तो कह देते हैं, लेकिन सही मायनों में उसकी परिभाषा वैज्ञानिक रूप से नहीं जानते। श्रोताओं, गुफा पृथ्वी की सतह के नीचे या अंदर प्राकृतिक रूप से बनी हुई खोखली जगह को कहते हैं। अगर आप पूछें कि इसे सरल शब्दों में कैसे कहें, तो आपको बता दूं कि धरती या पर्वत या समुद्र के भीतर प्राकृतिक रूप से बनी खोखली जगह को गुफा कहते हैं। हाँ, ये कभी कभी मानव निर्मित भी हो सकती है। तो आइए अब आते हैं आज के विषय पर। आज हम चर्चा करेंगे भारत की एक अद्भुत गुफा की, जिसे हम भीम बैठका गुफा के नाम से जानते हैं। श्रोताओं, इस नाम के पीछे एक बड़ी दिलचस्प पौराणिक कथा है। ऐसा कहते हैं कि यह नाम महाभारत के भीम से जुड़ा है। ऐसी मान्यता है कि भीम इस स्थान पर रुके थे, भीम बैठका यानी भीम के बैठने की जगह। इस गुफा को भीम की आश्रय स्थली भी कहा जाता है। सचमुच ये बड़ी रोचक बात है, इस गुफा को भीम की आश्रय स्थली भी कहा जाता है। तो आइए श्रोताओं, अब जानते हैं कि भीम बैठका की गुफा है कहाँ। तो आपको बता दें, ये जगह मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में है, जो राजधानी भोपाल से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर है। ये विंध्याचल पर्वत श्रृंखला में पड़ती है। ये अत्यंत प्राचीन गुफाएं हैं। लेकिन अब एक और प्रश्न मेरे मन में आता है, आपके मन में भी आ रहा होगा, और वो प्रश्न ये है कि भीम बैठका की गुफाओं का पता कैसे चला। तो श्रोताओं, इसके पीछे बड़ा मनोरंजक किस्सा है। वहां के स्थानीय लोग तो इन गुफाओं के बारे में जानते थे, लेकिन इसका पता विश्व को तब चला जब डॉक्टर विष्णु वाकणकर ने इसके बारे में प्रामाणिक ढंग से जानकारी दी। तो आइए जानते हैं कैसे पता चला डॉक्टर विष्णु वाकणकर जी को। तो आपको बता दें कि डॉक्टर विष्णु वाकणकर एक जाने माने पुरातत्वविद रहे हैं। वर्ष था 1956। एक बार वे ट्रेन से भोपाल से इटारसी जा रहे थे। ट्रेन विंध्य पर्वतमाला से होकर जा रही थी। श्रोताओं, यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो डॉक्टर विष्णु वाकणकर को जरूर याद रखिएगा। ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। जी, तो मैं आपको बता रहा था कि वे ट्रेन से भोपाल से इटारसी जा रहे थे। तो ऐसा हुआ कि उन्होंने ट्रेन की खिड़की से कुछ ऐसी चट्टानों और पहाड़ियों को देखा जो बड़ी कलात्मक लगी। वे दूसरी चट्टानों से भिन्न थीं। वे उन्हें अपनी फ्रांस और स्पेन की यात्रा के दौरान देखी गई प्रागैतिहासिक शैल चित्रों वाली चट्टानों जैसी लगी। तो फिर क्या था, वे उतर गए अगले स्टेशन पर और उस स्थान पर पहुंचे। बाद में उन्होंने बताया कि पहली गुफा में घुसते ही वे आश्चर्यचकित रह गए जब उन्होंने वहां बहुत सारे शैल चित्र यानी पत्थरों पर बने चित्र देख लिए, जिन्हें हम रॉक पेंटिंग्स कहते हैं। जी हाँ श्रोताओ, इन गुफाओं में 30,000 वर्ष तक पुराने शैल चित्र हैं, जो पुरापाषाण युग से मध्यकाल तक की झांकी प्रस्तुत करते हैं। इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए डॉक्टर विष्णु वाकणकर को सन 1975 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और वर्ष 2003 जुलाई में यूनेस्को ने भीमबेटका की गुफाओं को विश्व धरोहर घोषित किया। ये खोज पुरातत्व और मानव अध्ययन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे ये साबित हुआ कि भारत में मानव सभ्यता कितनी प्राचीन और निरंतर है। तो आइए श्रोताओ, आप जानते हैं कि इन गुफाओं में क्या ऐसी बात है जो इसे खास बनाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह भारत का सबसे पुराना ज्ञात मानव आवास है, जिसमें 600 से भी अधिक शैलाश्रय या रॉक शेल्टर्स हैं। ये प्रकृति द्वारा बने आवास हैं। इन गुफाओं में शिकार, सामूहिक नृत्य, युद्ध, पशु पक्षी और प्रारंभिक मानव की रोजमर्रा की जिंदगी के चित्र हैं। श्रोताओं, इन चित्रों में गेरुआ, लाल, सफेद, पीले और हरे रंगों का इस्तेमाल हुआ है। ये रंग वनस्पति से बने हैं, इसलिए हजारों वर्षों बाद भी ये टिके हुए हैं। अगस्त 1990 में भारत सरकार द्वारा इसे राष्ट्रीय महत्व का स्थान घोषित किया गया। ये वो जगह है श्रोताओं, जहां संभवतः आदि मानव ने पहली बार पत्थरों की दीवारों को कैनवस बनाया। हम भीमबेटका की गुफाओं को भारत के इतिहास की पहली चित्र गैलरी भी कह सकते हैं। तो श्रोताओं, भीमबेटका की गुफाएं सचमुच अद्भुत हैं। अब सुनिए आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से। आज का प्रश्न है, भीमबेटका की गुफाओं की खोज किस पुरातत्वविद ने की? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, भीमबेटका की गुफाओं की खोज किस पुरातत्वविद ने की? 8800440559 है हमारा IBRS नंबर और audio@ciet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन दोनों पतों पर हमारे प्रश्नों के उत्तर और अपने संदेश भेज सकते हैं। अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम संकल्प की धनी वसंती। श्रोताओं, ये कार्यक्रम एक महान पर्यावरण नेत्री वसंती के जीवन और पर्यावरण के संरक्षण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में एक नाटक के द्वारा मनोरंजक ढंग से जानकारी देता है।
2: दोस्तों, कभी सोचा है तुमने कि हमारी सभ्यताओं को किसने पाला पोसा है, किसने संवारी है हमारी दुनिया? मां की गोद ने और नदियों की घाटियों में हजारों हजारों साल से मां ने हमें सीने से लगाया, हमें जीवन दिया है। यही तो है नदी, जिसने हमारी सभ्यता को सींचा और हरा भरा किया है।

नदी मनुष्य के साथ रही है, उसकी हर हंसी हर आंसू में। वो हम सफर रही है मनुष्य के हर सफर में। तभी तो हर सभ्यता ने नदी को माँ कहा है।

लेकिन कभी कभी मनुष्य अपनी नासमझी और नादानी में जीवन देने वाली इस माँ के जीवन को ही खतरे में डाल देता है। उत्तराखंड की एक बहुत खास नदी कोसी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ।

0: लेकिन भारत देश की महिलाएं अपनी प्रकृति की रक्षा के लिए हमेशा ही तैनात रही हैं। 1972 में चिपको आंदोलन की शुरुआत कर अपने जंगलों को बचाने वाली गांव की ही एक अनपढ़ 50 वर्षीय बाल विधवा गौरा देवी थी।
1: और इस बार भी कोसी की रक्षा के लिए एक महिला ही आगे आई। हाँ, आज की हमारी नायिका बसंती बहन ने कोसी को बचाया।
0: भला क्यों बचाया?

0: बसंती ने कोसी को। क्या नाता है कोसी और बसंती का? आखिर ये बसंती है कौन? ये बसंती भी कुछ खास ही है कोसी की तरह। दोनों ही हिमालय के ऊंचे शिखरों से ही नहीं बल्कि घने जंगलों से निकली हैं। आइए जानते हैं कि उनके बीच कैसे बनता है एक गहरा नाता और कैसे बचाती हैं वे एक दूसरे को।
1: ये कहानी है उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के एक छोटे से गांव की।

0: सन 1980 अप्रैल का एक दिन।
1: बसंती, अरे बसी, ओ बसी कहाँ है तू?
2: अरे बुआ क्यों चिल्ला रही हो? मैं यहाँ बुरांस के फूल चुन रही हूँ।
1: अरे क्या करेगी इनका तू है?
2: क्या करूँगी? गमकुआ इतर बनाऊंगी। क्या तुम्हें पता नहीं कि इससे शरबत बनता है? तो शरबत बनाऊंगी।
1: अरे बसी तू बिल्कुल बावरी है। अरे चार रोज बाद तेरा ब्याह है और आज जंगल में बुरांस के फूल चुन रही है। हा? चल खचल। अरे चल सब खोज रहे तुझे। अरे चल ना जल्दी कर।

0: अभी तो उसने ठीक से अपने गुड्डे गुड़िया का भी ब्याह नहीं रचाया था, और उस छोटी सी गुड़िया का ब्याह हो गया।
1: शादी के लगभग 2 साल बाद एक रोज शाम के समय सर पर लकड़ियों का गट्ठर उठाए जब बसंती घर पहुंची तो घर का नजारा बिल्कुल बदला हुआ था।
0: सारा गांव उसके घर में इकट्ठा था और बहुत तेज रोना धोना मचा था। बसंती को कुछ समझ में आता, इससे पहले ही मां उसकी ओर तेजी से आई और गले लगाकर रोने लगी।

बेटी तू बर्बाद हो गई, तेरी दुनिया हमेशा के लिए

0: और इस तरह इससे पहले कि बसंती ब्याह के मायने समझती, वो विधवा हो गई। वक्त ने धीरे धीरे उसे विधवा होने का मतलब भी समझा दिया। पिता को अपनी मासूम बच्ची के भविष्य की चिंता सता रही थी, लेकिन नियति ने तो उसके लिए कुछ और ही संयोग रच रखा था। बसंती के पिता को उनके एक मित्र से कौसानी के लक्ष्मी आश्रम के बारे में पता चला।
1: आजादी के पहले गांधी जी की शिष्या सरला बहन ने इस आश्रम की शुरुआत पहाड़ की बच्चियों को शिक्षित करने के लिए की थी। बाद में यह आश्रम उन महिलाओं के लिए जीवन की शाला बना जिन्हें दुनिया विधवा कहकर बेसहारा समझती है। वही महिलाएं दक्ष होकर आज समाज का सहारा बन रही हैं।
0: ये सोचकर कि बसंती का भविष्य सबसे ज्यादा आश्रम में ही सुरक्षित रहेगा, बसंती के पिता ने बसंती को इसी आश्रम में भेज दिया।
1: घर से आश्रम की यात्रा बसंती के लिए एक जीवन से दूसरे जीवन में प्रवेश की यात्रा बन गई। जीवन के 12 बसंतों ने ही उसे एक चहकती बालिका से विधवा और फिर आश्रमवासी बना दिया।
0: ये तो थी कहानी बसंती की, पर बसंती का आखिर क्या नाता है कोसी से? है ना, बहुत गहरा नाता है। उस रोज जब बसंती पहली बार अपने पिता के साथ आश्रम जा रही थी, तो उसे लगा कि ये उसकी जिंदगी की अंतिम यात्रा है। मगर उसी रास्ते में उसकी भेंट कोसी नदी से हुई।

0: हुआ यूं कि कोसानी जाते हुए मन्नान में बस दोपहर के भोजन के लिए कोसी नदी के निकट रुकी तो उदास बसंती भोजन करने के बजाय कोसी के किनारे जाकर बैठ गई।
1: थोड़ी देर बाद उसे कोसी के निर्मल जल से आवाज आई। मानो कह रही हो, बेटी बसंती, तू उदास मत हो, ये यात्रा तुम्हारे जीवन की अद्भुत यात्रा साबित होगी। इस यात्रा से तुम अपने जीवन को मायने दे सको, तुम अपने जीवन दे सको, मायने दे सको।
0: बसंती घबराकर इधर उधर देखने लगी, पर कहीं कोई नहीं था। फिर ये आवाज किसकी थी? बसंती ने पानी में झांका तो उसे अपनी ही छवि दिखाई दी। अब तक उसकी आंखों से आंसू छलकने बंद हो चुके थे और चेहरे पर संशय की जगह विश्वास अपनी जड़ जमाने लगा था।
1: उसके बाद से बसंती को जब भी बड़े सवाल सालते, वो कोसी के किनारे चुपचाप अकेले जा बैठती और उसे जवाब मिल जाता। दरअसल कोसी उसकी अंतरात्मा की परछाई बन चुकी थी।
0: साल पर साल गुजरते गए। बसंती अपने सामाजिक कार्यों में मगन रही और कोसी भी अपनी जल तरंगों से घाटी को हरा भरा करती रही।

लेकिन लोगों की नादानी से कोसी की रस धाराएं तेजी से सूखने लगी। और एक दिन ऐसा भी आया कि उत्तराखंड की सरकार ने कोसी पर पहरा लगा दिया। ये बात सन 2003 की गर्मियों की है।

0: बसंती दीदी, बसंती दीदी, ओ बसीदी, कहाँ हो? गजब हो गया, कुछ सुना तुमने? दीदी,
1: अरे
0: दीदी,
1: क्या हुआ शांति? क्यों सारा पहाड़ सर पर उठा रखा है? मैं यहाँ गौशाले में हूँ, घास काट रही हूँ।
0: दीदी दीदी, अभी अभी मैं नीचे गांव से आ रही थी, वहाँ सरकार ने कोसी पर जगह जगह पुलिस बैठा दी है।
1: क्या?
0: सरकार का हुक्म है कि खेती के लिए कोई भी कोसी का बूंद भर पानी भी इस्तेमाल न करे।
1: अरे ऐसे कैसे हो जाएगा? कोसी हमारी है या सरकार की?
0: कहते हैं कि कोसी का पानी बहुत तेजी से घट रहा है, इसलिए सारा पानी अल्मोड़ा शहर जाएगा। वहाँ पीने का पानी हमारी कोसी से ही तो मिलता है ना।
1: अच्छा चल, आश्रम चलकर सबको इसकी खबर देते हैं।
0: ठीक है, चल ठीक है दीदी, चलो चलो।
2: उस रोज रात को कोसी नदी के बारे में आश्रम में भोजन के बाद चर्चा हुई।
3: हाँ, बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब इसका उपाय क्या है, क्या करें? हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। नहीं, मेरी तो ऐसा है, हम सबको मिलजुल के कुछ करना चाहिए।
2: कोसी नदी को बचाने की जिम्मेदारी आश्रम की बड़ी दीदी राधा भट्ट ने बसंती को सौंपी।

0: अब हम लौटते हैं लक्ष्मी आश्रम की ओर, जहां सुबह सवेरे झोला लेकर बसंती बहन गांव का रुख कर रही हैं। ऐसा करते हुए उन्हें 45 दिन हो चुके हैं। वो रोज सुबह 6 बजे बरासे घाटी के गांव की ओर चल पड़ती हैं। शुरू में कोई उनकी बात को सुनने समझने को तैयार नहीं था। एक दिन बसंती को महिलाओं का एक झुंड मिला। सभी के हाथों में रस्सी और दराती थी। वे सब बहुत तेजी से जंगल की ओर जा रही थी। बसंती दीदी समझ गई कि ये सब लेसाल गांव की महिलाएं हैं और जंगल में लकड़ी काटने जा रही हैं। बसंती दीदी ने उन्हें पुकारा।
1: अरे कहाँ जा रही हो बहनों? क्या तुम सब लेसाल गांव की हो?
2: हाँ, हम सब लेसाल गांव की हैं और जंगल जा रहे हैं लकड़ियाँ काटने।
1: बहन जरूर जाओ, लकड़ी भी लाओ, लेकिन देखो कच्ची लकड़ियाँ मत काटना।
3: वो भला क्यों? तुम क्या कोई यहाँ की कलेक्टर लगी हो जो हमें ये फरमान सुना रही हो? अरे हम क्यों तुम्हारी बातें सुने? हाँ
1: मेरे लिए नहीं, अपने कोसी के प्राण बचाने के लिए आप सबको मेरी बात माननी चाहिए।
2: तुम्हारी बात से कोसी के प्राण का क्या रिश्ता?
3: हाँ।
2: हमें क्यों मूर्ख बना रही हो?
3: और क्या
2: है? आखिर तुम कौन हो, क्या चाहती हो?
3: हाँ।
1: आमा मैं लक्ष्मी आश्रम से आई हूँ। आप सबने तो सुना ही होगा कि इस बार कोसी के पानी पर सरकार ने पहरा लगा दिया है। गांव का कोई आदमी कोसी के पानी का इस्तेमाल सिंचाई के लिए नहीं कर सकता। इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम मिलकर कोसी को बचाएं। यही बात समझाने के लिए मैं गांव-गांव घूम रही हूँ।
2: तुम्हारी बात में दम तो है बेटा, पर कोसी को हम कैसे बचा सकते हैं?
1: आमा इसका जवाब तेरे पास है।
2: मेरे पास?
1: हाँ तेरे पास। आमा तुम इन सबको बताओ कि कोसी नदी बनी कैसे है।
2: कोसी बनी कैसे? ये कैसा

0: सवाल है, क्या तुम नहीं जानती कि हमारे पेनाथ जंगल के बांज बुरांश के घने पेड़ प्राकृतिक जल को संचित करते हैं और उसी से कोसी का जन्म हुआ
1: और क्या
0: है।
2: बिल्कुल ठीक। ऐसे में अगर हम जंगल काटेंगे तो कोसी में पानी घटेगा या बढ़ेगा?
1: घटेगा।
3: अब हमें तुम्हारी बात समझ में आ गई।
0: खाली हमारे समझने से क्या होता है, हम अकेले क्या कर सके हैं?
2: हम गांव के बाकी लोगों को ये बात समझा कर अपने जंगल के पेड़ों की जिम्मेदारी स्वयं कर सकते हैं।
0: चलो इसकी शुरुआत हमारे ही गांव से करो।
1: अरे चलो चलो बसंती बहन, हमारे गांव चलो
4: चलो चलो
1: जल्दी चलो, हम सबको बताते
5: हैं। और इन औरतों का काफिला एक बार जो चल पड़ा तो रुका नहीं। इस दिन बसंती बहन लेसाल गांव गई और वहां औरतों ने एक सभा बुलाई और झटपट एक महिला मंडल का गठन हो गया। फिर धीरे धीरे 20 गांव में महिला मंडल का गठन हो गया। बरासे घाटी के कफारी, बिजुरिया, धौलरा, गरुड़ा, सेल, खीरा कोटा, कांटली आदि गांवों में महिला मंडल का गठन हो गया।

0: शुरू में तो पुरुषों ने महिला मंडल का विरोध किया, लेकिन धीरे धीरे उन्हें भी बात समझ में आ गई और वे भी अपना जंगल बचाने के अभियान में लग गए। अगस्त 2003 से आज तक इन गांव के लोगों ने कच्ची लकड़ी और हरी पत्तियां नहीं काटी।
1: पर रास्ता इतना आसान भी नहीं था। कोसी की जीवन रेखा पिनाथ जंगल केवल बरारो घाटी में नहीं पड़ता था, उसका कुछ हिस्सा लोध घाटी और बागेश्वर में भी पड़ता था, और वहां के लोग अब भी जंगल काट रहे थे। तब बरारो घाटी के महिला मंडलों ने फैसला किया कि पूरे इलाके में कोसी बचाओ जुलूस निकाले जाएं, सभाएं की जाएं।

0: a demolition notice for the building. The three-story building was issued a demolition order in 2016 over unauthorized construction, but it was revoked less than 2 months later. Sushil Chandra Tiwari, Akashwani News, Lucknow.
1: The United States has announced a $230 million sustainment package for India's M777A2 ultra-light howitzers. In a social media post, U.S. Ambassador to India Sergio Gore said the defense partnership between India and the U.S. is continuously growing and the proposed sale is ready to be concluded. Monsoon has become active again in Maharashtra. Rain continues its spell in Mumbai and nearby suburbs for the third consecutive day today. More from our Mumbai correspondent.
2: Several parts of the island city of Mumbai and its suburbs continue to receive moderate showers since morning. IMD has informed that the southwest monsoon has further advanced into the remaining parts of Central Arabian Sea, some parts of Maharashtra, including Mumbai, and certain parts of central and eastern India. Citizens are also advised to remain alert as there is a strong possibility of moderate to heavy rainfall in some areas of Mumbai city, Mumbai suburbs, and the ghat regions of Pune, Raigad, and Ratnagiri over the next few hours. Sangeeta Godbole, Akashwani News, Mumbai.
1: The India Meteorological Department, IMD, has issued an orange colour warning for heavy to very heavy rainfall over parts of northeast India and sub-Himalayan West Bengal today. Heavy rainfall is also expected over coastal Karnataka, Konkan, Goa, Odisha and Telangana till tomorrow. The Met Department predicted thunderstorms accompanied by lightning and gusty winds over Delhi, Haryana, Punjab, Chandigarh and Uttarakhand for the day. According to the weather agency, heat wave conditions are expected over Chhattisgarh, eastern parts of Madhya Pradesh and Uttar Pradesh today, while severe heat wave and warm night conditions are expected over Vidarbh till tomorrow. IMD said a gradual rise in maximum temperatures by 2 to 3 degrees Celsius is expected over northwest India during the next 3 days. In FIFA World Cup, Argentina's star captain Lionel Messi has created history after he scored 18 goals, surpassing Germany's Miroslav Klose's record of 16 goals to become the highest goal scorer in World Cup history. In a super clash, Argentina defeated Austria 2-0 in their Group J match in Arlington, United States last night to secure a place in the round of 32. With this win, Argentina has entered the knockout stage. Meanwhile, Algeria thrashed debutants Jordan 2-1 in a Group J encounter in Santa Clara, USA today. In hockey, the Indian men's hockey team will take on arch rivals Pakistan in the opening match of the FIH Pro League today. This will be the first encounter between India and Pakistan since their Asian Champions Trophy clash in Hulunbuir, China in 2024, where India emerged victorious with a 2-1 win. Benchmark domestic equity indices were trading nearly 1% lower in the afternoon session today. The Sensex plunged 653 points to 76,441, while the Nifty lost 220 points to 23,883 when reports last came in. And now before we end the bulletin, the headlines once again. President Draupadi Murmu to present Padma Awards during second round of civil investiture ceremony at Rashtrapati Bhavan this evening. Home Minister Amit Shah says Shyama Prasad Mukherjee's dream realized with abrogation of Article 370. National Security Advisor Ajit Doval says opening of Strait of Hormuz will strengthen energy security around the world. Enforcement Directorate conducts searches at 18 places in Tamil Nadu in connection with alleged teacher recruitment exam manipulation case. Lionel Messi becomes the highest goal scorer in FIFA World Cup history, leads Argentina into knockout stage, and in hockey, India to face Pakistan in opening match of FIH Pro League in London today. With that, we end the midday news.
3: Namaskar. आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा अनुच्छेद 370 को निरस्त करने से श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना पूरा हुआ है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने कहा हुर्मुज जलडमरू मध्य के खुलने से विश्वभर में ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। प्रवर्तन निदेशालय शिक्षक भर्ती परीक्षा में कथित धोखाधड़ी मामले में तमिलनाडु में 18 स्थानों पर तलाशी अभियान चला रहा है। लियोनेल मेसी फीफा विश्व कप के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बने। अर्जेंटीना की टीम नॉकआउट में पहुंची। और लंदन में FIH हॉकी प्रो लीग के शुरुआती मैच में आज भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस दौरान 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 पद्म अलंकरण दिए जाएंगे। एक रिपोर्ट।
4: इस वर्ष केंद्र सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार प्राप्त करने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 सम्मान मरणोपरांत प्रदान किए जाएंगे। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। आज राष्ट्रपति 65 विशिष्ट हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित करेंगी। इनमें टेनिस के दिग्गज विजय अमृतराज, अभिनेता ममूती, गायिका अलका याग्निक और भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा जैसे प्रमुख हस्तियां शामिल हैं। वर्ष 1954 में स्थापित किए गए यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर घोषित किए जाते हैं। पद्म पुरस्कार कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, सामाजिक कार्य, विज्ञान, लोक प्रशासन तथा व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान को मान्यता देने के लिए प्रदान किए जाते हैं। सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: पद्म पुरस्कार विजेताओं पर आकाशवाणी पीपल्स पद्म और आकाशवाणी के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। इस श्रृंखला के माध्यम से श्रोताओं को पद्म पुरस्कार विजेताओं के जीवन और उनके योगदान की जानकारी दी जा रही है।
5: मैं रैप का काम सीखा, मूवी का काम सीखा है, मोटी चिकन मामूली का काम, तो इसमें सबसे बारीक काम एक मरूरी का ही होता है, तो मरूरी का काम जो है लगातार नहीं किया जाता है, ये बहुत ही फाइन वर्क होता है।
6: जब हमारे मेजॉरिटी कम्युनिटी का यूथ और माइनॉरिटी कम्युनिटी का यूथ एक दूसरे को समझने की कोशिश करे, वो ये जाने कि कश्मीर का जो एक नॉर्मल सिख के लिए वही गुलदस्ता जो कश्मीर जिसमें हमारे गांधी जी को किरण नजर आई थी या भारत का ताज के रूप में ये जो था, उसी दस्ते को फिर से उजागर करने को बनाने के लिए हमने प्रयास करा।
3: ये कार्यक्रम आज FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर प्रसारित होगा। इन्हें न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR के आधिकारिक YouTube चैनल पर भी सुना जा सकता है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के साथ ही डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना साकार हो गया है। श्री शाह ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें देश के महानतम नेताओं में से एक बताया। उन्होंने कहा कि डॉ. मुखर्जी के योगदान ने देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
7: श्यामा प्रसाद मुखर्जी इस राष्ट्र के बहुत बड़े नेताओं में शुमार होते हैं, जिन्होंने कभी जीवन में कुछ भी प्रसिद्धि के लिए नहीं किया, और उनकी बनाई पार्टी भारतीय जनसंघ, जो अब भारतीय जनता पार्टी के नाम से जानी जाती है, गंगा से लेकर बंगाल के गंगा सागर तक भारतीय जनता पार्टी का साथ, और मूठ जैसे सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने 60 साल के अंदर इनकी विचारधारा पर आगे बढ़ते बढ़ते आज देश को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किया है।
3: नई दिल्ली में नेफेड के नीलामी पोर्टल के शुभारंभ पर श्री शाह ने कहा कि 23 जून भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए विशेष महत्व रखता है, क्योंकि इसी दिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने राष्ट्रीय एकता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया था। विभाजन काल को याद करते हुए उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल को भारत का हिस्सा बनाए रखने में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। गृहमंत्री ने अनुच्छेद 370 का भी जिक्र किया, जिसने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया था।
7: कश्मीर का राष्ट्रध्वज होता था, कश्मीर का संविधान अलग होता था, कश्मीर में एक अलग प्रधानमंत्री बैठते थे, कश्मीर में एक राष्ट्रपति भी बैठते थे। ये संकल्पना भारत की एकता और अखंडता के लिए बहुत खतरनाक। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक आंदोलन छेड़ा कि एक देश में दो विधान, दो निशान और दो प्रधान नहीं रहे।
3: इस अवसर पर गृहमंत्री ने किसानों की सीधी भागीदारी को मजबूत करने के लिए खरीद कार्यों में बिचौलियों की भूमिका को समाप्त करने का आह्वान किया।
7: आने वाले 2 सालों में सहकारिता मंत्रालय सुनिश्चित करेगा कि दलहन का एक दाना भी एनसीसीएफ और नाफेड में व्यापारियों के माध्यम से ना आए, सीधा किसानों के माध्यम से आए, जिससे मुनाफा पूरा किसानों के पास। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया है, अब इंफ्रास्ट्रक्चर को नीचे तक पहुंचाना है और उसमें मैं मानता हूं कि नाफेड और एनसीसीएफ ने भी दृढ़ता के साथ शुद्ध तरीके से काम करने की शुरुआत करनी पड़ेगी, तभी जाकर परिणाम मिलेंगे।
3: नेफेड की प्रगति का जिक्र करते हुए श्री शाह ने कहा कि 12 साल पहले गंभीर वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहा यह संगठन आज 74 लाख किसानों की सेवा करने वाला एक मजबूत संस्थान बनकर उभरा है।
7: नाफेड ने एक प्रकार से नेफिक्स डॉट इन, दृष्टि, ईआरपी और नाफेड कल्याण, ये 4 पहलों की शुरुआत की। तो वो क्रांतिकारी इसलिए कि नाफेड जो 2014 में बंद होने की कगार पर आ गया था, आज नाफेड ये सारी पहल कर 500 करोड़ के मुनाफे के साथ, 30,000 करोड़ के टर्नओवर के साथ देश के 74 लाख किसानों की सेवा कर रहा है।
3: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पिछले एक दशक में कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उन्होंने खरीद प्रक्रिया को पारदर्शी और किसान हितैषी बनाने के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग करने हेतु नेफेड और राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ की टीमों को बधाई दी। उन्होंने बताया कि इस पोर्टल की सहायता से किसानों को 48 घंटे के भीतर सीधे उनके बैंक खातों में भुगतान प्राप्त हो जाता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजय डोभाल ने कहा है कि होर्मुज जलडमरो मध्य के खुलने से विश्व भर में ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। श्री डोभाल ने आज सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता पर बल दिया। नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक में श्री डोभाल ने इस विषय पर चिंता व्यक्त की।
8: We need to be cognizant of the new security threats and challenges.
9: हमें सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है। गैर पारंपरिक खतरे राष्ट्रीय सीमाओं से आगे निकल चुके हैं और पारंपरिक जवाबी कार्रवाई से निपटने के लिए उन्होंने अपने बचाव के तरीके भी विकसित कर लिए हैं। नई और क्रांतिकारी तकनीकें, आतंकवाद के छिपे हुए रूप और तेजी से डिजिटल होती दुनिया में साइबर खतरे, ये सभी हमारे लिए एक बड़ा खतरा है।
3: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रिर और भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि वे भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर सार्थक चर्चा की उम्मीद कर रहे हैं। इस बीच श्री गोयल ने कहा कि भारत और अमेरिका मजबूत द्विपक्षीय व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की दिशा में निर्णायक रूप से आगे बढ़ रहे हैं, जिससे दोनों देशों के लिए नए आर्थिक अवसर खुलेंगे और अमेरिका भारत आर्थिक साझेदारी में महत्वपूर्ण मजबूती आएगी। अल्पसंख्यक कार्य और मत्स्य पशुपालन तथा डेयरी राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद से इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तत्काल प्रभाव से उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। प्रवर्तन निदेशालय शिक्षक भर्ती परीक्षा में कथित धोखाधड़ी मामले में चेन्नई, तिरुचिरापल्ली, कोयम्बटूर और मदुरई में 18 परिसरों में तलाश अभियान चला रहा है। निदेशालय ने बताया कि ये कार्रवाई केंद्रीय अपराध शाखा द्वारा वर्ष 2017 में दर्ज की गई प्राथमिकी पर आधारित है। पुलिस ने इस मामले में 2021 में आरोप पत्र दाखिल किया था। लखनऊ आग की घटना में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और उनमें से 4 को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया। अलीगंज के एक एनिमेशन कोचिंग सेंटर में हुए इस हादसे में 15 विद्यार्थियों की मौत हो गई और 9 घायल हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। इस बीच फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के विशेषज्ञों और विशेष जांच दल के सदस्यों के एक संयुक्त दल ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
0: घटना स्थल का मुआयना करने के बाद एसआईटी के सदस्य और एडीजी लखनऊ जोन प्रवीण कुमार ने कहा कि उनकी टीम सभी पहलुओं की गहन जांच करेगी और हर विभाग की जिम्मेदारियों का विस्तार से आकलन करेगी। दूसरी ओर फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की 6 सदस्य टीम ने आग लगने के कारणों का पता लगाने और घटनाक्रम स्थापित करने के लिए सबूत इकट्ठा किए। इस बीच लखनऊ विकास प्राधिकरण ने इमारत को गिराने का नोटिस जारी कर दिया है। 3 मंजिला इमारत के अनाधिकृत निर्माण को लेकर 2016 में भी इसे गिराने का आदेश जारी किया गया था, लेकिन 2 महीने से भी कम समय में इसे रद्द कर दिया गया था। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार।

0: लखनऊ।
1: अयोध्या में राम मंदिर में दान और चढ़ावे में कथित अनियमितताओं की जांच कर रही 3 सदस्यीय विशेष जांच दल SIT ने आज अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। राज्य सरकार ने कथित वित्तीय अनियमितताओं और धन के दुरुपयोग की जांच के लिए इस उच्च स्तरीय पैनल का गठन किया था। SIT के सदस्यों ने पिछले सप्ताह कई संदिग्धों और मंदिर ट्रस्ट के अधिकारियों से पूछताछ की। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में अलनेनो के मौसम पर पड़ने वाले प्रभाव और कृषि पर इसके असर की समीक्षा के लिए एक बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री चौहान ने कहा कि अलनेनो की संभावित स्थितियों को देखते हुए सरकार किसानों के हितों की रक्षा करने और कृषि तथा खेती पर पड़ने वाले किसी भी प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। महाराष्ट्र में मॉनसून फिर से सक्रिय हो गया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि मुंबई और आसपास के उपनगरों में आज लगातार तीसरे दिन भी बारिश हो रही है।
2: मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून मध्य अरब सागर के बाकी हिस्सों, मुंबई सहित महाराष्ट्र के कुछ और हिस्सों और मध्य व पूर्वी भारत के कुछ इलाकों में आगे बढ़ गया है। आज पुणे जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले कुछ घंटों में मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, पुणे, रायगढ़ और रत्नागिरी के घाट इलाकों में मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। बड़ी प्रतीक्षा के बाद आई इस बारिश से नागरिकों को राहत मिली है। अगले कुछ दिनों में महाराष्ट्र के बाकी हिस्सों में बारिश होने से किसान बुआई का काम शुरू कर सकेंगे। कृषि विभाग ने किसानों को जरूरी मात्रा में बारिश होने तक बुआई में जल्दबाजी न करने की सलाह दी है। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर और पश्चिम बंगाल के तराई वाले कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश के ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तटीय कर्नाटक, कोंकण, गोवा, ओडिशा और तेलंगाना में भी कल तक तेज बारिश हो सकती है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ और उत्तराखंड में आज गरज के साथ वर्षा और तेज हवाएं चलने का अनुमान है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूरदर्शी नेता, प्रख्यात शिक्षाविद और देशभक्त डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित की है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा कि डॉ. मुखर्जी ने निडर होकर देश की एकता और अखंडता का समर्थन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना जीवन देश के विकास के लिए समर्पित कर दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका ने ईरान पर अस्थायी रूप से बड़े प्रतिबंध हटा दिए हैं। इनमें ईरानी मूल के कच्चे तेल, पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल उत्पादों के उत्पादन, वितरण और बिक्री को अधिकृत किया गया है। अमेरिका के राजकोष विभाग ने बताया कि 60 दिन के लिए जारी किया गया सामान्य लाइसेंस 21 अगस्त तक प्रभावी होगा। फीफा विश्व कप में आज अमेरिका के सांता क्लारा में ग्रुप जे मैच में अल्जीरिया ने पहली बार खेल रहे जॉर्डन को 2-1 से मात दे दी। लियोनेल मेसी फीफा विश्व कप के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बने। एक महत्वपूर्ण मुकाबले में अर्जेंटीना ने कल रात ग्रुप जे मैच में ऑस्ट्रिया को 2-0 से हराकर नॉकआउट में प्रवेश किया। FIH प्रो लीग के शुरुआती मुकाबले में आज भारतीय पुरुष हॉकी टीम का सामना पाकिस्तान से होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, अनुच्छेद 370 को निरस्त करने से श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना पूरा हुआ है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने कहा, होर्मुज जलडमरु मध्य के खुलने से विश्वभर में ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। प्रवर्तन निदेशालय शिक्षक भर्ती परीक्षा में कथित धोखाधड़ी मामले में तमिलनाडु में 18 स्थानों पर तलाशी अभियान चला रहा है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: सौ दशमलव 5 MHz पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। समय 2:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

सैनिक साथियों जय हिंद। सैनिक साथियों, मातृभूमि के वीर सपूत जो अपने देश से प्यार करते हैं वो अपना सर्वस्व त्यागने के लिए तत्पर रहते हैं। ऐसे ही थे लेफ्टिनेंट नवदीप सिंह, जिन्होंने अपने कॉरपोरेट करियर को त्याग कर सैन्य सेवा को अपनाया।

सैनिक साथियों, लेफ्टिनेंट नवदीप सिंह का जन्म 8 जून 1985 को गुरुदासपुर पंजाब में हुआ था। इनके दादा जूनियर कमीशन्ड अधिकारी थे, जबकि इनके पिता जोगिंदर सिंह बंगाल सैपर्स में सूबेदार मेजर के रूप में

गुरुदासपुर की होटल मैनेजमेंट में बीएससी की डिग्री प्राप्त की और वर्ष 2009 में आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कोलकाता से स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की, जहां से उन्होंने एमबीए की उपाधि प्राप्त की। सैनिक साथी उपाधि प्राप्त करने के बाद इन्होंने कारपोरेट क्षेत्र में नौकरी की। बाद में उसे त्याग कर एक जेंटलमैन कैडेट के रूप में अधिकारी का प्रशिक्षण अधिकारी में ये अकादमी में शामिल हो गए और 19 मार्च 2011 को सेना आयुध कोर में इन्हें कमीशन प्राप्त हुआ।

सैनिकों के लिए कार्यक्रम आप सुन रहे हैं FM 100.5 पे गहस पर आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से। सैनिक साथियों, इस प्रकार से एक जेंटलमैन कैडेट के रूप में लेफ्टिनेंट नवदीप सिंह अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी में शामिल हो गए। 19 मार्च 2011 को सेना आयुध कोर में इन्हें कमीशन प्राप्त हुआ। लेफ्टिनेंट नवदीप सिंह की पहली तैनाती जम्मू कश्मीर के मराठा लाइट इन्फेंट्री में इन्हें तैनात किया गया, पर 20 अगस्त 2011 को उत्तर कश्मीर के गुरे सेक्टर में 17 सशस्त्र आतंकवादियों को मार गिराने या उन्हें पकड़ने की योजना बनाई गई और उसका नेतृत्व किया था लेफ्टिनेंट नवदीप सिंह ने। उन्होंने आतंकवादियों के लिए घात लगाकर हमला करने की योजना बनाई और टीम को आदेश दिया कि उनके द्वारा गोली चलाने से पहले कोई गोली न चलाए, और यही कारण रहा कि आतंकवादियों के मात्र कुछ मीटर दूर आने तक इंतजाम करने के बाद उन्होंने हमले से पहले घुसपैठियों को घेर लिया और हमले से पहले उन्होंने खुद को सबसे कम सुरक्षा वाले स्थान पर और टीम को पीछे तैनात कर दिया।

लेकिन सैनिक साथियों जैसे ही ये घायल सैनिक को ले जाने की कोशिश कर रहे थे, इसी दौरान इनके सिर में गोली लगी और एक घायल अवस्था में ही अचेत हो गई। पर इस अवस्था में भी इन्होंने हिम्मत कर तीन आतंकवादियों को मार गिराया और चौथे आतंकवादी को मार गिरा रहे थे। ऐसे में ही इनके साथी सुरक्षित स्थान पर ही ले जाने की तैयारी कर रहे थे, तभी ये देश के लिए शहीद हो गए। सैनिक साथियों लेफ्टिनेंट नवदीप सिंह की अदम्य साहस, कर्तव्य परायणता और देशभक्ति के लिए भारत सरकार द्वारा इन्हें मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। सलाम करते हैं हम लेफ्टिनेंट नवदीप सिंह को।

सैनिक साथियों, इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम सैनिकों के लिए यहीं पर संपन्न करने की हमें दीजिए अनुमति। जय हिंद।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सैनिकों के लिए FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। 3 बजे हैं, आइए सुनते हैं FM न्यूज़ हेडलाइंस।
1: ये आकाशवाणी देहरादून है, अब आप आशुतोष उनियाल से सुनेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में भारतीय जनसंघ के संस्थापक और प्रखर राष्ट्रवादी चिंतक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर भावपूर्ण स्मरण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उनका त्याग, संघर्ष और राष्ट्र सेवा का आदर्श भावी पीढ़ियों को सदैव प्रेरित करता रहेगा। मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में सचिवालय में उत्तराखंड रोपवे डेवलपमेंट लिमिटेड की निदेशक मंडल की बैठक हुई। बैठक में केदारनाथ और हेमकुंड साहिब रोपवे परियोजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए विभिन्न प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने काठगोदाम में लैंड फ्रॉड कमेटी की बैठक ली। बैठक में भूमि धोखाधड़ी से जुड़े कुल 77 मामलों पर विस्तार से चर्चा की गई। आयुक्त ने 30 मामलों में मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए। आगामी कांवड़ यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से पौड़ी की जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में नीलकंठ महादेव मंदिर क्षेत्र, यात्रा मार्गों, पार्किंग स्थलों और विभिन्न विभागों द्वारा की जा रही तैयारियों की समीक्षा की गई। पुलिस महानिरीक्षक सुनील कुमार मीणा ने 31वीं वाहिनी PAC रुद्रपुर में 3 दिवसीय पुलिस हैंडबॉल और बास्केटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। प्रतियोगिता में चंपावत, पिथौरागढ़ और उधम सिंह नगर सहित राज्य के 9 जिलों के 176 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। रुद्रप्रयाग जिले में ऊखीमठ ब्लॉक के मक्कूमठ ग्राम पंचायत में आयोजित 14 दिवसीय रिंगाल व बांस शिल्प प्रशिक्षण कार्यक्रम में ग्रामीणों को विभिन्न उत्पाद बनाना सिखाया जा रहा है। साथ ही उद्यमिता, लागत लाभ, ब्रांडिंग और बैंक ऋण की जानकारी दी जा रही है। चमोली जिले में स्थित हेमकुंड साहिब में एक बार फिर मौसम ने करवट ली। सुबह धाम में हुई हल्की बर्फबारी के बाद चारों ओर बर्फ की सफेद चादर बिछ गई और मौसम विभाग ने आज उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, नैनीताल, देहरादून, टिहरी और पिथौरागढ़ जिलों के कुछ स्थानों पर गर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई। साथ ही इन जिलों में बिजली चमकने और तेज हवाएं चलने का येलो अलर्ट जारी किया। आप सुन रहे थे न्यूज हेडलाइंस।
0: FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। 3:02 हुए हैं, आइए सुनते हैं गाने नए तराने।

यह है कार्यक्रम का पहला गीत नीरजे श्रीधर सुजैन डिमेलो और साथियों की आवाज में, फिल्म का नाम लव आजकल। शब्द हैं इरशाद कामिल की और संगीत प्रीतम का है।

एक बार फिर से आपको सुनवाते हैं इरशाद कामिल का लिखा गीत, विशाल शेखर का संगीत, आवाजें हैं श्रेया घोषाल और नक्श एजाज की, फिल्म का नाम है भारत।

श्रोताओं गाने नए तराने जारी रहेंगे। आप सुन रहे हैं एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का देहरादून केंद्र। 3:10 होने को है। अब थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम पीपल्स पद्मा और आकाशवाणी। ये कार्यक्रम हम दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।

FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। आइए आपको सुनवाते हैं गाने नए तराने।

आप सुन रहे थे सुखविंदर सिंह, सुनिधि चौहान और साथियों को। फिल्म का नाम था बिल्लो, गीत को संगीत दिया था प्रीतम ने। आइए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत, मोहित चौहान की आवाज़ में। फिल्म का नाम है बोल बच्चन, गीत को संगीत दिया है हिमेश रेशमिया ने।

0: सुनो ना।
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे?
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700014242।
0: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।

ये थे सोनू निगम और तुलसी कुमार। फिल्म का नाम था दबंगी टू। गीत को संगीतबद्ध किया था साजिद वाजिद ने। श्रोता सुन रहे गाने रहे तराने आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से FM 100.5 MHz पर। कार्यक्रम का ये अगला गीत फिल्म का नाम है दीवाना। आवाजें हैं कुमार सानू और साधना सरगम की। शब्द हैं समीर की और धुन बनाई है नदीम शरवण ने।

आप सुन रही थी कमाल खान और साथियों को, फिल्म का नाम था डर्टी पिक्चर। गीतकार थी रजत अरोड़ा और संगीतकार थी विशाल शेखर। आइए अब आपको सुनवाते हैं कहानी नई तराने का ये अंतिम गीत। गीतकार हैं मनोज मुंतशिर और संगीतकार अमाल मलिक। आवाज़ है अरमान मलिक की। फिल्म का नाम है एम एस धोनी।

0: आप सुन रही थी अरमान मलिक को, फिल्म का नाम था मैं सिद्धूनी। गीत था मनोज मुंतशिर का और संगीत अमाल मलिक का था। श्रोताओं, इसी के साथ गाने नए तराने का ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न हुआ। हम आपको याद दिला दें, शाम 4:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम एक कलाकार। आज के कलाकार होंगे अभिनेता राज बब्बर। FM 100.5 यानी 100.5 MHz पर हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 4 बजे हैं, आइए सुनते हैं FM न्यूज हेडलाइंस।
1: ये आकाशवाणी देहरादून है, अब आप आशुतोष सुनियाल से सुनेंगे न्यूज हेडलाइंस। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में भारतीय जनसंघ के संस्थापक और प्रखर राष्ट्रवादी चिंतक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर भावपूर्ण स्मरण किया। मानसून सीजन के मद्देनजर राज्य सरकार ने पर्वतीय जिलों के दुर्गम क्षेत्रों में खाद्यान्न आपूर्ति को लेकर तैयारी पूरी की। इसके तहत जुलाई, अगस्त और सितम्बर माह का राशन एक साथ उपलब्ध कराने की विशेष व्यवस्था की गई है। आगामी 1 जुलाई से इस त्रैमासिक राशन का वितरण शुरू कर दिया जाएगा। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने सचिवालय में सचिव समिति की बैठक ली। राज्य के विकास कार्यों को रफ्तार देने के लिए संबंधित अधिकारियों को केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं और वित्तीय प्रबंधन को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। राजधानी देहरादून के पटेल नगर क्षेत्र स्थित लालपुर के पास एक सिटी बस की चपेट में आने से 6 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने बस चालक को हिरासत में लिया है और मामले की जांच की जा रही है। पौड़ी की जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक की। प्रतिनिधियों से विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के सफल संचालन में सहयोग की अपेक्षा की। साथ ही अभियान को समयबद्ध और पारदर्शी ढंग से पूरा करने के संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। पुलिस महानिरीक्षक सुनील कुमार मीणा ने 31वीं वाहिनी PAC रुद्रपुर में 3 दिवसीय पुलिस हैंडबॉल और बास्केटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। प्रतियोगिता में चंपावत, पिथौरागढ़ और उधमसिंह नगर सहित राज्य के 9 जिलों के 176 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। रुद्रप्रयाग जिले में ऊखीमठ ब्लॉक के मकुमठ ग्राम पंचायत में आयोजित 14 दिवसीय रिंगाल व बांस शिल्प प्रशिक्षण कार्यक्रम में ग्रामीणों को विभिन्न उत्पाद बनाना सिखाया जा रहा है। साथ ही उद्यमिता, लागत लाभ, ब्रांडिंग और बैंक ऋण की जानकारी दी जा रही है। और मौसम विभाग ने आज उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, नैनीताल, देहरादून, टिहरी और पिथौरागढ़ जिलों के कुछ स्थानों पर गर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई। आप सुन रहे थे न्यूज हेडलाइंस।
0: FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। शाम के 4:02 हुए हैं। लीजिए शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत सुनिए पंडित शिवराम का हारमोनियम पर बजाय राग पूरिया धनाश्री।

अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत पंडित शिवराम का हारमोनियम पर बजाय राग पूरिया धनाश्री। यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। 4:10 हुए, थोड़ी ही देर में अब अगला कार्यक्रम दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।

0: मुकदमा ऑन आकाशवाणी।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है हमारा विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। इसके अंतर्गत सुनिए साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार के लिए चुनी गई प्रोफेसर मंगला कपूर के साथ हुई विशेष बातचीत, जो बचपन में एसिड अटैक का सामना भी कर चुकी हैं। इस संवाद में उन्होंने अपने जीवन संघर्ष, करियर और सामने आने वाली चुनौतियों पर चर्चा की। चर्चा का संचालन कर रहे हैं मनीष सिंह।
2: नमस्कार, मैं मनीष सिंह वाराणसी में हूँ और हमारे सामने हैं मंगला कपूर जी। आइए जानते हैं इनकी जिंदगी के बारे में। सबसे पहले आप ये बताइए कि आपका बचपन कैसा रहा और कैसा बीता ये बचपन?
3: बचपन क्या होता है मैं जानती नहीं, क्योंकि 12 वर्ष की अवस्था थी तब मुझ पे एसिड अटैक किया गया, तो उसके बाद का जो जीवन है सारा हॉस्पिटल में ही बीता। तो बचपन नाम की जो चीज होती, जो खेलते कूदते

0: बिताते हैं लोग, वैसा कुछ तो मेरे साथ गुजरा नहीं। फिर लगातार हॉस्पिटल में थी, ऑपरेशन होते गए शरीर के जगह जगह के, यहाँ भी हुए कुछ, पटना में हुए, तो कुल 36-37 ऑपरेशन मेरे हुए।
1: किस तरीके से एसिड अटैक के बाद आपकी जिंदगी बदल गई?
0: ऐसा है, एसिड अटैक के बाद तो ऐसा ही नहीं था कि शायद जी पाऊंगी, लेकिन पहले तो जीने के लिए संघर्ष करना पड़ा। जब जी गई थी तो फिर उसमें परिवार वालों की मेहनत, माता पिता का पूरा सहयोग, और ठीक होते होते ही मुझे बहुत समय लग गया। उसके बाद बाहर निकलना या समाज में उठना बैठना, मैं तो खैर टूट ही गई थी। सामाजिक, शारीरिक, आर्थिक, मानसिक, हर तरह से हम लोग पूरा परिवार डिस्टर्ब था। तो वो यात्रा बड़ी दुखद रही और बहुत संघर्ष भरी रही।
1: किस तरीके से, कौन सी ऐसी शक्ति थी, कौन सी ऐसी हिम्मत थी कि आपने फिर से सरवाइव किया?
0: देखिए, पारिवारिक जो परिवेश हमारा रहा है वो आध्यात्मिक रहा है, और शक्ति की बात तक देखिए, छोटी बच्ची में या यंग हो रही थी उस समय तक इतनी कोई शक्ति तो अंदर आती नहीं है। पढ़ने लिखने की उम्र में तो मैं बेड पे पड़ गई, और जब बेड पे पड़ गई तो ये जरूर है कि मुझे बचाने का, उठ खड़ा करने का श्रेय मेरे माता पिता को जाता है। तो जब मैं ठीक हुई, घर में बैठी, तो मेरे पिताजी को हमेशा ही चिंता रहती थी कि बच तो गई है लेकिन जीवन कैसे होगा, जीवन कैसे चलेगा। पढ़ना लिखना भी छूट ही गया था उसकी वजह से, तो वो बराबर प्रेरित करते रहे कि मतलब बेटा तुम्हें कुछ करना है, फिर से पढ़ाई चालू करो। और संगीत में बचपन से बहुत रुचि रही, तो उनको ये लगा कि ना वो संगीत ही सिखाए ताकि इसका मन भी उसमें उलझा रहे और कुछ कर सके उसमें। तो उन्होंने म्यूजिक स्कूल में मुझे डलवा दिया था, फिर वहां मैंने संगीत सीखना शुरू किया, और फिर तब लोगों का सामना करना शुरू किया, नहीं तो मैं तो बिल्कुल निराश हताश से घर के कोने में बंद हो गई थी। और ये जो उम्र बढ़ रही थी, डिप्रेशन टाइप का हो रहा था मुझे कि ये तो बड़ा हादसा हो गया, मैं कैसे सरवाइव कर पाऊंगी आगे। तो पिताजी हमेशा हिम्मत दिलाते थे, फिर मैंने राह पकड़ी संगीत की।
1: संगीत की दुनिया में आने का मन में कैसे ख्याल आया और क्या मिला संगीत से?
0: ऐसा है, मेरे पिताजी सितार बजाते थे, तो उनको संगीत बहुत पसंद था, और मेरा गला वाकई बचपन से बहुत अच्छा था। तो बड़े बड़े संगीतज्ञ भी जो पिताजी के दोस्त थे घर पे आया करते थे, तो मेरा गला अच्छा था तो कभी कुछ बंदेश, कभी कुछ सिखा जाते थे। तो सांगीतिक माहौल जो है वो पिताजी से ही मिला, और उन्होंने ही ये सजेस्ट किया कि इसको म्यूजिक में डालना चाहिए, ये सोच के नहीं ये कभी मेरा प्रोफेशन बन जाएगा। यहाँ कहीं ना कहीं उलझी रहे, कुछ करती रहे, उसी बहाने लोगों का सामना करना सीखे, लोगों से बात करना सीखे। तो फिर संगीत को पकड़ा उसके बाद, फिर उसी पे चलती गई। फिर BHU में मेरा एडमिशन हुआ, वहां से PhD तक की पढ़ाई मैंने की, और स्टेज प्रोग्राम फिर मैं करने लगी, जहाँ मुझे काफी मान सम्मान मिला। मेरी आवाज को लोगों ने हाथों हाथ लिया, मुझे काशी की लता का सम्मान भी मिला है। तो इस तरह करके वो यात्रा वैसे शुरू हुई। और विशेष बात बताने लायक यही है कि जब मैं PhD करने के बाद जब नौकरी ढूंढने लगी, तो फिर BHU में मुझे नौकरी मिल गई, और फिर वहां अध्यापन का कार्य मैंने शुरू किया। तो बच्चों के साथ रम गई, फिर अच्छी तरह अपने कर्म को निभाती रही, सिखाना बच्चों के साथ। फिर मैं लेक्चरर के पद पे हुई थी, फिर लीडर प्रोफेसर तक की जर्नी मैंने वहाँ।
1: क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या अनुभव लगा BHU में शिक्षक के दौरान आप?
0: BHU ने तो मुझे बहुत प्रेम दिया, जब मैं सीख रही थी, मेरे गुरुजनों का बहुत आशीर्वाद था, वो मुझे मतलब बराबर प्रेरित करते रहते थे आगे बढ़ने। उन लोगों से भी बहुत स्नेह मिला कि नहीं मतलब बहुत अच्छा गाती है, तो तुम्हें तो कहीं ना कहीं अच्छी जगह पहुंच ही जाओगी। तो वाकई आवाज अच्छी थी, जिसकी वजह से मैं आगे बढ़ती चली गई। और मेरा बच्चों के साथ जो एक्सपीरियंस है, मैंने 15 बच्चों को PhD भी कराई मेरे अंडर में, तो लोग मुझे कभी, उन्होंने न टीचर मुझे समझा न मैंने समझा कि स्टूडेंट है, अपने बच्चों की तरफ वो समझते, और वो लोग भी मातृवत और बहुत अच्छे, मुझे माँ ही कहते थे अभी तक। हालांकि सभी बच्चे कहीं ना कहीं अच्छी जगह स्थापित हो गए हैं, लेकिन तो प्यार करते हैं उनका, फोन वगैरह आता रहता, आते हैं तो मिलने भी आते हैं, तो वो चल रहा है। जो मैं आपको बता रही हूँ कि बचपन से जो कहानी मेरी शुरू हुई, तो उन संघर्षों को मैंने सीरत के अंतर्गत ये चाहे ताकि और लोगों को भी प्रेरणा मिले, जो थोड़ी सी नाकामयाबी से संघर्ष करने से चुराते हैं जी, नहीं करना चाहते हैं, तो उन लोगों को एक प्रेरणा मिले। सीरत मैंने इसीलिए लिखी, और उसको लिखवाने के पीछे भी एक महिला हमारे कॉलेज में हिंदी की प्रोफेसर थी, उन्होंने जब मेरे बारे में थोड़ा सा सुना तो उन्होंने कहा कि ममता अपनी कहानी को लिख डालो, ये और लोगों को बहुत प्रेरणा देगी। तो मैंने लिखना शुरू किया, और फिर इस तरह सीरत सामने आई। तो फिर बॉम्बे तक जब उसकी पहुंची, तो फिर वहां से डायरेक्टर आए थे, मेरे ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनी। उसके बाद फिर पूरी फिल्म जो है मराठी में बनी और महाराष्ट्र में वो प्रदर्शित भी की गई, देखने को मिलेगी सभी को।
1: पद्मश्री सम्मान क्या खास मायने है इस सम्मान के आपकी जिंदगी में?
0: अरे वही बहुत पहले रखता है कि मतलब सोच नहीं सकती।

0: पहले भी मुझे देखिए स्टेट लेवल के भी अवार्ड मिले हैं, अच्छे अच्छे अवार्ड काफी मिले हैं। मेरा काम देख करके, मेरी लगन और मेरी निष्ठा, यानी 36 ऑपरेशन के बाद शरीर टूट जाता है, मेरी हड्डी इतनी कमजोर हो गई, पैर सा भी कहीं गिर जाती हूँ तो टूट जाती है, लेकिन वो भी झेला। सब झेलते हुए भी मैं अपने कर्म में लगी हुई हूँ, और अभी तक रिटायर हो गई हूँ लेकिन मैंने कर्म नहीं छोड़ा है। मैं अभी भी फील्ड वर्क करती हूँ, दिव्यांगों के साथ जुड़ के काम करती हूँ, और भी संस्थाओं से जुड़ी हूँ, बैठी रही हूँ, कुछ न कुछ करती रहती हूँ। और छठी पुस्तक का लेखन अभी आधे से ज्यादा हो चुका है, फिर वो भी जल्दी ही आ जाएगी।
1: शारीरिक रूप से चुनौतियों का सामना करने वाले लोगों के लिए कौन सा संदेश देना चाहेंगे?
0: शरीर बहुत मायने नहीं रखता, मैंने अच्छे अच्छे लोगों को दिखा है। एक उम्र के बाद एक विकृति सभी की चेहरे पर आ जाती है, फिर वो चार्म नहीं रह जाता है, तो जो उम्र के साथ साथ बढ़ना ही है, बाद में बहुत खूबसूरती नहीं रह जाती है, तो शरीर खत्म हो जाएगा, जल जाएगा, लेकिन आपका कर्म जो है वो हमेशा जीवित रहेगा। जो बहुत खूबसूरत रह जाने वाले लोग थे, लेकिन अंत में देखिए लोग कैसे लाचार हो जाते हैं, तो वो तो देखिए शरीर का धर्म है, होगा ही। लेकिन मेरे साथ विशेष इसलिए था कि मेरे ऊपर एसिड अटैक से मेरी नाक गल के निकल गई, कान खराब हो गया, चेहरा विकृत हो गया, वो ये विशेष रूप से जो विकृति आई जो कि बचपन से ही शुरू हो गई। मुझे संबोधन मिलते थे इसका मुंह कैसा है, और उस समय मैं नील थी, मेरे पास कुछ था नहीं, लेकिन इतनी उम्र बीतने के बाद ये समझ में आया कि आपके अंदर जो अंदर की जो खूबसूरती है, यानी आपके अंदर कोई विशेष बात है, आपने किसी फील्ड में कुछ विशेष अलग हटके किया है, तो उसको दुनिया सम्मान से देखती है और देखती रहेगी। कर्म लेकिन अच्छा करते रहे। कितने सारे एसिड अटैक विक्टिम तो बहुत सारे लोग काफी हुए। बस यही कहना चाहूंगी कि देखिए अपनी जो इच्छा शक्ति है, अपना जो विल पावर है, क्षति हो गई कहीं से कोई बात नहीं, लेकिन आपके अंदर की जो प्रतिभा है उसको कोई नहीं जला सकता। आपके अंदर कोई ना कोई प्रतिभा तो होगी किसी क्षेत्र में, अगर आप जिंदा हैं तो फिर से लड़िए समाज में एक अच्छा स्थान प्राप्त करने के लिए, क्योंकि ये लड़ाई है भाई। और आज तो बहुत सारे विकल्प हैं, आप इस क्षेत्र में कंप्यूटर के चले जाइए तो संगीत में, म्यूजिक में भी, इतने सारे और परफॉर्मेंस आप देख रहे हैं, इतने रियलिटी शोज आते हैं, तो जिसमें जो भी प्रतिभा हो वो आगे बढ़ के उसको अपना सवारे, और वही एक रास्ता पकड़ के हिम्मत नहीं हारे, उस पे चलता रहे जब तक जीवित, लोगों के लिए प्रेरणा बने।
1: क्या बाकी रहेंगे आप कुछ करने के लिए कला के क्षेत्र में?
0: कोई भी क्षेत्र हो, मुझे ये नहीं लगता कर्म के लिए कोई उम्र नहीं होती है, और आदमी जब तक जीता है तब तक कर्म करते रहना चाहिए, जब तक शरीर चल रहा है। अगर आप शरीर को चलाते रह रहे हैं तो उम्र कोई मायने नहीं रखती है, अंतिम समय तक लड़ना चाहिए। और जो भी उससे अच्छे से अच्छा हो पाएगा वो करना चाहूंगी, अभी भी कर रही हूँ, आगे भी जब तक है जिंदगी, जब तक मैं सक्षम हूँ चलने फिरने में, मैं बिल्कुल करूंगी।
1: आकाशवाणी से बात करने के आपका बहुत बहुत आभार,
0: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे हमारा विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी, जिसके अंतर्गत आपने सुना साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार के लिए चुनी गई प्रोफेसर मंगला कपूर के साथ हुई विशेष बातचीत। चर्चा का संचालन कर रहे थे मनीष सिंह। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
3: Welcome to Employment News, your ultimate
4: FM 100.5 MHz पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का देहरादून केंद्र। शाम के 4:20 हुए हैं। लीजिए शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत सुनिए पंडित सियाराम का ध्रुपद गायन। आप प्रस्तुत कर रहे हैं राग शंकरा।

अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत पंडित सियाराम का ध्रुपद गायन। आप प्रस्तुत कर रहे थे राग शंकरा। FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। शाम के 4:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम एक कलाकार। श्रोताओं, कार्यक्रम एक कलाकार में आप सभी का स्वागत है। हमारे आज के कलाकार हैं फिल्म अभिनेता, राजनेता और सामाजिक समाजसेवी राज बब्बर। आज के इस कार्यक्रम में हम बातें करेंगे इनके जीवन से जुड़ी बातों पर, साथ ही सुनवाएंगे आपको इन पर फिल्माए गए फिल्मी गीत। कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं इन पर फिल्माए गए इस गीत के साथ।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम में कलाकार। आज के कलाकार हैं अभिनेता राज बब्बर। श्रोताओं, अभिनेता राज बब्बर का जन्म आज ही के दिन 23 जून 1952 को उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के टुंडला गांव में हुआ था। एक मध्यम वर्गीय परिवार से हैं। इनकी प्रारंभिक शिक्षा आगरा में ही संपन्न हुई। बचपन से इनका रुझान रंगमंच और नाटकों की ओर था और अभिनय के प्रति इसी जुनून ने इन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में दाखिला लिया और यहाँ से स्नातक करने के बाद उन्होंने अपने सपनों को पूरा करने के लिए मुंबई का रुख किया और जहाँ पर इन्होंने एक अपना संघर्षमय शुरुआती दौर देखा। इनके बारे में और भी चर्चा करेंगे, सुनवाते हैं इन पर फिल्माया गया कार्यक्रम का ये अगला गीत।

0: अब हमारे श्रोता जहां, हम भी वहां। आप उत्तराखंड के किसी भी कोने में क्यों न हो, आप हमें सुन सकते हैं। देश विदेश में भी आप हमारे साथ होंगे। 100.5 AIR FM देहरादून पर गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें न्यूज ऑन AIR प्रसार भारती ऑफिशियल ऐप AIR न्यूज प्लस लाइव और AIR देहरादून सेलेक्ट करें और सुने हर पल हर जगह आकाशवाणी देहरादून।
1: श्रोता सुन रहे कार्यक्रम में कलाकार आज के कलाकार हैं अभिनेता राज बब्बर। श्रोताओं, अभिनेता राज बब्बर ने 1977 की फिल्म किस्सा कुर्सिका में अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद इन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया, लेकिन इन्हें वास्तविक पहचान मिली सन 1980 में आई फिल्म इंसान का इंसाफ का तराजू से। और श्रोताओं, ये फिल्म में इन्होंने एक नकारात्मक किरदार की भूमिका निभाई थी, जिसे दर्शकों द्वारा खूब सराहा गया। और इसके बाद श्रोताओं, राज बब्बर ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और 1980 और 90 के दशक में इन्होंने कई ऐसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में अभिनय किया है जिन्हें खूब सराहना मिली है। उनमें सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध फिल्में रही हैं हम 5, उमराव जान, प्रेम गीत, निकाहा, आज की आवाज़, मजदूर, दिलवाले आदि। श्रोताओं, निकाहा और आज की आवाज़ ऐसी फिल्में रही हैं जिसमें उनकी अभिनय को एक अलग मुकाम पर पहुंचाया है। आइए अब आपको सुनवाते हैं इनके द्वारा अभिनीत फिल्म से कार्यक्रम का ये अगला गीत।

0: सुनो ना।
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
0: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
2: श्रोताओं, अभिनेता राज बब्बर ने हिंदी फिल्मों के अलावा पंजाबी फिल्मों में भी अभिनय किया है, जिनमें मरहीदा दीवा, लौंगदा लश्कारा जैसी कलात्मक फिल्मों में अभिनय किया है। साथ ही इन्होंने और भी अनेक पंजाबी फिल्मों में अभिनय किया है। साथ ही इन्होंने अपने भाई के साथ मिलकर बब्बर्स फिल्म प्राइवेट लिमिटेड के नाम से एक प्रोडक्शन कंपनी भी शुरू की है। श्रोताओं, अभिनेता राज बब्बर एक अभिनेता के साथ साथ एक अच्छे राजनेता भी रहे हैं, साथ ही सामाजिक सेवा के कार्यों से भी जुड़े हैं, जिन्होंने नशा मुक्ति, एड्स की रोकथाम और मानसिक रूप से अक्षम लोगों की सेवा के लिए अनेक कार्य किए हैं। श्रोताओं, इस प्रकार राज बब्बर बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं, जो आज भी फिल्मों में सक्रिय हैं। आज जन्मदिन के अवसर पर इन्हें ढेरों बधाई और शुभकामनाएं देते हुए सुनवाते हैं इनकी फिल्म से कार्यक्रम में ये अंतिम गीत। जगजीत सिंह की आवाज़ में फिल्म का नाम है प्रेम गीत।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक कलाकार। आज के कलाकार थे अभिनेता राज बब्बर। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है FM 100.5 MHz पर।
1: को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग
0: ये आकाशवाणी देहरादून है FM 100.5 MHz पर। अब आप दिल्ली केंद्र से समाचार सुनेंगे।
3: ये राष्ट्रपति भवन चले।
4: नमस्कार, आकाशवाणी के इस विशेष प्रसारण में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। कुछ ही क्षणों में भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से विभूषित होने वाली विशिष्ट

0: उपलब्धियों से देश का गौरव बढ़ाया है। 2026 के लिए कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई थी, जिनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। प्रथम नागरिक समारोह जो 25 मई को आयोजित किया गया था, आज इसका दूसरा समारोह है, जिसमें 67 विशिष्ट व्यक्तियों को सम्मानित किया जाएगा, जिसमें 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 57 पद्मश्री शामिल हैं। पुरस्कार प्राप्त करने वालों में 19 महिलाएं हैं और सूची में विदेशी एनआरआई, पीआईओ, ओसीआई श्रेणी के 6 व्यक्ति और 16 मरणोपरांत पुरस्कार प्राप्तकर्ता भी शामिल हैं। श्रोताओं, राष्ट्रपति भवन का गणतंत्र मंडप आज अपनी पूरी भव्यता के साथ सुसज्जित है। भारतीय कला, स्थापत्य और लोकतांत्रिक परंपराओं का अद्भुत संगम इस मंडप में दिखाई देता है। भव्य झूमर, आकर्षक सज्जा, गरिमामय वातावरण और राष्ट्र की सर्वोच्च संवैधानिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों की उपस्थिति समारोह की प्रतिष्ठा को और बढ़ा रही है। बहुत से गणमान्य व्यक्ति यहाँ मौजूद हैं, अपना अपना स्थान ले चुके हैं, जिसमें हम देख पा रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह, साथ ही साथ और मंत्री परिषद के सदस्य, संसद सदस्य, न्यायपालिका के वरिष्ठ अधिकारी, सशस्त्र बलों के प्रमुख तथा विभिन्न क्षेत्रों की प्रतिष्ठित हस्तियां और गणमान्य अतिथि यहाँ उपस्थित हैं। और साथ ही गौरव के साथ उपस्थित है वो पद्म पुरस्कार विजेता और उनके परिवार के सदस्य, जिन्हें आज देश के माननीय राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया जाएगा। और अब हम देख रहे हैं गणतंत्र मंडप में आगमन हो रहा है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, और अपने स्थान की तरफ बढ़ते हुए प्रधानमंत्री सबको अभिवादन स्वीकार करते हुए, सबको नमस्कार करते हुए और अपनी जगह पर बैठते हुए, सभी लोग उनके साथ खड़े हो चुके थे और अब सब अपने स्थान पर वापस बैठ चुके हैं। नीतीश,
1: a warm welcome to all the listeners of Akashvani from Ganatantra Mandap, Rashtrapati Bhavan. In a short while from now, Honorable President Draupadi Murmu will confer the Padma Awards 2026 at the second civil investiture ceremony of this year. The President will confer 65 Padma Awards, including 2 Padma Vibhushan, 7 Padma Bhushan and 56 Padma Shri. Instituted in 1954, these awards are announced on the occasion of the Republic Day every year. The award seeks to recognize work of distinguished and is of work of distinction, and it is given for distinguished and exceptional achievements in various fields and disciplines, including art, literature, education, sports, medicine, social work, science and engineering, public affairs and ट्रेड एंड इंडस्ट्री।
0: और नीतीश, हम देख पा रहे हैं यहाँ पर सभी लोग अपने अपने स्थान से उठ गए हैं, क्योंकि माननीय उपराष्ट्रपति का आगमन हो रहा है। सीपी राधाकृष्णन अभी यहाँ आगमन हुआ है उनका गणतंत्र मंडप में, सभी को नमस्कार करते हुए।
1: Well, the first citizen of the nation, Honorable President of India, Shrimati Draupadi Murmu, will be honoring the most distinguished Indians for their exemplary work in various fields. What a proud woman, Shalini, for any citizen when his or her work is recognized by the nation. Proud are the family members of the recipients who are seated here to cheer their family members when the nation is giving to reward their dear ones. A day like this comes once in a lifetime.
0: इंडीड, बिल्कुल सही कहा नीतीश, यही वो क्षण होता है जब वर्षों की साधना, सेवा और उपलब्धियों को राष्ट्र की सर्वोच्च मान्यता प्राप्त होती है। ये सम्मान ना केवल उनकी व्यक्तिगत उपलब्धि का प्रतीक है, बल्कि उस क्षेत्र विशेष के महत्व और उसकी राष्ट्रीय स्वीकार्यता को भी का भी परिचायक है। श्रोताओं, पद्म पुरस्कारों की विशेषता ये है कि इनमें भारत के महानगरों से लेकर दूरस्थ गांवों तक के वो लोग शामिल होते हैं, जिन्होंने बिना किसी प्रचार प्रसार के समाज सेवा, लोक कला, जनजातीय संस्कृति, शिक्षा, चिकित्सा और मानवीय कल्याण के क्षेत्र में असाधारण कार्य किए हैं। यही कारण है कि पद्म पुरस्कार भारत की विविधता और समावेशी विकास की भावना का जीवंत प्रतिबिंब माने जाते हैं। हर पुरस्कार के साथ एक प्रेरक जीवन यात्रा जुड़ी होती है नीतीश। इन सम्मानित व्यक्तियों ने अपने अथक परिश्रम, नवाचार, सेवा और प्रतिबद्धता से देश को नई ऊर्जा प्रदान की है। आज का ये समारोह भारत की उस भावना का उत्सव है, जिसमें उत्कृष्टता को पहचान और सम्मान दिया जाता है।
1: Well, Padma Awards, one of the highest civilian awards of the country, are conferred in three categories, namely Padma Vibhushan, Padma Bhushan and Padma Shri. have also given in various disciplines and the fields of activities that include art, social work, public affairs, science and engineering, trade and industry, medicine, literature and education, sports, civil service, etc. Padma Vibhushan is awarded for exceptional and distinguished service, Padma Bhushan for distinguished service of high order, and Padma Shri for distinguished service in any field. The awards are announced on the occasion of Republic Day every year. And the big wheelers announced the arrival of Honorable President of India, Shrimati Draupadi Murmu.

ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है, FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। आइए अब सुनते हैं हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष और कल के मुख्य कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण।

शाम 6:30 ये समय रहेगा प्रादेशिक समाचार का। गढ़वाली में प्रादेशिक समाचार आप सुन सकेंगे शाम 6:50 पर और प्रादेशिक समाचार कुमाऊनी में सुनिएगा शाम 7:30 पर। कार्यक्रम कृषि जगत में श्री सोहन लाल से भेंटवार्ता का विषय रहेगा मशरूम की खेती में चुनौतियां। समय याद रखिएगा शाम के 7:00। फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकते हैं शाम 7:40 पर और रात्रि 8:30 पर।

कार्यक्रम सुगम संगीत में रात्रि 8:15 पर आज सुनिएगा डॉक्टर देव प्रसादकर के गाए भजन। विज्ञान पत्रिका, ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे रात्रि 9:30 पर। अब आपको जानकारी देते हैं हमारे केंद्र से कल प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की। कल रात्रि 9:15 पर कार्यक्रम स्पॉटलाइट और रात 9:30 पर कार्यक्रम चर्चा का विषय है। ये दोनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। कार्यक्रम शैल संगीत में प्रातः 7:30 पर आप सुनेंगे माहेश्वरी बिष्ट के गाए कुमाऊनी लोकगीत, और कार्यक्रम लोक संगीत में सुबह 10:35 पर आप सुन सकेंगे शकुंतला रामोला के गाए गढ़वाली लोकगीत। कार्यक्रम जनानों का वास्ता में दोपहर 12:30 पर श्रीमती विजया शर्मा की वार्ता का विषय रहेगा संगीत का क्षेत्र मां महिला।

ये थी जानकारी हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। FM 100.5 MHz पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का देहरादून केंद्र। शाम के 5:10 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम युववाणी।

नमस्कार एंड अ वेरी गुड इवनिंग प्यारे दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने खास कार्यक्रम युववाणी में। दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त और शो की होस्ट अंशिका शर्मा, और अगले कुछ पलों तक हम साथ मिलकर बातों, सोच, संगीत और नए नज़रियों का एक खूबसूरत सफ़र तय करेंगे। उम्मीद है कि आज का ये कार्यक्रम आपके चेहरे पर मुस्कान भी लाएगा और आपको कुछ नया सोचने की प्रेरणा भी देगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम युववाणी। दोस्तों, हर नई सुबह अपने साथ एक नई उम्मीद लेकर आती है और हर नई बात एक नया नजरिया, और इसी के साथ सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत।

0: अरे वाह, पुराना सोना कितना शुद्ध होता था ना दादी।
1: सोना आज भी शुद्ध है, उस पर अगर हॉलमार्क अंकित है।
2: आप भी ध्यान रखें, सोना हमेशा BIS प्रमाणित ज्वेलर से ही लें। बिल अवश्य लें और जांच लें कि बिल पर अंकित और आभूषण पर अंकित शुद्धता समान है। अधिक जानकारी के लिए लॉग इन करें bis.gov.in पर।
3: मेरी योजना कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग उत्तराखंड शासन का अनूठा प्रयास, एक ऐसा दस्तावेज जो सरकार की योजनाओं की जानकारी पहुंचाने के लिए एक सेतु का काम करता है।
4: धामी सरकार की पहल पर पहली बार
5: उत्तराखंड राज्य में स्थापित विभागों, संस्थाओं, आयोगों, संगठनों, मंत्रालयों द्वारा किए जा रहे कार्यों और प्रदान की जा रही सेवाओं से जन सामान्य को अवगत कराने के उद्देश्य से प्रकाशित पुस्तक का नाम है मेरी योजना।
4: मेरी योजना पुस्तक आप डिजिटल रूप से uk.gov.in पर प्राप्त कर सकते हैं।
6: वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम युवानी अंशिका शर्मा के साथ। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम सोने से पहले आखिरी बार किसका चेहरा देखते हैं? बताइए, मम्मी का, पापा का या अपने किसी दोस्त का? नहीं ना। देखिए, ज़्यादातर लोग सोने से पहले अपने मोबाइल की स्क्रीन देखते हैं। और मज़ेदार बताए क्या है, मज़ेदार ये है कि हम कहते हैं कि बस 5 मिनट और, लेकिन वही 5 मिनट कब 1 घंटे में बदल जाता है ना, पता ही नहीं चलता। अच्छा, ज़रा सोचिए, रात के 11 बजे हैं, ठीक है, आपने तय किया कि अब सोना है, लेकिन तभी आप फ़ोन उठाते हैं, एक रील चलाई, दूसरी चलाई और स्क्रॉल करते करते करते फिर किसी दोस्त का मैसेज आता है, फिर एक वीडियो आ जाती है और देखते देखते घड़ी में 1 बज जाता है। अब सोचिए, 11 से 1 बजे तक का समय हमारा स्क्रीन में ही चला गया। और दोस्तों, ऐसा सिर्फ आपके साथ नहीं बल्कि हम जैसे लाखों लोगों के साथ यही होता है। लेकिन सवाल ये है दोस्तों कि मोबाइल आखिर हमारी नींद क्यों ख़राब करता है? देखिए, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मोबाइल से निकलने वाली ब्लू लाइट, ये हमारे दिमाग को ऐसा संकेत देती है कि अभी दिन है, सोने का टाइम नहीं। ऐसे में शरीर मेलाटोनिन नाम का वो हार्मोन कम बनाने लगता है जो हमें नींद दिलाने में मदद करता है। और नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये होता है दोस्तों कि नींद देर से आती है, सुबह उठने में परेशानी होती है, दिन भर थकान रहती है और पढ़ाई या किसी काम में ध्यान कम लगता है और कई बार तो मूड भी चिड़चिड़ा हो जाता है। लेकिन दोस्तों, समस्याएं हैं लेकिन समस्या का समाधान भी है। अब देखिए, कोशिश कीजिए कि सोने से कम 30 से 60 मिनट पहले मोबाइल को अलविदा कह दें। अगर ज़रूरी हो तो फ़ोन में नाइट मोड या ब्लू लाइट फिल्टर का इस्तेमाल करें और सोने से पहले सोशल मीडिया की जगह कोई किताब पढ़ें, हल्का संगीत सुने या कुछ मिनट गहरी सांस लेने की एक्सरसाइज करें। और यकीन मानिए दोस्तों, आपकी नींद पहले से कहीं बेहतर हो सकती है। आखिर में दोस्तों, बस इतना ही कहना चाहूँगी कि मोबाइल एक बेहतरीन साधन है, लेकिन जब वही हमारी नींद, सेहत और सुकून छीनने लगे तो थोड़ा रुककर सोचना ज़रूरी है। याद रखिए दोस्तों, मैसेज का जवाब सुबह भी दिया जा सकता है लेकिन अच्छी नींद का कोई रिप्लेसमेंट नहीं होता। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये बात पसंद आई होगी और अभी इंजॉय कीजिए कार्यक्रम की अगली पेशकश।

0: यार बीबीए एमबीए तो करना है, लेकिन अच्छी पढ़ाई और कम फीस दोनों साथ कहाँ मिलते हैं?
1: मिलते हैं ना इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव मैनेजमेंट देहरादून में, केंद्र सरकार के सहकारिता मंत्रालय के अधीन संस्थान।
0: अच्छा, मतलब गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं?
1: बिल्कुल नहीं, उच्च गुणवत्ता की बीबीए और एमबीए शिक्षा किफायती फीस पर।
0: और परिणाम?
1: यूटीयू 2025 का एमबीए सिल्वर मेडलिस्ट भी इसी संस्थान से है।
0: वाह, आईसीएम देहरादून, 6 ओल्ड मसूरी रोड, राजपुर, देहरादून।
2: दोस्तों, कभी कभी किसी महिला की पहचान उसके अपने नाम से नहीं बल्कि एक शब्द से कर दी जाती है, विधवा। लेकिन क्या किसी एक घटना से उसकी पूरी पहचान बदल जानी चाहिए? दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम युववाणी मेरे यानी अंशिका के साथ। आज 23 जून यानी अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस के अवसर पर बात करेंगे उन महिलाओं की जो जीवन की सबसे बड़ी व्यक्तिगत क्षति के बाद भी साहस के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करती है। दोस्तों, जब किसी महिला के जीवन साथी का निधन होता है तो वे केवल अपना साथी नहीं खोती बल्कि कई बार उसे सामाजिक, आर्थिक और भावनात्मक चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है। और दुर्भाग्य से आज भी समाज के कई हिस्सों में विधवाओं को अलग नज़र से देखा जाता है। कई बार उन्हें शुभ कार्यों से दूर रखा जाता है, उनके पहनावे, व्यवहार और जीवन के फैसलों पर अनावश्यक रोक टोक की जाती है। जबकि सच्चाई ये है कि किसी व्यक्ति का सम्मान उसकी वैवाहिक स्थिति से नहीं बल्कि उसके व्यक्तित्व और अधिकारों से तय होना चाहिए। और दोस्तों, इसी सोच को बदलने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2011 में 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत की। इसका उद्देश्य है लोगों को जागरूक करना और ये सुनिश्चित करना कि हर विधवा महिला को सम्मान, समान अवसर और अपने जीवन के फैसले लेने का अधिकार मिले। दोस्तों, हमें ये समझना होगा कि सहानुभूति और दया में फ़र्क होता है। विधवा महिलाओं को दया नहीं बल्कि सम्मान, सहयोग और बराबरी का अवसर चाहिए। अगर आपके परिवार, पड़ोस या समाज में कोई ऐसी महिला है तो उसे ये एहसास दिलाइए कि वो अकेली नहीं है। एक अपनापन भरा व्यवहार, सम्मानजनक शब्द और थोड़ा सा सहयोग भी किसी के जीवन में उम्मीद की नई किरण बन सकता है। आइए इस अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस पर हम एक संकल्प लें दोस्तों कि किसी महिला की पहचान उसके वैवाहिक दर्जे से नहीं बल्कि उसके सपनों, उसकी मेहनत और उसके व्यक्तित्व से करेंगे। क्योंकि हर महिला को अधिकार है सम्मान से जीने का और अपने फैसले लेने का और नए सपने देखने का। सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

0: यार बीबीए एमबीए तो करना है, लेकिन अच्छी पढ़ाई और कम फीस दोनों साथ कहाँ मिलते हैं?
1: मिलते हैं ना इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव मैनेजमेंट देहरादून में, केंद्र सरकार के सहकारिता मंत्रालय के अधीन संस्थान।
0: अच्छा, मतलब गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं?
1: बिल्कुल नहीं, उच्च गुणवत्ता की बीबीए और एमबीए शिक्षा किफायती फीस पर।
0: और परिणाम?
1: यूटीयू 2025 का एमबीए सिल्वर मेडलिस्ट भी इसी संस्थान से है।
0: वाह, आईसीएम देहरादून, 6 ओल्ड मसूरी रोड, राजपुर, देहरादून।
2: दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि आज का युवा एक ही समय में कितनी जिंदगियां जी रहा होता है? एक हाथ में मोबाइल, दूसरे हाथ में लैपटॉप, कानों में ईयरफोन, सामने किताब खुली हुई और दिमाग में करियर, रिश्ते, पैसे, भविष्य, सोशल मीडिया और लोग क्या सोचेंगे, इसके जैसे कई सैकड़ों सवाल है ना। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम सच में मल्टीटास्किंग कर रहे हैं या सिर्फ ओवरथिंकिंग में उलझ गए हैं? दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय की जिससे शायद आज का हर युवा जुड़ा हुआ है। आज का युवा मल्टीटास्कर है या ओवरथिंकर? दोस्तों, आज की

दुनिया तेज है, हम सभी ये बात मानते हैं। हर चीज फास्ट है, फास्ट इंटरनेट, फास्ट डिलीवरी, फास्ट करियर और शायद फास्ट लाइफ। और ऐसे में हर युवा चाहता है कि वो हर काम में आगे रहे, कॉलेज भी, इंटर्नशिप भी, स्किल भी सीखनी है, जिम भी जाना है, दोस्तों के लिए समय भी निकालना है और सोशल मीडिया पर एक्टिव भी रहना है, यानी कि सब चीजें एक साथ। और यहीं से शुरू होती है मल्टी टास्किंग। सुनने में ये अच्छी लगती है, लेकिन क्या हमारा दिमाग सच में एक समय में कई काम बराबर क्षमता से कर सकता है? सोचिए, असल में दोस्तों, हमारा दिमाग एक साथ कई काम नहीं करता, वो बहुत तेजी से एक काम से दूसरे काम पर जाता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं टास्क स्विचिंग। बार बार काम बदलने से ध्यान भटकता है, गलतियां बढ़ती है और मानसिक थकान भी जल्दी महसूस होती है। दोस्तों, अब बात करते हैं ओवर थिंकिंग की। ओवर थिंकिंग का मतलब है किसी बात के बारे में ज़रूरत से ज़्यादा सोचना। जैसे अगर मैं इंटरव्यू में फेल हो गया तो, अगर उसने मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं किया तो, अगर मैं दूसरों जितना सफल नहीं हुआ तो, और धीरे धीरे ये अगर हमारी रातों की नींद और दिन का सुकून दोनों छीन लेते हैं। दोस्तों, सोचने और ज़रूरत से ज़्यादा सोचने में बहुत फ़र्क होता है। दोस्तों, सोचना समाधान ढूंढता है, लेकिन ओवर थिंकिंग अक्सर समस्याओं को और बड़ा बना देती है। और आज सोशल मीडिया भी इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। हम रोज़ किसी को विदेश घूमते देखते हैं, किसी को नई नौकरी मिलते देखते हैं, किसी की लग्जरी लाइफ देखते हैं, तो कई बार हम अपनी ज़िंदगी की तुलना उनसे करने बैठ जाते हैं। लेकिन हम भूल जाते हैं कि सोशल मीडिया अक्सर लोगों की हाईलाइट रील दिखाता है। दोस्तों, पूरी ज़िंदगी नहीं, हर मुस्कुराती तस्वीर के पीछे संघर्ष भी हो सकता है जो कैमरे में दिखाई नहीं देता। और एक और बात दोस्तों, आज का युवा बहुत प्रतिभाशाली है, वो सीखना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, कुछ बड़ा करना चाहता है, लेकिन कभी कभी यही चाहत उसे एक ये महसूस करा देती है कि अगर वो हर समय कुछ प्रोडक्टिव नहीं कर रहा है तो मतलब है कि वो पीछे रह जाएगा। दोस्तों, आराम करना आलस नहीं है, लेकिन अपने लिए समय निकालना भी समय की बर्बादी नहीं होता है। मानसिक स्वास्थ्य भी उतना ही ज़रूरी है जितनी सफलता। तो दोस्तों, आज का युवा कमज़ोर नहीं है, वो सपने भी देखता है, संघर्ष भी करता है और हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश भी करता है। बस ज़रूरत इस बात की है कि हम व्यस्त रहने और बेहतर बनने के बीच का अंतर समझें, सोचने और ओवर थिंकिंग के बीच की सीमा पहचानें। दोस्तों, याद रखिए, जिंदगी कोई रेस नहीं है, हर पल दौड़ते रहना पड़े, कभी कभी रुककर सांस लेना भी आगे बढ़ने का ही हिस्सा होता है। दोस्तों, इसी खूबसूरत थॉट के साथ अभी बढ़ते हैं कार्यक्रम के अगले गीत की ओर।

दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आज के विषय ने आपको कुछ पल रुक कर अपने बारे में सोचने का अवसर जरूर दिया होगा। दोस्तों, जिंदगी में आगे बढ़ना जरूरी है, लेकिन अपनी मानसिक शांति और खुशियों की कीमत पर नहीं। अगर हर समय हम खुद की तुलना दूसरों से करते रहेंगे, हर बात को जरूरत से ज्यादा सोचेंगे और एक साथ सब कुछ पाने की कोशिश करेंगे, तो मंजिल पाने से पहले ही थक जाएंगे। दोस्तों, सफल वो नहीं होता जो सबसे तेज दौड़ता है, बल्कि वो भी सफल होता है जो सही समय पर रुकना, खुद को समझना और फिर एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ना जानता है। इसलिए दोस्तों, खुद पर भरोसा रखिए, अपनी गति से चलिए और ये मत भूलिए कि आपकी सबसे बड़ी प्रतियोगिता किसी और से नहीं, बल्कि कल वाले अपने आप से है। और इन्हीं सकारात्मक विचारों के साथ आइए अभी सुनते हैं कार्यक्रम का ये आखिरी गीत।

दोस्तों, इसी के साथ आज का कार्यक्रम युववाणी यहीं पर संपन्न होता है। दोस्तों, आपको हमारा कार्यक्रम युववाणी कैसा लगा आप हमें बता सकते हैं चिट्ठी भेजकर। तो जल्दी से नोट कर लीजिए हमारा चिट्ठी भेजने का पता। हमारा पता है कार्यक्रम युववाणी द्वारा निदेशक आकाशवाणी देहरादून हरिद्वार बाईपास रोड निकट रिस्पना पुल। हमारा पिन कोड है 248001। दोस्तों, डिजिटल इंडिया की डिजिटल चिट्ठी यानी जीमेल के द्वारा भी आप अपने विचार हम तक भेज सकते हैं। हमारी जीमेल आईडी है youthddn@gmail.com। इसके अलावा आप हमसे व्हाट्सएप द्वारा जुड़ने के लिए नोट कीजिए हमारा नंबर। हमारा नंबर है 7088000731। दोस्तों, हमें आपके पत्रों का और विचारों का इंतजार रहेगा। तब तक के लिए आपसे विदा चाहते हैं। कल फिर मुलाकात होगी ठीक 5:10 पर। तब तक के लिए सुनते रहिए कार्यक्रम युववाणी। फिर मिलेंगे एक नए और रोचक विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे अंशिका शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

कार्यक्रम युववाणी अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। आइए अब सुनते हैं पर्वतीय अंचलों का खास कार्यक्रम ग्राम जगत।

0: कार्यक्रम ग्राम जगत सुनन वाल सब है श्रोताओं को गीता भंडारी तरबटी नमस्कार प्रणाम पहला सेवा सौली
1: दीपक रावत को आप सब उठाए प्रणाम और सेवा सौनी और गीता जी सब कुशल मंगल ठीक ठाक।
0: सब भल है रिन दीपक जी और आप सुनाओ की हाल चाल घर
1: बल
0: पर
1: राजी खुशी सब बढ़िया ठीक ठाक चलना है।
0: सब ठीक चैने दीपक जी किले की आजक जो हमार दौर छू ना जो वक़्त छू ना
1: हाँ
0: इमें हमार स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी हमार दौलत छू।
1: बिल्कुल
0: अगर हम स्वस्थ छिन सुरक्षित छिन और अपन घर वालों में राजी खुशी छिन
1: हाँ
0: तो सबसे भल बात छू यो
1: सही बात। तो गीता जी आज के कैसे फिर ग्राम जगत है कुटरी में आप लोग हूँ।
0: दीपक जी यश सुने हमारे जो ग्राम जगत छू जैक नाम ही ग्राम जगत छू
1: हाँ
0: तो हम कोशिश तो हमेशा ये करनो कि हम खूब सारी चीज जो छू एक कुटुर में बात भी ले आऊँ है ना कुनी
1: हाँ
0: गागर में सागर भर दियो तो भल लागल है नी।
1: हाँ
0: तो आज हमारे पास छू लोकगीत छिन जैमा गढ़वाली कुमाऊनी जौन सारी छिन वह के अलावा छिन खूब सारा रंत रहबार किले की रंत रहबार भी जीवन में बहुत जरूरी छिन है ना बिना रहबारों तो कुछ ही नहीं हुन।
1: बिल्कुल
0: और यह के अलावा छू आज एक दिन खास है ना जो कि नान्थिनोक दिन छू वो
1: हाँ
0: छू किलकारी राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कोट गांव मोरी ब्लॉक उत्तरकाशी के और यह प्रस्तुतकर्ता छिन श्री विनय ध्यानी।
1: बढ़िया बहुत ही बढ़िया। और तो गीता जी जन की आप देखने लगे आछो कि आजकल बच्चों की छुट्टी पड़ी
0: होए
1: है
0: होए
1: और छुट्टी पड़ी तब बच्चा जो है कुछ खेलने पर लगे आछन
0: हाँ
1: को सीन पर लगे आछन को जो घूमने पर लगे आछन
0: बिल्कुल
1: है।
0: बिल्कुल
1: तो मतलब क्या बोल आप ये फर्क कि बच्चों तक कन करे कि समय का सदुपयोग करना चाहूँ।
0: मैं तो यस करूँ ना दीपक जी मतलब मेर जो मानन छो किले
1: हाँ
0: की हम भी लांथीनाग इज बौजू छिन
1: हाँ
0: तो हमारे

धारी गड़बड़ी गारू तो छुआरू को इन मारू अरे खका बदल छुआरू ना अरे तो छुआरू को इन मारी भय बंदो हा अरे खका आज तो छुआरू को इन मार भय बंदो हा के तौल बाला रेख दूनी है।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: जिंदगी अनमोल है। दो पहिया वाहन चलाते समय हमेशा हेलमेट पहनें। चार पहिया वाहन में सीट बेल्ट जरूर लगाएं। ओवर स्पीड, गलत पार्किंग और नशे में ड्राइविंग सड़क दुर्घटनाओं का सबसे बड़ा कारण है। वाहन चलाते समय मोबाइल का इस्तेमाल ना करें और सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। अगर कहीं दुर्घटना दिखे तो घायल व्यक्ति की मदद करें और गुड स्मार्टियन बनें। सुरक्षित सड़क, सुरक्षित जीवन।
4: संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन एवं सड़क सुरक्षा हल्द्वानी द्वारा जनहित में जारी।
5: सुनील, घर तो चमक रहा है भाई, नई नई लाइटें।
6: मैंने बिजली का सारा सामान ISI मार्क का लगाया है।
5: मतलब सुरक्षा व गुणवत्ता में नो कॉम्प्रोमाइज।
6: बल्ब, प्लग, सॉकेट्स, केबल्स सब ISI।
5: यानी बिजली का सामान हो तो ISI मार्क वाला।
6: बिल्कुल, बिजली के सामान पर ISI मार्क अनिवार्य है।
5: खरीदे बिजली के घरेलू उपकरण तब ISI मार्क हो जब।
7: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
8: गीत और रेवारों का बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी श्रोताओं को बोली भाषा की ये कार्यक्रम ग्राम जगत में। और दीपक जी, आप जब गीत सुनन छिन तो मेरे यस लागन छी आप बड़ा मनन में छिन की मतलब मिल सोल जे देखो, मिल जिबाय जे देखो या पधानू नौ जे सुन के सोचन छी आप।
9: ने जब आप राही जी का गीत सुन दो तो आप जो एक समय में चल जाओ, जब सोली गुरा गुरु गाना छे ना, और दगर दगर जो सोली सोली मनक एक पहले रिवाज छा है गाँव घर गाँव जो रहता छा लोगों था पता छे, और अब तक कम हो गया वो।
8: बिल्कुल कम है गो, कि लेकिन अब भाई ऐसा ना खेत पाती नुकसान हो ची ना, तब जब हो ची वो काम ले। पर अब ऐसा कि अब हम भल है गिन, समझदार है गिन कि हम समझ गए कि योला जीव छुई पहले दया करण चे है ना। तो दीपक जी गीत भल ची, अब गीतों के बाद दीपक जी एक बात में ये करण चुल तुमसे। आपने देखो नल कि हम लोग हमें सब दूसरा को कौन बहुत आसान हो कि आप ढंग से जाया घर बैठी। अगर आप गाड़ी में जाना चाहो तो भाई आप हेलमेट पहरे हो, दुपहिया में जाना चाहो या गाड़ी में जाना चाहो सीट बेल्ट लगाओ या फिर सीधा बैठ जाओ, जहाँ बैठी जो भी नियम कानून छन हमारी यातायात का वह एक पालन करो। लेकिन हम क्या करनू ये मैं हमेशा सोचो ना, कभी कभी आपसे यह प्रश्न हूँ कि हम कदू ये चीज़ों का पालन करनू ना। तो लोग क्या करनी, बस घर जान छू चाहे उल्टी जाओ सुलटी जाओ, जाम लगो ककुनी परेशानी हो, तो यस करण चाहे मैं कहते लावन नहीं करना
9: चाहे ना। आप गीत से बोल, और सबसे पहले तो स्वयं हम थे अनुशासित होने चाहना चाहे, हम औरों को बोलने से पहले खुद से हम थे अब होना अनुशासित होने चाहना चाहे, चाहे वो यातायात साधन हो चाहे घर गाँव में कहीं भी आप जाना चाहो रहना चाहो। और जब आप खुद अनुशासित हुए लिया तभी आपके कुछ बोल सकले है ना।
8: बिल्कुल।
9: तो जन आप यातायात जो अभी बात बोली कि भाई लोग उल्टे दिशा में चले जाने के बाद रोडम
8: अक्सर
9: आप तो आप थे नुकसान पहुंचाने लगे छा, पर और उसे भी नुकसान हो सके। तो यहाँ ध्यान रखना चाहूँ, और थोड़ा सा यातायात जो नियम छो पालन कह रहा आप तो बहुत सुगम ढंग से यातायात चलल।
8: बिल्कुल, मैं तो ये बोल कि जीवन अनमोल छू ना, एक बार मिलो। और अगर चलो कभी हानि न हो हमारे जीवन रहो, हम टूट गए फूट गए तो फिर के होल पछताना गलावा के ना ना हमारे पास।
9: और एक दगड़िया एक सामाजिक जिम्मेदारी भी
8: हुई
9: है ना। तो गीता जी अब हम अपना श्रोताओं से सुनो ला, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कोटगांव मोरी ब्लॉक उत्तरकाशी के बच्चों दगड़ किलकारी प्रस्तुति, और प्रस्तुतकर्ता छन श्री विनय ध्यानी।
8: बिल्कुल।
10: स्कूल है नानतेनो, आजकल स्कूलों की छुट्टी हुई छन, लेकिन उत्तरकाशी को मोरी ब्लॉक एक इन ब्लॉक च जो कि यख ठंडियों में छुट्टी नहीं पड़ता, लेकिन इबारी दा पहले दा इन हुए कि यख भी कुछ दिनों का हफ्ता 10 दिन की छुट्टी हुई छन बल। लेकिन हम जब स्कूल में गवा तो ये ही स्कूल की सारा जो बच्चा छन वो यख में उपस्थित छा। हम बच्चों से मिला और हमन बच्चों को बोली, बच्चों जय हिंद।
11: जय हिंद।
10: तो यू बच्चा छन जो कि राजकीय प्राथमिक उच्च विद्यालय जो छ यख कोट गाँव वख का स्कूल छन, छुट्टियों में भी स्कूल का आसपास ही रहना छन, तो हमन बोली चला किलकारी में शामिल हो जा। तो ये बच्चा सबसे पहली अपने स्कूल की प्रार्थना से कार्यक्रम की शुरुआत कर ला।

0: बहुत सुंदर। तो आप फोन तार बजा दो जरा। ये सुंदर बच्चा छन जो कि स्कूल में छन, तो पहले में ये पूछ लो कि स्कूल में कुल जो बच्चा की संख्या छ वो कितना छ, कहता पता छ कितना बच्चा होला पूरी स्कूल में?
1: 32
0: बच्चा छन। लेकिन ये बता, हमारे समय में कम छन। अच्छा गुरुजी, लोग जो छन ना स्कूल में उनका नो क्या क्या छन आम छे तुम तो पता? हाँ गुरुजी नो बताओ। या बहन जी होली?
2: श्रीमान रीता सुनिया।
0: अच्छा जी, और हरी और के नाम पता छे अपन गुरुजी लोग को, दीदी को?
3: श्री कुशाल।
0: अच्छा, तो हम एक तार बजा दूला कि लगे आज तो छुट्टी पर छन है ना, लेकिन हम बच्चों से बात करना। उन भी तार गुरुजनों को तार बजाओ। और अब ई स्कूल की छुट्टी भूली जो कि आज कुजान कक बटे घूमी का आने दौड़ी के आने से पूछ नो नो क्या चापक
3: श्रुति।
0: अरे वाह, सुंदर नो धरी हो ना। अच्छा बाबा जिंदार है कि पिता जिंदार है या बुइंदार?
3: संतोष उनियाल।
0: अच्छा ओ बापा, होशियार तो छै। कै कक्षा पढ़ दे?
3: फोर्थ
0: यानी चार मा। अपन गांव के बारे में, जो कोट गांव छ वही के बारे में बता सकते ना आप हमते? कदा सुंदर गांव छ ना। अच्छा खेलन उनका कजन दिन आज गाल छुट्टी में आप?
3: पिट्टू और खो खो के।
0: अच्छा ये की खेल दिन ये ही मंदिर का प्रांगण में? ये स्कूल अब चल जाओ दोबारा से।
3: हाँ।
0: अच्छा कविता सुनाना अपन हमते, सुना
3: याद आने से। मन करता है सूरज बन आसमान में दौड़ लगाओ, मन करता है चंदा बन सब तारों पे अकड़ दिखाओ, मन करता है बनकर घर में सब दौड़ जमाओ, मन करता है चिड़िया बनकर ची ची चू शोर बचाओ, मन करता चरखी बनकर पीली लाल पतंग उड़ाकर।
0: अरे वाह सुंदर कविता भाई है। जी करता है, जी तो बहुत कुछ करता है ना, कभी लगता है कि इधर चले जाऊं, कभी लगता है उधर चले जाऊं। अच्छा ये जो डांडा कांटा छन के बारे में बता सके श्रुति हम तक? कुछ नहीं पता। एक है भूली चाह हमारे समय में वहीं से पूछला वहीं को नो नो क्या छ?
4: अनन्या।
0: अनन्या नो तो सुंदर धरे भाई बच्चों का यख है, बहुत बढ़िया। अच्छा आप बता सकते हैं गांव के बारे में, कोट गांव के बारे में? ये को जंगल छे, ये को डाना छे, ओ समण में वो जो चोटी दिखीना छे उनको नो क्या छे?
4: हर की दून।
0: हां
4: केदार कांटा।
0: हां अरे वाह पता छे भाई मिता। तो एक यू पर्यटक गांव छे ना यख, आप देखदा छे कि लोग विदेशी भी और बाकी जो पर्यटक छे वो आना रहे गांव में, पता छे आपते हैं? अरे वाह, तो ऊंता देखी कन लगत आपते?
4: बहुत बढ़िया।
0: अरे वाह। अच्छा अपनी जो बोली भाषा छ ना ऊख में कोई गीत हम तो सुना सकते ना आप हैं? आंच जरा एक सुना दे।
3: धना मेरो नाम छे मैं पहाड़ों की बांध, जादू देखे मेरी माया का सब परेशान, कहाँ से की थाए मैं बोलो चांदी को सिक्का, चांदी को सिक्का, मैं तेरी रानी तू मेरो उकुमा को इक्का।
0: हो गया भाई, हो गया, ताल बजा दो है ना। अनन्या ने एक सुंदर गीत हम तो सुना, हम तो बहुत सुंदर लगी कि हाँ पहाड़ी गीत तुम इन कम से कम हम तो सुना चे ना। तो और कोई एक दुई तीन भूली हम तो कोई और गड़ोल गीत सुना सकते है ना? नहीं सुनाना बल। तो अच्छा कविता तो सुना ला कम से कम। हाँ आप अग्नो क्या चे?
5: आयशा।
0: आयशा देखा मैं बोली छो ना कि नौ तो बहुत सुंदर देने आचे नहीं बच्चों का। कई कक्षा पढ़ देना आप?
5: पांच
0: माँ। अच्छा एक बात बताओ, और जो ठोली स्कूल छे ना बड़ी स्कूल वो कख मच एक राजकीय इंटर कॉलेज भी छे एक साकरी मच? अरे वाह, तो ई स्कूल में आप तो सबसे भूल क्या लग दे जख आप पढ़ना खुण जाने? हमने आपका गांव का आसपास ना बहुत सारा बागान देखे, बाग देखे, बगीचा देखे, यू में क्या क्या होंगे?
5: सेब।
0: हाँ।
5: राजमा चावल।
0: अरे वाह सुंदर। अच्छा जड्डू पे भिंडी होंगी अखना बर्फ भी पड़े?
5: हाँ।
0: बर्फ पड़े तब वे दौरान भी छुट्टी हो जाती आप और आजकल रूढ़ी में जरा छुट्टी मिल गई मजा आया छ बच्चों का। अच्छा कुल मिला के दिन भर जब छुट्टी तो क्या कर देना आप?
5: पढ़ाई।
0: अरे टायर बजाओ पहले तुम्हें कौन की छुट्टियों माँ भी वह पढ़े के नीचे है ना, और ये अलावा घर को काम भी कर दे? क्या क्या कर दे जल्दी बता।
5: बर्तन झाड़ू मारना।
0: अच्छा और सबसे अच्छी सहेली कोच आपकी गांव में स्कूल में वही नो बताओ? दोस्त को चापक, सबसे बढ़िया।
1: नाम बताओ?
0: अनन्या। अनन्या, अरे वाह, बिल्कुल दगड़ी बैठी। अच्छा अपन क्या सुना नाम था, कुछ सुने ला? कविता, गीत, कुछ ना? बच्चों लगा दे, कोई बात नहीं, ताल बजाओ भाई। मैं गुण दे, क्यों इन छुई तो बहुत।

0: अपना
1: चोला।
0: अच्छा, एक भाषाई दिक्कत छ, यख हम अपना सुनदारा नाम तिर त बतौला कि जन्मी गढ़वाल में बनो छुन, ये अपने गढ़वाल में नहीं बना छन, ये क्षेत्र में जो कि ये बहुत दूरस्थ क्षेत्र च, मोरी ब्लॉक च उत्तरकाशी को, और यो एक इनु गांव च जग बटे के सबसे ज्यादा पर्यटक विभिन्न जो एक ट्रैकिंग रूट छन वक जन, तो यूं बच्चों था एक नया उत्साह रहन सदनी, लेकिन जो यूं कि अपनी एक स्थानीय बोली भाषा च उक माम कुछ गीत सुन चौला अध्यक्षला कि बोलो क्या सुना आपन, कुछ गीत सुने ला हम तय कि कविता कि क्या बोल ला सुना दे। जो हमारे सोमेश्वर देव को मंदिर च न, ये कोई भजन आंच आप तय ना वो भी न्यान? अच्छा क्या आंद है, जल्दी बताओ क्या आंद, ए बी सी डी आंच वो भी नहीं आएंगे इन्ना भाई नहीं बोला, पसीना आंच है, पसीना आंच हाँ आंच ना, या वो भी नहीं आंद। अच्छा आप कुछ तो सुना दो भाई, गीत कविता कविता कविता सुना,
2: कौन सी भी?
0: कोई भी जो जो गोवाने आप
2: मछली जट की लानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी, दो दिन के लिए सड़ जाएगी।
0: हाँ बह सुना है, छोटा बच्चों वाले क्या बता चाहिए, मैं तभी आन है ना, जब्बर जब्बर बालों वाले मैं भी आंच। अच्छा बच्चों घड़ेक में आपसे अगर हम अंताक्षर खेलला तो तैयार छो है आंच, लेकिन शर्त छो है कि आपन जो अंताक्षर खेलला वो में सिर्फ कविता या फिर गढ़वाली और पहाड़ी गीत आन चंदन, ठीक छे? चलो तो घड़ेक मा वो से पहले सबसे छोटू बुला इन किलकारी मा शामिल होने चो, बुला चे कि बोल कुछ पता नहीं आ जाओ नहीं आना आनंद चो बल वी इंकनो, लेकिन आनंद को हम जोरदार ताल बजा दूला किला की सबसे छोटी बोली चुवा है ना। अच्छा एक सवाल भी किला की आजकल सब बना छे ना कि हम पढ़ना भी छुवा छुट्टी का आनंद भी लेना छुवा, आप ही बताओ कि उत्तर काशी का जो जनपद छ वो मां दुई पवित्र धाम छ न, वो क्या छ जल्दी नो बताओ
3: क्या? गंगोत्री यमुनोत्री।
0: अरे वाह होशियार बोला छे, दार सम्मेलन में आलियो और बता में था अपन नो, आपक नो क्या छ?
3: नवदीप पुनियाल।
0: नवदीप पुनियाल नो मिल बोली नी सब सुंदर धरे आ छ, तो आप ये बताए ना कि आपन सही जवाब दे गंगोत्री और यमुनोत्री, आप जाए छ कभी गंगोत्री यमुनोत्री?
3: गंगोत्री।
0: गंगोत्री जाए, यमुनोत्री जरा पैदल चलन पड़ा ना। अच्छा यख बटे की पैदल कितना दूर चल जाते ना आप, नवनीत बताओ हम तो
3: केदारकांठा
0: जो ना, ताल बजाओ भाई कि लेके केदारकांठा यक सबसे नजदीक और सुंदर रमणीक जगह छ, तो हिट गयो पैदल पैदल चल गयो बहुत सुंदर, तो होशियार छ नवनीत वो इन सही सवाल को जवाब दिया। एक सवाल और पूछ दू, हमारे जो उत्तराखंड राज्य को राज्यपाल छ उनको नो पता छ कैथा पता छ, हाथ खड़कारा ला नहीं पता चे तो रहन दिया। अच्छा मुख्यमंत्री कुछ है ना हमारे राज्य का,
4: मिस्टर
0: मुख्यमंत्री कुछ है ना हमारे राज्य का,
4: पुष्कर सिंह धामी।
0: ओ जन गुरुजी ठुसका दिन ना पैथर बड़े बच्चों को तो इन केल बुआल च पैथर बड़े मिन सुना, ताल बजा दो नवनीत का खाते, और नवनीत उन्हें आज जैसे पूछ ला कुछ गीत कविता हम तो सुना दियो यार, इतना दूर आया छो वहां हम तो गड़बड़ गीत के लिए सुनना भूल उन बोल चाहे हम सुनाना है ना, लेकिन ये बीच आपके सुनाना छन
4: कविता
0: सुना।
4: माँ कहे एक कहानी, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी, कहती है मुझसे या चेटी तू है मेरी नानी की बेटी, माँ कहे एक कहानी।
0: बस बस हो गया कहानी कविता, माँ कहानी ताल बजाओ। और अब भूलियों की बारी च गीत सुनाना, दुई भूली तीन भूली कठाला और हम तो एक गीत सुनाला जल्दी से आप हमारे समय में, और नवनीत बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दगड़ कार्यक्रम में शामिल रहना आप, तो बोली अभी न्याणा चंबल बहुत देर का ना एक माँ, और तब रही हूँ हम कुछ और बच्चों आगिन आगिन बल ओहो सला कना चने कि कु गीत सुनोला हम जल्दी आओ बोले, और इचन बोली एक दुई तीन चार और भी आना चन तो हम तो सुनाला ये गीत, और आप अकनु क्या चे?
2: अस्मिता।
0: अस्मिता और हैं भुली को?
2: गुंजन।
0: और हैंक भूली को?
2: आंचल।
0: और हैंक भूली को?
2: शिवन्या।
0: तो ये देखा सभी भूली छे ना हमारे समय में हम ता एक गड़वल गीत सुनाला सुनाओ। अभी सलाह कहना चाहिए वो कबड़े यक थका है कि वो सलाह नहीं हुए, एक गीत झमकादार लगाओ कोई भी अपन बोली भाषा को गीत जी।
5: बोलो बोलो
0: यूं तो नहीं आनु चु मिजान लगोड़।

0: आ गया जी।
1: नगपड़िया चढ़ा दे लाल डोरी चढ़ा दे, गर्ज ने माँ गर्ज मेरा नथली मेरी गड़ा दे, तुला तुला मतुला मिला दे।

0: इस गायू था तार बजा दियो लायू चेहरा भूले फुले और वे का बाद हम धड़ेक में खेला अंताक्षरी। लेकिन ये बीच हमारे समण में एक भूला और ये भूला बहुत ही सुंदर भूला। सबसे पहले हम तो मिल चे आपक नुं क्या चे विहान उनियाल है ना ठीक। कहीं कक्षम पढ़ देना आप छे माँ अच्छा पांच हम का नंबर आओला याद छे चे जो नंबर है पास का नंबरों से हुआ हाँ
1: 1013
0: नंबर आएगी ताल बजाओ। इधर नंबर आन रोल नंबर तुमने पता हूँ चला सुंदर बात चे। तो बिहान क्या सुने लमता गीत कविता क्या
1: गीत
0: अरे वाह ताल बजा दो पहली गीत सुनाना है।
1: दिल्ली से मनाली रट पड़ गए फसाना दिल को दिल से मिना ले लड़का तेरा दीवाना। दिल्ली से मनाली लड़का तेरा दीवाना लड़का तेरा दीवाना लड़का तेरा दीवाना
0: लड़का तेरा दीवाना। हाँ बिहान उनियालल एक वो गीत सुना है हमते जो कि आजकल हम सभी बच्चा सुनना छो है ना। लेकिन हम सोचता कि जब इतना दूर हम आया छो तो यका का जो ठेठ गीत छन वो हम तो सुनना मिलला है ना। तो चला इन करता अब अंताक्षरी खेल दियो भूला और भूलियो में खेल ला ठीक छे। तो भूला इंच छोड़ा जाओ मेरे तरफ और भूला इंच छोड़ आन बहुत जल्दी जल्दी चल और भूले ना हो सब बुलाना सब बुलाना जो थान चुवी ठीक छे सब बुलाना। तो पांच बुला और पांच भूले नीचे ना हो रही कि लगे बीड़ने लगा नहीं जी। और अब हम ये भूलों से और भूलों से नाम पूछ ला हाँ अब भीड़ नहीं होनी चाहिए पांच से ज्यादा ना ठीक छे। आप अपना नाम क्या छे
2: सुष्मिता
3: आंचल
4: गुंजन
5: शिवन्या
0: अस्मिता। वो भूले जो कि की टीम में छन भूलियो की और आप पांच भूला हम गण ला। आप अपना नाम क्या छे
6: शिवांश
7: दिव्यांश
8: बियान
9: केशव
10: नवदीप।
0: ई छन वो भूला और यूं भूलों का बीच में अब हम अंतराक्षरी खेल ला। तो दुया लोग अब मेरा नजीक आ जाए ना जनके की मैं तो पता रहा लू है ना। तो भूलों से कला शुरू कि भूलों से भूलों से तो भूलों तो हम शब्द देना छुआ ल एक दी
11: लोरी दूध की कटोरी दूध में तमाशा दादाजी का तमाशा
0: तमाशा शामिल भूलियो था।

0: रा आणु छ, लेकिन एक बात और में झुकमिन पहल बोली छो कि गढ़वाली गीतों में या अंताक्षरी होनी चाहिए या कविताओं में, है ना। तो अब र आयु छ बोलों का तरफ, र एक
1: राम रेली तेलने में जंजीर ते सीतांग की रानी थी देश की महारानी थी।
0: था हो गया, लेकिन अभी भी गड़वल गीत नहीं मिलता है, तो था पर हमारा बोलियों का पास ये बद्दू या लोग बराबर चलना चाहिए। था
2: थर्मस में रखते हैं ताकि ठंडी ना हो पाए।
0: या से भूला, अभी बराबर चलना चाहिए। या एक दुई तीन चार पांच, या से भूले।

0: ता आयु च लेकिन ता से एक बात हम बोला अभी भूलिया तर छन मौका च बराबर होना ता से बोला ला भूला
1: ता तैया बकरू तेरा भैया।

0: মুখে বলে দি ভাইজি ভাইজি চিন্টু তেরা সাইয়া
1: सैया यून में फिर याद आया, लेकिन कम से कम हम तो एक गड़बड़ गीत सुनने को मिल है ना। ये छोड़ा गीत ना ये उत्तरकाशी मोरी ब्लॉक को या से या एक दो तीन चार पांच और बुले हरगिन पांच या फिर दोबारा से
2: या
1: वन दो तीन चार पांच हरगिन आप भी एक दा फिर बजी आप अकत्मा या एक दो तीन चार पांच फिर बोलो कपला मम्मी आ गयो समझ में नहीं आ क्या बोना चाहिए। हाँ बोला जल्दी खत्म अंताक्षरी और कोई नहीं जीत कोई नहीं हारो है ना किला की क्या बोना चाहिए यार समझ में नहीं गलत हो गया और एक दा भूलियो बारी आई छा जीतना की लेकिन आप भी हार गए तो बहुत बहुत बधाई दुयू था कि कोई जीतो ना कोई हारो बहुत बहुत आभार बहुत बहुत धन्यवाद। और अब किलकारी कार्यक्रम को समापन राजकीय उच्चतर प्राथमिक विद्यालय कोटगांव का ये स्कूल है जो कि अपने छुट्टियों को आनंद लेना छन वो कहना छन एक देश गान का दगड़ी।

0: हुए गया मी लगनो चुकी ना उना बटे की आप फिर दोबारा हुई पंगत रगोड़ नाचन तो अब इनसे कि बच्चों बहुत सुंदर आप कार्यक्रम रहे कुछ रलो मिसो न्यू हिसाक उन्त पर फिर भी आप लोग छुट्टियों का मूड में छन मिथा लगनो है ना तो ये पर तो उदगा बढ़िया न्यू हिसाक लेकिन आप अपने छुट्टियों को सदुपयोग कन में कर ला और क्या करना चाहें यो एक सवाल सभी बुला बुलियों से पूछना चाहूँ छुट्टियों को सदुपयोग हम कन के कर सकता
1: नहीं नई चीजों को सीखने
0: हरी आप बताओ आप बताओ
1: पढ़ाई करना घर का काम
0: अच्छा अपनी भाषा में हम बात कर ला क्या क्या करना चाहें हम तो गर्मी की छुट्टियों में उनियाल जी आप तो होशियार छन
2: पढ़ाई करना खेलना और काम करना
0: हाँ ये अपन गड़बड़ में
1: चाहना
0: हाँ हाँ
1: पढ़ाई करना और खेलना
0: सब हिंदी में कोई बात नहीं लेकिन कुल मिलाक बात अपन सीखल समझल कि हाँ पढ़े करण और खेल है ना अपना जो शौक छन आपका अपनी जो अभिरुचि छन गीत गान चंदन गीत गाओ खेलन चंदन खेला है ना लेकिन समय को सदुपयोग करा इन के चित बैठे छो डाला मुड़ा बस यहाँ छो है ना इन्नी होने चाहिए तो बहुत बहुत शुभकामना शानदार कार्यक्रम देन का वास्ता और आपको उज्ज्वल भविष्य की कामना करूँ मैं और आपक स्कूल आपक गांव बटे की वापस जानु छु आपक ने बोलूं बच्चों जय हिंद
3: जय हिंद।
4: तो दगड़ियों अभी आप सुनना चाहे राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कोट गांव मोरी ब्लॉक उत्तरकाशी का किलकारी प्रस्तुति और प्रस्तुतकर्ता चाहे श्री विनय ध्यानी।
5: तो दीपक जी हम कहते बहुत आनंद आए उम्मीद चुकी हमारे श्रोताओं को भी खूब आनंद आए हुनोल किले की किलकारी एक यस प्रोग्राम छू यस कार्यक्रम छू जो कि हमको हमारे बचपन हमारे स्कूल हमारा गांव घर हमारा ग्वेटो में पूछे दियो ना
4: बिल्कुल सही बोला पल और गीता जी अब
5: हाँ
4: अगर मैं क्या गीत सुनाना पल
5: अब या सुनो गढ़वाला बाद कुमाऊनी जानू अपन श्रोताओं को
4: हाँ
5: और सुनो ज्योति उप्रेतिका शर्मा या सुंदर सा कुमाऊनी गीत
4: हाँ।

0: तो दगड़ियों भी आप सुनना चाहिए कुमाऊनी गीत ज्योति उप्रेती की आवाज में, और अब थोड़ी देर में आप सुन लिया उत्तराखंड का प्रादेशिक समाचार।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुँचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
2: 8700001-4242।
3: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, कर्णप्रयाग और नगरासू प्रकरण में निष्पक्ष कार्रवाई जारी, श्रद्धालुओं से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की। मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई सचिव समिति की बैठक भूमि संसाधनों के बेहतर प्रबंधन और डिजिटलीकरण सहित विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। कैबिनेट मंत्री भरत सिंह चौधरी ने अल्मोड़ा में विभिन्न विभागों की योजनाओं और कार्यक्रमों की समीक्षा की और मानसून से पहले राज्य के पर्वतीय जिलों के सरकारी गोदामों में पहुंचाया गया 3 महीने का राशन 1 जुलाई से होगा वितरण। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आशुतोष उनियाल, और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि कर्णप्रयाग और नगरासू में सामने आई घटनाओं के संबंध में सभी पक्षों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन आवश्यक कार्रवाई कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जांच में जो भी दोषी पाया गया है उसके विरुद्ध कार्रवाई की गई है और सभी तथ्यों के आधार पर आगे भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज सचिवालय में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि चारधाम और हेमकुंड साहिब यात्रा पर आने वाले सभी श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने सभी श्रद्धालुओं और पर्यटकों से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान न दें। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि भ्रामक और भड़काऊ खबरें फैलाने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
4: कर्णप्रयाग में और नगरासू में जो भी घटना सामने आई है और सभी पक्षों को हमने निष्पक्ष रूप से सरकार, प्रशासन, पुलिस कार्रवाई कर रही है और सभी प्रतिनिधि मंडल यहाँ पर प्रशासन के लोगों से मिले भी हैं और हमारे पुलिस महानिदेशक ने लगातार पिछले 2-3 दिनों से बात की है और सभी को बता दिया गया है कोई अब इशू नहीं है और कार्रवाई हो रही है, कानूनी कार्रवाई। जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई हुई है और कार्रवाई आगे भी होगी। और सोशल मीडिया पर या भ्रामक जो समाचार फैला रहे हैं, मैं उन सभी से कहना चाहता हूँ कि अब जो भी जो है अब कानून अपने हाथ में इस प्रकार से लेगा, भ्रामक खबरें फैलाएगा, तो निश्चित रूप से उस पर कानूनी कार्रवाई भी होगी।
3: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश भर के सभी अस्पतालों, कोचिंग सेंटरों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और अन्य सार्वजनिक उपयोग वाले भवनों का व्यापक अग्नि सुरक्षा ऑडिट कराने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। आज सचिवालय में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि जन सुरक्षा राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है तथा अग्नि सुरक्षा मानकों के अनुपालन में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन संस्थानों में अग्निशमन संबंधी व्यवस्थाएं निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं है, उन्हें तत्काल चिन्हित कर आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ने अग्निशमन विभाग, जिला प्रशासन और संबंधित विभागों के बीच समन्वय स्थापित कर समयबद्ध ढंग से ऑडिट की प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में आज सचिवालय में सचिव समिति की बैठक हुई। इस दौरान राज्य में भूमि संसाधनों के बेहतर प्रबंधन, भूमि संबंधी प्रक्रियाओं के सरलीकरण, डिजिटलीकरण, विवाद निस्तारण और निवेश अनुकूल व्यवस्था विकसित करने के विभिन्न पहलुओं पर व्यापक विचार विमर्श किया गया। एक रिपोर्ट।
5: बैठक में मुख्य सचिव ने कहा कि उत्तराखंड जैसे सीमित भूमि संसाधनों वाले राज्य में भूमि का वैज्ञानिक और पारदर्शी प्रबंधन समय की आवश्यकता है। उन्होंने भूमि प्रबंधन व सुधारों से जुड़े अधिकारियों को तात्कालिक और दीर्घकालिक सुधारों का विस्तृत अध्ययन कर एक ठोस कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने भूमि संबंधी मामलों की निगरानी और सुधारात्मक ढांचा तैयार करने के लिए सचिव दिलीप जावलकर, बीवीआरसी पुरुषोत्तम और एसएन पांडे को भूमि संबंधी प्रकरणों, चुनौतियों और उनके समाधान पर आधारित एक समग्र रूपरेखा तैयार करने के निर्देश दिए। ये टीम भूमि संबंधी सभी प्रक्रियाओं और प्रावधानों के लिए सुझाव प्रस्तुत करेगी। इसके अतिरिक्त भूमि संबंधी दस्तावेजों के व्यापक अध्ययन, उनके अद्यतनकरण, डिजिटलीकरण और तकनीकी एकीकरण के लिए 3 सदस्यीय अधिकारियों की एक अलग टीम गठित करने के निर्देश भी दिए गए। ये समिति पुराने रिकॉर्ड, मैप आदि सभी का विस्तृत अध्ययन करेगी। मुख्य सचिव ने भूमि सर्वेक्षण और मैपिंग कार्यों के लिए नियुक्त की जाने वाली एजेंसियों के कार्यों की प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। आकाशवाणी देहरादून के लिए समाचार कक्ष से रविंद्र सिंह।
6: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
3: कैबिनेट मंत्री भरत सिंह चौधरी ने आज अल्मोड़ा में विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं और कार्यक्रमों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की पहुंच ग्राम स्तर तक 100% सुनिश्चित की जाए तथा पात्र लाभार्थियों को समयबद्ध रूप से लाभान्वित किया जाए। उन्होंने जिले में संचालित योजनाओं की प्रगति पर संतोष जताया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री ने स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार उत्पादों की प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए स्थानीय महिलाओं और समूहों द्वारा उत्पादों की सराहना की। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूह ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।
7: शानदार काम कर रहे हैं, खासतौर पे जो हमारे महिला समूह हैं, यहाँ पर भी मैं देख रहा हूँ जिस तरह से रोजमेरी का और रिंगाल का जो आर्टिफैक्ट्स इन्होंने बनाए हैं वो बहुत ही शानदार हैं और आने वाले समय में एक मील का पत्थर साबित होंगे जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, जो हमारी लखपति दीदी योजना है उसमें इसका बड़ा योगदान होगा। उनको सरकार लगातार प्रमोट कर रही है।
3: मानसून सीजन के दौरान भारी बारिश और भूस्खलन जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए प्रदेश सरकार ने राज्य के पर्वतीय जिलों में जुलाई, अगस्त और सितंबर महीने का राशन एक साथ उपलब्ध कराने की विशेष व्यवस्था की है। अपर आयुक्त खाद्य पीएस पांगती ने बताया कि पर्वतीय जिलों के सुदूर और बेहद दुर्गम इलाकों के सरकारी गोदामों में 3 माह का राशन पहुंच चुका है। उन्होंने बताया कि 1 जुलाई से राशन डीलरों के माध्यम से इसका वितरण शुरू कर दिया जाएगा। श्री पांगती ने बताया कि जुलाई माह के दौरान ही 3 महीने का राशन उपभोक्ताओं को समयबद्ध तरीके से वितरित कर दिया जाएगा, जिससे मानसून के दौरान खाद्यान्न आपूर्ति पूरी तरह सुचारू बनी रहे।
8: मानसून को लेकर के हम लोगों ने 3 माह का राशन पर्वतीय जनपदों को पूर्व में ही भेजना प्रारंभ कर दिया था। लगभग सभी हमारे खाद्यान्न गोदामों में 3 माह का राशन पहुंच रहा है और हम 1 जुलाई से 3 माह का राशन जुलाई, अगस्त, सितंबर एक साथ हम वितरण करेंगे और उम्मीद रहेगी कि हम जुलाई में ही 3 माह का राशन पूरा वितरण सुनिश्चित कर लेंगे।
3: उधम सिंह नगर जिले में 31वीं वाहिनी पीएसी रुद्रपुर में आज से 3 दिवसीय प्रादेशिक हैंडबॉल क्लस्टर प्रतियोगिता शुरू हो गई है। पुलिस महानिरीक्षक सुनील कुमार मीणा ने प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। प्रतियोगिता में राज्य के चंपावत, पिथौरागढ़, नैनीताल और उधम सिंह नगर सहित 9 जिलों के 176 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। इस अवसर पर पुलिस महानिरीक्षक ने कहा कि इस तरह की प्रतियोगिताएं पुलिस कर्मियों में खेल भावनाओं को विकसित करने और राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा प्रदर्शन करने में सहायक सिद्ध होती हैं।
9: ये प्रतियोगिताएं पुलिस में खेल भावनाओं को विकसित करने के लिए तथा आपस में भ्रातृत्व भाव को विकसित करने के लिए करवाई जाती है ताकि हमारे खेल का स्तर जो है वो उत्कृष्ट हो और प्रतियोगिता की भावना का विकास हो। देखिए, एक सतत प्रक्रिया है जिसमें हम लोग अपने खिलाड़ी तैयार करते हैं ताकि नेशनल पुलिस खेलों में हमारे राज्य का जो प्रदर्शन है वो उत्कृष्ट हो और सभी खेलों की प्रतियोगिताएं अलग अलग स्थानों पर आयोजित की जाती है।
3: वहीं खिलाड़ी गोपाल सिंह कन्याल ने कहा कि इस तरह की प्रतियोगिताओं के आयोजन से पुलिस जवानों को आगे बढ़ने का मौका मिलता है।
10: ये गेम अभी हमारी 31 वाहिनी पीएससी में चल रहे हैं। यहाँ से हमारे जनपद से और पीएससी आईआरबी टीमें आती हैं और ये गेम हमेशा होते रहने चाहिए। इससे हमें काफी अपनी फिटनेस का अच्छा एक हमें अनुभव मिलता है खेलने का और फिटनेस भी बनी रहती है। और इन गेमों से ये होता है कि हमारे स्टेट टीम से भी हमारे सिलेक्शन होता है और आगे हम नेशनल खेलने जाते हैं, ऑल इंडिया पुलिस गेम खेलने जाते हैं, आगे का हमें अनुभव मिलता है, इससे हमें काफी बेनिफिट भी होते हैं।
3: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, कर्णप्रयाग और नगरासू प्रकरण में निष्पक्ष कार्रवाई जारी, श्रद्धालुओं से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की। मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई सचिव समिति की बैठक, भूमि संसाधनों के बेहतर प्रबंधन और डिजिटलीकरण सहित विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। कैबिनेट मंत्री भरत सिंह चौधरी ने अल्मोड़ा में विभिन्न विभागों की योजनाओं और कार्यक्रमों की समीक्षा की और मानसून से पहले राज्य के पर्वतीय जिलों के सरकारी गोदामों में पहुंचाया गया 3 महीने का राशन 1 जुलाई से होगा वितरण। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
0: उत्तराखंड का प्रादेशिक समाचारों का बाद एक बार फिर से आपको हार्दिक अभिनंदन स्वागत। ग्राम जगत मी दीपक रावत और
11: दगड़मा मीछू गीता भंडारी।
0: तो दगड़ियों और जन की हमें बड़े छुई बात लगन दो और हम बार बार बोल दो कि भे उन्हें बटे कि आप अल होंगरा जरूर हम तक पहुँचने अपरा और होंगरा पहुँचाने को आप तो चिट्ठी लिखना पड़े ली और चिट्ठी लिखना जो पता चे झटझटा का वो चे चिट्ठी ग्राम जगत @gmail.com और जो पता चे बड़ो पता चे वो चे कार्यक्रम चिट्ठी पत्री ग्राम जगत अनुभाग द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी देहरादून पिन 248001।
11: तो दीपक जी आपल बिल्कुल दुए तरह का पत्त बतहली और हमारे श्रोता जो सुनना होना जो रोज सुननी हो तो छिन लेकिन जो नई श्रोता छे उन्होंने जी हम हमेशा पत्त बतूनू और आशा करो ना कि वो जरूर ये कार्यक्रम में अब शामिल होला किले की भाई हम सब उत्तराखंडी छे, हमारी बोली भाषाओं और हमारा जो यू परिवेश छो एक परिवार छो है ना। बस हम ये छोर बटी और आप दूसर छोर बटी छिन है ना। दीपक जी बात हम ग्राम जगत की कर लो, बात हम अपने गाँव घरों की करो तो एक चीज जो ना हमारा जो खान पीन छो और पहली जमन में क्या हो केवल मोटा लाना मोटा खान हो ना। अब हम थोड़ा बहुत बीच में भटक गए छी इथा उथा लगे छी और खान पीन में हम थोड़ा सा लापरवाही करे छी कोई में, लेकिन फिर एक नई चीज है नई एक जागरूकता आ जाए ना कि व्हील खाए तो मिले खून लिया अवधि यस मिला नो जब हमको पता चल जाए कि फैद कै अवधि होनो कि खैबे होनो कैसे हम स्वस्थ रहनो तो ऊ छू हमार मट अनाज ना है ना जे हम कि आप देखन हो
0: बोल देने कि समय अपड़ जगह पर वापस आंद घूमी के और यू वही चक्र से कि जो अब जो अनाज हम पहले छोड़ा चाहे खान अब दोबारा से अनाजों से अपनाना छो और बड़ी अच्छी बात है कि अपड़ जो मूलम छो मूलम जाना छो जड़ जड़ ही हमारी पहचान छो और मोटो अनाज है कि जो पौष्टिक अनाज होंद और वो आपका जीवन थे कि आपका स्वास्थ्य थे कि स्वस्थ रखद और आप मजबूत रहन और अगने बढ़दन।
11: बिल्कुल सही कहे दीपक जी आप पहले तो अब तो खैर बहुत जागरूकता फैल गई और जो क्वाद हमको बिल्कुल पहले हमको जी कि भाई अब को खाल अब वो मिलना ही नहीं लग रहा ना
0: बिल्कुल
11: तो अपना जो श्रोता सुननी और जो सुन चुके ना जो खवनी तो भल जो जनवल नहीं करो शुरू मुले जरूर अपन नांथिला खान में एक मोट अनाज जरूर शामिल करिया है ना। दीपक जी बार बार घड़ी की तरफ चाण छा मके लागणो कि थोड़ा सा हमारे पास बखत कमी छू ना तो क्या करो छो
0: तब जौन सारी गीत सुनला दगड़ो आप थे कि शांति वर्मा की आवाज में
11: लेकिन वी से पहले सुनो रे बार
12: The all-new Nissan Revive अब CNG में
13: Twin Cylinder Technology के साथ पाइए थर्ड रो में भरपूर स्पेस 24 किलोमीटर पर केजी की शानदार माइलेज और पूरे सुकून के लिए 3 साल की वारंटी। लाइफ को अपग्रेड कीजिए Nissan Revive CNG के साथ 7-seater जो है 140 करोड़ भारतीयों से प्रेरित
12: सिर्फ 6.48 लाख से शुरू। आज ही अपने नजदीकी निशान डीलरशिप पे जाए शर्ते लागू।
14: संपर्क करें पाल निशान शोरूम हल्द्वानी मोबाइल नंबर 8477008200।
15: रविंद्र ये बताओ सरकार की योजनाओं की पूरी जानकारी कहाँ मिलेगी?
16: अरे रागनी धामी सरकार ने जनहित में जारी की है पुस्तक मेरी योजना।
15: सच में क्या क्या है उसमें?
16: शिक्षा स्वास्थ्य किसान महिला युवा

0: योजना आसान भाषा में एक ही पुस्तक में। मेरी योजना, जानकारी भी अधिकार भी।
1: मेरी योजना पुस्तक आप डिजिटल रूप से uk.gov.in पर प्राप्त कर सकते हैं।
2: यार बीबीए एमबीए तो करना है, लेकिन अच्छी पढ़ाई और कम फीस दोनों साथ कहाँ मिलते हैं?
3: मिलते हैं ना, इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव मैनेजमेंट देहरादून में, केंद्र सरकार के सहकारिता मंत्रालय के अधीन संस्थान।
2: अच्छा, मतलब गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं?
3: बिल्कुल नहीं, उच्च गुणवत्ता की बीबीए और एमबीए शिक्षा किफायती फीस पर।
2: और परिणाम?
3: यूटीयू 2025 का एमबीए सिल्वर मेडलिस्ट भी इसी संस्थान से है।
2: वाह, आईसीएम देहरादून, 6 ओल्ड मसूरी रोड, राजपुर, देहरादून।

0: श्रोताओं अल्ले आपल सुन शांति वर्मा की आवाज़ माँ ये सुंदर साथ जौन सारी गीत और ये गीता का दगड़ ही आज को ग्राम जगत को अंक इति संपन्न हूँ मके गीता भंडारी को
1: और दीपक रावत है आगे देवा
0: नमस्कार।

0: पर्वतीय अंचलों का खास कार्यक्रम ग्राम जगत अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। आइए अब सुनते हैं गढ़वाली प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून बटी गढ़वाली मां प्रादेशिक समाचारों का दगड़ी मी सोनिया खुक्षाल।

0: पहली मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में उच्च स्तरीय बैठक की समीक्षा करी। बोले की कर्णप्रयाग और नगरासू प्रकरण में निष्पक्ष कार्रवाई जारी, दोषियों पर वेली सख्त कार्रवाई। प्रदेश भर का जूनियर हाईस्कूल शिक्षकों थे शिक्षा विभाग का प्रस्तावित त्रिस्तरीय ढांचा में शामिल करे जाल। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने केंद्रीय योजनाओं में अपेक्षित तकनीकी और संस्थागत सुधारों थे तुरंत लागू करने का निर्देश दी। और 31वीं वाहिनी PSC रुद्रपुर में 3 दिवसीय प्रादेशिक हैंडबॉल क्लस्टर प्रतियोगिता शुरू। अरब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बोले कि कर्णप्रयाग और नगरासू में समीण आई घटनाओं का संबंध में सभी पक्षों थे ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन आवश्यक कार्रवाई करनी छिना। उन बोले कि जांच में जो भी दोषी पाया छिन उनका विरोध में कार्रवाई करी गई छ तथा सभी तथ्यों पर आधार पर अग्नि भी सख्त कार्रवाई वेली। आज सचिवालय में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने बोले कि चार धाम और हेमकुंड साहिब यात्रा पर आने वाला सभी श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता छ। उन सभी श्रद्धालुओं और पर्यटकों से अपील करी कि वो देवभूमि उत्तराखंड का शांति वातावरण में अपनी यात्रा को पूर्ण आनंद लें और कई भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान न दें। उन साफ करी कि झूठी और भड़काऊ खबरें फैलाने वालों पर विरोध में कानूनी कार्रवाई करी जाएगी।
1: कर्णप्रयाग में और नगरासू में जो भी घटना सामने आई है और सभी पक्षों को हमने निष्पक्ष रूप से सरकार प्रशासन पुलिस कार्रवाई कर रही है और सभी प्रतिनिधि मंडल यहां पर प्रशासन के लोगों से मिले भी हैं और हमारे पुलिस महानिदेशक ने लगातार पिछले 2-3 दिनों से बात की है और सभी को बता दिया गया है कोई अब इशू नहीं है और कार्रवाई हो रही है, कानूनी कार्रवाई। जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई हुई है और कार्रवाई आगे भी होगी। और सोशल मीडिया पर या भ्रामक जो समाचार फैला रहे हैं, मैं उन सभी से कहना चाहता हूँ कि अब जो भी जो है अब कानून अपने हाथ में इस प्रकार से लेगा, भ्रामक खबरें फैलाएगा, तो निश्चित रूप से उस पर कानूनी कार्रवाई भी होगी।
0: प्रदेश भर का जूनियर हाईस्कूल शिक्षकों थे शिक्षा विभाग का प्रस्तावित त्रिस्तरीय ढांचा में शामिल करे जाल। विद्यालय शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत

0: देहरादून में विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान ये जानकारी दियाई। उल बोले कि पुरानी पेंशन योजनाओं से वंचित शिक्षकों थे लाभ देण और अशासकीय विद्यालयों में पीटीए शिक्षकों की मांग से संबंधित प्रस्ताव भी जल्दी मंत्रिमंडल का समीक्षण लाए जाला। बैठक में डीएलएड प्रशिक्षित शिक्षा मित्रों थे समान कार्य खुणे समान वेतन मान देण और अशासकीय विद्यालयों में मानदेय प्राप्त शिक्षकों थे अस्थायी नियुक्ति प्रदान करण सहित अन्य विषयों पर विचार विमर्श करे गए। इन प्रकरणों को निस्तारण खुणे महानिदेशालय स्तर पर एक समिति बैठक करने का निर्णय लिएगी। कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने नैनीताल जिला का काठगोदाम में भूमि धोखाधड़ी समिति की बैठक में भूमि धोखाधड़ी से जुड़िया 77 मामलों की समीक्षा कारी। विभिन्न जिलों बटी प्राप्त मामलों की जांच के बाद कुमाऊं आयुक्त ने 30 मामलों में मुकदमा दर्ज करने का निर्देश दी। उल बोले कि भूमि धोखाधड़ी से संबंधित मामलों की रिपोर्ट जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक का माध्यम से समिति तक पहुंच जाय का बाद प्रत्येक मामला की गंभीरता से समीक्षा होंद।
1: मामले अलग अलग जिलों से आए थे जिसमें हम एक तो रिपोर्ट मांगते हैं तहसील से, डीएम्स के थ्रू वो रिपोर्ट आती है। आजकल हमने पैरेलली एसएसपी को भी हम रिपोर्ट दे रहे हैं कि वो भी इसको प्रोब कर लें। तो वो सब के बाद जो रिपोर्ट्स आज यहाँ पे आई थी, कुल मिला के 77 मामले ऐसे थे जो हमने रखे थे यहाँ बैठक के लिए, जिनमें रिपोर्ट मांगी गई थी। और यहाँ पे जो कमेटी बैठी उन्होंने इसको डिसाइड किया, तो हमने 30 मामलों में पाया कि ये लैंड फ्रॉड के मामले बनते हैं और इसमें मुकदमा दर्ज होना चाहिए। तो उसको कमेटी ने अप्रूव कर दिया है। इसके बाद ये एफआईआर दर्ज जाएंगे और इसमें जो इन्वेस्टिगेशन है वो आगे चलेगा।
0: कुमाऊं आयुक्त ने बोले कि यदि सुनियोजित तरीके से भूमि धोखाधड़ी का मामला समय अंदीन है तो संबंधित लोगों का विरोध में संगठित अपराध का तहत भी कड़ी कार्रवाई करे जाली।
2: गढ़वाली में प्रादेशिक समाचारों को यू बुलेटिन आकाशवाणी का देहरादून केंद्र बटी प्रसारित करे जाणो जे। ताज़ा समाचारों खुणी आप हमारा सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड थे फॉलो कर सकते हैं। दगड़ा दगड़ी यू समाचार हमारा यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध छिन।
0: मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने राज्य का विकास कार्यों थे रफ्तार दीण खुणे संबंधित अधिकारियों थे केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं और वित्तीय प्रबंधन थे लेकी कई महत्वपूर्ण निर्देश दीनी। आज सचिवालय में हुई सचिव समिति बैठक में मुख्य सचिव ने बोले कि सभी विभाग केंद्रीय योजनाओं में अपेक्षित तकनीक और संस्थागत सुधारों थे तुरंत लागू करी। ओल बोले कि याल केंद्र और बाह्य सहायतित परियोजनाओं मिलन वाली धनराशि समय पर और पर्याप्त मात्रा में प्राप्त हो सकेली। ओल बोले कि जो विभाग ये नई आईटी आधारित सेवाओं और नवाचारों पर परीक्षण करण च वो बिना कह देरी का ये थे पूरा करी। दगड़ी ही जो योजनाओं पर काम पूर्व हो गया उनकी उपयोगिता प्रमाण पत्र और अन्य जरूरी दस्तावेज समय से प्रेषित करी। मुख्य सचिव ने बोले कि जख भी नई नीतियां बन या वर्तमान नीतियों में संशोधन करने की जरूरत च वक तत्काल प्रभावी कार्रवाई करे जा। ओल स्पष्ट कारी कि राज्य में केंद्रीय सहायता चलना विकास कार्यों थे गति देना खुणे प्रशासनिक सुगमता और तकनीकी आत्मसातीकरण बेहद जरूरी ची। यहाँ खुणे सभी अधिकारियों थे तत्परता से काम करण पौड़ल। मानसून सीजन का दौरान भारी बारिश और भूस्खलन जनी चुनौतियों से निपटना खुणे प्रदेश सरकार ने राज्य का पर्वतीय जिलों में जुलाई अगस्त और सितंबर मौक राशन इकट्ठा उपलब्ध कराने की विशेष व्यवस्था करी छ। अपर आयुक्त खाद्य पीएस पांगती ने बताई कि पर्वतीय जिलों का सुदूर और बेहद दुर्गम इलाकों का सरकारी गोदामों में 3 माह को राशन पहुंचे गया। उल बताई कि 1 जुलाई बटी राशन डिलीवरियों का माध्यम से यूं को वितरण शुरू हुए जाल। श्री पांगती ने बताई कि जुलाई माह का दौरान ही 3 महीनों को राशन उपभोक्ताओं थे समयबद्ध तरीके से वितरित करे जाल। जाल मानसून का दौरान खाद्यान्न आपूर्ति पूरी तरह सुचारू बनी रहली।
3: मानसून को लेकर के हम लोगों ने 3 माह का राशन पर्वतीय जनपदों को पूर्व में ही भेजना प्रारंभ कर दिया था। लगभग सभी हमारे खाद्यान्न गोदामों में 3 माह का राशन पहुंच रहा है और हम 1 जुलाई से 3 माह का राशन जुलाई अगस्त सितंबर एक साथ हम वितरण करेंगे और उम्मीद रहेगी कि हम जुलाई में ही 3 माह का राशन पूरा वितरण सुनिश्चित कर लेंगे।
0: ઉધમ સિંહ નગર જિલ્લામાં 31મી વાહિની પીએસસી રુદ્રપુરમાં આજ બટી 3 દિવસીય પ્રાદેશિક હેન્ડબોલ ક્લસ્ટર પ્રતિયોગિતા શરૂ વી ગઈ. પોલીસ મહાનિદેશક સુનિલ કુમાર મીણાને પ્રતિયોગિતા કો શુભારંભ કરી. પ્રતિયોગિતામાં રાજ્ય કા ચંપાવત, પિથોરાગઢ, નૈનીતાલ ઓર ઉધમ સિંહ નગર સહિત 9 જિલ્લા કા 176 ખેલાડી ભાગ લેણા છે. યે અવસર પર પોલીસ મહાનિદેશક અનુભવ કી ઈ તરહ કી પ્રતિયોગિતા પોલીસ કર્મીઓ સે ખેલ ભાવનાઓ થે વિકસિત કરણ ઓર રાષ્ટ્રીય સ્તર પર અચ્છુ પ્રદર્શન કરણમાં સહાયક સિદ્ધ હુએલી.
4: ये प्रतियोगिताएं पुलिस में खेल भावनाओं को विकसित करने के लिए तथा आपस में भ्रातृत्व भाव को विकसित करने के लिए करवाई जाती है, ताकि हमारे खेल का स्तर जो है वो उत्कृष्ट हो और प्रतियोगिता की भावना का विकास हो. देखिए, एक सतत प्रक्रिया है जिसमें हम लोग अपने खिलाड़ी तैयार करते हैं ताकि नेशनल पुलिस खेलों में हमारे राज्य का जो प्रदर्शन है वो उत्कृष्ट हो और सभी खेलों की प्रतियोगिताएं अलग अलग स्थानों पर आयोजित की जाती है.
0: वखी खिलाड़ी गोपाल सिंह कन्याल ने बोल की ई तरह की प्रतियोगिता આયોજન સે પોલીસ જવાનો થે અગને બળના કો મોકા મિલદુ.
1: ये गेम अभी हमारे 31 वाहिनी पीएससी में चल रहे हैं. यहाँ से हमारे जनपद से और पीएससी आईआरबी टीमें आती हैं और ये गेम हमेशा होते रहने चाहिए. इससे हमें काफी अपनी फिटनेस का अच्छा एक हमें अनुभव मिलता है खेलने का और फिटनेस भी बनी रहती है. और इन गेमों से ये होता है कि हमारे स्टेट टीम से भी हमारे सिलेक्शन होता है और आगे हम नेशनल खेलने जाते हैं, ऑल इंडिया पुलिस गेम खेलने जाते हैं, आगे का हमें अनुभव मिलता है. इससे हमें काफी बेनिफिट भी होते हैं.
0: टिहरी जिला का मुनिकी रेती थाना क्षेत्र में एक सड़क दुर्घटना में शिवपुरी चौकी इंचार्ज उप निरीक्षक विनोद कुमार शर्मा को निधन हो गया. ड्यूटी का दौरान मुनिकी रेती बटी शिवपुरी चौकी जांदा बगत ऊंकू वाहन अनियंत्रित वेकी गहरी खाई में गिर गई. एसडीआरएफ और पुलिस संयुक्त टीम ने तत्काल रेस्क्यू अभियान चलेगी ऊंथे बहर निकाल और उपचारक हुणे एम्स ऋषिकेश पहुंचाई, जख चिकित्सकों ने ऊंथे मृत घोषित कर दिया. ई दुर्घटना पुलिस विभाग में शोक की लहर च. वखी राजधानी देहरादून में पटेल नगर क्षेत्र स्थित लालपुर का पास आज एक सिटी बस का चपेट में आण से 6 लोग घायल वेगी. घायलों थे अस्पताल में भर्ती करे गई. पुलिस ने बस चालक थे हिरासत में लियाल और मामला की जांच होनी च. अंत में मुख्य समाचार एक दा फिर. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में उच्च स्तरीय बैठक की समीक्षा करी. बोले कि कर्णप्रयाग और नगरासु प्रकरण में निष्पक्ष कार्रवाई जारी च, दोषियों पर वेली सख्त कार्रवाई. प्रदेश भर का जूनियर हाई स्कूल शिक्षकों थे शिक्षा विभाग का प्रस्तावित त्रिस्तरीय ढांचा में शामिल करे जाल. मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने केंद्रीय योजनाओं में अपेक्षित तकनीकी और संस्थागत सुधार थे तुरंत लागू करने का निर्देश दी. और 31वीं वाहिनी पीएससी रुद्रपुर में 3 दिवसीय प्रादेशिक हैंडबॉल क्लस्टर प्रतियोगिता शुरू. ये का दगड़ ही गढ़वली में प्रादेशिक समाचारों को यू अंक समाप्त हुंदू. नमस्कार.

अभी आप सुन रहे थे गढ़वाली प्रादेशिक समाचार। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है FM 100.5 MHz पर। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम कृषि जगत।

नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत मेरे यानी शिप्रा के साथ। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। दोस्तों, मौसम का मिजाज भी कुछ ऐसा ही है जैसे हमारे गांव के बुजुर्गों की बातें, कभी धूप में गर्माहट तो कभी बादलों की हल्की सी आहट। इन दिनों खेतों और गाँव में किसान भाई आने वाले मौसम और फसलों की तैयारी को लेकर सोच विचार में लगे हुए हैं। मौसम विभाग के अनुसार इस बार क्षेत्रों में बारिश सामान्य से कम रहने की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में किसानों के लिए यह और भी ज़रूरी हो जाता है कि वे अपनी खेती की योजना सोच समझकर बनाएं, पानी का सही उपयोग करें और फसल की ज़रूरतों को समझते हुए खेती करें। किसान भाइयों, अक्सर हम सुनते हैं कि अच्छी फसल के लिए अच्छा बीज, समय पर सिंचाई और खाद ज़रूरी है, लेकिन इन सब के बीच एक चीज़ है जिसको हम कई बार अनदेखा कर देते हैं और वह है हमारी मिट्टी। जी हाँ, आज हम बात करेंगे मृदा परीक्षण यानी मिट्टी की जांच के बारे में। किसान भाई जानते हैं कि जिस तरह इंसान के स्वास्थ्य की जांच जरूरी होती है, उसी तरह खेत की मिट्टी की जांच भी बहुत ज़रूरी होती है। बिना मिट्टी को समझे अगर हम लगातार खाद और उर्वरकों का इस्तेमाल करते रहे तो कई बार फायदा होने की जगह नुकसान भी हो सकता है। मृदा परीक्षण से हमें पता चलता है कि हमारी ज़मीन में कौन कौन से पोषक तत्व मौजूद हैं और किस तत्व की कमी है, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, सल्फर और अन्य सूक्ष्म पोषक तत्वों की जानकारी हमें मिट्टी की जांच से ही मिलती है। तो किसान भाइयों, मिट्टी की जांच कराने के लिए सबसे पहले खेत से सही तरह से मिट्टी का नमूना लेना ज़रूरी हो जाता है। खेत के अलग अलग हिस्सों से थोड़ी थोड़ी मिट्टी लेकर उसे अच्छी तरह मिलाकर नमूना तैयार किया जाता है और फिर इसे कृषि विभाग या मिट्टी जाँच केंद्र पर भेजा जाता है। मिट्टी जांच की रिपोर्ट मिलने के बाद किसानों को यह जानकारी मिलती है कि उनके खेतों में कौन सी फसल बेहतर रहेगी और कितनी मात्रा में खाद या उर्वरक का प्रयोग करना चाहिए। इससे खेती की लागत कम होती है और उत्पादन भी बेहतर हो सकता है। आज के समय में जब बारिश की अनिश्चितता बढ़ती जा रही है और खेती में लागत भी बढ़ रही है, तब मृदा परीक्षण किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बन गया है। स्वस्थ मिट्टी ही स्वस्थ फसल और अच्छी आय का आधार होती है। हमारे बुजुर्ग किसान भी कहते हैं कि धरती हमारी माँ है, इसकी देखभाल करेंगे तो यह हमें भरपूर फल देगी। इसलिए समय समय पर मिट्टी की जांच करवाकर अपनी ज़मीन की सेहत का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो किसान भाइयों और बहनों, अगली बार जब आप खेत में नई फसल की तैयारी करें तो एक बार अपनी मिट्टी की जाँच ज़रूर करवाएँ और खेती को बनाएँ और भी आसान, लाभकारी और टिकाऊ। इसी के साथ आइए अब लेते हैं संगीतमय विराम, फिर बात करेंगे कुछ और महत्वपूर्ण विषयों पर।

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: बेटी के लिए गहने बनवाए एकदम खरे हॉलमार्क के, और तो और दुकानदार ने खुद 15 मिनट में हॉलमार्क के निशान लगाकर भी दिए।
2: अरे बुद्धू, हॉलमार्क गहने तो सिर्फ BIS लाइसेंस होल्डर ज्वेलर ही बेचते हैं, और BIS हॉलमार्क करने के लिए 4-5 घंटे का वक्त लगता है।
3: अगर आप भी किसी ऐसे धोखे का शिकार हुए हैं तो BIS की वेबसाइट bis.org.in पर शिकायत करें। जागो ग्राहक जागो।
4: श्रोताओं, कार्यक्रम में अब प्रस्तुत है भेंट वार्ता मशरूम की खेती में चुनौतियां विषय पर, जिसमें हमारे सहयोगी विकास चमोली बात कर रहे हैं श्री सोहन लाल से। आइए सुनते हैं ये भेंट वार्ता।
5: नमस्कार, किसान साथियों, कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं रुद्रप्रयाग से सोहन लाल जी, जो कि हरिद्वार में मशरूम उत्पादक हैं, और काफ़ी लंबा अनुभव सोहन लाल जी का है। तो जानेंगे कि गर्मियों के समय में किस तरह की समस्याएं आमतौर पर देखी जाती हैं जो किसान मशरूम फार्मिंग कर रहे हैं। तो सोहन लाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी देहरादून के स्टूडियो।
6: सभी श्रोताओं को मेरा नमस्ते।
5: आज जैसे हमारी बातचीत का विषय है गर्मियों में किस तरह की चुनौतियां जो हमारे कृषक साथी हैं मशरूम का जो उत्पादन कर रहे हैं उनके सामने आ सकती हैं, तो शुरुआत से जानेंगे सोहन लाल जी, जैसे कि मशरूम फार्मिंग के लिए हम कंपोस्ट तैयार करते हैं, तो किस तरह की समस्याएं, किस तरह की चुनौतियां एक फार्मर के सामने आती हैं?
6: बहुत सही सवाल है। सबसे पहले हम कंपोस्ट में देखेंगे कि हमारा जो कंपोस्ट है वो सही तरीके से उसमें मॉइस्चर है कि नहीं है। अमूमन क्या होता है कि गर्मियों में शुष्क हवा चलती है जिसकी वजह से नमी उठ जाती है, तो हमें उसके हिसाब से अपने कंपोस्ट को आरच या नमी देनी पड़ती है।
5: तो नमी देने के लिए आप क्या पानी वगैरह डालते हैं फिर कंपोस्ट?
6: पानी या हवा का रेशियो हम बिल्कुल मेंटेन करके रखते हैं।
5: तो मेंटेन करने के लिए किस तरह से आप नमी को नापते हैं, कुछ नापने के लिए आपने कोई आपने रखा है?
6: जी, वैसे होते तो अमूमन आरएच मीटर है, लेकिन हम फिलहाल अभी हाथ से ही अनुमान लगा लेते हैं कि पानी की बूंद एक या दो बूंद या हाथ में मतलब एक लड्डू के आकार का कंपोस्ट बनाकर हम अपने चेक कर सकते हैं उसको।
5: यानी कि अगर वो लड्डू बन रहा है तो उसमें नमी पर्याप्त मात्रा में, नमी ऐसे हमारे किसान साथी देख सकते हैं।
6: 60-65% होना चाहिए
5: कंपोस्ट में,
6: कंपोस्ट में नमी
5: जी। इसके बाद जैसे कि हम बैग में उस कंपोस्ट को रखते हैं, और उसके बाद भी कई सारी चुनौतियां आमतौर पर किसानों के सामने आती हैं, तो थोड़े उनके बारे में भी हम जानें।
6: जी, जब हम कंपोस्ट को रूम में रखते हैं उसके बाद भी हमें तीनों टाइम सुबह शाम दिन में अपना कमरे को आरच में रखना पड़ता है। 85-95% आर्द्रता हमें रूम में चाहिए।
5: तो जैसे हमारे कुछ छोटे किसान भी हैं जिनके पास नमी बनाने के लिए, नमी मेंटेन रखने के लिए कई सारे आधुनिक उपकरणों की बात करें, या जैसे आजकल हम देख रहे हैं कि AC का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, तो थोड़ा बताएं कि वो किस तरह से काम करें ताकि उनके सामने इस तरह की चुनौतियां कम आएँ।
6: ठीक है, जैसे मन सीजनल झोपड़ी या अमूमन जो लोग हट में या रूम में करते हैं, तो उनके लिए मैं यही कहूँगा कि आप नमी को माने होल्ड करने की कैपेसिटी, जैसे बोरी हो थोड़ा कोई घास टाइप का जो कूलर पे अमूमन यूज होता है, तो उसको भिगा के कमरे में आप लगा सकते हो उसको।
5: किन चीज़ों से बचना चाहिए?
6: RH और हाई टेम्परेचर से।
5: जैसे आपने बताया कि झोपड़ी और उसमें नमी बनाने के लिए घास वगैरह का वो इस्तेमाल कर सकते हैं, बोरी का वो इस्तेमाल कर सकते हैं
6: जी।
5: इसके अलावा कुछ और उपाय भी हैं जो वो कर सकते हैं?
6: नहीं, फर्श को गीला कीजिएगा और RH मेंटेन तीनों टाइम आप अपने कमरे को पानी से भिगा के रखें
5: जी। नमी के अलावा अगर हम और बात करें, जैसे कई सारे ऐसे समस्याएं भी आ सकती हैं, चाहे हम रोगों की बात करें जिनके पनपने के लिए अनुकूल मौसम माना जाए।

0: तो उनके बारे में भी हमारे तमाम श्रोता जानना चाहेंगे।
1: जी बिल्कुल। देखो कई बार क्या होता है कि गर्मियों में जो हवा और जो तापमान होता है वो विभिन्न प्रकार के रोगों के लिए अनुकूल माना जाता है, जैसे कि ड्राई बबल, वेट बबल, अपना ग्रीन मोड और प्लास्टर मोड, कई तरह के मोड होते हैं जिसकी वजह से कमरे के अगर कोई संतुलन खराब हो गया, चाहे आरएच हो, चाहे टेम्परेचर हो, चाहे कोई वेंटिलेशन हो, है ना, चाहे कोई साफ सफाई ना हो रही हो, तो वो उन बीमारियों का आवागमन हो जाता है।
0: तो किस तरह की हमारे पास लक्षण प्रकट होते हैं अगर कोई भी रोग हमारी फसल में आता है?
1: ये मशरूम टेले मेले होते हैं, बुलबुले होते हैं, दाग धब्बे होते हैं, भूरे होते हैं, जिसकी वजह से किसानों को मतलब एक अच्छा मुनाफा नहीं मिल पाता, उसमें मार्केट रेट गिर जाता है।
0: जी, अगर इस तरह के कोई भी लक्षण हमारी फसल में हमें नजर आ रहे हैं तो किसान को क्या करना चाहिए?
1: अपनी कंट्रोलिंग यूनिट या मैं कहूँ झोपड़ी में, तो उसको मतलब साफ सफाई का विशेष ध्यान दें और अपना जो इन्वायरमेंट है कमरे का, भाई नमी सही मेंटेन करके रखे, टेम्परेचर सही मेंटेन करके रखे और वेंटिलेशन सही करके रखे, तो अमूमन आ जाता है कंट्रोलिंग में।
0: जी, अगर किसी बैग में इस तरह की रोग की समस्या है तो फिर क्या करना चाहिए?
1: मतलब मेनली उसको देखा जाए तो साफ सफाई पे विशेष फोकस होना चाहिए, और अगर कोई बैग ज़्यादा ही रोगाग्रस्त हो चुका है तो उसको फेंक सकते हैं।
0: अच्छा,
1: जी
0: तो उस बैग को आप अलग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम जमाव की बात करें गर्मियों में,
1: जी
0: इसमें भी हम देखते हैं कि कई सारी दिक्कतें आती हैं, तो थोड़ा इसके बारे में बताएं कि अगर इस तरह की कोई समस्या है तो किसान को क्या करना चाहिए?
1: देखो, अगर और जैसे सूखे बुलबुले या ग्रीन मोड वगैरह आ रहा है आपके फसल में, तो आप आरएच को बढ़ा सकते हैं, या अगर आपके पास पानी की कमी है या गलत पानी आप यूज कर रहे हैं, तो आप थोड़ा पानी का विशेष ध्यान दें और अपना आरएच को कमरे में मैक्सिमम ये रखें कि 85 से 95% के बीच रखें, और कहीं ना कहीं टेम्परेचर को कंट्रोल की स्थिति में लाने की कोशिश कीजिएगा। रूम टेम्परेचर या बैग टेम्परेचर अगर ज़्यादा हो रहा है, तो गर्मियों के टाइम पर हम अमूमन नंबर ऑफ बैग कम कर सकते हैं। अगर जैसे हमने हमें पता है कि हमारा एसी जो है कि सीमित कैपेसिटी का है, और गर्मियों में हमारा टेम्परेचर अगर अधिक बढ़ता है, तो हम उस टाइम गर्मियों में अपने नंबर ऑफ बैग रूम में कम कर सकते हैं। ये भी एक बेहतर सुझाव है।
0: यानी कि तापमान की ही हम बात करें तो कुल मिलाकर समस्या गर्मियों में तापमान बनती है। अगर आप तापमान को कंट्रोल कर पा रहे हैं तो फिर आपकी जो फसल है वो अच्छा उत्पादन आपको देगी। अच्छा, सर्दियों के मुकाबले अगर हम गर्मियों की बात करें, उत्पादन बढ़ाने के लिए हमारे मशरूम उत्पादक साथियों को क्या करना चाहिए?
1: गर्मियों में तो मैक्सिमम लोग यूज ही करते हैं, या हम लोग भी कॉमर्शियल फार्म या मतलब वो एसी फार्म लगाते हैं, जिसमें कि थोड़ा कॉस्ट ज़्यादा आती है। उस टाइम क्या होता है कि बाहर का टेम्परेचर 35 से 45 डिग्री तक पहुंच जाता है, और उस टाइम हमें थोड़ा कमरे को माने ठंडक चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि मशरूम भाई 14 से 18 डिग्री के आसपास ठंडे वातावरण में उत्पादन होने वाली फसल है। तो यही होगा कि उस टाइम मेनली टेम्परेचर का विशेष फोकस दें आप लोग, और अपना मतलब इन्वायरमेंट को कंट्रोल की स्थिति में रखें।
0: जी, तो जिन लोगों के पास एसी उपलब्ध नहीं है तो क्या वो कूलर या पंखे का इस्तेमाल कर सकते हैं?
1: हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, कूलर और पंखे का इस्तेमाल कर सकते हैं, और नाइट में ही यूज कीजिएगा, क्योंकि उस टाइम क्या होता है दोपहर में अपना CO2 बढ़ जाता है, क्योंकि बाहर की हवा गर्म होती है तो वो अंदर की नमी को भी बाहर के लेके जाती है ना, जिसके लिए हमारा मशरूम पीला हो सकता है, धब्बेदार हो सकता है, और ओवरऑल उसकी क्वालिटी में थोड़ा दिक्कत आएगी, जिसके लिए मार्केट में बेचने में थोड़ा हमें दिक्कतें पैदा होगी।
0: जी, तैयार मशरूम के साथ भी कई सारी सावधानियों का ध्यान रखना पड़ता है गर्मियों में। जैसे हम देखते हैं ना कि उसके बाद अगर हम उसको रख नहीं सकते, तुरंत हमने उसको मार्केट भेजना है, तो ऐसी स्थिति में हमारे किसानों को क्या करना चाहिए?
1: तुरंत मार्केट में मैं तो यही कहूँगा कि जो इस टाइम जो अभी 200 ग्राम की जो पैकेजिंग होती है, तो उसमें आप लगा के मार्केट में, या तुरंत 1-2 घंटे के अंतराल में आप अपना मार्केट को चूज कर सकते हैं या मार्केट में ले जा सकते हैं मशरूम को।
0: जी, और कई हमारे छोटे किसान भी हैं जिनको सही समय पर हम बाज़ार की बात करें या सही समय पर वो बाज़ार उन चीज़ों को नहीं पहुंचा पा रहे हैं, तो वो क्या कर सकते हैं ताकि उनको नुकसान ना झेलना पड़े?
1: उनके लिए तो यही होगा कि जालीदार जो करेटे होते हैं उनमें अपने मशरूम को रखें, 2-3 घंटे के आराम से सेल्फ लाइफ होती है मशरूम की, और जो कि 12 से 18 डिग्री के बीच में 2-4 घंटे आप कैपेसिटी होल्डिंग हो जाएगी।
0: जी, तो सोहनलाल जी, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने मशरूम उत्पादन में जो आमतौर पर गर्मियों में समस्या देखी जाती है इस विषय पर हमारे तमाम श्रोताओं के साथ साझा की। चलते चलते कुछ ऐसी बातें जो आप हमारे मशरूम उत्पादक साथियों के साथ साझा करना चाहें, और ख़ास तौर पर क्योंकि गर्मियों पर हम बात कर रहे हैं तो इस समय किस तरह की बातों का ध्यान रखना ज़रूरी हो जाता है।
1: देखो, गर्मी के मौसम में मशरूम का उत्पादन करना चुनौतीपूर्ण जरूर है, लेकिन मैं यही कहूँगा कि अच्छे वेंटिलेशन या अच्छा आर्द्रता या अच्छा टेम्परेचर या अच्छा साफ़ सफाई को लेके अगर देखा जाए, अगर उस इन सब चीज़ों का अगर कंट्रोल रखा जाए तो अच्छा उत्पादन, अच्छी गुणवत्ता और अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है।
0: जी, क्या गर्मियों में अच्छे दाम हमारे मशरूम उत्पादक साथियों को मिल जाते हैं मशरूम के?
1: जी हाँ, सीजनल और सर्दियों के हिसाब से गर्मियों में अच्छे दाम मिलते हैं।
0: कौन सी प्रजाति मशरूम की उगाने की आप सलाह देंगे इस समय जिसका अच्छा उत्पादन गर्मियों में भी हो सके?
1: वैसे बटन मशरूम ही ज़्यादा मार्केट में चलता है, लेकिन अभी के मौसम में अगर देखा जाए तो ऑयस्टर बेस्ट है।
0: ऑयस्टर मशरूम आसानी से इस समय उगाया जा सकता है।
1: जी
0: जी, तो सोहनलाल जी, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मशरूम उत्पादन और किस तरह की समस्याएं गर्मियों में मशरूम उत्पादन में आ सकती हैं इस विषय पर आपने हमारे तमाम किसान साथियों तक साझा की। स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
2: तो श्रोताओं, अभी हमने सुनी भेंट वार्ता, आइए अब आनंद लेते हैं इस रोहेलखंडी लोकगीत का, फिर जारी रखेंगे अपनी बातों का सिलसिला।

श्रोताओं, जैसे कि कार्यक्रम की शुरुआत में हमने बात की थी, बदलते मौसम और कम बारिश की संभावना को देखते हुए किसानों के लिए अपने फसलों की सही समय पर देखभाल करना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि खेती में केवल फसल बो देना ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि समय समय पर किए जाने वाले छोटे छोटे कृषि कार्य ही फसल को बेहतर उत्पादन तक पहुँचाते हैं। आज हम बात करेंगे पहाड़ों की एक खास और पारंपरिक फसल झंगोरा की, और जानेंगे कि झंगोरे की फसल में इस समय कौन कौन से सामयिक कार्य करने जरूरी हैं। तो किसान भाइयों, झंगोरा, जिसे कई स्थानों पर सांवा भी कहा जाता है, उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों की एक महत्वपूर्ण फसल है। यह कम पानी में भी अच्छी तरह उगने वाली फसल है और पोषण के लिहाज से भी काफ़ी उपयोगी मानी जाती है। आज के समय में जब सब लोग पारंपरिक और पौष्टिक अनाजों की ओर लौट रहे हैं, तो झंगोरे की मांग भी बढ़ रही है। अब बात करते हैं झंगोरे की फसल की देखभाल की। तो किसान भाइयों, झंगोरे की फसल में सबसे पहला और सबसे जरूरी काम है खरपतवार नियंत्रण। खेत में उगने वाली अनावश्यक घास और खरपतवार पौधों के साथ पोषक तत्वों और नमी के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, जिससे फसल की बढ़वार प्रभावित हो सकती है। इसलिए समय समय पर निराई गुड़ाई करना बहुत जरूरी है। यदि खेत में पर्याप्त नमी नहीं है और लंबे समय तक बारिश नहीं होती है, तो फसल की स्थिति को देखते हुए हल्की सिंचाई भी की जा सकती है। हालांकि झंगोरा अधिक पानी की मांग नहीं करता, लेकिन शुरुआती अवस्था में नमी का संतुलन बनाए रखना फसल के लिए लाभदायक होता है। इसके साथ ही किसान भाइयों को समय समय पर फसल का निरीक्षण करते रहना चाहिए। पौधों की पत्तियों में पीलापन, वृद्धि में कमी या किसी प्रकार के कीट का प्रकोप दिखाई दे तो तुरंत ध्यान देना चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर कृषि विशेषज्ञों की सलाह लेकर उचित उपचार अपनाना चाहिए। झंगोरे की अच्छी पैदावार के लिए खेत में पोषक तत्वों का संतुलन बनाए रखना भी जरूरी है। खेत की स्थिति के अनुसार जैविक खाद या आवश्यक पोषक तत्वों का प्रयोग किया जा सकता है। इससे पौधे की वृद्धि अच्छी होती है और दानों की गुणवत्ता भी बेहतर होती है। जब झंगोरे की बालियां पूरी तरह तैयार हो जाएं और दाने पकने लगें, तो कटाई में ज़्यादा देरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अधिक पकने पर दाने झड़ने की संभावना बढ़ जाती है और नुकसान हो सकता है। किसान भाइयों और बहनों, झंगोरा हमारी पहाड़ी संस्कृति और परंपरा से जुड़ी फसल है। सही समय पर किए गए सामयिक कार्य न केवल उत्पादन बढ़ाते हैं, बल्कि खेती को अधिक लाभकारी भी बनाते हैं। तो अपनी फसल का ध्यान रखें, समय समय पर खेतों का निरीक्षण करते रहें और खेत से जुड़ी छोटे छोटे कार्यों को नज़रअंदाज ना करें। और इसी के साथ अब वक्त हो रहा है हमारा आप सभी से विदा लेने का, पर जानने से पहले आपसे पूछना चाहेंगे कि क्या आप अपनी पसंद का लोकगीत या रागिनी रेडियो पर सुनना चाहते हैं? तो आपके लिए है एक सुनहरा अवसर। हेलो लोकमंजरी कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग शुक्रवार 26 जून को दोपहर 1:30 बजे से 2 बजे तक आयोजित की जाएगी। आप अपनी पसंद के लोकगीत और रागिनियों की फरमाइश करने के लिए हमें कॉल कर सकते हैं, जिसके लिए हमारा मोबाइल नंबर है 7088001382। हम एक बार फिर अपना मोबाइल नंबर दोहरा देते हैं। फ़ोन करने के लिए हमारा मोबाइल नंबर है 7088001382। तो देर किस बात की, अपनी पसंद हमें बताइए और लोक संगीत के इस खूबसूरत सफ़र का हिस्सा बन जाइए। और जानने से पहले हम ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा, जो बताने के लिए आप हमें पत्र भेज सकते हैं। और पत्र भेजने के लिए हमारा पता है, कार्यक्रम कृषि जगत द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी केंद्र देहरादून। हम अपना पता एक बार फिर दोहरा देते हैं, हमारा पता है कार्यक्रम

कृषि जगत द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी केंद्र देहरादून 248001। तो अब मुझे यानी शिप्रा को दीजिए इजाजत, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है, FM 100.5 MHz पर। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 7:30 होने को है। आइए अब सुनते हैं कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून बटी कुमाऊनी मा प्रादेशिक समाचार दगड़े मी कुसुम लता पिलखवाल।

0: पहली मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामिल सचिवालय में उच्च स्तरीय बैठक जांच पड़ताल करी। उन्होंने कहा कर्णप्रयाग और नगरासु प्रकरण में निष्पक्ष कार्रवाई जारी, दोषियों पर होल सख्त कार्रवाई। प्रदेश भरक जूनियर हाई स्कूल शिक्षकों के शिक्षा विभागक प्रस्तावित त्रिस्तरीय ढांचों में शामिल करी जल। मुख्य सचिव आनंद वर्धनल केंद्रीय योजनाओं में अपेक्षित तकनीकी और संस्थागत सुधार के तुरंत लागू करने का निर्देश दिए। और 31वीं वाहिनी PAC रुद्रपुर में 3 दिवसीय प्रादेशिक हैंडबॉल क्लस्टर प्रतियोगिता शुरू। अब समाचार विस्तार सुनो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामिल को कि कर्णप्रयाग और नगरासु में सामने आई घटनाओं के संबंध में सभी पक्षों के ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन जरूरी कार्रवाई करने। उन्होंने कहा कि जांच में जो ले दोषी पाई जाल वो खिलाफ कार्रवाई ले करी जरे और सभी वास्तविक जानकारी के आधार पर अगिन के लिए सख्त कार्रवाई करी जाल। आज सचिवालय में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री को कि चारधाम और हेमकुंड साहिब यात्रा पर आने वाले सभी श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा प्रदेश सरकार सभी ठोल प्राथमिकता छू। उन सभी श्रद्धालुओं और पर्यटकों ने अपील कर रहे कि वो देवभूमि उत्तराखंड शांत वातावरण में अपू यात्रा के पूरा आनंद लियो और कोले प्रकारक अफवाह पर ध्यान नहीं दियो। उन्होंने साफ करो कि झूठ और भड़काऊ खबरें फैलाने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करी जाए।
1: कर्णप्रयाग में और नगरासु में जो भी घटना सामने आई है और सभी पक्षों को हमने निष्पक्ष रूप से सरकार प्रशासन पुलिस कार्रवाई कर रही है और सभी प्रतिनिधि मंडल यहां पर प्रशासन के लोगों से मिले भी हैं और हमारे पुलिस महानिदेशक ने लगातार पिछले 2-3 दिनों से बात की है और सभी को बता दिया गया है कोई अब इशू नहीं है और कार्रवाई हो रही है, कानूनी कार्रवाई। जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई हुई है और कार्रवाई आगे भी होगी। और सोशल मीडिया पर या भ्रामक जो समाचार फैला रहे हैं, मैं उन सभी से कहना चाहता हूं कि अब जो भी जो है अब कानून अपने हाथ में इस प्रकार से लेगा, भ्रामक खबरें फैलाएगा, तो निश्चित रूप से उस पर कानूनी कार्रवाई भी होगी।
0: प्रदेश भरक जूनियर हाई स्कूल शिक्षकों के शिक्षा विभागक प्रस्तावित त्रिस्तरीय ढांचमा शामिल करी जाल। विद्यालय शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावतल देहरादून में विभागीय जांच पड़ताल बैठक के दौरान यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पुरान पेंशन योजना बटी वंचित शिक्षकों के लाभ देण और अशासकीय विद्यालयों में PTA शिक्षकों का मांग संबंधित प्रस्ताव ले जल्द मंत्रिमंडल के सामने लाई जाल। बैठक में DLED प्रशिक्षित शिक्षा मित्रों सामान कार्य लीजिए समान वेतनमान देण और अशासकीय विद्यालयों में मानदेय प्राप्त शिक्षकों के अस्थायी नियुक्ति प्रदान करनक दगर दोहर विषयों पर विचार विमर्श करी गो। यह प्रकरण निपटा रख लीजिए महानिदेशालय स्तर पर एक समिति गठित करनक निर्णय ले ली गो। कुमाऊं आयुक्त दीपक रावतल नैनीताल जिला काठगोदाम में जमीन धोखाधड़ी समितिक बैठक में जमीन धोखाधड़ी बटी जुड़ी 77 मामलों की जांच पड़ताल करी। अलग अलग जिलों बटी मिली मामलों की जांच के बाद कुमाऊं आयुक्तल 30 मामलों में मुकदमा दर्ज कराने का निर्देश दी। उन्होंने कहा कि जमीन धोखाधड़ी बटी संबंधित मामलों की रिपोर्ट जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक माध्यमल समिति ताले पहुँच जैक बाद हर एक मामले के गंभीरता जांच पड़ताल करी जाए।
2: मामले अलग अलग जिलों से आए थे जिसमें हम एक तो रिपोर्ट मांगते हैं तहसील से, DMs के थ्रू वो रिपोर्ट आती है। आजकल हमने पैरेलली SSPs को भी हम रिपोर्ट दे रहे हैं कि वो भी इसको प्रोब कर ले। तो उस सब के बाद जो रिपोर्ट्स आज यहाँ पे आई थी, कुल मिला के 77 मामले ऐसे थे जो हमने रखे थे यहाँ बैठक के लिए, जिनमें रिपोर्ट मांगी गई थी और यहाँ पे जो कमेटी बैठी उन्होंने इसको डिसाइड किया। तो हमने 30 मामलों में पाया कि ये लैंड फ्रॉड के मामले बनते हैं और इसमें मुकदमा दर्ज होना चाहिए। तो उसको कमेटी ने अप्रूव कर दिया है। इसके बाद ये FIRs दर्ज हो और इसमें जो इन्वेस्टिगेशन है वो आगे चलेगी।
0: कुमाऊं आयुक्तल को कि यदि योजनाबद्ध तरीकल जमीन धोखाधड़ी मामल सामने आनी तो संबंधित लोगों के विरुद्ध संगठित अपराधक अंतर्गत ले सख्त कार्रवाई करी जाए।
3: कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचारों के यो बुलेटिन अपू लोग आकाशवाणी देहरादून केंद्र बैठे सुनने लग रहा। इन समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड में ले उपलब्ध छन। ताजा समाचार नक लीजिए अपू लोग हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड के फॉलो कर सकता।
0: मुख्य सचिव आनंद वर्धनल राज्यक विकास कार्यों के रफ्तार दिनक लीजी संबंधित अधिकारियों के केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं और वित्तीय प्रबंधन के लिबेर कई महत्वपूर्ण निर्देश दे रही। आज सचिवालय में हई सचिव समिति बैठक में मुख्य सचिवल कौ की सभी विभाग केंद्रीय योजनाओं में उम्मीदक अनुसार तकनीकी और संस्थागत सुधार के तुरंत के लागू करूँ। उन्होंने कौ की येल केंद्र और बाहरी सहायतित परियोजनाओं धे मिलन वाल धनराशि बखत पर और पर्याप्त मात्रा में मिल सकेल। उन्होंने कहा कि जिन विभागों के नई आईटी आधारित सेवाओं और नवाचारों परीक्षण करना छू उ बिना को देरी के यके पूरा करूं। दगड़े ही जिन योजनाओं पर काम पूर हैगो उनर उपयोगिता प्रमाण पत्र और अन्य जरूरी कागजात बखत पर भेजे जाओ। मुख्य सचिवल को की जाले नई नीतियां बनाण या वर्तमान नीतियों में संशोधनक जरूरत छू वहां तुरंत प्रभावी कार्रवाई करी जाओ। उन्होंने साफ करो कि राज्य में केंद्रीय सहायताल चल नई विकास कार्यों के गति दृढ़क लीजी प्रशासनिक सुगमता और तकनीकी अपनाण बेहद जरूरी छू। यह लीजी सभी अधिकारियों के तैयारी काम करण हॉल। मानसून सीजनक दौरान भारी द्यो और भूमि धसाव जस चुनौतियों दे निबटनक लीजी प्रदेश सरकार राज्य पर्वतीय जिलों में जुलाई अगस्त और सितंबर महीनक राशन एक दगड़ उपलब्ध कराणक विशेष व्यवस्था कर रहे। अपर आयुक्त खाद्य पीएस पांगतिल बता कि पर्वतीय जिलों के सुदूर और बेहद दुर्गम इलाकों सरकारी गोदामों में 3 महीनक राशन पहुँच है लो। उन्होंने बता कि 1 जुलाई बटी राशन डीलरों के माध्यमल यके बाटन छुड़ कर दी जाल। श्री पांगतिल बता कि जुलाई महीनक दौरान ही 3 महीनों राशन उपभोक्ताओं के समयबद्ध तरीकल बांट दी जाल। जेल की मानसूनक दौरान खाद्यान्न आपूर्ति पूरी तरीकल सुचारू बनी रो।
4: मानसून को लेकर के हम लोगों ने 3 माह का राशन पर्वतीय जनपदों को पूर्व में ही भेजना प्रारंभ कर दिया था। लगभग सभी हमारे खाद्यान्न गोदामों में 3 माह का राशन पहुंच रहा है और हम 1 जुलाई से 3 माह का राशन जुलाई अगस्त सितंबर एक साथ हम वितरण करेंगे और उम्मीद रहेगी कि हम जुलाई में ही 3 माह का राशन पूरा वितरण सुनिश्चित कर लेंगे।
0: उधम सिंह नगर जेल में 31वीं वाहिनी पीएसी रुद्रपुर में आज बटी 3 दिवसीय प्रादेशिक हैंडबॉल क्लस्टर प्रतियोगिता शुरू है गई। पुलिस महानिरीक्षक सुनील कुमार मीणाल प्रतियोगिता का शुभारंभ करो। प्रतियोगिता में राज्यक चंपावत पिथौरगढ़ नैनीताल और उधम सिंह नगर दगड़ा 9 जिलों के 176 खिलाड़ी भाग ली नहीं। यह अवसर पर पुलिस महानिरीक्षक कल कौ की यौ तरीकक प्रतियोगिताएं पुलिस कर्मियों में खेल भावनाओं के विकसित करण और राष्ट्रीय स्तर पर भल प्रदर्शन करने में सहायक सिद्ध होनी।
5: ये प्रतियोगिताएं पुलिस में खेल भावनाओं को विकसित करने के लिए तथा आपस में भ्रातृत्व भाव को विकसित करने के लिए करवाई जाती है ताकि हमारे खेल का स्तर जो है वो उत्कृष्ट हो और प्रतियोगिता की भावना का विकास हो। देखिए एक सतत प्रक्रिया है जिसमें हम लोग अपने खिलाड़ी तैयार करते हैं ताकि नेशनल पुलिस खेलों में हमारे राज्य का जो प्रदर्शन है वो उत्कृष्ट हो और सभी खेलों की प्रतियोगिताएं अलग अलग स्थानों पर आयोजित की जाती है।
0: वे खिलाड़ी गोपाल सिंह कन्यालल को की यो तरीकक प्रतियोगिताओं का आयोजनल पुलिस जवानों के अगिन के बर्णक मौके मिलूं।
6: ये गेम अभी हमारे 31वीं पीएससी में चल रहे हैं। यहाँ से हमारे जनपद से और पीएससी आईआरबी टीमें आती हैं और ये गेम हमेशा होते रहने चाहिए। इससे हमें काफी अपनी फिटनेस का अच्छा एक हमें अनुभव मिलता है खेलने का और फिटनेस भी बनी रहती है और इन गेमों से ये होता है कि हमारे स्टेट टीम से भी हमारे सिलेक्शन होता है और आगे हम नेशनल खेलने जाते हैं ऑल इंडिया पुलिस गेम खेलने जाते हैं आगे का हमें अनुभव मिलता है इससे हमें काफी बेनिफिट भी होते हैं।
0: टिहरी जिले के मुनिकीरेती थाना क्षेत्र में एक सड़क हादसा में शिवपुरी चौकी इंचार्ज उप निरीक्षक विनोद कुमार शर्मा का निधन है गो। ड्यूटी के दौरान मुनिकीरेती बटी शिवपुरी चौकी जान बखत उनर गाड़ी अनियंत्रित हबेर गहरी खाई में घुरी गई। एसडीआरएफ और पुलिसक संयुक्त टीमल फॉरन रेस्क्यू अभियान चले बेर उनके भैर निकालो और उपचारक लीजी एम्स ऋषिकेश पहुंचा जहाँ चिकित्सकों उनके मृत घोषित कर दी। यह दुर्घटना पुलिस विभाग में शोकक लहर छू। वह राजधानी देहरादून पटेल नगर क्षेत्र स्थित लालपुरक पास आज एक सिटी बसक पेट में आणवजेल 6 लोग घायल है गई। घायलों के अस्पताल में भर्ती कराई गो। पुलिसल बस चालक के हिरासत में ली है लो और मामले की जांच ले करी जाने। आखिर में मुख्य समाचार आई सुनो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामिल सचिवालय में उच्च स्तरीय बैठक जांच पड़ताल करी। उन्होंने कर्णप्रयाग और नगरासू प्रकरण में निष्पक्ष कार्रवाई जारी, दोषियों पर होल सख्त कार्रवाई। प्रदेश भरक जूनियर हाईस्कूल शिक्षकों के शिक्षा विभागक प्रस्तावित त्रिस्तरीय ढांचमा शामिल करी चल। मुख्य सचिव आनंद वर्धनल केंद्रीय योजनाओं में अपेक्षित तकनीकी और संस्थागत सुधार के तुरंत लागू करने का निर्देश दी और 31वीं वाहिनी PAC रुद्रपुरमा 3 दिवसीय प्रादेशिक हैंडबॉल क्लस्टर प्रतियोगिता शुरू। योक दगड़े ही कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचारों यो अंक इति के समाप्त हूँ। नमस्कार।

अबे आप सुन रहे थे कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचार। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है, FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत। आप सभी प्यारे श्रोताओं का फिल्म संगीत में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। श्रोताओं, ये प्यारी शाम दिन का अंत नहीं, ये तो वो खूबसूरत संगम है जो जीवन की हर रंग को दिखाता है। आइए फिल्म संगीत की शुरुआत करते हैं वेकअप सेट फिल्म से कविता सेठ और अमिताभ भट्टाचार्य की आवाज में। शंकर एहसान लॉय का संगीत, जावेद अख्तर के बोल।

जग्गा जासूस फिल्म से आइए सुनते हैं ये अंतिम गीत तुषार जोशी की आवाज में, प्रीतम का मधुर संगीत, अमिताभ भट्टाचार्य की बेहतरीन बोल।

0: फिल्म संगीत अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए अब सुनते हैं क्षेत्रीय समाचार एकांश देहरादून की प्रस्तुति सप्ताह सार।
1: श्रोताओं नमस्कार, क्षेत्रीय समाचार एकांश के विशेष कार्यक्रम सप्ताह सार में आज मैं नीता कांटपाल आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। श्रोताओं कार्यक्रम सप्ताह सार में हम आपके लिए लेकर आते हैं सप्ताह भर की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। तो आइए बढ़ते हैं इस सप्ताह की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्लोवाकिया ने अपने देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये सम्मान प्रदान किया। सम्मान स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्लोवाकिया की सरकार और वहां के लोगों का आभार व्यक्त किया। श्रोताओं राज्य सरकार ने सहकारिता क्षेत्र को आधुनिक पारदर्शी और जनोन्मुखी बनाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने देहरादून में निबंधक सहकारी समितियां कार्यालय के नए ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ किया। इस अवसर पर डॉ. रावत ने कहा कि राज्य सरकार सहकारिता क्षेत्र को डिजिटल तकनीक से जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि नए पोर्टल के माध्यम से सहकारी समितियों से जुड़ी विभिन्न सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध होंगी, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और कार्यों में तेजी आएगी। डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि पोर्टल पर पंजीकरण, दस्तावेज प्रबंधन, शिकायत निवारण, नामांकन सत्यापन, ऑडिट प्रबंधन तथा MIS रिपोर्टिंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर रावत ने चयन आयोग के माध्यम से नियुक्त 45 सहायक सहकारी निरीक्षकों को नियुक्ति पत्र भी वितरित किए। श्रोताओं नव नियुक्त सहायक सहकारी निरीक्षकों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि युवा अधिकारी सहकारिता आंदोलन को नई दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। डॉक्टर रावत ने कहा कि प्रत्येक विकास खंड में सहकारिता नेटवर्क को मजबूत बनाने का आह्वान वो लोगों से करते हैं। डॉक्टर रावत ने बताया कि सरकार प्रत्येक विकास खंड में एक सहकारिता ग्राम विकसित करने की दिशा में कार्य कर रही है। श्रोताओं खेल मंत्री रेखा आर्या ने राष्ट्रीय खेलों के पदक विजेताओं को आउट ऑफ टर्न जॉब के लिए अगस्त माह तक विज्ञप्ति जारी करने के निर्देश दिए हैं। सचिवालय में आयोजित बैठक में उन्होंने अधिकारियों को इसे सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ पूरा करने को कहा। इसके अलावा उन्होंने खेल विश्वविद्यालय का शैक्षिक सत्र शुरू करने के लिए भी जल्द से जल्द नियुक्तियां करने के निर्देश दिए। बैठक में श्रीमती आर्य ने नई खेल नीति बनाने और हर ब्लॉक में मिनी स्टेडियम स्थापित करने के काम को भी तेजी के साथ पूरा करने के निर्देश दिए। श्रोताओं अब बात करेंगे किशाऊ बहुद्देश्य बांध परियोजना की। यमुना नदी के पुनर्जीवीकरण से जुड़ी वर्षों से लंबित किशाऊ बहुद्देश्य बांध परियोजना के क्रियान्वयन को लेकर संबंधित राज्यों के बीच सहमति बन गई है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित बैठक में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान ने परियोजना के क्रियान्वयन के लिए समझौता ज्ञापन पर सहमति व्यक्त की। समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने के बाद परियोजना को अंतिम अनुमोदन के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के समक्ष किया जाएगा। बैठक में ये निर्णय लिया गया है कि परियोजना के जल घटक की लागत का 90% हिस्सा केंद्र सरकार वहन करेगी, जबकि शेष 10% व्यय 6 सहभागी राज्यों द्वारा साझा किया जाएगा। गौरतलब है कि केंद्र सरकार संवाद और सहमति के माध्यम से राष्ट्रीय महत्व की लंबे समय से लंबित परियोजनाओं को आगे बढ़ाने की दिशा में

निरंतर कार्य कर रही हैं। श्रोता, उत्तराखंड में विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण अभियान के तहत गणना प्रपत्रों के वितरण और सत्यापन का कार्य तेजी से चल रहा है। सचिवालय मीडिया सेंटर में आयोजित प्रेस वार्ता में अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. विजय कुमार जोगदंडे ने बताया कि SIR के तहत मतदाता सूची को अधिक शुद्ध बनाने के लिए घर घर जाकर गणना प्रपत्र वितरित किए जा रहे हैं। डॉक्टर जोगदंडे ने बताया कि अब तक प्रदेश के लगभग 97% मतदाताओं तक गणना प्रपत्र पहुंचाए जा चुके हैं। 6 जिलों में प्रपत्र वितरण का कार्य 99% तक पूरा हो चुका है। वहीं अन्य जिलों में भी अभियान तेजी से चल रहा है और अगले 1-2 दिनों में वितरण कार्य पूरा कर लिया जाएगा। डॉक्टर जोगदंडे ने कहा कि मतदाताओं से प्राप्त प्रपत्रों का सत्यापन कर उन्हें निर्धारित पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा, जिससे मतदाता सूची में किसी भी प्रकार की त्रुटि या विसंगति को दूर किया जा सके। उन्होंने सभी मतदाताओं से समय पर अपने गणना प्रपत्र भरकर संबंधित बूथ लेवल अधिकारियों को उपलब्ध कराने की भी अपील की है। श्रोताओं, बढ़ते हैं अब अगली खबर की तरफ। मेरठ के मोदीपुरम से ऋषिकेश के लक्ष्मण झूला तक हाई स्पीड नमो भारत ट्रेन सेवा के विस्तार का मार्ग प्रशस्त हो गया है। इस परियोजना को लेकर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम NCRTC के बीच सहमति बन गई है। अब परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट DPR तैयार करने के लिए जल्द सर्वेक्षण शुरू किया जाएगा। परियोजना के तहत मेरठ के मोदीपुरम स्टेशन से नया ट्रैक बिछाया जाएगा, जो मुजफ्फरनगर, रुड़की और हरिद्वार होते हुए ऋषिकेश के लक्ष्मण झूला तक पहुंचेगा। राज्य सरकार ने परियोजना के लिए अपर सचिव रीना जोशी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है, जबकि NCRTC भी अपना नोडल अधिकारी नियुक्त कर चुका है। श्रोताओं, अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। प्रदेश में APL राज्य खाद्य योजना और अंत्योदय राशन कार्ड बनाने के लिए निर्धारित आय सीमा की समीक्षा की जाएगी। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रेखा आर्या ने अधिकारियों को समिति गठित कर वर्तमान मानकों का पुनर्मूल्यांकन करने के निर्देश दिए हैं। देहरादून में आयोजित विभागीय बैठक में उन्होंने कहा कि राशन कार्ड के लिए तय आय मानक काफी पुराने हो चुके हैं, जिससे पात्र लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने जिला पूर्ति अधिकारियों के सुझाव लेकर संशोधन का प्रस्ताव तैयार करने को कहा। खाद्य मंत्री ने बताया कि राशन विक्रेताओं का नवंबर माह से लंबित लाभांश 1 सप्ताह के भीतर जारी कर दिया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को 30 जून तक राशन वितरण प्रणाली को पूरी तरह ऑनलाइन करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में ये भी निर्णय लिया गया कि परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु के बाद उसका नाम राशन कार्ड से समय पर नहीं हटाने और उसके नाम पर राशन लेने के मामलों में रिकवरी तथा कानूनी कार्रवाई के प्रावधान किए जाएंगे। श्रोताओं, प्रदेश में खेल प्रतिभाओं की प्रगति पर अब पहले से अधिक बारीकी से नजर रखी जाएगी। मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना के तहत खिलाड़ियों की शारीरिक मानक योग्यता परीक्षा यानी PSAT साल में 2 बार लिया जाएगा, जबकि प्रत्येक शनिवार को 2 घंटे का वर्चुअल प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा। खेल मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि इससे खिलाड़ियों की क्षमता का बेहतर आकलन होने के साथ ही उनके प्रदर्शन में भी निरंतर सुधार सुनिश्चित किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि राज्य के सभी जिला क्रीड़ा अधिकारियों को इन दिशा निर्देशों का तत्काल और कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं, ताकि प्रदेश का कोई भी प्रतिभावान खिलाड़ी आगे बढ़ने के अवसर से वंचित न रहे। खेल मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना को और अधिक प्रभावी और आधुनिक बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है। योजना के नियमों और चयन प्रक्रिया में सुधार के लिए कुछ संशोधनों का प्रस्ताव तैयार किया गया है, जो शासन स्तर पर विचाराधीन है। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रस्तावित संशोधनों पर अंतिम निर्णय होने तक चयन और अन्य सभी प्रक्रियाएं पूर्व निर्धारित व्यवस्था के अनुसार निर्बाध रूप से जारी रहेंगी। श्रोताओं, अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। प्रधानमंत्री किसान उत्सव दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल से देश भर के किसानों के लिए PM किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी की है। इस दौरान देहरादून के हिमालय सांस्कृतिक केंद्र गढ़ी कैंट में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने प्रदेश के किसानों को बधाई देते हुए कहा कि PM किसान सम्मान निधि योजना किसानों के सम्मान और सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री ने बताया कि उत्तराखंड के 8 लाख से अधिक किसानों को 159 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि प्राप्त हुई है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2019 में राज्य के लगभग 4 लाख किसान इस योजना से लाभान्वित हो रहे थे, जबकि अब ये संख्या बढ़कर
बढ़कर 8 लाख से अधिक हो गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार

0: ने किसानों के हित में नहरों से सिंचाई पूरी तरह निशुल्क करने का निर्णय लिया है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए बजट में 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि राज्य में 115 करोड़ रुपए के निवेश से 350 से अधिक आधुनिक पॉली हाउस बनाए गए हैं। श्रोताओं, अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना, रोजगार क्षमता बढ़ाना और सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में अवसर उन्हीं देशों के होंगे जो कुशल प्रतिभाओं का पोषण करेंगे, नवाचार को बढ़ावा देंगे और गुणवत्ता के उच्चतम मानकों को बनाए रखेंगे। श्री मोदी ने कहा कि आने वाले वर्षों में भारत के युवा वैश्विक विकास, नवाचार और उद्यमिता को गति देने में अग्रणी होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं को उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है। प्रधानमंत्री ने बताया कि इस योजना से बड़ी संख्या में रोजगार सृजन हुआ है। श्रोताओं, आज कार्यक्रम सप्ताह सार में बस इतना ही। अगले अंक में कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे क्षेत्रीय समाचार एकांश देहरादून की प्रस्तुति सप्ताह सार। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है, FM 100.5 MHz पर। आइए अब सुनते हैं डॉक्टर प्रकाश चंद्र पंत की संस्कृत वार्ता। वार्ता का विषय है कालिदासस्य सामाजिक चिंतनम्।
2: कालिदासस्य सामाजिक चिंतनम्। मान्याः, अद्य लोके समाजे वा मानवीय मूल्यानां सामाजिक मूल्यानां च आवश्यकता अनुभूयते। विश्वस्मिन् सर्वे अपि मनुष्याः शान्तेः अन्वेषणं कुर्वन्ति। अद्य सत्यम्, अहिंसा, प्रेम, शान्तिः, सदाचरणं, सहिष्णुता, भ्रातृत्वं, समत्वं, निःस्वार्थता, सद्भावना च मानवीय मूल्यानां लोप इव संजातः। अतः अस्याम परिस्थितौ कालिदास वाङ्मये वर्णितानां सामाजिक मूल्यानां समाजस्य पुरतः समानयनस्य महती आवश्यकता वर्तते। मूल्यानां वर्णनं कालिदासेन कथं कृतमस्ति तत् शृणुमः। कालिदासेन महाकविना स्वकीय रचनासु सामाजिक विषयाणां समुल्लेखः यत्र तत्र सर्वत्र विहितौ वर्तते। कालिदासः कथयति, अहम् तादृशानां नृपाणां वर्णनं करोमि ये आजन्म शुद्धाः सन्ति, यथापराधं दण्डं ददति, यथा विधि नित्यम् एव अग्निहोत्रादिकं कुर्वन्ति। सत्यवक्तारौ मितभाषिणः यशस्विनः त्यागाय संभृतार्थाः च सन्ति। एवमेव सामाजिकैः युवकैः वृद्धैश्च कथं वर्तितव्यम् इत्यपि रघुवंश महाकाव्यस्य प्रथम सर्गे षष्ठे, सप्तमे, अष्टमे च पद्ये वर्णितम् अस्ति। यथा सोहमाजन्म शुद्धानां आफलोदय कर्मणां आ समुद्र क्षितीशानां अनाकरत वर्त्मनां, यथा विधि हुताग्नीनां, यथा कामार्चितार्थिनां, यथा पराध दण्डानां, यथा काल प्रबोधिनां। एवमेव अग्रे कालिदासः शिष्याणां च विषये लिखति, उत्तम अनुत्तमस्य, योग्यायोग्यस्य, कर्तव्याकर्तव्यस्य च विचारं कृत्वा सर्वाणि कार्याणि सम्पादनीयानि धीमता। उक्तमपि खलु, उपायं चिन्तयेत् धीमान् अपायमपि चिन्तयेत्। मालविकाग्निमित्रं नामके नाटके कविकुलगुरुः लिखति, पुराणमित्येव न साधु सर्वम्। अपि च कालिदासस्य ग्रन्थेषु यदि वयं सूक्ष्मरूपेण विचारं कुर्मः तर्हि तत्र सामाजिकी, नैतिकी च शिक्षा सरलरीत्या वर्णिता दृश्यते। कथं हि, शुश्रूषस्व गुरून् कुरु प्रियसखी वृत्तिं सपत्नी जने, पत्युर्विप्रकृतापि रोषणतया मास्मप्रतीपं गमः, भूयिष्ठं भवदक्षिणा परिजने भाग्येष्वनुत् शेकिनी यान्तेवं गृहिणी पदं युवतयो वामाः कुलस्याधयः। अभिज्ञान शाकुंतलस्य पद्यमिदम्। अत्र खलु गुरून् प्रति कीदृशः व्यवहारः करणीयः, कनिष्ठैः सह तत्समानैश्च सह कथं वर्तितव्यं, कविना प्रकारान्तरेण सर्वं शिक्षितम् एव। इदमेव पद्यं कालिदासस्य स्त्री शिक्षां प्रति जागरूकताम् अपि प्रदर्शयति। एवं प्रतीयते यत् महाकविः स्त्रीणां शिक्षा विषये भृशं चिन्तितः आसीत् इति। एवमेव पर्यावरण विषये तत्र कालिदासेन यत् पद्यं लिखितं तत्तु साम्प्रतम् अपि अस्माकं सर्वेषां कृते प्रेरकम् एव। तत्र कालिदासः लिखति, पातुं न प्रथमं व्यवस्यति जलं युष्माश्वसिक्तेषु या नादत्ते प्रियमण्डनापि भवतां स्नेहेन या पल्लवम्। आद्येवः कुसुमप्रसूतिसमये यस्याः भवत्युत्सवः सेयं याति शकुन्तलापतिगृहं सर्वैरनुज्ञायताम्। एवमेव अभिज्ञान शाकुंतलस्य प्रथमांके शकुंतला सखीभ्यां सह यदा वृक्षाणां सेचनं करोति तदा तासां वार्तालापो भवति। अपि नाम अहम् आत्ममनोनुरूपं वरं लभेयम् इति प्रियंवदा कथयति। एष नूनं तव आत्मगतो मनोरथः इति शकुंतला वदति। तदा राजा दुष्यन्तः कथयति, अपि नाम कुलपतेः इयम् असवर्णक्षेत्र सम्भवा स्यात् अथवा कृतं सन्देहेन इत्युक्त्वा तत्कालं पुनः पद्येस्मिन् सह प्रमाणमन्तः करणप्रवृत्तयः कथयित्वा सन्देहनिवारणम् अपि प्रकरोति। असवर्णक्षेत्रसम्भवा अर्थात् समानः वर्णः यस्य तत् सवर्णं, न सवर्णम् असवर्णम्, असवर्णे क्षेत्रे सम्भवा अथवा जन्मजातं यस्याः सा असवर्णक्षेत्रसम्भवा अर्थात् शकुन्तला। राजा चिन्तयति यदि शकुन्तला ब्राह्मणपत्नी जा अभविष्यत् तर्हि तया सह विवाहः न शक्यः। तद्विपरीतं पिता ब्राह्मणः माता च क्षत्रिया यदि स्यात् तर्हि तया कन्यया सह क्षत्रियस्य विवाहो सम्भवति। उपर्युक्तेन वर्णनेन इदं प्रतीयते यत् कालिदासस्य काले समाजे उपर्युक्ताः अनुलोम विवाहाः स्वीकृताः आसन् इति। गोसेवा। गोसेवा खलु पुण्यप्रदा मिष्ठान्नप्रदा कल्याणकारिणी इति। कालिदासकाले गोसेवायाः महत्त्वं रघुवंशस्य द्वितीयसर्गस्य अध्ययनेन स्पष्टरूपेण ज्ञायते। तत्र राजा दिलीपः सपत्नीको गोसेवायां रतो दृश्यते। महाभारतेऽपि सदुक्तं वर्तते यत् मिष्ठा सा गोमता जिता। अत्र पद्यमिदम्, अथ प्रजानामधिपः प्रभाते जाया प्रतिग्राहित गन्धमाल्यां वनाय पीता प्रतिबद्ध वत्सां यशो धनो धेनुमृषेर्मुमोच। अग्रे स्थितः स्थितामुच्चलितः प्रयातां निषेदुषोमासन बन्धधीरः जलाभिलाषी जलमा ददानां छायेव तां भूपतिरन्वगच्छत्। अखिलेस्मिन् लोके भारतम् एव खलु तादृशो देशो वर्तते यत्र वर्षे षड् ऋतवो भवन्ति। कालिदासेन षड् ऋतूनां समाजे उत्सवानां च चर्चा सर्वत्र कृता अस्ति। षट्सु ऋतुषु वसन्तः ऋतुराजः कथ्यते। लोके केषुचित् देशेषु केवलं शैत्यं भवति, केषुचिच्च केवलं घर्म एव, अतः तत्र षण्णामपि ऋतूनाम् अनुभवो न भवति। भारते तथा नास्ति। अत्र तु षण्णामपि ऋतूनाम् अनुभवं विधाय महाकविना कालिदासेन ऋतुसंहार नामके ग्रन्थे विशेषरूपेण तत्र वर्णनं कृतम् अस्ति। सर्वप्रथमं कालिदासः वसन्त ऋतोः ऋतौ किं किं भवति इति वर्णयन् लिखति। वसन्ते तु वृक्षेषु पुष्पाणि विकसन्ति, सरोवरेषु कमलपुष्पाणि समुद्भवन्ति, पवनः तस्मात् सुगन्धं विकिरति, दिवसाश्च सुखप्रदाः भवन्ति। कथं द्रुमा सपुष्पा सलिलं सपद्मं स्त्रियः सकामा पवनः सुगन्धिः सुखाप्रदोषा दिवसाश्च रम्या सर्वं प्रिये चारुतरं वसन्ति। शीतकालः समाप्तः भवति अस्मिन् ऋतौ, अत्यधिको घर्मश्चापि न भवति, यतो हि ग्रीष्म ऋतुः दूरे अस्ति, तस्मात् समशीतोष्णं। कालिदासो लिखति यद् वसन्त ऋतौ गुरूणि अर्थात् भारयुक्तानि ऊर्ण निर्मितानि वस्त्राणि विहाय तूलिका तल्पादिकमपि परित्यज्य जनाः सहर्षम् इतस्ततो विचरन्ति। विलासिन्यः स्व अंगेषु

0: च आविष्कर्तुः आर्यभट्टस्य सिद्धान्तानुरूपम् एव मन्यन्ते। कविता कामिनी कान्तः प्रकृतिचित्रणपटुः कविकुलगुरुः कालिदासः स्वकृतिभिः कस्य सचेतसौ हृदयं न रञ्जयति। अयं कविर् न केवलं संस्कृतसाहित्यस्य प्रत्युत विश्वस्य मुकुटमणिर्वर्तते। इत्थं हि कालिदासस्य ग्रन्थेषु रचनासु च यत्र तत्र सर्वत्र सामाजिकं चिन्तनं स्पष्टं दृश्यते। इत्थं वयं वक्तुं शक्नुमो यत् कालिदासवाङ्मये मानवीयसामाजिकविषयाः पदे पदे वर्णिताः सन्ति इति। साम्प्रतं तेषाम् आचरणस्य प्रचारस्य प्रसारस्य च आवश्यकता वर्तते, येन समाजजनाः उपकृताः स्युः इति। नमो नमः।
1: अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर प्रकाश चंद्र पंत की संस्कृत वार्ता। वार्ता का विषय था कालिदासस्य सामाजिक चिंतनम। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है, FM 100.5 MHz पर। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सुगम संगीत में डॉक्टर देव प्रसाद कर के गाए भजन। आपके साथ संगत कलाकार हैं, तबला पर अंकित कश्यप और हारमोनियम पर हैं मनीष कुमार शाह।

कार्यक्रम सुगम संगीत में आज हम आपको सुनवा रहे हैं डॉक्टर देव प्रसाद कर के गाए भजन। आपके साथ संगत कर रहे हैं तबला पर अंकित कश्यप और हारमोनियम पर मनीष कुमार शाह।

कार्यक्रम सुगम संगीत में अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर देव प्रसाद कर के गाए भजन। आपके साथ संगत कलाकार थे तबला पर अंकित कश्यप और हारमोनियम पर थे मनीष कुमार शाह। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है FM 100.5 MHz पर। आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में आप सभी प्यारे श्रोताओं का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। श्रोताओं, रात सिर्फ अंधेरा नहीं लाती, ये दिन के शोर को थामकर सुकून लाती है। यही तो वो खूबसूरत समय है जब हम अपने ख्वाबों से मिलते हैं और अपने दिल की बातें सुनते हैं। तो आइए फिल्म संगीत की शुरुआत करते हैं इस गीत के साथ।

आनंद बख्शी के खूबसूरत बोल अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में। दुल्हन फिल्म का ये गीत था, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। फिल्म संगीत में अगला तराना आप सभी तक पहुंच रहा है आशा भोसले और यशुदास के युगल स्वर में।

फिल्म संगीत में घरोंदा फिल्म से आइए सुनते हैं ये अंतिम गीत भूपेंद्र की आवाज में। नक्श लयालपुरी के बोल मधुर संगीत है जयदेव का।

0: फिल्म संगीत अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से FM 100.5 MHz पर। आइए अब सुनते हैं समाचार जिन्हें आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सुरक्षा सहयोग मजबूत करने और आतंकवाद तथा साइबर सुरक्षा जैसी चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नागरिक अलंकरण के दूसरे समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पुरस्कार पाने वालों में पत्रकार पी नारायणन, पूर्व टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी और आर माधवन तथा गायिका अलका याग्निक शामिल। सरकार ने कहा, अल नीनो के कारण कमजोर मॉनसून के संभावित असर से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां की जा रही हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल तक गरज के साथ तेज हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। जर्मनी में जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में भारत का दबदबा जारी। आज भारत ने 2 रजत सहित 3 पदक जीते। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में पुर्तगाल का सामना उज्बेकिस्तान से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने और आतंकवाद तथा साइबर सुरक्षा से लेकर उभरती प्रौद्योगिकियों तक की साझा चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री ने आज शाम ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों तथा वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता व्यावहारिक सहयोग को बढ़ावा देने, वैश्विक दक्षिण की प्राथमिकताओं का समर्थन करने और एक सुरक्षित, अधिक संरक्षित तथा समावेशी विश्व में योगदान देने का प्रयास करेगी। इस बीच ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक आज नई दिल्ली में हुई। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और शिष्टमंडल के प्रमुखों ने दुनिया के सामने मौजूदा सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। इस दौरान पारंपरिक सुरक्षा के अलावा ऊर्जा, खाद्य आपूर्ति श्रृंखला और साइबर सुरक्षा तथा आतंकवादी नेटवर्क द्वारा इस्तेमाल की जा रही नई तकनीकों और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों पर भी चर्चा की गई। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने 2026 में भारत की ब्रिक्स की अध्यक्षता के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया। बैठक के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संयुक्त रूप से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने नागरिक देवोभव की सोच के साथ अधिकारियों से शासन में नागरिकों को केंद्र में रखने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में सहायक सचिव के रूप में नियुक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के वर्ष 2024 बैच के 183 प्रशिक्षु अधिकारियों से बातचीत की। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा सिविल सेवकों से 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को केंद्र में रखते हुए कार्य करने का आह्वान किया। श्री मोदी ने युवा सिविल सेवकों से दृढ़ संकल्प, नवाचार और नागरिक केंद्रित शासन के साथ राष्ट्र निर्माण के लिए स्वयं को समर्पित करने का आग्रह किया। विकसित भारत 2047 की परिकल्पना का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले दशकों में हर नीति और प्रशासनिक निर्णय का उद्देश्य विकसित भारत का निर्माण होना चाहिए। श्री मोदी ने युवा अधिकारियों से राष्ट्र निर्माण में अपने योगदान का निरंतर मूल्यांकन करने का भी आग्रह किया। समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण के दूसरे समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक हैं। पत्रकार पी नारायणन को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में तथा पूर्व न्यायाधीश केटी थॉमस को समाज सेवा के लिए पद्म विभूषण से अलंकृत किया गया। एक रिपोर्ट।
3: इस साल सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की थी। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। आज के समारोह में पद्म भूषण 7 लोगों को दिया गया, जिनमें पूर्व टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी और प्रख्यात गायिका अलका याग्निक शामिल हैं। वहीं राजनेता शिबू सोरेन को मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इसके अलावा 57 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किए गए, जिनमें क्रिकेटर रोहित शर्मा, मशहूर अभिनेता आर माधवन और प्रसार भारती के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेम्पत्ति शामिल हैं। वहीं प्रसिद्ध टेलीविजन और फिल्म अभिनेता सतीश शाह को मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल रहे। सुपर्णा सेकिया के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि सरकार अल नीनो के कारण मॉनसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने ये बात कही।
4: अल नीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है, और इसका मतलब ये है कि हमारी खरीफ की फसल उस पर इसका असर पड़ सकता है, और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना।
1: श्री चौहान ने कहा कि राज्यों को दलहन, मोटे अनाज और तिलहन जैसी फसलों को बढ़ावा देने की सलाह दी गई है। इन फसलों को कम पानी की आवश्यकता होती है और जो कठिन परिस्थितियों में भी अच्छी पैदावार दे सकती हैं। खान मंत्रालय ने 56 महत्वपूर्ण खनिज खंडों और 11 खनन अन्वेषण लाइसेंस खंडों की सफल नीलामी के साथ देश के खनिज मिशन को गति प्रदान की है। मंत्रालय ने नीलामी के सातवें चरण के अंतर्गत 10 महत्वपूर्ण खनिज खंडों की सफलतापूर्वक नीलामी की है। इससे अब तक नीलाम किए गए खंडों की कुल संख्या 56 हो गई है। कुल मिलाकर अब तक 88 खंडों की नीलामी हो चुकी है। इस चरण में ग्रेफाइट, दुर्लभ खनिज, वेनेडियम, टाइटेनियम, ग्लोकोनाइट और रॉक फॉस्फेट जैसे खनिज शामिल थे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए ट्रकों और बसों से बदलने के लिए सरकार डेमलर इंडिया कमर्शियल व्हीकल्स के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। मंत्रालय ने कहा कि ये समझौते के अंतर्गत मूल उपकरण निर्माता योजना के अंतर्गत खरीदे गए ट्रकों और बसों के एक्स शोरूम मूल्य पर 8% की छूट प्रदान की जाएगी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अंतर्गत दोनों मंत्रालयों में राष्ट्रीय परिवहन गतिशीलता और किफायती आवाजाही व्यवस्था की स्थापना की जाएगी। केंद्र का मुख्य उद्देश्य सड़क और परिवहन क्षेत्र में दीर्घकालिक योजना, निवेश और नीति निर्माण में सहयोग के लिए उपयोगी अंतर्दृष्टि प्रदान करना होगा। विदेश मंत्रालय ने आज बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी क्षेत्र में मौजूद हैं। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कहा कि अमरीका और ईरान के बीच समझौता ज्ञापन होने के बाद से भारत आने वाले 11 जहाजों ने होर्मुज जलडमरू मध्य को पार किया है। इनमें भारतीय ध्वज वाले कच्चे तेल के 3 टैंकर के अलावा विदेशी ध्वज वाला एक LPG वाहक पोत, एक कच्चा तेल टैंकर और उर्वरक लदे 6 मालवाहक जहाज शामिल। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारतीय ध्वज वाले बाकी जहाज भी जल्दी होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजर सकेंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि कतर में हुए धमाके में मारे गए भारतीय नागरिकों के शवों को वापस लाने के लिए भारत सरकार कतर के साथ मिलकर काम कर रही है।
5: रास लफान परियोजना में जब वहाँ एक विस्फोट हुआ, उस विस्फोट में 12 भारतीय नागरिक मारे गए हैं। इसके अलावा कुल 66 लोग ऐसे हैं जो घायल हुए हैं, वो लोग सब लोग सुरक्षित हैं और हॉस्पिटल में उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट हो रही है। ये 12 लोग के बारे में हम लोग कतर में वहाँ के सरकार के साथ और इनके परिवारजनों के साथ उनसे बातचीत हो रही है हमारी।
1: ब्रिक्स के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक के बारे में श्री जायसवाल ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कल ईरान, इथियोपिया, चीन, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की।
5: ब्रिक्स NSA की मीटिंग चल रही है, कल हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की चीन के विदेश मंत्री और वहाँ के पॉलिट ब्यूरो के जो चीफ हैं उनसे भी हमारे NSA की द्विपक्षीय वार्ता हुई और इसमें उन्होंने जो हमारे द्विपक्षीय संबंध हैं उसके बारे में जिक्र किया और ये सकारात्मक बातचीत थी।
1: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने फिलिस्तीन के साथ अच्छे संबंधों के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि हमने मानवीय आधार पर फिलिस्तीन को सहायता भी प्रदान की है।
5: सालों से फिलिस्तीन के साथ हमारे अच्छे संबंध रहे हैं और हम लोगों ने उनको विकास की साझेदारी के तहत कई एक सारे प्रोजेक्ट्स मुहैया कराया है। ये प्रोजेक्ट्स हम लोगों ने द्विपक्षीय तरीके से और साथ ही साथ UNRWA के माध्यम से भी मुहैया कराया है और मानवीय आधार पर उनको सहायता भी प्रदान की है और आगे भी ये कार्य हमारा चलता रहेगा।
1: भारत संयुक्त अरब अमीरात रक्षा साझेदारी पर श्री जायसवाल ने कहा कि हाल के कुछ वर्षों में संयुक्त अरब अमीरात के साथ भारत के रिश्तों में काफी सुधार हुआ है और रक्षा साझेदारी की इसमें प्रमुख भूमिका है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मंगोलिया के विदेश मंत्री बत्सिस सेक बटमुख और उद्योग तथा खनन मंत्री गोंगोर दमदनियाम के साथ मंगोल तेल शोधन परियोजना के निर्माण स्थल का दौरा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने कहा कि भारत और मंगोलिया की मैत्री परियोजना में निरंतर प्रगति हो रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर के नेतृत्व वाले शिष्टमंडल से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि इस दौरान दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने पर विचार विमर्श किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET 2026 के परिणाम आज घोषित कर दिए। उम्मीदवार CUET के आधिकारिक पोर्टल पर अपना स्कोर कार्ड देख सकते हैं। एजेंसी के अनुसार इस वर्ष प्रवेश परीक्षा में 11 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए। नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. अशोक कुमार लाहिड़ी ने कहा है कि पिछली तिमाही में भारत का कुल व्यापार 5.4% बढ़ा है। आज नई दिल्ली में ट्रेड वॉच क्वार्टरली रिपोर्ट का नवीनतम संस्करण जारी करते हुए उन्होंने ये बात कही। श्री लाहिड़ी ने कहा कि पिछली तिमाही में भारत का निर्यात $1.84 trillion तक पहुँच गया और आयात में 6.5% की वृद्धि हुई। उन्होंने कहा कि भारत को सिर्फ पेट्रोल पर निर्भर न होकर दूसरे विकल्पों की ओर बढ़ना चाहिए।
6: डाइवर्सिफिकेशन मतलब सिर्फ पेट्रोलियम में निर्भर होना नहीं चाहिए, तो इसलिए रिन्यूएबल एनर्जी, बायोगैस, विंड, सोलर, न्यूक्लियर वो करना चाहिए। और दूसरी चीज है वी शुड एक्सप्लोर मोर सो दैट वी कैन हैव मोर डोमेस्टिक पेट्रोलियम। थर्ड इज वी शुड डाइवर्सिफाई आवर सोर्सेस। एक जगह कुछ गड़बड़ हो गया तो हमें और कहीं से ला पाएंगे।
1: मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल तक गरज के साथ तेज हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आज तेज वर्षा, आंधी और तेज हवाएं चली जिससे तापमान में गिरावट आई। अगले 2 से 3 दिनों तक असम, मेघालय, आंतरिक कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। विभाग ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, पंजाब और उत्तराखंड में कल तक तेज हवा के साथ बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। जर्मनी के सुहल में ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 रजत और 1 कांस्य पदक सहित कुल 3 पदक अपने नाम किए। 10 मीटर एयर पिस्टल पुरुष जूनियर स्पर्धा में शिवा नरवाल ने रजत और युग प्रताप सिंह राठौर ने 1 कांस्य पदक जीता। 10 मीटर एयर पिस्टल पुरुष जूनियर टीम स्पर्धा में शिवा नरवाल, संदीप बिश्नोई और चिराग शर्मा की तिकड़ी ने रजत पदक जीता। अब भारत के कुल 15 पदक हो गए हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात 10:30 बजे ग्रुप के एक मैच में अमेरिका के ह्यूस्टन में पुर्तगाल का सामना उज्बेकिस्तान से होगा। ग्रुप एल में रात 1:30 बजे इंग्लैंड का सामना घाना से होगा। वहीं सुबह 4:30 बजे क्रोएशिया का सामना पनामा से होगा। लंदन में FIH हॉकी प्रो लीग में भारत ने पाकिस्तान को 4-3 से हरा दिया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सुरक्षा सहयोग मजबूत करने और आतंकवाद तथा साइबर सुरक्षा जैसी चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नागरिक अलंकरण के 2 समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पुरस्कार पाने वालों में पत्रकार पी नारायणन, पूर्व टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी और R. माधवन तथा गायिका अलका याग्निक शामिल। सरकार ने कहा अल नीनो के कारण कमजोर मॉनसून के संभावित असर से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां की जा रही हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल तक गरज के साथ तेज हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: Good evening. This is Akashvani and I'm Saira Mujtaba with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says BRICS has vital role in deepening security cooperation and addressing challenges like terrorism and cyber security. President Draupadi Murmu presents Padma Awards at 2nd Civil Investiture Ceremony. Journalist P. Narayanan, tennis legend Vijay Amrit Raj, actors Mammootty and R. Madhavan and singer Alka Yagnik among renowned recipients. Government says it is making advanced preparations to help farmers deal with the possible impact of weak monsoon caused by El Nino. IMD issues orange alert for thunder squall in Delhi, Haryana, Chandigarh and West Uttar Pradesh till tomorrow. Indian men's hockey team beat arch rivals Pakistan 4-3 in opening match of FIH Pro League in London. And in FIFA World Cup, Portugal to take on Uzbekistan in Houston, US. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today said that in a changing global landscape, BRICS has a vital role in deepening security cooperation and addressing shared challenges from terrorism and cybersecurity to emerging technologies. Prime Minister Modi met national security advisors and senior security officials of BRICS countries, that is Brazil, Russia, India, China and South Africa, in New Delhi this evening. In a social media post, he also highlighted that India's BRICS chairmanship will seek to advance practical cooperation, support the priorities of the Global South and contribute to a safer, more secure and inclusive world. Prime Minister Narendra Modi has stressed on Nagrik Devo Bhava and urged officers to keep citizens at the centre of governance. Interacting with 183 officer trainees of IAS 2024 batch who have been attached as assistant secretaries in various ministries and departments in New Delhi today, Mr. Modi called upon young civil servants to lead India's journey towards Viksit Bharat at 2047. The Prime Minister urged the young civil servants to dedicate themselves to nation building with a strong sense of purpose, innovation and citizen-centric governance. The Prime Minister also highlighted the growing role of women in nation building, noting that more than 40% of the current batch comprises women officers. Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan today said that the government is making advanced preparations for Kharif season to help farmers deal with the possible impact of a weak monsoon caused by El Nino. Addressing a press conference in New Delhi, Mr. Chauhan said that the country had so far seen around 43% less rainfall and that the monsoon was expected to remain weak in July too.
8: Overall rainfall has been 43% below normal so far, and according to the weather forecast, conditions are likely to remain weak until the week ending 2nd July. This means that our kharif crops could be affected. We have been preparing for such situations for quite some time. An assessment has also been carried out to determine how many districts may be affected. Based on the current projections, around 315 districts are likely to experience deficient rainfall.
7: Mr. Chauhan said that states have been advised to promote crops like pulses, coarse grains and oilseeds, which require less water and can still perform well under difficult conditions. He said scientific protocols, timely crop planning and district-level preparedness were being strengthened in coordination with the states. Mr. Chauhan added that Krishi Vigyan Kendra, AgroMet units and other advisory channels are being used to ensure that farmers receive timely guidance. The International Centre for Ocean Information Services, or INCOIS, has begun issuing specialised bulletins on the potential impacts of the ongoing El Nino event on maritime sectors. The first bulletin was released by Shivela Member of Parliament, Konda Vishweshwar Reddy, at an event in Hyderabad. The bulletin states that the El Nino event is steadily developing and is expected to peak during winters between November 2026 and January 2027. Sea surface temperatures in the Indian Ocean are projected to remain above normal till May 2027. President Draupadi Murmu presented the Padma Awards at the second civil investiture ceremony at Rashtrapati Bhavan this evening. Journalist P. Narayanan, tennis legend Vijay Amrit Raj, actors Mammootty and R. Madhavan and Sengal Kayagnik are among the decorated recipients. A report.
9: This year, the government had announced a total of 131 Padma Awards. These include 5 Padma Vibhushan, 13 Padma Bhushan and 113 Padma Shri Awards. Padma Bhushan was given to 7 persons, including former tennis player Vijay Amrit Raj, actor Mammootty and playback singer Alka Yagnik in today's ceremony. Politician Shibu Soren was awarded the Padma Bhushan posthumously. 57 persons received the Padma Shri Award, including cricketer Rohit Sharma, actor R. Madhavan and former Prasar Bharati CEO Shashi Shekhar Vempati. Actor Satish Shah was given the Padma Shri posthumously. Vice President C.P. Radhakrishnan, Prime Minister Narendra Modi and Home Minister Amit Shah were among those who were present on the occasion. Suparna Saikya, Akashwani News, Delhi.
7: The National Testing Agency or NTA today announced the results of Common University Entrance Test CUET 2026 for undergraduate admissions. Candidates who appeared for the examination can now access their scorecards through the official CUET portal. According to NTA, over 11 lakh candidates appeared for the examination this year. A three-member special investigation team or SIT probing the alleged anomalies in donations and offerings at the Ayodhya Ram Mandir has submitted its initial probe report today. The report was submitted to Additional Chief Secretary Home Sanjay Prasad by SIT Head Vijay Vishwas Pant, who is Commissioner of Lucknow. The high-level panel was constituted by the state government to investigate alleged financial irregularities and misappropriation of funds. This is Akashvani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download the News on AIR app. Welcome back. You're listening to News at 9. The Ministry of External Affairs today confirmed the death of 12 Indian citizens in an explosion in Qatar. Addressing media in New Delhi this afternoon, Ministry spokesperson Ranthir Jaiswal said a total of 66 people were injured in the incident and are currently receiving medical treatment.
10: We lost 12 of our nationals in the tragedy in Ras Laffan gas field where an explosion happened. Several other people have also been injured. I am told that some 66 people are injured across nationalities. We don't know exactly how many of them are Indian nationals, but all those people who are injured are safe. We are talking to the local authorities for the identification of the mortal remains, as also for the transportation of mortal remains to India. We are also in touch with the family members of those who have died in this very unfortunate accident.
7: Responding to the comments made by Pakistani Defence Minister Khwaja Asif on the situation in Pakistan-occupied Kashmir, the spokesperson said such remarks are desperate attempts by the neighbouring country to cover up its own failings and deflect attention away from its human rights abuses.
10: Such remarks are desperate attempts by Pakistan to cover up its own failings and deflect attention away from its human rights abuses. We categorically reject these fabricated claims with the contempt that they deserve. The ongoing protests in Pakistan-occupied Kashmir are a direct consequence of Pakistan's decades-long policy of systemic economic exploitation, denial of fundamental rights, and administrative oppression. We hope the international community will hold Pakistan accountable for its misdeeds and abuses.
7: Mr. Jaiswal said that since the signing of MOU between the US and Iran on the 17th of June, 11 India-bound vessels have transited through the Strait of Hormuz. He hoped that the remaining India-flagged vessels would also be able to cross the strait soon. The Tamil Nadu government has set up a helpline to assist people affected by the fire tragedy in Qatar. Chief Minister C. Joseph Vijay today announced an ex gratia of 10 lakh rupees each to the families of those who lost their lives in the incident. He said, the state government is taking steps to bring back the mortal remains of the three victims in coordination with the Ministry of External Affairs and the Indian Embassy in Qatar. Prime Minister Narendra Modi has congratulated Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed Ali and the Prosperity Party on their decisive victory in the Ethiopian parliamentary elections. In a social media post, Mr. Modi said, India greatly cherishes its historic, multifaceted and deep-rooted ties with Ethiopia. Mr. Modi also reaffirmed his commitment to deepening the bonds of friendship

0: सुन केंद्र है FM 100.5 MHz पर। रात्रि के 9:30 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम विज्ञान पत्रिका।
1: श्रोताओं, विज्ञान पत्रिका कार्यक्रम के इस अंक में आपका स्वागत है। आज के इस अंक में आप डॉक्टर विनीत गहलोत, निदेशक वाडिया हिमालयी भूविज्ञान संस्थान देहरादून से भूकंप के विज्ञान के बारे में रमेश चंद्रा की भेंट वार्ता सुनेंगे। साथ ही पेट्रोलियम और ऊर्जा अध्ययन विश्वविद्यालय के डॉक्टर राजेश त्रिपाठी से भेंट वार्ता में जानेंगे ऊर्जा संरक्षण के बारे में, और सुनेंगे डॉक्टर उमेश चंद्र नैथानी की वार्ता ऑप्टिकल फाइबर डिजिटल भारत की रीढ़। तो आइए कार्यक्रम के आरंभ में सुनते हैं भूकंप के विज्ञान के बारे में डॉक्टर विनीत गहलोत से रमेश चंद्रा की भेंट वार्ता। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर विनीत गहलोत को। आप निदेशक हैं वाडिया इंस्टीट्यूट हिमालयन जियोलॉजी देहरादून में। डॉक्टर विनीत गहलोत, कार्यक्रम आपको बहुत बहुत स्वागत।
2: धन्यवाद।
1: डॉक्टर विनीत गहलोत, भूकंप है क्या?
2: जो हमारी प्रकृति है उसमें कई सारी ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो नेचुरल हैं, ना तो उनके ऊपर आपका कंट्रोल है और ना आप उस पर कोई कंट्रोल कर सकते हैं और ना आपको करना चाहिए। उनमें से एक प्रक्रिया है जिसको हम इंग्लिश में प्लेट टेक्टोनिक्स कहते हैं, और वो प्लेट टेक्टोनिक्स ही है जिसकी वजह से आप जितना भी भूखंड देखते हैं, जितने भी महाद्वीप देखते हैं या जितने भी द्वीप देखते हैं समुद्र के अंदर, जो कुछ भी आप देखते हैं, जो भी संरचना देखते हैं आज की तारीख में, वो केवल प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से है। और वही एक प्लेट टेक्टोनिक्स है जिसकी वजह से भूकंप आते हैं। जो भूकंप है वो प्राकृतिक आपदाएं हैं, प्राकृतिक प्रक्रिया है, इसको आप ना तो रोक सकते हैं और ना इसके ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। और ये भी बात सच है कि अगर भूकंप नहीं होंगे तो प्लेट टेक्टोनिक्स नहीं होगी, और प्लेट टेक्टोनिक्स नहीं होगी, धरती को आप जीवित प्लैनेट कहते हैं, धरती को हम जो कहते हैं जीवित प्लैनेट, वो उसकी जो डेफिनेशन है वो खत्म हो जाएगी। ये प्राकृतिक प्रक्रियाएं हैं, इनको तो चलना ही है और ये चलती ही रहेंगी।
1: क्या भूकंप आने से पहले कुछ विशेष सिग्नल्स मिलते हैं जो भूगर्भवेत्ता हैं उन्हें, जिनके द्वारा हमारे लोग हैं उन्हें मैसेज हो सके?
2: आपकी बात सही है, इसमें काफी लोग कई सालों से इसके बारे में, कई सेंचुरी से, कई शताब्दियों से लोग इसके बारे में बात करते आ रहे हैं कि भूकंप से पहले कुछ पूर्व चेतावनी होती हैं, लेकिन अभी तक हमें किसी ठोस तरीके से ये पता नहीं लग पाया है कि वो कौन सी प्रक्रियाएं हैं या कौन से डेटा हैं जिनको हम इकट्ठा करें जिससे कि पता लग जाए कि अब भूकंप आने वाला है। कुछ लोग कहते हैं एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ एनिमल की बात करते हैं कि साहब कुत्ते भौंकने शुरू कर देते हैं या कुछ इस तरह की बातें करते हैं, लेकिन उसके बारे में अभी भी कोई ठोस रूप से कोई हमारे पास प्रमाण नहीं है। ये सब जितनी भी बातें होती हैं वो जब भूकंप आ जाता है तब उसके बारे में लोग बात करना शुरू करते हैं इस बारे में, लेकिन भूकंप आने से पहले अभी तक हमारे पास ऐसी कोई ना तो कोई प्रणाली है और ना कोई हमारे पास कोई इस तरह की साइंस है जिसमें कि हम लोग उसको कर सकें। लेकिन हाँ, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि हम सब लोग उसी की तरफ प्रयास कर रहे हैं, और कभी कभी इसमें सफलता मिली भी है, लेकिन वो सफलता बहुत ही छोटे टाइम के लिए रही और फिर अगले भूकंप में वो आपको नहीं मिल पाया। तो उस तरह से अभी हमारे पास कोई ठोस तरीका नहीं है जिसके बेसिस पे हम कह सकें कि हम भूकंप की भविष्यवाणी कर सकते हैं या भूकंप के आने से पहले हमें उसका कोई हमें अनुमान हो जाता है।
1: डॉक्टर गहलोत, क्या कुछ कारण भी हैं भूकंप आने के पीछे?
2: जैसे मैंने कहा, प्लेट टेक्टोनिक्स जो है सबसे बड़ा कारण है कि जो प्लेट टेक्टोनिक्स जो प्रक्रिया है जिसके चलते ये सारे कॉन्टिनेंट बने हैं, हिमालय बना है, महासागर में जो आयलैंड बेल्ट है जिसे द्वीप कहते हैं वो बने हैं, वो सब कुछ प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से बना है। और वही, जैसे मैंने कहा कि वही प्लेट टेक्टोनिक्स है जो कि अर्थक्वेक को मिलाती है। तो भूकंप का सबसे बड़ा कारण प्लेट टेक्टोनिक्स है। उसके अलावा हमारी कुछ अपनी गतिविधियां हैं, जैसे माइनिंग की एक्टिविटीज, खनन का काम करते हैं, उसकी वजह से भूकंप आते हैं। कई बार हम लोग आजकल जैसे ऑयल और गैस निकाल रहे हैं हम लोग, उसकी वजह से भूकंप आते हैं। तो कई बार कोई डैम बना दिया, उसकी वजह से भी कभी कभी भूकंप आते हैं। लेकिन जो सबसे बड़े भूकंप और सबसे असंख्या जो होती है वो प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से ही होती है।
1: रिंग ऑफ फायर के बारे में चर्चा की जाती है।
2: रिंग ऑफ फायर जो पैसिफिक ओशन है, प्रशांत महासागर है, उसके चारों तरफ के जितने कॉन्टिनेंट हैं उनको अगर आप ध्यान से देखें, वहां पे पैसिफिक प्लेट एक सिंगल प्लेट है
1: जी।
2: उसके चारों तरफ फिर ये कई सारी प्लेट हैं। जब भी दो प्लेट के बीच की बाउंड्री होगी उसको कहते हैं हम लोग कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन या डाइवर्जेंट प्लेट मार्जिन
1: जी।
2: जो कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन जैसे कि हिमालय है, वहां जो कि सबडक्शन जोन जिसे कहते हैं, वहां पे बड़े बड़े भूकंप आते हैं। तो जो रिंग ऑफ फायर है वहां पे कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन चारों तरफ है, यानी कि चारों तरफ आपके पास वहां पे बड़े बड़े भूकंप आने की जगह है। अगर हिमालय के उसमें कहें तो चारों तरफ आपके वहां पे हिमालय जैसी संरचनाएं हैं जिसकी वजह से वहां बड़े बड़े भूकंप आते हैं, जिसको हम रिंग ऑफ फायर कहते हैं।
1: हमारा जो हिमालय है या हमारे देश के जो पहाड़ी राज्य हैं, क्या वो भी रिंग ऑफ फायर में ही है?
2: जी नहीं, हमारा जो हिमालय है वो रिंग ऑफ फायर के क्षेत्र में नहीं आता है। है। हमारा जो हिमालय है उसको हम लोग अल्पाइड हिमालयन साइस्मिक बेल्ट कहते हैं, यानी कि आल्प से शुरू होके फिर वो जैग्रोस यानी कि ईरान, इराक

0: और फिर सुलेमान के थार पाकिस्तान में होके फिर उसके बाद हिंदू कुश, और उसके बाद फिर हिमालय, फिर उसके बाद अराकान योमा, और उसके बाद फिर अंडमान सुमात्रा बांदा, ये वाली जो चेन है उसमें भी हिमालय आता है।
1: डॉक्टर गहलोत, जब समय समय पर छोटे भूकंप आते हैं, छोटे छोटे झटके आते हैं, हमारे समाज में एक आम धारणा है, लोग कहते हैं इसमें कुछ ऊर्जा बाहर निकल रही है, इसकी वजह से बड़े भूकंप नहीं आएंगे।
0: इसका सबसे बड़ा जो एक उदाहरण है वो ये है कि जब हम प्लेट टेक्टोनिक्स के कॉन्टेक्स्ट में इसमें बात करें तो प्लेट टेक्टोनिक्स जो है वो कहती है कि सारी प्लेटें गतिमान हैं। अब उस प्लेट को चलाना कैसे है ये इस पर डिपेंड करेगा कि आपके जो प्लेट हैं जब वो रगड़ रही हैं आपस में तो क्या वो आसानी से एक दूसरे के अंदर समा जा रही हैं या वो रुक रुक के जा रही हैं।
1: जी
0: अगर वो प्लेट रुक रुक के जा रही हैं तो यानी कि रुक रही हैं, इसका मतलब उसमें ऊर्जा संचित हो रही है, और उसके बाद जब वो ऊर्जा बहुत ज्यादा हो जाती है तो वो ऊर्जा निकल जाती है, तो उसको हम अर्थक्वेक कहते हैं। तो जब भी कोई भी छोटा हो या बड़ा भूकंप हो इसका मतलब वो अपने अंदर जो ऊर्जा संचित हुई थी जिसका कि मेन कारण प्लेट टेक्टोनिक्स है उसको रिलीज कर रहा है। तो यानी कि अब ये वाली ये बात है, सही है कि जो छोटे भूकंप होते हैं उसमें बहुत छोटी ऊर्जा जो है निकलती है और जो बड़े भूकंप होते हैं उसमें बड़ी ऊर्जा निकलती है, लेकिन यही वो ऊर्जा है जिसकी वजह से जब हम इसको लिविंग प्लैनेट या डायनामिक प्लैनेट कहते हैं कि मतलब ये इसमें सारी प्लेट गतिमान है और जो वो गति है वो अर्थक्वेक की वजह से ही होती है।
1: अगर बड़ी ऊर्जा निकल रही है तो इसका मतलब है किसी बड़े भूकंप का खतरा टल रहा है।
0: अगर किसी इलाके में बहुत सारी ऊर्जा निकल रही है छोटे छोटे भूकंप के रूप में, हालांकि वो रिलेशन इतना लीनियर नहीं है, लेकिन हाँ वो दो चीजों को बता रही है कि एक तो ये कि ये इलाका भूकंप प्रभावित क्षेत्र है, यहाँ पे भूकंप आ सकते हैं, कोई बड़ा भूकंप आ सकता है, लेकिन अगर उसकी ऊर्जा इतनी निकल पा रही है जितनी कि उस प्लेट मोशन में जरूरत थी तो फिर इसका मतलब बड़ा भूकंप आने की संभावना कम हो जाएगी। लेकिन जैसे मैंने कहा कि इसको बहुत ही लोग कैजुअली लेते हैं जो कि एकदम गलत है। छोटे भूकंप का आना ये नहीं बताता है कि बड़ा भूकंप नहीं आएगा, छोटे भूकंप का आना ये बताता है कि ये इलाका भूकंप प्रभावित है और यहाँ पे बड़ा भूकंप आ सकता है।
1: वाडिया इंस्टीट्यूट ने बहुत सारे भूकंप मापन के लिए जगह जगह मशीनें लगाई हैं, वहां से जो डेटा मिलता है उसका यूज कैसे किया जाता है?
0: अभी हमारे साथ समस्या क्या है कि हम लोग भूकंप के हम आंकड़े इकट्ठे करते हैं, हम लोग कौन से इलाके हैं वो कहाँ पे भूकंप आ रहे हैं, वहां पे कैसे भूकंप आते हैं, वहां पे कितना बड़ा भूकंप आ सकता है, और अगर वहां पे बड़ा भूकंप आएगा तो उससे क्या हानि हो सकती है, वो कौन से इलाके हैं जहाँ पे की हानि ज्यादा होगी या हानि कम होगी, ये सब चीजें हम लोग जो है इकट्ठा करते हैं इन आंकड़ों के तहत। अक्सर लोग ये कहते हैं कि जो आंकड़े इकट्ठे कर रहे हैं क्या इससे हम भविष्यवाणी कर पाएंगे, वो एक पार्ट है जो हमारे साइंस का जो अभी भी अछूता है, जिसके बारे में हम लोग अभी भी प्रयास कर रहे हैं, हम ही नहीं सारे विश्व उसके बारे में प्रयास कर रहा है। लेकिन ये जितने भी आंकड़े हैं ये सब भूकंप के आने की जगह अगर वो आएगा तो उससे कितना विनाश होगा और वो कितना बड़ा हो सकता है उसके बारे में ये इंगित करते हैं।
1: डॉक्टर गहलोत, जिन इलाकों को हाई रिस्क जोन घोषित किया गया है वहाँ के निवासियों को कौन सी सावधानियां अपनानी चाहिए?
0: हमारे पास कई सारी एजेंसीज हैं जैसे NDMA, उनमें से एक प्रमुख है बिल्डिंग मटेरियल वाली भी, एक BMPTC नाम है उसका शायद, उनकी अगर आप वेबसाइट पर जाएंगे तो आप NDMA की वेबसाइट पर जाएं तो जो आपका साधारण मकान जो घर का बनाना है साधारण स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं उसके बारे में आपको क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए वो वहां पे मौजूद है कि आपको एक ग्राउंड लेवल पे बैंड लगाना है, लिंटल बैंड लगाना है, आपकी ओपनिंग कैसी होनी चाहिए, दरवाजे कैसे होने चाहिए, खिड़कियां कैसी होनी चाहिए, आप जिस इलाके में है उसके हिसाब से छत हल्की या भारी उसकी बात करते हैं, हम लोग दीवारों को जोड़ने की बात करते हैं, एलिमेंट्स की बात करते हैं, तो वो सारी जानकारी पहले से ही मौजूद है। और अच्छी बात यह है कि अगर आप ये जितनी सावधानियां मैंने बताई जो आपको NDMA की वेबसाइट पे मिल जाएंगी अगर आप उनको इस्तेमाल करें तो ऐसा नहीं है कि आपकी जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है जो निर्माण की जो लागत है उसमें बहुत ज्यादा कोई वृद्धि होने वाली है। आप कितना भी मजबूत मकान बनाएं 10% या 15% से ज्यादा उसमें बढ़ोतरी नहीं होने वाली है। तो अगर आप 10% और डाल के मकान को आप भूकंप अवरोधक बना लेंगे तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है।
1: यदि कोई व्यक्ति किसी बहुमंजिला बिल्डिंग में रह रहा है, इमारत में रह रहा है और भूकंप आ जाए तो ऐसे में वो क्या करे?
0: अगर कोई आदमी अगर छोटी मंजिल की इमारत है मतलब दो तीन चार मंजिल की इमारत है तो इसमें हर एक के अलग अलग नॉर्म्स हैं। अगर जैसे अगर आप दिल्ली में जाएं तो वहां तो 25 स्टोरी या 40 स्टोरी की बिल्डिंग है, तो उस केस में पहला तो सबसे का बड़ा काम ये होता है कि साहब आप लिफ्ट का इस्तेमाल ना करें। लिफ्ट का इस्तेमाल करने से सबसे पहला काम जो होगा कि जैसी शेकिंग ज्यादा होगी, जैसी कंपन ज्यादा होगा,
1: जी
0: तो हो सकता है कि आपकी जो इलेक्ट्रिक लाइंस वो खत्म हो जाए या उसमें शॉर्ट सर्किट हो जाए या जो गैस लाइन है वो टूट जाए। आजकल गैस पाइपलाइन भी बहुत आ रही है तो वो भी
1: हाँ
0: टूट
1: जी
0: सकती है। तो इसलिए सबसे पहला तो काम ये करना है कि आपको उनका इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आप बहुत ऊंची कहीं जगह पे हैं या किसी छोटे ही मकान में बहुत अंदर की तरफ हैं तो कोशिश करें कि आप किसी सुरक्षित जगह पे खड़े हों, यानी कि सुरक्षित जगह जैसे होती हैं।

0: मकान का कोना होता है, तो आप कोने में खड़े हों, क्योंकि अगर छत गिरेगी तो उसका सबसे ज्यादा प्रभाव जो होगा वो कमरे के बीच वाले क्षेत्र में पड़ेगा, लेकिन जो कोना होगा वो फिर भी थोड़ा सुरक्षित रहेगा। आप किसी बीम के नीचे खड़े ना हो, आप किसी टेबल अगर मजबूत है इसके लिए थोड़ा सा पहले होमवर्क करना पड़ता है। जैसे हम लोग यहाँ बैठे हैं, ये हमारे पास एक टेबल है, तो मैं जरा देख लूँ इसको कि ये टेबल कितनी मजबूत है। अगर ये टेबल मजबूत है तो अच्छा होगा कि मैं इसके नीचे घुस जाऊँ, बजाय इसके कि बाहर भागूं और उसके बाद अनेसेसरी और कोई रिस्क लूं, तो अच्छा होगा कि मैं इसके टेबल के नीचे घुस जाऊँ। सबसे बड़ा जो उनका मोटो है वो ये है कि ड्रॉप कवर एंड होल्ड, ये तीन वर्ड वो यूज करते हैं कि ड्रॉप यानी कि आप भी हैं वो नीचे गिर जाएं, किसी सुरक्षित जैसे पलंग है, बेड है, बेड बहुत मजबूत होता है, आप उसके नीचे घुस जाएं, आप किसी टेबल के नीचे घुस जाएं, तो वो सबसे अच्छी जगह है। इसको ड्रॉप ड्रॉप हो गया, कवर, उस अपने आप को कवर कर लें, सिर को कवर कर लें आप ऐसे करके, क्योंकि सबसे जो आपका जो नाजुक चीज है वो सिर है आपका, तो सिर को आप कवर कर लें और होल्ड, और वहां रहें जब तक कि वो कंपन बंद नहीं हो जाता है। तो ड्रॉप कवर एंड होल्ड वाला जो सिद्धांत है वो काफी आजकल सब लोग इसको फॉलो करते हैं और स्कूल में यही सिखाया जाता है, ड्रॉप कवर एंड होल्ड।
1: डॉक्टर विनीत जी, लेकिन आमतौर पर देखने पे ये आता है जैसे भूकंप आता है लोग भागने लगते हैं, चाहे वो 2 मंजिल की बिल्डिंग हो चाहे 3 मंजिल की बिल्डिंग हो।
0: ऐसा बिल्कुल नहीं है कि साहब हर केस में आपको भागना है, बिल्कुल नहीं। पहली बात जैसे मैंने कहा कि लिफ्ट का इस्तेमाल ना करें। अगर आपका जनरली जो जीना होता है, स्टेयर केस होता है, वो फिर भी एक सुरक्षित जगह होती है क्योंकि उसको इस तरह से बनाया जाता है, तो आप उसका प्रयोग करें। अगर आप कहीं बहुत ऊंची 5वीं 6ठी मंजिल पर बैठे हुए हैं तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन हाँ पहली मंजिल दूसरी मंजिल है तो कोशिश करें कि घर से बाहर निकलने की, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप निकल के कहाँ जाएंगे। आप ऐसा ना हो कि आप घर से तो निकल गए लेकिन किसी ऐसी जगह जाकर खड़े हो गए जहाँ पे कि आपके ऊपर कोई दूसरी इमारत गिर गई। तो सबसे पहला काम ये जरूरी, जैसे अगर हम लोग यहाँ पे आकाशवाणी में बैठे हैं तो मुझे मालूम है कि मैं यहाँ से अगर भूकंप आता है तो मुझे मालूम है कि यहाँ से निकल के मुझे सड़क की तरफ जाना है, ओपन स्पेस में जाना है, तो जो ओपन स्पेस होगा वो मेरे लिए सुरक्षित होगा। उसके अलावा ओपन स्पेस में भी ऐसा ना हो कि कहीं आपके ऊपर कोई हाई टेंशन वायर केबल जा रहा है, वो भी नहीं होना चाहिए, तो आप उसको भी ध्यान रखेंगे। तो आपको ये पहले पता होना चाहिए कि आप इस बिल्डिंग से निकल के कहां जाएंगे।
1: कुछ इमरजेंसी गो बैग्स की भी आजकल ट्रेनिंग दी जाती है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, ये सारे के सारे काम जो हैं, मतलब जिसे कहते हैं हम लोग पूर्व तैयारी, कि अगर आप उसके लिए ट्रेन नहीं हैं तो आपको इसमें कहीं ऐसा ना हो कि आपको और हानि हो जाए। जो पूर्व तैयारी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि कई बार कैसा होता है कि अगर आप उसके लिए तैयार नहीं है तो जब आपके सामने इतनी भयंकर कोई विपत्ति आती है तो आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है, तो आपकी केवल पूर्व ट्रेनिंग ही काम आती है जो आपको बचा सकती है। तो इसलिए पूर्व ट्रेनिंग पे हम लोग बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं कि अगर आपको यहाँ से बाहर भागना है तो कहाँ भागना है, आप तब सोचने की जरूरत नहीं है, आपको आपको पता होना चाहिए। आपका दिमाग काम करे ना करे, सिर पे चोट लग जाए कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपका शरीर अपने आप उधर चला जाए।
1: कार्यक्रम के समापन में कुछ ऐसी बातें जो चर्चा में छूट गई हो।
0: अक्सर लोग भूकंप को लेके काफी अजीब अजीब तरह से बात भी करते हैं, अफवाह भी फैलाते हैं और कहते हैं कि साहब भूकंप इसलिए आ गया या उसलिए आ गया, तो अफवाहों पे ध्यान ना दें, सबसे पहला काम तो यही है। और दूसरा ये है कि भूकंप लोगों को नहीं मारता, जो कमजोर बिल्डिंग है वो लोगों को मारती है। आज तक का इतिहास अगर उठा के देखें तो किसी एक भूकंप ने, खाली भूकंप ने किसी आदमी को नहीं मारा है। आदमी लोग जो हम लोग जो मरे हैं या हमारी जो हानि हुई है वो केवल इसलिए कि जब हम लोग असुरक्षित घरों में थे और वो घर हमारे पर गिर गए और हम लोगों की डेथ हो गई। तो घरों को सुरक्षित बनाएं, पहले से तैयारी रखें। जैसे अगर हम उत्तराखंड में रह रहे हैं तो हमें मालूम है कि ये भूकंप वाला क्षेत्र है, तो हमें पहले से हमारे पास तैयारी होनी चाहिए कि अगर भूकंप आएगा तो हम कहां जाएंगे, कहां भागेंगे, कैसे भागेंगे और क्या करेंगे।
1: बहुत सारे मिथ्स भी हैं भूकंप को लेके।
0: अब कम से कम जितने हमारे पास आंकड़े हैं या जितनी विज्ञान ने तरक्की कर ली है, तो हमें मालूम है कि भूकंप कैसे आते हैं, हमें मालूम है कि भूकंप क्यों आते हैं। हाँ, बस एक ही समस्या जो हमारे साथ है वो ये है कि अगला भूकंप कहाँ आएगा ये हमें पता है, लेकिन कब आएगा इसके बारे में थोड़ी समस्या है। उसके बारे में अभी भी शोध जो है वो पूरे वर्ल्ड में चल रहा है, तो उसके बारे में थोड़ी अभी भी परेशानियां हैं, लेकिन भूकंप कैसे आता है इसके बारे में हम लोगों को कोई संदेह नहीं है कि ये एक प्राकृतिक क्रिया है जिसको प्लेट टेक्टोनिक्स कंट्रोल होती है और उसी वजह से भूकंप।
1: कहीं कहीं लोग कह देते हैं जहाँ शिक्षा का अभाव है, या यूं कह सकते हैं शिक्षा की किरणें उतनी नहीं पहुंची जितनी पहुंच जानी चाहिए थी, कि आदमी ने कोई पाप किया या अन्य इसी तरह की बातें करते हैं वो।
0: ये बात लोग अक्सर रिलेट करते हैं कि साहब जब भी किसी के पास कोई सामने को मुसीबत आती है तो सबसे पहले उसको हमारे यहाँ यही कहा जाता है कि उसने कोई पाप किया होगा, इस जन्म में नहीं किया हो तो पिछले जन्म में किया होगा। वो एक अपनी लोगों की धारणा है, लेकिन वो धारणा का भूकंप से कोई संबंध नहीं है।
1: डॉक्टर विनीत गहलोत जी, कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और भूकंप का विज्ञान के बारे में जानकारी देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: अभी आपने भूकंप के विज्ञान के बारे में डॉक्टर विनीत गहलोत से रमेश चंद्रा की भेंट वार्ता सुनी। आइए अब सुनते हैं डॉक्टर राजेश त्रिपाठी से ऊर्जा संरक्षण के बारे में रमेश चंद्रा की भेंट वार्ता। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर राजेश त्रिपाठी को। आप सीनियर एसोसिएट प्रोफेसर हैं स्कूल ऑफ बिजनेस यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम देहरादून के, और आज के इस कार्यक्रम में हम डॉक्टर साहब से जानेंगे ऊर्जा और पेट्रोलियम, विकास, आत्मनिर्भरता और भविष्य के बारे में। डॉक्टर राजेश त्रिपाठी जी, कार्यक्रम आपका बहुत बहुत स्वागत।
2: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: डॉक्टर साहब, ऊर्जा महत्वपूर्ण क्यों है?
2: शरीर को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। ऊर्जा का तो महत्व हर जगह है। हमारे देश में ऊर्जा इसलिए काफी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि किसी भी समाज को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। चाहे ऊर्जा के स्रोत के रूप में आप पेट्रोलियम को देखें, चाहे और स्रोत हैं जैसे हाइड्रो है, थर्मल है, विंड है, विभिन्न प्रकार की ऊर्जा के स्रोत हैं। और हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हम अभी भी ऊर्जा के मामले में, खास तौर से पेट्रोलियम पदार्थों के मामले में, आत्मनिर्भर नहीं है। सभी जानते हैं कि भौगोलिक जो अवस्था है हमारे देश की, उसमें पेट्रोलियम उत्पाद उतने प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नहीं है इन कंपेरिजन ऑफ बाकी देशों में, जैसे आपका अमेरिका है, रशिया है, ईरान है, मिडिल ईस्ट नेशन है, जहां पर पेट्रोलियम उत्पाद काफी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। इसीलिए हमारे लिए एक चिंतनीय विषय भी हो जाता है क्योंकि समाज के विकास के लिए ऊर्जा की आवश्यकता तो पड़नी है। लॉजिस्टिक्स पार्ट्स में अगर देखें, यानी परिवहन है, उद्योग को चलाने के लिए है, तो कहीं ना कहीं ऊर्जा का इम्पोर्टेंस है।
3: डॉक्टर राजेश त्रिपाठी, आज के समय हमारे देश के सामने ऊर्जा संबंधी क्या चुनौतियां हैं?
2: सबसे बड़ी चुनौती तो यही है कि ऊर्जा के मामले में हम अभी भी संपन्न नहीं है, आत्मनिर्भर नहीं है। आप जानकर हैरत करेंगे कि जो विदेशी मुद्रा कोष है उसका करीब 70-75% हम सिर्फ पेट्रोलियम उत्पाद को खरीदने में लगा देते हैं। उसकी वजह से क्या है कि वो हमारे ऊपर काफी बड़ा बोझ रखता है, और जब तक हम आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे ऊर्जा के मामले में, तो ये जो विदेशी मुद्रा कोष से जो निकास है, आगत और निकास, हम ये दो प्रबंध की भाषा में बात करते, तो निकास ज्यादा है, तो उससे कहीं ना कहीं हमारे ऊपर आर्थिक बोझ भी पड़ता है। और इसीलिए जो है ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम इस पर चर्चा करें, इसके नए विकल्पों की बात करें, जिसको हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं।
1: डॉक्टर राजेश त्रिपाठी, कितनी संभावनाएं हैं हमारे देश की ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने की?
2: हम अपनी भौगोलिक अवस्था को तो बदल नहीं सकते। जो पेट्रोलियम शब्द दो शब्दों से बना है, पेट्रो ओलियम यानी कि पत्थर का तेल, इसको इंग्लिश में फॉसिल फ्यूल भी कहते हैं। अब ये जो फॉसिल बनने की जो प्रक्रिया है और फॉसिल से ऑयल बनने की जो प्रक्रिया है, वो भौगोलिक अवस्था पर निर्भर है, और उसमें लाखों साल लग जाते हैं। लाखों साल का तो हम इंतजार नहीं कर सकते आत्मनिर्भर बनने के लिए, तो हमें वैकल्पिक ऊर्जा की तरफ जाना पड़ेगा। हमारे यहाँ आप मान के चलें कि करीब 9-10 महीने प्रचुर मात्रा में प्रकाश मौजूद है, तो उस प्रकाश को हम कैसे प्रयोग कर, क्योंकि आजकल वैज्ञानिक काफी काम कर रहे हैं कि सूर्य के ऊर्जा को कन्वर्ट करके हम बिजली बना सकते हैं। सोलर पैनल्स पे काम हो ही रहा है, सरकार आपको सब्सिडी दे रही है। इसके अलावा हम बायोफ्यूल की बात करते हैं, हाइड्रो ऊर्जा की बात करते हैं, इसके अलावा हम विंड ऊर्जा की बात करते हैं। भारत में हवा की अवस्था ठीक है, तो इस तरीके की वैकल्पिक ऊर्जाओं पर हमें काम करना पड़ेगा अगर हम ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं।
1: क्या ऊर्जा संरक्षण भी एक तरीका हो सकता है?
2: ये पहला मंत्र होना चाहिए। एक तरीका ये है कि हम नए ऊर्जा के विकल्पों पर बात करें, उत्पादन को बढ़ाएं, वो तो एक अलग फील्ड है। संरक्षण वो हमारे हाथ में है। जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ, रिकॉर्डिंग के बाद यहाँ पर अगर प्रकाश व्यवस्था ऐसी है कि स्मार्ट लाइट के माध्यम से वो अपने आप बंद हो जाए, तो हमने काफी कुछ ऊर्जा बचा लिया। ट्रैफिक पोस्ट पर इंजन ऑन है, उस दौरान अगर मुझे पता है, क्योंकि वहां पर आपको समय अवस्था भी बताता रहता है कि कितने मिनट आपको रुकना है, अगर मुझे पता है कि 2 मिनट रुकना है, और अगर मेरी गाड़ी स्वचालित है और मैं तुरंत ऑन कर सकता हूँ, 1.5 मिनट अगर मैंने अपने इंजन को बंद कर दिया, आप सोचिए कि साल में हमने कितने पेट्रोल बचा लिए। तो ये बहुत छोटे छोटे हैं, आपको लगेगा कि इसका क्या प्रभाव होगा, लेकिन कहा जाता है बूंद बूंद से सागर भरता है। अगर आप ये छोटी छोटी चीजें आप कर लेंगे, स्मार्ट लाइटिंग हो गया, कंजर्वेशन ऑफ ऑयल हो गया, जैसे इस समय गर्मी चल रही है, आप लगातार एसी चला रहे हैं, एसी चलाने के भी कई मोड होते हैं। अगर आपने हेल्दी मोड में चला दिया तो बाय डिफॉल्ट वो कंप्रेसर अपने आप बंद होता जाएगा और समय समय पर फिर से ऑन होगा, लेकिन इस दौरान काफी कुछ आपने बिजली बचा ली। जब आपने इतनी यूनिट बिजली बचा ली, तो आप सोचिए कि आपने कितना कोयला बचा लिया। और अगर आपने कोयला बचा लिया, तो जैसा कि सरकार की समय विशेष प्रयास है कि हम धीरे धीरे थर्मल से हट रहे हैं, जान के हैरत करेंगे कि एनटीपीसी अपने नाम के आगे नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन यूज नहीं करता, सिर्फ वो एनटीपीसी यूज करता है, क्योंकि उसको ये सुझाव है कि आप धीरे धीरे कोयला से हटकर नए स्रोत पे आप जाएंगे। इस तरीके की छोटी छोटी चीजें जो हमें लगती है कि शायद इतना महत्व नहीं होगा, लेकिन बहुत ज्यादा इसका इंपॉर्टेंस है। और इस तरीके से अगर आप कंजर्वेशन कर पाए, तो मुझे लगता है कि ऊर्जा के क्षेत्र में हम धीरे धीरे आत्मनिर्भर बनेंगे। जो चीज हम आज कर सकते हैं, जो हमारे हाथ में, इसमें सिर्फ जागरूकता लाने की आवश्यकता है।
1: आप जागरूकता की बात कर रहे हैं, लोगों के द्वारा जो ऊर्जा के विभिन्न स्रोत हैं उनको बचाने की बात कर रहे हैं, जहां लोगों में मानसिकता यही हो हर काम सरकार कर दे।
2: रमेश जी, ये जो मानसिकता है इसको बदलने की आवश्यकता है। हर कार्य के लिए हम सरकार को दोषी ठहराएं, हम अपनी गलतियों को दूसरे ऊपर दोषारोपण कर दें, वो एक बहुत गलत मानसिकता है।
1: भविष्य की ऊर्जा व्यवस्था किस तरह की हो सकती है हमारे देश में?
2: आजकल ग्रीन हाइड्रोजन का कॉन्सेप्ट आ गया, शेल गैस का कॉन्सेप्ट तो पहले से ही था, उस पर भी काम हो रहा है। ग्रीन हाइड्रोजन है, पानी से चलने वाली गाड़ियों पर काम हो रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात हो रही है। तो कहीं ना कहीं हम ये जरूर कर सकते हैं कि हम वैकल्पिक ऊर्जा पे बात करें, जो हमारे पास उपलब्ध संसाधन है उसका हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो पाए।
1: कुछ टेक्नोलॉजिकल बदलाव भी ऐसे हैं जो हम अपने घरों में कर लें, उनसे भी क्या ऊर्जा संरक्षण संभव है?
2: जैसे मैंने कहा कि अब धीरे धीरे हम घरों के इंटीरियर पे काम कर रहे हैं। बैंगलोर में एक इंजीनियर दंपत्ति ने प्राचीन व्यवस्था के आधार पर उन्होंने घर का निर्माण किया। जैसलमेर के पास एक विद्यालय है और जैसलमेर का जो अमूमन तापमान रहता है 45-46 के आसपास रहता है, लेकिन वो विद्यालय बीचों बीच रेगिस्तान के आसपास बना है और उसका डिजाइनिंग इस तरीके से किया कि उसका नॉर्मल जो टेम्परेचर वो 30-35 के आसपास रहता है। जो प्राचीन तकनीक है उसका समावेश करते हुए मॉडर्न तकनीक यानी नवीन तकनीकों से समावेश करें तो शायद मुझे लगता है कि काफी कुछ बदलाव आ सके।
1: डॉक्टर राजेश त्रिपाठी जी, आपने जो बातें की कि हमारी जो प्राचीन तकनीक थी या जो आज के समय ईजाद की जा रही है टेक्नोलॉजी, वो आम जन तक क्यों नहीं पहुंच रही? क्योंकि चुनिंदा जो उदाहरण हैं उनसे तो हम बड़े पैमाने पर ऊर्जा संरक्षण करने में कामयाब हो नहीं सकते।
2: मैं यहाँ थोड़ा सा आपसे डिफर करूंगा। अगर मैं आम जनता की बात करूं, गांव में अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि मिट्टी के घर होते थे,
1: लेकिन मैक्सिमम पॉपुलेशन तो अब शहरों में शिफ्ट हो रही है।
2: अब दुर्भाग्य यही है कि मैंने आपको बताया कि जो बैंगलोर का ये जो इंजीनियर दंपत्ति है उन्होंने अपने घर की डिजाइनिंग इसी तरीके से करी है कि मिट्टी बेस पर गोबर का लेपन और ये सारी चीजें करके उन्होंने इस तरीके से परत तैयार करी है, वो घर नॉर्मली वो ठंडा रहता है। मैं नवीन तकनीकों के बिल्कुल विरोध में नहीं हूँ, लेकिन जो हमारी तकनीक थी जिसका हमारे पूर्वजों ने खूब अच्छे से इस्तेमाल किया, आप जान के हैरत करेंगे कि जो बड़ी बड़ी विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय जैसे MIT है, हॉर्वर्ड है, वो हमारे जनजातीय व्यवस्था को अध्ययन करने के लिए यहाँ आती हैं और वो देख के जाती हैं कि किस तरीके से यहाँ की जनजातीय व्यवस्था में प्रकृति के साथ सामंजस्य बैठाकर उन्होंने अपने जीवन को सुलभ और आसान बनाया है। तो अगर हम ये चीजें दोनों कर पाए तो शायद मुझे लगता है कि ऊर्जा के क्षेत्र में हम काफी कुछ अच्छा काम करें।
1: कार्यक्रम के समापन में कोई ऐसे टिप्स आप देना चाहें हमारे श्रोताओं को ऊर्जा संरक्षण को लेकर?
2: कुछ चीजें तो हम अपना ही शुरू कर सकते हैं। आप स्मार्ट लाइट लगवाने की अवस्था अगर नहीं है तो आप जहां से उठें काम खत्म हो गया, पहला काम स्विच ऑफ करता हुआ चलो। छोटी छोटी चीजें, आपको लगेगा कि ये कोई बहुत बड़ी टिप तो दे, लेकिन लोग इस्तेमाल नहीं करते। छोटी छोटी चीजें आप करें और इससे काफी आप ऊर्जा को बचा पाएंगे। अपने जमाने का एक एडवर्टीजमेंट याद आता है कि वो सरदार ड्राइवर कहता है कि 35 लीटर में बचा लिया, तो वो कहता है भाई कैसे बचा लिया, तो उसने कहा कि भाई मैं सिर्फ यही करता हूं कि जहां मुझे लगता है कि इंजन बंद करना है तो मुझे इंजन बंद करना है। तो इस तरीके से बहुत छोटी छोटी चीजें आपको लगेगा कि नहीं साहब ये ऐसा कौन सा रॉकेट साइंस त्रिपाठी सर बता रहे हैं, लेकिन बहुत छोटी छोटी चीजें अगर इस पे अगर जनता का नजर जाए तो मुझे लगता है हम ऊर्जा को, आपके ऊपर हो सकता है असर नहीं पड़ रहा है, लेकिन आप अगली पीढ़ियों के लिए क्या छोड़ के जा रहे हैं। बहुत बड़े दार्शनिक ने ये कहा कि मूल्यवान ये नहीं कि समाज ने हमें क्या दिया, मूल्यवान ये है कि समाज को हम क्या देने जा रहे हैं। तो ये बड़ी बात है।
1: डॉक्टर राजेश त्रिपाठी जी, कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने ऊर्जा संरक्षण के बारे में डॉक्टर राजेश त्रिपाठी से रमेश चंद्रा की भेंट वार्ता सुनी। आइए अब सुनते हैं डॉक्टर उमेश चंद्र नेथानी की वार्ता, ऑप्टिकल फाइबर डिजिटल भारत की रीढ़।
4: ऑप्टिकल फाइबर का हिंदी अर्थ प्रकाशिक तंतु होता है। यह कांच, सिलिका या प्लास्टिक से बना एक बहुत ही पतला और लचीला तार होता है। इसका उपयोग प्रकाश के संकेतों के माध्यम से बहुत तेज गति से डेटा भेजने के लिए किया जाता है। यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। जब इसमें प्रकाश प्रवेश करता है तो यह तार की दीवारों से टकराकर बिना बाहर निकले आगे बढ़ता रहता है। इस तरह यह बाल के समान पतला तना प्रकाश की तरंगों के रूप में डेटा संचरित करने के लिए तरंग मार्ग का काम करता है। यह आधुनिक उच्च गति इंटरनेट और दूर संचार का आधार है, जो विशाल बैंडविड्थ और लगभग तात्कालिक संचार को विशाल दूरी तक प्रदान करता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन फाइबर की संरचनात्मक परतों के कारण संभव होता है। इसकी बनावट में मुख्य अवयवों में प्रथम कोर होती है, जो भीतरी अत्यधिक पारदर्शी कांच या प्लास्टिक का तार होता है, जहां से प्रकाश वास्तव में गुजरता है। द्वितीय अवयव आवरण होता है, जो प्रकाश के कोर के चारों ओर लिपटी हुई एक बाहरी परत होती है। इसका अपवर्तनांक बहुत कम होता है। घनत्व में यह अंतर दर्पण की तरह कार्य करता है, जिससे प्रकाश कोर के अंदर ही रुक जाता है। तीसरा अवयव बफर कोटिंग और जैकेट होता है। यह बाहरी सुरक्षात्मक प्लास्टिक और रबर की परतें जो नाजुक कांच को किसी भौतिक नुकसान, नमी और झुकने के तनाव से बचाती हैं।

0: परंपरागत तांबे के तारों की तुलना में ऑप्टिकल फाइबर कई महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करता है। कुछ मुख्य लाभों को अगर देखें तो यह विद्युत चुंबकीय हस्तक्षेप EMI या रेडियो आवृत्ति हस्तक्षेप RFI से प्रभावित नहीं होता है। चूंकि प्रकाश पूरी तरह से कोर के अंदर समाहित होता है और विकिरण नहीं करता है, इसलिए ऑप्टिकल फाइबर को तोड़े बिना उसमें सेंध लगाना बेहद मुश्किल है, जिससे यह अत्यधिक सुरक्षित हो जाता है। प्रकाश लगभग तात्कालिक गति से यात्रा करता है, जिससे केबलों को हाई डेफिनेशन वीडियो स्ट्रीम करने, AI क्लाउड नेटवर्क चलाने और वैश्विक डेटा को रूट करने की लगभग असीमित क्षमता मिलती है। अगर हम इसके मुख्य प्रकारों की बात करें तो दो तरह के निर्मित किए जाते हैं। पहला सिंगल मोड फाइबर होता है, इसमें एक छोटा कोर होता है जो प्रकाश को केवल एक ही पथ या मोड में यात्रा करने की अनुमति देता है। इसे लेजर के साथ जोड़ा जाता है और लंबी दूरी के उच्च बैंडविड्थ संचरण जैसे कि महासागरीय केबल के लिए उपयोग किया जाता है। दूसरा मल्टीमोड फाइबर होता है, इसमें एक बड़ा कोर होता है जो प्रकाश को कई रास्तों से यात्रा करने की अनुमति देता है। इसका उपयोग आमतौर पर कम दूरी के लिए किया जाता है, जैसे कि एक इमारत या डेटा सेंटर के भीतर होता है जिसमें सस्ते LED का प्रयोग होता है। आजकल ठोस कांच के कोर के बजाय हवा से भरे केंद्र से प्रकाश को गुजार कर खोखले कोर वाले तंतु SCF को इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्टिकल फाइबर के सामान्य अनुप्रयोगों में इंटरनेट और दूरसंचार शामिल हैं। ये आधुनिक वैश्विक नेटवर्क की रीढ़ की हड्डी हैं, जो फाइबर टू द होम FTTH ब्रॉडबैंड समुद्र के नीचे बिछी संचार केबल और उच्च क्षमता वाले टेलीफोन और मोबाइल नेटवर्क प्रदान करते हैं। सोचिए यदि इंटरनेट न हो तो जीवन कैसा होगा? सब जगह अंधेरा ही अंधेरा होगा और हम विज्ञान में और मेडिकल के क्षेत्र में आजकल के युग में किसी भी कंप्यूटेशन के लायक नहीं रहेंगे। मेडिकल इमेजिंग में लचीले ऑप्टिकल फाइबर डॉक्टरों को एंडोस्कोप और लेप्रोस्कोप जैसे गैर आक्रामक उपकरणों के माध्यम से मानव शरीर के अंदरूनी हिस्से को रोशन करने और देखने की अनुमति देता है। इस तरह शरीर के अंदर क्या क्या घटित हो रहा है, इससे डॉक्टर स्पष्ट रूप से देख लेते हैं और तदनुसार बीमारी देखकर इलाज करना आसान और सटीक हो जाता है। निश्चित ही चिकित्सा जगत में यह एक चमत्कार की तरह प्रयुक्त होता है। रक्षा और एरोस्पेस में इसका उपयोग अत्यधिक सुरक्षित डेटा ट्रांसमिशन, विमान वायरिंग और मिसाइल मार्गदर्शन प्रणालियों के लिए किया जाता है, क्योंकि प्रकाश संकेतों के आसानी से रोका या जाम नहीं किया जा सकता। आधुनिक लड़ाइयों में इसका उपयोग बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है। इससे दुश्मनों के क्षेत्रों की सही और सटीक जानकारी मिल जाती है। अतः किसी भी देश के लिए रक्षा एवं एरोस्पेस में इसकी भूमिका निर्णायक होती है। औद्योगिक सेंसर फाइबर ऑप्टिक सेंसर का उपयोग पुलों, इमारतों और तेल पाइपलाइनों में तापमान, दबाव और संरचनात्मक अखंडता की निगरानी के लिए किया जाता है। इस तरह मानव द्वारा निर्मित फाइबर से आधुनिक तरीके से मानव रहित प्रणाली से बड़ी आसानी एवं चालाकी से कार्य किया जाता है। हम देखते हैं कि आज के युग में हर तरफ ऑप्टिकल सेंसर लगे होते हैं। आप देख रहे होंगे कि चाहे हवाई क्षेत्र हो, समुद्री क्षेत्र हो, जमीनी क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में इन सेंसरों का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाता है। इससे जीवन अत्यधिक आसान एवं सुविधाजनक बना दिया गया है। प्रकाश व्यवस्था और सजावट के क्षेत्र में इनका व्यापक रूप से सजावटी प्रकाश व्यवस्था, रोशन साइनेज और ऑटोमेटिक प्रकाश व्यवस्था के लिए उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये कोई गर्मी उत्पन्न किए बिना एक ही स्रोत से सुरक्षित रूप से प्रकाश प्रवाहित कर सकते हैं। इस तरह संसार को प्रकाश से जगमग करने में ये महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI, संचालित केंद्रों, 5G, 6G जैसे अगली पीढ़ी के नेटवर्कों और अत्यधिक सटीक सेंसरों की विशाल बैंडविड्थ मांगों को पूरा करने के लिए ऑप्टिकल फाइबर अनुसंधान तेजी से विकसित हो रहा है।
1: अभी आपने डॉक्टर उमेश चंद्र नेथानी की वार्ता सुनी, ऑप्टिकल फाइबर, डिजिटल भारत की रीढ़। इसी के साथ विज्ञान पत्रिका कार्यक्रम अब संपन्न होता है। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विज्ञान पत्रिका। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है, FM 100.5 MHz पर। रात्रि के 10 बजने को है। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम खेल दर्पण। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से रिले किया जाएगा। कृपया कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

0: लखनऊ केंद्र है। राज्य स्तरीय प्रसारण के अंतर्गत प्रस्तुत है कार्यक्रम खेल दर्पण। ये कार्यक्रम आकाशवाणी अल्मोड़ा की प्रस्तुति है।
1: खेल दर्पण।

0: खेल दर्पण के सभी श्रोताओं को संजय जोशी का नमस्कार। श्रोताओं, आज बारी है आकाशवाणी अल्मोड़ा की प्रस्तुति की, जिसमें हम आपको मिलवाएंगे ताइक्वांडो में सेकंड डैन ब्लैक बेल्ट और स्थानीय स्टेडियम अल्मोड़ा में ताइक्वांडो कोच साथ ही नेशनल रेफरी वंदना सिंह से। इसके अलावा 13 जूनियर एशियन ताइक्वांडो चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडलिस्ट रहे अखिलेश सिंह से, जो अब सीनियर टीम के लिए प्रयासरत हैं। इस माह 3 जून को विश्व साइकिलिंग दिवस भी मनाया गया और एडवेंचर स्पोर्ट्स में माउंटेन बाइकिंग के लिए जाने जाने वाले साइक्लिस्ट भारत भूषण शाह यानी भरत शाह, जो कि हाई एल्टीट्यूड मैराथन में भी प्रतिभाग कर चुके हैं, वो सीनियर सिटीजन होने के बावजूद माउंटेन बाइकिंग का लुफ्त उठा रहे हैं। वंदना सिंह द्वारा प्रशिक्षित बच्चों ने 13वीं नेशनल ओपन ताइक्वांडो चैंपियनशिप जो हल्द्वानी में आयोजित हुई थी, उसमें उनके द्वारा प्रशिक्षित 8 बच्चे मेडल विजेता रहे। एक खिलाड़ी से कोच और फिर रेफरी तक के सफर पर जानते हैं उनकी इस यात्रा को। आप स्वयं एक खिलाड़ी भी रही हैं।
1: जी जी।
0: और खिलाड़ी से कोच तक का क्या सफर रहा आपका?
1: खेलना मेरा मतलब पैशन था, मैं भी चाहती थी कि मैं ओलंपिक तक खेलूं। मैंने 2018 में लास्ट इवेंट खेला था, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी खेली थी मैंने, जिसमें मेरा मेडल रहा था। और उसके बाद जो है मैंने जो कोचिंग है वो अब 2022 में मैं जो है स्टेडियम अल्मोड़ा स्टेडियम में लग चुकी थी। 2022 से मैंने अपने बच्चों को ट्रेन करना शुरू करा, आज करीब उनको 3 साल हो चुके हैं। तो ये उन लोग मेरे बच्चों के लिए पहला नेशनल था, बहुत अच्छा इन्होंने रिजल्ट दिया। मेरे 15 बच्चे गए थे जिसमें से मेरे 3 गोल्ड 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज रहे उसमें। बहुत ट्रेन अभी उनको करना है मैंने।
0: एज ए खिलाड़ी से जब आप कोच बनी तो कोचिंग के लिए क्या क्या परेशानी आपको शुरू में फेस करनी पड़ी अल्मोड़ा में?
1: ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं रही, हमें जो स्टेट गवर्नमेंट है वो फैसिलिटी हमें सब देती है, हमें बच्चों के लिए मैट प्रोवाइड करेगी। जो हमारी मैटें होती हैं वो करीब 1-1.5 लाख रुपए की भी मिलती है, और ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं रही। बस हमें ट्रेन कराना पड़ा थोड़ा बच्चों का पढ़ाई से, और पेरेंट्स को हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट करना पड़ता है
0: जी।
1: इसके लिए कि आप बच्चों को खेलने के लिए डालिए, जरूरी नहीं है उसका बच्चा जो है उन मेडल ही जीते, वही उसका एक अचीवमेंट है। बच्चा फिट रह रहा है, कोई गलत रास्ते में नहीं पड़ रहा है, ये भी एक कोच को देखना पड़ता है। सिर्फ हमारा मकसद बच्चों को मेडल लाके देना ये ही जरूरी नहीं है।
0: वैसे तो कहें कि ताइक्वांडो जो है आत्मरक्षा के लिए बहुत अच्छा स्पोर्ट्स माना जाता है, और खासकर बालिकाओं को अगर हम देखा जाए तो महिला इस स्पोर्ट्स को ज्यादा सीखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और वैसे भी अल्मोड़ा में अधिकतर मैं देखता हूँ कि यहाँ पे कई एकेडमीज भी हैं जो कि बच्चों को ट्रेन कर रही हैं। आपके अंडर में जो बच्चे हैं इस वक्त, तो उनको कितना टैलेंटेड आप देखती हैं?
1: अब मैं सच बताऊंगी आपको, अभी जो मेरे पास स्ट्रेंथ है उसमें मेरे पास गर्ल्स की ही स्ट्रेंथ ज्यादा है, और अभी जो 15 बच्चे जो खेलने गए थे उसमें जो मेडल है वो सारी गर्ल्स हैं। जो हमारा गेम है एकदम उसमें ऐसा होता है कि जितना बच्चा छोटे से स्टार्ट करता है वो उतना ही अच्छा आपको रिजल्ट देगा। कोई एक बड़ा बच्चा आके, यानी कि 15-16 इयर्स का आके, मुश्किल है कि वो एकदम उसकी बॉडी जो है फ्लेक्सिबल रहे, वो उसको गेम को कर सके। तो छोटे से बच्चा जो है हमारे पास शुरू करता है, और गर्ल्स उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट दे रही है। गर्ल्स हम ऐसा नहीं करते, फाइट जब प्रैक्टिस होती है तो गर्ल्स और बॉयज दोनों की हम कराते हैं, तो गर्ल्स का कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है इसके इसमें खेलने के लिए और अपना आत्मरक्षा के लिए, तो ये है ही अच्छी चीज।
0: आजकल के माँ बाप चाहते भी कि उनके बच्चे पढ़ाई के साथ साथ खेल में भी अच्छा करें।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: और खासकर मैं देखता हूँ कि 3-4 बजे के बाद अक्सर एकेडमी की तरफ जाते हुए देख सकते हैं हम लोग, तो स्टेडियम में क्या रूटीन रहता है बच्चों को सिखाने का?
1: 2 घंटा हमें सुबह दिया जाता है बच्चों को प्रैक्टिस कराने के लिए, लेकिन थोड़ा बच्चों के साथ ही प्रॉब्लम आ जाती है। आजकल जो आप देख रहे हैं कि समर टाइम चल रहा है, तो बच्चों की स्कूल्स हैं वो 6:30 से उनके स्कूल्स बसें ये आ जाती है। अगर वो मॉर्निंग में नहीं आ पाते, मैं उन्हें इवनिंग में ज्यादा से ज्यादा टाइम देती हूँ, और प्लस संडे को मैं उन्हें मॉर्निंग में बुला के उनको प्रैक्टिस करवाती हूँ। तो हमारा जो रूटीन रहता है वैसे वो मॉर्निंग में 2 आवर्स और इवनिंग में 3 आवर्स हम बच्चों को देते हैं
0: जी। तो कितने बच्चों की एक स्ट्रेंथ आपके पास रहती है?
1: एक्चुअली मेरे पास 50+ तो हो ही जाते हैं बच्चे,

0: लेकिन उसमें से बस यही होता है कि स्टार्टिंग में तो सब बच्चा आ जाता है, लेकिन उस प्रैक्टिस को हर कोई झेल नहीं पाता,
1: जी
0: तो कुछ बच्चे उसमें या तो बोर हो जाते हैं या उनके हाथ पैरों में दर्द, इस तरीके की कोई चीजें आती है, फिर कुछ बच्चे जो है उसमें से छूट भी देते हैं। तो हमारे पास एटलीस्ट 30 to 35 चिल्ड्रंस जो है हमारे पास कंटिन्यू रहते हैं, जो कि आज मेरे पास 3 साल से लगातार है।
1: जी मतलब 30-35 बच्चों को आप आराम से एट ए टाइम कोचिंग दे सकते हो। आप बच्चे आपके पास कोचिंग करने आ रहे हैं, अब उनका एक डाइट का भी ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि
0: बिल्कुल
1: स्पोर्ट्स खेलते हैं तो
0: बिल्कुल
1: कुछ ना कुछ
0: बिल्कुल
1: डाइट
0: सर।
1: होगी। तो माँ बाप को भी आप बताते होंगे कि किस तरह की डाइट आपके बच्चों को देनी है। जैसे मैं शुरू करूँ कि आपके पास 7 या 8 साल के बच्चे से शुरुआत आप करते हैं,
0: 5 साल
1: 5 साल से,
0: जी
1: तो आप ही मान लीजिए तो सबके लिए डाइट प्लान भी एक अलग अलग रहता होगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल। पहले तो आजकल यही समझाना बच्चों के लिए बहुत मुश्किल होता है कि उनको बाहर की चीजों के लिए आप अवॉइड करवाइए, जो भी आजकल बाहर चूस चॉकलेट चिप्स वगैरह बच्चे खाते हैं, पहले तो इसे ही आप मत दीजिए, यही बहुत बड़ा टास्क है। उसके बाद जो डाइट है, तो मैं ये कहूंगी कि उसमें बच्चों को एग वगैरह इस टाइप की चीजें उसमें आप उसको प्लस करिए करिए। कुछ बच्चों को 2 किलो वेट कम करना है तो उनको हमें डाइट बतानी पड़ती है कि आप 2 किलो जो है एट अ टाइम आप एक दिन में नहीं कर सकते, आप वो कंटिन्यू मेरे पास प्रैक्टिस में है, उसको क्या डाइट खानी है मॉर्निंग में क्या नहीं खाना है, तो ये चीजें हमने उनके पेरेंट्स को सब बताई हुई है।
1: ट्रेनिंग की बात आती है तो किस तरह की ट्रेनिंग यहाँ पर आप देती हैं?
0: मैं हूँ क्योरगी। हमारे अब जो ताइक्वांडो है ना, वो 2 इवेंट में डिवाइड हो चुका है,
1: जी
0: एक होता है
1: हाँ
0: क्योरगी एक होता है पुमसे। तो एक्चुअली मैंने ही क्योरगी ही खेला है, तो मैं क्योरगी ही उनको खिलाती हूँ। क्योरगी मीन्स होता है फाइट,
1: जी
0: तो फाइट के लिए हमें जरूरी है किक और पंच का आना। तो स्टार्टिंग में बेसिक उनका यही रहता है कि मैं उनको कैसे भी करके उनकी किक इंप्रूव करूं, जिसमें हमें पहले उनको एयर प्रैक्टिस देनी पड़ती है, उसके बाद उनको हमें किक पैड में प्रैक्टिस करवानी होती है। जब बच्चे इस तरीके के सीख जाते हैं, फुटवर्क सीख जाते हैं, पंच करना सीख जाते हैं, गार्ड करना सीख जाते हैं, उसके बाद उनका नेक्स्ट लेवल आता है फाइट यानी कि स्पारिंग। तो उसके बाद उन्हें फाइट प्रैक्टिस दी जाती है। जब फाइट प्रैक्टिस में कहाँ उनको मारना है, कहाँ कितना स्कोर मिलेगा, जैसे ट्रंक में मारते हैं तो कितना स्कोर मिलेगा, फेस में मारते हैं कितना स्कोर मिलेगा, ये तरीके की उनकी ट्रेनिंग दी जाती है। बच्चा जब वहां फाइट खेलना शुरू करता है, फिर उसके बाद वही उसकी वो किस तरीके से अपने को गार्ड करें, कैसे खेलें, अपने स्कोर कैसे बचाएं और स्कोर कैसे निकालें,
1: जी
0: ये चीजें बताई जाती है।
1: जी क्योंकि अब नेशनल्स में आपने बच्चों को खिलाना है तो ऑब्वियसली उनको कुछ एक्सपोजर की जरूरत पड़ती है कुछ
0: बिल्कुल
1: इससे, तो कुछ टूर्नामेंट भी उनको लोकल में भी खेलने पड़ते होंगे,
0: जी
1: तो
0: जी
1: इस तरह
0: जी
1: की सुविधा यहाँ पर है।
0: जी जी टूर्नामेंट्स की हमारी पूरी सुविधा है यहाँ पे, हम लोग कराते रहते हैं हमारे स्टेडियम में भी। एक साल में करीब 2 या 3 टूर्नामेंट हम स्टेडियम में ही कराते हैं, और
1: जी
0: बाकी जैसे आपने बताया कि भी एकेडमीज है हमारी यहाँ पे, तो हम कभी इंटर यूनिवर्सिटी कभी इस तरीके की हम लोग टूर्नामेंट्स कराते रहते हैं।
1: आपके जो बच्चे 8 जो मेडलिस्ट निकले अभी 13th ओपन नेशनल चैंपियनशिप में,
0: जी
1: तो उनमें कौन कौन से बच्चे में आप प्रतिभा देखती हैं कि आगे तक जाएंगे और हमारे देश को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं?
0: भूमिका जोशी उसमें लड़की का नाम था, सब
1: जी
0: जूनियर की है, वो करीब 10 या 11 साल की बच्ची है। उसके अंदर एक टैलेंट दिखता है मुझे कि वो बहुत अच्छा कर रही है।
1: आजकल तो जमाना कंडीशनिंग कोचेस का भी है, मेंटल
0: जी
1: कंडीशनिंग कोचेस का भी है,
0: बिल्कुल,
1: सब एक ही कोच की
0: सब
1: जिम्मेदारी।
0: एक ही कोच की जिम्मेदारी है।
1: टूर्नामेंट से पहले जब बच्चा आप ज्यादातर रिंग पे उतरता है तो आप क्या बताती है उनको, क्या कुछ करना होता है?
0: पहले तो हम यही मोटिवेट कराते हैं, आपके सामने खेलने आ रहा है
1: जी
0: वो भी आप ही की तरह है, वो भी आप ही की तरह ट्रेनिंग करता है, उसके भी 2 हाथ 2 पैर हैं। हमारे बच्चों में पता नहीं, पहाड़ के बच्चों में मुझे लगता है कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, तो जो बच्चा खेलने से पहले डर जाता है, तो हमें उन्हें मोटिवेट बहुत इनको करवाना पड़ता है कि आप डरिए नहीं, आप अपना, मैं बच्चों से ये भी नहीं कहती हूँ कि आप सिर्फ मेडल की चिंता करिए,
1: जी
0: मैं ये चाहती हूँ आप अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दीजिए। हार जीत तो लगी रहती है,
1: जी
0: कोई इतनी वो इश्यू नहीं है, लेकिन आप अपना गेम तो बेस्ट दीजिए, आप अपना जो प्रैक्टिस में इतना अच्छा फाइट करते हैं आप वहां जाके उसका 50% भी नहीं दे पाते, तो इस चीज के लिए मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करना पड़ता है कि आप अपना गेम बेस्ट कर दीजिए। और खाने से पहले आपने क्या चीज खानी चाहिए, बच्चे जो होते हैं खाने से पहले डर के मारे कुछ खाते नहीं है, हमारे उसमें जो होता है ना सुबह से, सुबह 8 बजे
1: जी
0: से जैसे शुरू हो जाता है, तो बच्चे की कभी कभी रात को 8 बजे फाइट आती है, तो बच्चा जो है उतनी देर तक अपनी एनर्जी को लॉस कर लेता है और वो डर के मारे अभी खाता नहीं है कि अभी क्या पता मेरा नाम कुछ देर में आ जाएगा, इस
1: जी
0: तरीके से तो उसकी एनर्जी सुबह से शाम तक तो ऐसे ही लो हो जाती है। तो इस चीज के लिए भी हमें बोलना पड़ता है कि आपको खाना है तो जबरदस्ती आप खाइए उस चीज को,
1: तो वेट तो पहले ही हो जाते होंगे
0: नहीं
1: टूर्नामेंट
0: वेट
1: से,
0: एक दिन
1: तो
0: पहले हो
1: उसमें फिर
0: जाता है।
1: घबराने की कोई बात नहीं है उस
0: नहीं
1: पर।
0: नहीं
1: अगर आप बच्चा बीच में देख रहा है कि 4, 5, 6 घंटे वो खाली है तो उस दौरान उसको भोजन तो कराने की
0: बिल्कुल
1: जिम्मेदारी
0: बिल्कुल,
1: बनती
0: ये चीज की मुझे अभी फर्स्ट डे यहां देखा मैंने, बच्चे ये नहीं खा रहे थे। सेकंड डे में पेरेंट्स भी वहां पे आए हुए थे, तो मैंने उन लोगों से यही कहा बच्चों ने कल जो है जो मिस्टेक करी थी वो आज नहीं होनी चाहिए, आज इनके लिए बनाना जूस, ग्लूकॉन्डी जो है, इलेक्ट्रोल्स वगैरह, ये चीजें जो है आप रेडी रखें और इनको देते रहिए आप थोड़ी थोड़ी देर में
1: टूर्नामेंट के दौरान जब आप

0: उसके बाद वो तो उसमें ही खाएगा दिन का अगर उसका है, या फिर बिल्कुल हल्की डाइट लेगा नॉर्मल, आप इलेक्ट्रोल पी सकते हैं उसमें, इस टाइप की हम उनकी चीजें बोलते हैं, स्प्राउट्स वगैरह ले सकते हैं बच्चे। लेकिन ऐसा होता है ना, हम कहीं बाहर दूर गए तो हमें ये सारी चीजें अवेलेबल भी नहीं रहती है। अभी जैसे हम गोलापार गए थे, यहाँ कुछ भी प्रोवाइड नहीं हो रहा था जो बच्चे होटल में रुके थे, इस टाइप की चीजें। और जो बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ रुके थे तो हमने उनको यही बोला कि आप अपना लंच जो है आप अपना लेके आइएगा, इस तरीके की चीजें। तो बहुत सी चीजों का हमें प्रॉब्लम्स जो है हमें फेस करनी पड़ जाती है
1: जी। साथ ही साथ आप एक नेशनल रेफरी भी हैं, अब आप हमें चाहूंगा कि बताएं कि कैसे आपका सफर एक खिलाड़ी से कोच, कोच से रेफरी की तरफ गया।
0: खेलते खेलते ही नेशनल रेफरी जो है हमारा कोर्स होता है, इसका सेमिनार अटेंड किया था। फर्स्ट टाइम मैंने लखनऊ में ही इसका सेमिनार जो है अपना अटेंड किया था रेफरीशिप का। हालांकि मैं उस टाइम थोड़ा सा घबराती भी थी सीनियर्स की बॉयज की फाइट में, अगर आप सेंटर रेफरी हैं तो आपका जजमेंट और आपकी जो एक्यूरेसी है वो इतनी फास्ट होनी चाहिए, नहीं तो एक रेफरी जो हमारा गेम है हमारी एक छोटी सी मिस्टेक से किसी की जान जा सकती है। अगर हमें लगा कि कहीं पे एक बंदा शार्प खेल रहा है, दूसरा लूज कर रहा है, या हमने अगर धीरे बोला, उसको सुनाई नहीं दिया, दूसरे ने उसे उतनी देर में किक कर दिया कहीं भी, तो इसका बहुत ज्यादा मतलब एक बच्चे की जान जा सकती है। तो इसलिए इसको रेफरी को बहुत मतलब मैं भी डर रही थी इसमें स्टार्टिंग में। तो धीरे धीरे हमारे जो सीनियर सर थे इसमें, एटी राजीव सर है बैंगलोर से, वो इंटरनेशनल रेफरी है जो हमारा करवाते हैं, सो उन्होंने मुझे काफी कॉन्फिडेंस दिलाया, उनको लगा कि हाँ मैं कर सकती हूँ, तो उन्होंने मोटिवेट किया। तो मैंने फर्स्ट सेमिनार तो वहीं पर अटेंड किया, उसके बाद मैं मणिपुर हो गया, उड़ीसा हो गया, सब जूनियर इवेंट में नेशनल रेफरी के रूप में मैंने वहां पे अपना दिया। लास्ट ईयर हमारे हल्द्वानी में ही दोबारा से ये सेमिनार हुआ, क्योंकि अपडेट होना जरूरी रहता है, हमारे रूल्स चेंज हो जाते हैं बीच बीच में, तो हमें भी अपडेट होना पड़ता है उस सब चीजों के लिए। 2018 से पहले जो है करीब 3-4 जगह मैं नेशनल रेफरीशिप कर चुकी हूँ।
1: आपको क्या लगा कि जब आपने एज ए खिलाड़ी के बाद रेफरी कहना चुना था तो कितना मतलब कठिन जैसा लगा था कि आपको लगा कि बहुत इजी?
0: मैं कहूंगी कि सबसे अच्छा मुझे सिर्फ खेलना पसंद है, मुझे खेलना ही काफी ज्यादा पसंद है। तो मैं जब रेफरीशिप करी तो उसमें एक जगह बैठे रहो, आप ना इधर देख सकते हो ना आप उधर देख सकते हो, तो आपको बिल्कुल किसी की आप एक स्कोर से आप कोई बच्चा हार सकता है जीत सकता है, मतलब बहुत वो है, तो आपको बहुत उसमें फोकस करना पड़ता है और बिल्कुल आप बंधे रहते हैं। रेफरी का अच्छा है लेकिन एज अ प्लेयर मैं कहूंगी कि मुझे ज्यादा अच्छा लगता है।
1: तो आने वाला समय आप उत्तराखंड के लिए ताइक्वांडो में कैसा देखती हैं, कोच होने के नाते मैं जानना चाहूंगा।
0: कि हमारा जो अल्मोड़ा है वो पहले से ही शुरू से ही ताइक्वांडो में काफी अच्छा रहा है। आपने सुना होगा 2004 में हमारे सुरेन भंडारी दादा सर है जो काफी सीनियर है, वो भूषण से एशियन गेम्स में मेडल लेके आए थे, तो वहीं से हमारा जो है ताइक्वांडो जो है अल्मोड़ा में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध रहा है। और काफी टाइम बाद हमारा फिर उसके बाद रिजल्ट थोड़ा सा डाउन हो गया था, हालांकि दौराहाट में भी हमारी यहाँ पे चलती है, उनके भी काफी सर है हमारे विजय बहादुर सर, उनके भी बच्चे काफी अच्छा करते हैं, अच्छा रिजल्ट है, हर जगह जॉब में भी निकलते हैं, अच्छा रहा है। और मैं चाहूंगी कि ऐसे ही जैसे सुरेन भंडारी सर ने हमारे अल्मोड़ा का नाम इतना रोशन किया, ऐसे ही हमारे बच्चे जो है आगे नाम रोशन करते रहे, यहाँ से भी हमारे बच्चे निकले अल्मोड़ा का नाम रोशन करें।
1: तो हम ये कहेंगे कि आप इसको एक व्यवसाय के रूप में भी चुन सकते हैं, आपका कैरियर भी इसमें बन सकता है, एज आप अगर शौकिया खेलते भी हैं खेल खेल से भी आप आगे भी जा सकते हैं, और महिलाओं के लिए तो खासकर बहुत अच्छा है। मैं कहूंगा तो क्या कहना चाहेंगी आप हमारी बच्चियों से कि वो इस खेल को कितना अपनाएं?
0: ये मत देखिए कि आप देश के लिए मेडल ला रहे हैं, हमारे पास आते बहुत सारे बच्चे हैं लेकिन बनता कोई एक ही है, तो हम उनको एक अच्छी दिशा में एक अच्छा नागरिक बना रहे हैं। जो बच्चे बड़े होते हैं आजकल गलत संगत में जा रहे हैं, नशे की तरफ को जा रहे हैं, तो बच्चे का एक फोकस रहेगा कि हाँ मैंने ये चीज करनी है, मैं फिट, मुझे फिट रहना है, मुझे ये ऐसी चीजों में ध्यान नहीं देना है, मुझे नेशनल में मेडल लाना है, तो बच्चा जो है उधर ही की ओर अग्रसित होगा, का ध्यान जो है भटकेगा नहीं। और दूसरी तरफ रही बात गर्ल्स की, तो गर्ल्स के लिए जैसा आपने बताया, बच्चा जब यहां से स्कूलिंग में पूरा अगर अपना टाइम यहां सीखता है, कल के दिन में वो ताइक्वांडो की लाइन में नहीं जाके अपना कोई और कोर्स करने के लिए उसको बाहर जाना पड़ता है, तो गर्ल्स के लिए ये बहुत अच्छा है कि उसको सेल्फ कॉन्फिडेंस वो रहेगी कि हाँ मुझे ताइक्वांडो आता है, मैं इतनी सेल्फ कॉन्फिडेंस हूं, मैं कहीं भी जा सकती हूं, मैं अपना बचाव खुद कर सकती हूं। बच्चा खेले, 12th तक ही खेले, अगर जिसको फिर उसके बाद उसको कोई और लाइन पकड़नी है तो वो कर सकता है।
1: ये थी वंदना सिंह, और अब बारी है अखिलेश सिंह की, जो कि अब सीनियर टीम के लिए प्रयास कर रहे हैं, और ये 13वीं जूनियर एशियन चैंपियनशिप मलेशिया में आयोजित भारत की तरफ से ब्रॉन्ज मेडल विजेता रही। आपने 2023 के नेशनल चैंपियनशिप के गोल्ड मेडलिस्ट हैं और 24 में आपके आप सिल्वर मेडलिस्ट हैं, तो अखिलेश

0: बात यहीं से शुरू करते हैं, आपकी नेशनल चैंपियनशिप की जो आपने 2023 में गोल्ड जीता था, पहली बात ये आती है कि ताइक्वांडो के प्रति आपका शौक कैसे हुआ?
1: बचपन से ही हो गया था शुरू, क्योंकि मेरी दीदी जो है वो खुद नेशनल चैंपियन और नेशनल प्लेयर रही है, तो उनको देख के फिर मन किया खेलने का।
0: बात आती है नेशनल चैंपियनशिप की, 23 में आपने गोल्ड जीता, तो वो सफर आपका कैसा रहा?
1: तो नेशनल चैंपियनशिप जो है ऑल ओवर इंडिया से सारे बच्चे आते हैं और कंपटीशन बहुत हाई रहता है, टफ रहता है, तो उसके लिए बस गेम के अपने गेम के प्रति बहुत ज़्यादा सीरियसनेस और कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा लगता है, और सारी चीज़ें छोड़नी पड़ती है टेम्प्रेरी, पढ़ाई और जो मेन चीज़ें हैं उसी पर तुम फोकस कर सकते हो अगर आप प्लेयर और एक स्टूडेंट दोनों हो तो आपके लिए ऐसा होता है कि आपके लिए जो लाइन है वो थोड़ी टफ है, जो नॉर्मल स्टूडेंट है उससे ज़्यादा टफ है, क्योंकि आप प्लेयर और स्टूडेंट दोनों हो, आपको दोनों मैनेज करते हुए चलना है, तो पूरे अच्छे तरीके से टाइम मैनेजमेंट और पूरी मेहनत दोनों जगह, क्योंकि दोनों चीज़ में एक्सेल करना है, अच्छे से बेस्ट देना है, तो टफ था नॉर्मल बच्चों से जो नॉर्मल स्टूडेंट होते हैं स्पोर्ट्स उनके मुकाबले बहुत टफ था, क्योंकि नेशनल चैम्पियनशिप थी, और पर बस पैशन था अंदर और ये था कि हार्डवर्क करेंगे तो सब कुछ हो सकता है, मेहनत करते गए।
0: मेहनत करते करते आपने 23 और 24 में आप सिल्वर मेडलिस्ट रहे, गोल्ड के बाद सिल्वर आया, उस दौरान परफॉर्मेंस में थोड़ी हम कहेंगे ड्रॉप रही आपकी, कोई बात नहीं, लेकिन आपका सिलेक्शन हुआ था 13th जूनियर एशियन चैंपियनशिप के लिए मलेशिया में जो आयोजित हुई थी, तो वहां पर आप मेडलिस्ट रहे, ब्रॉन्ज मेडलिस्ट आपने देश के लिए जीता, तो ये मैं जानना चाहूंगा कैसे आपका सिलेक्शन नेशनल टीम के लिए हुआ था उस?
1: तो सबसे पहले जो था हमारा 2025 की नेशनल चैंपियनशिप जो देहरादून में हुई थी, तो वो था एक सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया था कि जो बच्चा गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज यहाँ पे होगा तो उसके लिए आगे जाके रास्ते खुलेंगे एशियन चैंपियनशिप के ट्रायल के लिए, तो वहाँ गए और पार्टिसिपेट किया नेशनल चैंपियनशिप्स में और वहाँ मेडल जीता, वहाँ नेशनल चैंपियन बना मैं उस टाइम पे, और उसके बाद वहाँ से फिर आगे जाके जूनियर एशियन चैंपियनशिप के लिए सिलेक्शन ट्रायल्स दिए, फिर वहाँ सिलेक्शन लिया, और उसके बाद कैंप मिला हमको चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में, हमारा कैंप लगा था 1.5 महीने का
0: जी,
1: तो फिर वहाँ ट्रेनिंग हुई इंडिया के बेस्ट कोचेस के साथ।
0: पहली बार जब एशियन चैंपियनशिप में खेले आप, नेशनल से विदेश में जाकर खेले, तो कैसा आपकी मनस्थिति थी, क्या लग रहा था आपको, मैं इतने बड़े मंच पे खेलने जा रहा हूँ?
1: बस ये था कि अब इतना आगे आ चुके हैं तो अब कुछ और ऑप्शन नहीं है, अपना बेस्ट देने का हमेशा से रहा है दिल में कि अब तो देश के लिए खेल रहे हैं, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी कि देश के लिए खेलना है, अपना बेस्ट देना है किसी भी हालत में, चाहे कोई भी आ जाए सामने किसी भी कंट्री का।
0: वहां पर जब आपके कोचेस होते हैं तो एक आप जब स्थानीय स्तर पर आपके कोच होते हैं अलग होते हैं, अब जब आप एशियन चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आपके साथ कोचेस अलग होते हैं, तो कैसा आपको लगता है कि जो आपने कोचिंग यहाँ ली, जिन कोचेस से और इंटरनेशनल लेवल पे जा रहे हैं खेलने के लिए, वहां पर कोचिंग में क्या अंतर लगा आपको?
1: यही बात है जिससे हम बचपन से सीखते हैं, उनको तुम्हारी कमियों के बारे में, तुम्हारे एडवांस जो तुम जिस चीज में अच्छे हो उस चीज के बारे में पता होता है, और वो तुम्हें ज्यादा बेहतर तरीके से समझता है एज अ प्लेयर, जो हमारा कोच होता है उससे एक अलग बॉन्ड होता है, हमारे एक अलग रिलेशन होता है जिसने हमें बेसिक से उठाया होता है, तो उसे सब पता होता है, लेकिन जब हम बड़े लेवल पे जाते हैं तो वहाँ पे हमें थोड़े अलग कोचेस मिलते हैं जो एडवांस होते हैं, जो ज़्यादा क्वालिफाइड होते हैं, और एक लेवल उनका अप हो जाता है, पर उनसे फिर कुछ टाइम उनके साथ ट्रेनिंग करने के बाद उनके साथ भी थोड़ा रिलेशन अच्छा बन जाता है, क्योंकि वो काफ़ी सारे प्लेयर्स को वो उन्होंने पहले भी ट्रेनिंग दी होती है और उनका काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, तो उन्हें पता होता है कि हर एक बच्चे को कैसे हैंडल करना है, तो बस इतना कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं था, पर अपना कुछ तो अपना कुछ ही होता है लास्ट में।
0: इंटरनेशनल में आप फाइट कर रहे हैं, आप जब पहली बार फाइट करने गए तो क्या था, कहते हैं बटरफ्लाई इन स्टमक, कहते हैं
1: नर्वसनेस थी थोड़ी, वो तो हर फाइट के पहले नर्वसनेस होती है।
0: किसके अगेंस्ट फाइट थी आपकी?
1: मेरी पहली फाइट चाइना से थी। हाँ, और मैंने ये देखा है हमारे देश में स्पोर्ट्स की हालत थोड़ी डाउन ही चलती है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, जो प्लेयर्स को काफ़ी सारी फैसिलिटीज, क्योंकि जो और कंट्रियाँ हैं वो काफ़ी ज़्यादा आगे है हमसे आजकल, क्योंकि जो हम अभी सीखते हैं वो शायद से 5-10 साल पहले वो लोग करके उसे वो टेक्निक्स और जिस एडवांसमेंट के साथ आज हम सीख रहे हैं वो बहुत पहले सीख चुके हैं, तो उनके पास प्लस पॉइंट रहता ही रहता है उनकी फैसिलिटीज़, क्योंकि उनको अच्छी मिलती है। ऐसा नहीं है कि हमारे देश में भी फैसिलिटीज़ नहीं है, पर हो जाता है थोड़ा पीछे, क्योंकि बेसिक लेवल पे अच्छी वो नहीं मिलती, भले टैलेंट हमारे देश में बहुत ज्यादा है
0: जी
1: पर
0: मैं ये जानना चाहूंगा, जब पहली फाइट आप कर रहे थे, अपोनेंट आपका चाइनीज
1: हाँ
0: था, तो आप कैसे उससे फाइट कर रहे थे, क्या लग रहा था आपको कि क्या उसमें क्या कमी है और मैं कहां उसके ऊपर पॉइंट ले सकता हूं?
1: वही गेम पढ़ना था उसका, सबसे पहले खेलते गए नॉर्मली उसका गेम देखा कि वो किस तरीके से खेल रहा है, और फिर थोड़ा उसकी कमियां देखी कि कहाँ पे वो लैक कर रहा है, और फिर वहीं से स्कोर निकालने का ट्राई किया। वो अपने लेफ्ट लेग से बहुत अच्छा नहीं परफॉर्म कर पा रहा था, वो बस एक ही लेग से खेल रहा था, तो पता चल गया था कि ये इसका माइनस पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट निकल सकता है हमको, तो वहाँ पे एडवांटेज लिया, वहाँ से पॉइंट निकाला।
0: तो ये एज ए खिलाड़ी तुम खुद जज करते हो या बीच में कोच भी इशारा करते हैं कुछ वहां पर?
1: कोच का बहुत बड़ा हाथ रहता है, क्योंकि कई बार जो पर्सन खेल रहा होता है ऐसा प्लेयर, तो कई बार वो नहीं समझ पाता है कि सामने वाला कैसा खेल रहा है, तो कोच कभी कभी आंख बंद करके कोच की बात मानना भी बहुत जरूरी है, कि अगर तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है तो कोच पे भरोसा रखो, वो तुम्हें अच्छा ही गाइड करेगा और सही गाइड करेगा, क्योंकि उसके पास बहुत एक्सपीरियंस है।
0: जी आप अपनी पहली फाइट जीते, आगे की फाइट जीते, तो किस तरह के अपोनेंट्स आप फेस करते गए?
1: चाइनीज अपोनेंट थोड़ा टफ पड़ा पहली फाइट में, सेकंड फाइट मेरी इजी रही जो सऊदी अरेबिया के साथ थी, थर्ड फाइट मेरी कोरिया के साथ हुई थी जिसमें मैं हार गया था,
0: अच्छा
1: कोरिया से मैं हार गया था।
0: कोरियन वाले में ऐसी क्या खासियत लगी जो आपको लगा कि आप कहां लैग करें?
1: कोरियन के साथ मैंने देखा, सबसे पहले तो उसके पास एक एडवांटेज था हाइट का, वो मुझसे हाइट में बड़ा था,
0: अच्छा,
1: और उसके पास स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा थी, स्ट्रेंथ में भी बहुत ज़्यादा, हाइट में भी बहुत ज़्यादा, तो बस यही प्लस पॉइंट था उसका।
0: टेक्निक वाइज
1: टेक्निक वाइज
0: आप
1: मैं कहूँगा
0: टैकल कर रहे थे मतलब?
1: टेक्निक वाइज मॉडरेट, बस जो नेचुरल स्ट्रेंथ थी और वो रॉ स्ट्रेंथ वो उस पर अब बहुत अच्छी थी, तो वहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गई।
0: उसके बाद अब आगे आप क्या सोचते हो, आपने क्या करना है?
1: अभी नेक्स्ट मेरा सोचा है सीनियर नेशनल चैंपियनशिप्स को टारगेट कर रहा हूँ, उसके लिए वर्क कर रहा हूँ, खुद पर बेहतर कर रहा हूँ हर दिन खुद को, और आजकल ये तो है अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा है गेम्स में, तुम्हें आर्मी सर्विसेज, आर्मी और काफ़ी सारी रेलवे, इन सब चीज़ों में जॉब मिल जाती है
0: जी,
1: इजीली। हाँ, तो उसके साथ तुम अपना गेम भी कंटिन्यू कर सकते हो एक तरीके से।
0: तो अभी फिलहाल जो क्या तैयारी चल रही है आपकी?
1: फिलहाल तो नेशनल चैम्पियनशिप के लिए तो अब कंपटीशन और डबल है, तो उसके लिए डबल मेहनत भी करनी पड़ेगी, तो बस वही चल रहा है।
0: तो कितना डिफरेंस लग रहा है आपको जूनियर से सीनियर में? अब आप शिफ्ट कर रहे हो तो यहाँ पर किस कोच के अंडर में यहाँ पर कोच
1: मैं
0: किया है?
1: विक्रम भंडारी सर,
0: विक्रम भंडारी जी के अंडर में कोचिंग कर रहे हैं, तो किस तरह की उन्होंने कुछ ना कुछ तो सीनियर्स लेवल पे जो कोचिंग होती है जूनियर से काफी डिफरेंट होती है, तो क्या चीजें आपको अलग से सिखाई जा रही है?
1: अब जैसे सीनियर एक अलग ही लेवल है, उसका लेवल थोड़ा टफ डिफिकल्ट है, क्योंकि बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर्स भी खेलते हैं, तो एक तो वो हो गया, टेक्निकल ट्रेनिंग ज़्यादा करनी पड़ती है, थोड़ी टेक्निक सुधारनी पड़ती है और अपने आप को और पॉलिश करना पड़ता है, अपने जो कमियाँ होती है उनको ट्राई करना पड़ता है कि इसको किसी ना किसी तरीके से कम करें और सुधारें, कोई कमी ना रह जाए हमारे अंदर।
0: अच्छा, स्टेमिना भी उसमें चाहिए होता है आपको, इतनी देर रेंज में सस्टेन करना है, तो स्टेमिना बढ़ाने के लिए किस तरह की ट्रेनिंग यहाँ पे करते हो?
1: स्टेमिना बिल्ड करने के लिए अलग अलग तरीके की ट्रेनिंग होती है, हमारी एंड्योरेंस ट्रेनिंग होती है, जो मेनली स्प्रिंट्स, रनिंग्स, लॉन्ग रनिंग हम लोग करते हैं जिससे स्टेमिना बिल्ड होता है।
0: 3 जून को विश्व साइकिलिंग दिवस आयोजन किया गया। माउंटेन बाइकिंग के बारे में अपने अनुभव को साझा किया हमारी प्रतिनिधि गीता कनवाल से भरत शाह ने।
2: आप काफी समय से साइकिलिंग कर रहे हैं और कई सारे ट्रैक्स आपने साइकिल से किए हैं, तो सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आपके मन में साइकिलिंग को अपने जीवन में अपनाने का विचार कैसे आया?
3: ये मेरे बचपन से जुड़ा है और मेरा पहले साइकिलिंग में कोई शौक ऐसा नहीं था। मैं जब झांसी हाई स्कूल इंटरमीडिएट में पढ़ने के लिए गया था तो मेरी मजबूरी थी, क्योंकि मेरे घर से करीबन 8-9 किलोमीटर दूर स्कूल हुआ करता था, तो मुझे वहां साइकिल से ही जाना पड़ता था, इसके लिए मैंने साइकिल सीखी थी। और उसके बाद मैं नैनीताल आ गया आगे की एजुकेशन के लिए, तो साइकिल लगभग छूट गई थी। फिर बाद में मैं एडवेंचर से जुड़ा तो मैंने ट्रैकिंग का काम किया, लेकिन पिछले 12-13 सालों में साइकिल में एक बड़ा परिवर्तन आया कि पहाड़ों में लोग साइकिल चलाने लगे। हम सोचते थे कि लोग प्लेन्स में ही साइकिल चलाते हैं, लेकिन पहाड़ों में गियर साइकिल का प्रयोग होने लगा, तो तब मैंने पहली बार 10-12 साल पहले गियर साइकिल चलाने की शुरुआत की। और फिर एक बार जब मैं शुरू हुआ तो फिर रुका नहीं, फिर मैं नए नए तरीके से साइकिल के ट्रेल देखने लगा और साइकिल से पहाड़ों को घूमने लगा। लगा।
2: इसके अलावा सर, साइकिलिंग के दौरान आपके खट्टे मीठे अनुभवों के बारे में जानना चाहेंगे, और आपने अभी तक साइकिलिंग के माध्यम से कहां कहां तक की यात्राएं की हैं?
3: अनुभव तो साइकिल में जब आप घर से निकल जाओ तो बहुत प्रकृति के साथ आपको रहना पड़ता है, तो एक तरीके से जैसे फिल्म चेंज होती है उस तरीके से पूरा आपको चेंज एटमॉस्फेयर मिलता है, और नई नई चीजों से आपको मतलब आपको देखने को मिलती है, नए लोगों से बातचीत करने का मौका मिलता है और नए स्ट्रगल आपको दिखाई देते हैं। तो मेरी यात्राओं में जो मैंने शुरुआत की पहाड़ों में, तो आसपास में ही पहले 5-10 किलोमीटर मैंने सफर शुरू किया, जैसे अल्मोड़ा से कसार देवी का, तब मुझे बड़ी हिचक होती थी कि अगर मैं चढ़ाई में कहीं रुक गया तो लोग क्या कहेंगे। और फिर धीरे धीरे जब मुझे प्रॉपर गियर साइकिलिंग का तजुर्बा हो गया तो मैंने काफी इधर जो टूर्नामेंट प्रोग्राम्स होते हैं, इनके साइकिल इवेंट्स होते हैं, उनमें मैंने पार्टिसिपेट करना शुरू किया। उसके बाद मैं गोवा भी गया, नासिक भी गया, और बॉम्बे में भी मैंने पार्टिसिपेट किया। और इसके अलावा मैंने पहाड़ों में जो जर्नी की, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट उत्तराखंड के पहाड़ों में सबसे ज्यादा है, तो मैंने बद्रीनाथ की साइकिल यात्रा की, माणा पास मैंने किया साइकिल से, हिमाचल में मैंने काफी साइकिलिंग की और वहां पे मुझे प्राइज भी मिले, और इस तरह से मेरी साइकिल जर्नी काफी अच्छी रही और अभी भी मैं कंटिन्यू साइकिलिंग करता हूँ पहाड़ों को देखने के।
2: आप कई वर्षों से साइकिलिंग कर रहे हैं, तो साइकिलिंग शुरू करने से पहले और उसके बाद आपने अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में किस तरह का परिवर्तन देखा?
3: स्वास्थ्य तो साइकिलिंग से बहुत ही बढ़िया मैंने फील किया। सबसे बड़ी चीज जो मुझे साइकिलिंग जर्नी में महसूस हुई कि जब आप पहाड़ों में साइकिलिंग करते हैं तो आपको सिर्फ अपने सांसों की आवाज सुनाई देती है, मतलब आप अपने आप को फील कर सकते हैं, और ये एक तरीके से स्पिरिचुअल फीलिंग भी आप कह सकते हैं, क्योंकि वैसे तो अधिकतर इंसान जो है जब भी कहीं बैठता है और कुछ पढ़ता है, लिखता है या कहीं कुछ भी कर रहा होता है तो उसके दिमाग में कई तरह के विचार आते रहते हैं, लेकिन जब वो साइकिलिंग करता है तो उसको ये लगता है कि उसको उस डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, वो चढ़ाई चढ़नी है या वो अचीवमेंट करना है वहां तक जाने का, तो उसको बाकी कोई ख्याल नहीं आते। तो कहते हैं जो स्पिरिचुअलिज्म में थॉटलेसनेस, अपने आप को समझना, अपने आप को जानना, अपनी धड़कनों को समझना, ये मुझे लगता है साइकिलिंग एक्टिविटी में सबसे ज्यादा होता है और यही मैंने महसूस।
2: आप हमारे श्रोताओं को साइकिलिंग को अपने दैनिक जीवन में अपनाने के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे?
3: मुझे तो ये लगता है कि साइकिलिंग को दैनिक जीवन में अपनाना चाहिए, इससे आपका फिटनेस लेवल अच्छा रहेगा, हेल्दी फील करेंगे आप अपने आप को साइकिलिंग करके, और यदि आप हफ्ते में आपके पास समय नहीं है तो आप कम से कम वीकेंड में या संडे के दिन आप एक साइकिल राइड छोटी जरूर करें, जिससे कि एक परिवर्तन आपको खुद अपने अंदर महसूस होगा। यही संदेश दूंगा कि सभी को साइकिल चलानी चाहिए और स्वस्थ रहने की ओर अग्रसर होना चाहिए, और सभी स्वस्थ रहें, साइकिल चलाएं।
0: तो इसी के साथ आज के कार्यक्रम से अपने मित्र संजय जोशी को अनुमति दें। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे नए अंक के साथ इसी चैनल इसी फ्रीक्वेंसी पर। तब तक के लिए नमस्कार।

0: DARPA.
1: Hail DARPA.
0: Hail DARPA.
2: FM 100.5 MHz पर ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। अब प्रस्तुत है फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश।

कार्यक्रम में आप सभी का सुषमा जोशी की ओर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मेरे प्यारे श्रोताओं, जीवन में सबसे जरूरी है कि हमें खुद पर भरोसा करना चाहिए, तभी हम अच्छे भविष्य का निर्माण करेंगे। आज एक छोटा सा कदम कल की बड़ी जीत बन सकता है, बस जरूरत है तो सिर्फ विश्वास की, खुद पर और अपनी मेहनत पर। जी हाँ, इन्हीं पंक्तियों के साथ कार्यक्रम में हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7088000731। नंबर एक बार पुनः सुन ले, 7088000731। और जो आप हमारे नियमित श्रोता हैं, उन सभी की प्यारी प्यारी फरमाइशें हम तक पहुंच चुकी हैं, तो बिना किसी देरी के फरमाइशी गीतों का सिलसिला अब शुरू करते हैं। कार्यक्रम में ये फरमाइश हम तक पहुंची है गोल्डन रेडियो श्रोता संघ राज पैलेस माऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से, राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा, और साथ ही है शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन स्वर्णकार, कृष्णा और पीहू स्वर्णकार। इसी के साथ अगली फरमाइश हमें लिख भेजी है, आप हैं गांव उगाला जिला अंबाला हरियाणा से राजेंद्र कुमार, मलकीत कौर, आरती रानी, राघव, हरमन और इनके परिवार के सभी सदस्यगण। हमें फरमाइश लिख भेजी है आदाब, आप लिखते हैं आदाब नमस्कार जी, जी आपको भी हमारी ओर से प्यार भरा नमस्कार। आप हैं जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफाकत, मोहम्मद रिहान, समरीन परवीन, माहिरा नूर। ये अगली फरमाइश हमें लिख भेजी है परी महल कासगंज से आबाद खान, नबील खान, अरफा खान, इल्मा खान, एम असलम सैफी, मास्टर जाहिद अली, मीरा सराय बदायूं से आप हैं आफरीन खान और जमीर खान जो इनके दामाद हैं। जी अगली फरमाइश जो हमें लिख भेजी है, आप हैं शांति निवासी लेह गांव रेलवे जिला अमरावती महाराष्ट्र से, कुमारी कल्पना कुरहाड़े, वंदना कुरहाड़े, आशीष कुरहाड़े, दीपक कुरहाड़े। हमें फरमाइश लिख भेजी है वेडिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू, टॉमस, पिंकी, लवली और आरती अरोड़ा। ये अगली फरमाइश हमें लिख भेजी है, आप हैं रेलवे कॉलोनी आनंद विहार दिल्ली से किशन बंजानी, नीलम, स्वाति, संगीता, सरिता, सुमन और महाजन किशु। ये अगली फरमाइश हम तक पहुंची है, आप हैं यमत मॉल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खड़से और विनोद खड़से। हमें फरमाइश लिखने वाले हमारे अगले श्रोता हैं ऊपरकोट मोहल्ला चोखुनटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बाजी, निगहत परवीन अब्बाजी, शाहनवाज अब्बाजी, सरफराज अब्बाजी, फरदीन अब्बाजी, सुहान अब्बाजी, अरजान अब्बाजी, अबान अब्बाजी और अब्बाजी परिवार के सभी सदस्यगण। इसी के साथ ही प्रोग्राम में हमें मैसेज लिख भेजा है कस्बा गुन्नौर से फारूक अली खान, फैजी, फराज, फरहान, फरहीन, फारिया और ताहिरा। हमें फरमाइश लिख भेजी है अनारकली बाजार जगराहो से कमल पाठक, सुनील पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्या मल्होत्रा, भाई सुच्चा सिंह पाठक, विनोद पुरी और इनके साथी। ये अगली फरमाइश हमें लिख भेजी है ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इजरार और नरगिस खातून। ये फरमाइश लिखने वाले हमारे अगले श्रोता हैं रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। हमें फरमाइश लिख भेजी है आप हैं बिहारी कॉलोनी दिल्ली से तुलसी मस्कीन, चैतन्य मस्कीन, रचिता मस्कीन, आशीष राजा और चंडीगढ़ से हमें मैसेज लिख भेजा है राहुल खुराना, रचिता खुराना और रिधान खुराना। हमें फरमाइश लिखने वाले श्रोता हैं आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबी राही और महराज जहां। ये अगली फरमाइश है मोहल्ला हलवाईयान शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजिदा रानी और हिना कौसर।
ये अगली फरमाइश है शेरवानी स्कूल गंज जुंडवारा से आफताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी और आलिया अंसारी। श्रोताओं, आपके मैसेजेस देखकर हमें पूरा ही देखिए ना कितनी खुशी हो रही है और पूरे दिल से कि आप लोग हमारे कार्यक्रम का कितना इंतज़ार करते हैं। और यकीन मानिए हमें भी उतनी ही बेसब्री से इंतज़ार होता है आपसे प्रोग्राम के ज़रिए जुड़ने का। जी, इसी के साथ ही अगली फरमाइश है सहारनपुर से आशा नारंग, सोनाली और सुरेश नारंग। ये अगली फरमाइश है जो हमें लिख भेजी है आप हैं मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौड़। ये अगली फरमाइश है जो हम तक पहुंची है कस्बा चिलकाना से नदीम अंसारी, आयशा, नदीम अजीम, शान, आलिया अंसारी, अरहम अंसारी। ये अगली फरमाइश है लाल कुर्ती रुड़की कैंट से राजेश वर्मा, मंजू वर्मा, निशांत वर्मा, कौशिकी वर्मा, दीपाली वर्मा, युवान और आर के राजा। हमें फरमाइश लिख भेजी है आप हैं निवास मिलन विहार जेमिस रोड से राधिका, माफ कीजिएगा आपका नाम हमें क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है। तो चलिए अगली फरमाइश की ओर बढ़ते हैं। ये फरमाइश है जो हमें लिख भेजी है ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई, बाबू, दिव्यांश और सूरज कुमार डाक से। ये अगली फरमाइश है जो हम तक पहुंची है बाजार रोड मुंगीसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरून निशा, सबिस्ता, मोहम्मद नसीब, पलक, लुबना और यश मंसूरी। हमें फरमाइश लिख भेजी है कुंडी सेक्टर 5 सूर्यनगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गर्वी और बेबी बॉय हिमाक्ष। ये अगली फरमाइश है जो हम तक पहुंची है गंज डुंडवारा यूपी से मास्टर खिल्लू परवेज, बेगम इमराना नाज, जवनवाज शेख, दानिश शेख, अमन आफरीदी और राधा नामदेव। ये अगली फरमाइश है जो हम तक पहुंची है आप हैं करणवीर हाउस भूचो केजिया बठिंडा पंजाब से प्रेम सिंह जोड़ा, मंजीत कौर जोड़ा, करणवीर करण, दपिंदर, वरिंदर, कुलदीप, सीमू, एकम, दमन और अभिजोत। हमें फरमाइश लिख भेजी है डाक व गांव निमनाबाद जिला जिंद हरियाणा से जसबीर सिंह अरोड़ा, जतिंदर और गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर और साथ ही है कमरजीत कौर। तो चलिए आप सभी की फरमाइश पर सुनवाते हैं कार्यक्रम में ये पहला गीत हरजाई फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज़ में।

श्रोताओं, रात है तो क्या हुआ, हर रात अपने साथ एक खूबसूरत चांद और अनगिनत तारे लाती है जो हमें हमेशा याद दिलाते हैं कि हर अंधेरे के बाद भी रोशनी मुमकिन है। तो जी हाँ, प्रोग्राम में बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। ये फरमाइश हमें लिख भेजी है डोईवाला से अनीता वर्मा, सुनीता वर्मा, अनिल और शकुंतला। हमें फरमाइश लिख भेजी है MLB रोड ग्वालियर से सुरेश खुराना, पप्पी, किरण खुराना, लव्या, आरव खुराना और एस के पप्पी। हमें फरमाइश लिखने वाले श्रोता है झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत भाटिया और मयंक भाटिया। ये अगली फरमाइश है जो हम तक पहुंची है, आप हैं नाज पैलेस अजमेर शरीफ से सैयद आलम हाशमी, गुलनाज नाज, सलमा नाज, असद, अरहाम और साथ में हैं जो प्रोग्राम से हमसे जुड़े हुए हैं वो हैं, आप हैं हमारे श्रोता मोहम्मद आलम हाशमी। ये अगली फरमाइश है जो हम तक पहुंची है, एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा, तन्वी बोट और अंकित कांगड़ा। हमें फरमाइश लिख भेजने वाले श्रोता है व्हाइट फील्ड बेंगलोर से भारत भूषण, अंजू श्रीवास्तव, दिव्येंदु भूषण, संस्कृति और पौरुष। ये अगली फरमाइश हमें लिख भेजी है, आप हैं अधिकारी निवास मिलन विहार GMS रोड देहरादून से, इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है तो आप एक बार और मैसेज कर सकते हैं जिसमें आपका नाम भी शामिल हो, राजेश्वरी सागर। जी हाँ, आपका नाम हमने शामिल कर लिया है। तो बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। ये फरमाइश है मोहल्ला बारादरी महमूद खान रामपुर से भाई रफत साहब, सईद भाई मंसूरी, राशिद भाई मंसूरी, असद भाई बहन, फिरोजा मुस्कान और अफजर अली नगमा नाज मंसूरी। ये अगली फरमाइश हमें लिख भेजी है, आप हैं रोहिदास चौक पंढरपुर सिटी से प्रशांत सिंधे, सुनीता सिंधे, यशराज सिंधे,

ऋषि शिंदे और कृष्णा घोट के हमें मैसेज लिखने वाले हमारे अगले श्रोता हैं। आप है गांव खेगांव तहसील महेश्वर से प्रेमलाल वर्मा, ऋकेश हर्षिता और ममता बाई वर्मा। हमें फरमाइश लिख भेजी है पहाड़गंज मुल्तानी डांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक और मधु नायक ने। ये अगली फरमाइश है जो हम तक पहुंची है। आप हैं छत्रपति संभाजी नगर से पार्थ रेडियो क्लब। आप हैं राजेश सांबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश। हमें फरमाइश लिख भेजी है छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, पूजा वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा। हमें फरमाइश लिखने वाले श्रोता है गांव कुमार हीड़ा सहारनपुर से सैयद मशरूर, साइना हसन, अक्षा, नाजिया, आफिया, इब्राहिम सद्दाम और आदिब। ये अगली फरमाइश हमें लिख भेजी है पटेल नगर मौलाउड से डॉक्टर रमेश कुमार जजोरिया, गीता रानी जजोरिया, गगनदीप जजोरिया, आरजू जजोरिया और गुड्डू। ये अगली फरमाइश है खाला पार मुजफ्फरनगर से साहिना, प्रवीण, फातिमा, खुशबू, आयजा, मोहम्मद, अदीब और मशरूर अली। ये अगली फरमाइश हम तक पहुंची है पटियाली रोड गंज डुंडवारा से आमिर हुसैन बेगम, नैबा शेख, फौजिया शेख, आहिल हुसैन, अरहान हुसैन और इनके परिवार के सभी सदस्यगण। हमें फरमाइश लिख भेजने वाले हमारे अगले श्रोता हैं। आप हैं मारहरा दरवाज़ा ईटा से नबी हसन अब्बाजी, शहनवाज अब्बाजी, नवीद हसन अब्बाजी, सुहेल हसन अब्बाजी, अनम अब्बाजी, यशफ अब्बाजी और रशीद वारसी। ये अगली फरमाइश हमें लिख भेजी है सनावत से शेख मूसा मोहसिन, अशोक वर्मा और राजकुमार बौडाना। हमें फरमाइश लिख भेजी है सेवली से रोहित, सुमित और सुमिता। ये अगली फरमाइश है परी महल काशगंज से आबाद खान, नबील खान, आरफा खान, इल्मा खान, एस असलम सैफी, मास्टर जाहिद अली, मीरा सरायू बदायू से आफरीन खान और जमीर खान। तो आइए आप सभी की फरमाइश पर सुनते हैं प्रोग्राम में ये अगला फरमाइशी गीत बुढ़ा मिल गया फिल्म से किशोर कुमार की आवाज़ में।

रात खामोश है मगर बहुत कुछ कह जाती है, दिन की भीड़ से छुपी हर बात समझा जाती है। जी हाँ, प्रोग्राम में बढ़ते हैं ये अगली फरमाइश की ओर। ये फरमाइश है दादा बाबू रोड गिरीड़ झारखंड से मोहम्मद यासीन अनजान साइमा नवाज हसन नवाज बाबू अहद मिर्फा नाज और बेबी चाहत। ये अगली फरमाइश है जो हम तक पहुंची है मुकाम पोस्ट फूल चिंचोली तालुका पंढरपुर से जाकिर मुलाड़ी सुमैया मुलाड़ी सुबान मुलाड़ी समीर मुलाड़ी सलमा मुलाड़ी मुमताज़ मुलाड़ी दिलशाद मुलाड़ी नसीर मुलाड़ी बानूबी मुलाड़ी बादशाह मुलाड़ी और इनका पूरा ही परिवार। ये अगली फरमाइश है मोहाली पंजाब से बब्बल मल्होत्रा और ओम प्रकाश मल्होत्रा। हमें फरमाइश लिख भेजी है कस्बा अग्रवाल मंडी बागपत से आसिफ अली खान मोमिना नाज मुस्कान आसिफ सादिक अली खान और सारिक अली खान। ये अगली फरमाइश है जो हम तक पहुंचाई है आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा मीना शर्मा योगेश शर्मा मैडी शर्मा सौरभ शर्मा शाइना शर्मा और निवान शर्मा। हमें फरमाइश लिख भेजी है सांगली जिले के जत शहर से अल्ताफ हुजरे शेफुल्लाह सबाहत कीरत हुजरे और रेहान शेख। ये अगली फरमाइश है सुदर्शन शाह पल्लवी शाह प्रखर शाह कुशल शाह नीति शाह सुरभि शाह अश्विन शाह मंगलाबहन शाह और राजेंद्र जी शाह। आपने हमें फरमाइश भेजी है पद्मा टॉकीज नेपानगर से। तो अगली फरमाइश की ओर बढ़ते हैं। आप हैं रघुवीर नगर दिल्ली से दिलावर खान हसीना बानो एलिजा नायाब और लड्डू। ये अगली फरमाइश है नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नहावकर निर्मला नहावकर विशाल नहावकर। और इसी के साथ ही प्रोग्राम में हमसे जुड़े हैं मलकापुर महाराष्ट्र से सोपान ताइड़े नारायण इंगले और आशीष मुरहेकर। ये अगली फरमाइश हमें लिख भेजी है आप हैं करूला मुरादाबाद से अयूब खान इरम गुड़िया और सुईब खान। और इसी के साथ ही प्रोग्राम में हमसे जो हमारे श्रोता जुड़े हैं सिंधोली बरेली से जीशान वारसी। ये अगली फरमाइश है जो हमें लिख भेजी है आप हैं डाक व गांव निम्नाबाद जिला जिंद हरियाणा से जसबीर अरोड़ा जतिंदर गुरप्रीत और लवप्रीत। हमें फरमाइश लिखने वाले हमारे जो श्रोता हैं अगले वो हैं साही मार्केट सिहारा जिला बिजनौर से आसिफ चौधरी अल्ताफ अदीम और कादिर चौधरी। ये अगली फरमाइश है आप हैं रामपुर से सुनील सक्सेना वेदांश और सारांश सक्सेना। ये अगली फरमाइश है जो हमें लिख भेजी है आप हैं जलालाबाद मुजफ्फरनगर यूपी से राशिद मंसूरी आयान मंसूरी शयान मंसूरी। ये अगली फरमाइश है जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो रोजी डिकेस्ट्रो पर्ल डिकेस्ट्रो और विलीज डिकेस्ट्रो। हमें फरमाइश लिख भेजने वाले हमारे श्रोता हैं आप हैं चोटाला हरियाणा से दारा पंडित संजय शर्मा और प्रियंका शर्मा। अगली फरमाइश है गांव चोहल्दा बागपत से संजय ढिंगिया नमन ढिंगिया और अपार ढिंगिया। ये अगली फरमाइश है जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा पूनम गगनेजा विशाल प्रिया दिशानी और निमित आहूजा। हमें फरमाइश लिख भेजी है कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय श्रीमती उषा राय अमित कुमार राय हैप्पी राय और दुबिहा नेवादा जिला गाजीपुर से हमसे जुड़े हैं प्रतीक राय श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय। हमें फरमाइश लिख भेजी है गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा जसबीर जस्सी सीता और गीता। अगली फरमाइश करता है आप हैं पंजाब सदर बाजार से ही मीना गौतम आरजू गौतम और रेहान गौतम। हमें फरमाइश लिख भेजी है कस्बा चिलकाना से अईम जारिफ अंसारी नईम अंसारी और डॉक्टर आमिर अंसारी दानिश अंसारी नजीम अंसारी। तो आइए इसी के साथ सुनवाते हैं
प्रोग्राम में यह अंतिम गीत श्रोताओं समय की कमी है, नाराज न हुए, अपना प्यार यूं ही बनाए रखें।

0: इसी गीत के साथ ही दीजिए सुषमा जोशी को अनुमति, शुभ रात्रि, शब बाखैर। श्रोताओं, इसी गीत के साथ ही आज का आपकी फरमाइश कार्यक्रम बस यहीं तक। यह आकाशवाणी देहरादून है, रात्रि के 11 बजने को है। अब आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं पूनम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से टेलीफोन पर बातचीत की। कतर के रस लफान औद्योगिक क्षेत्र में हुई दुर्घटना में भारतीय नागरिकों की मृत्यु पर अमीर ने संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने घायलों को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए कतर का आभार व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति पर भी चर्चा की और क्षेत्र में शांति और स्थिरता के प्रयासों का समर्थन किया। साथ ही भारत कतर सहयोग को विभिन्न क्षेत्रों में और मजबूत बनाने पर सहमति जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने और आतंकवाद तथा साइबर सुरक्षा से लेकर उभरती प्रौद्योगिकियों तक की साझा चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री ने आज शाम ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों तथा वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता व्यावहारिक सहयोग को बढ़ावा देने, ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को समर्थन करने और एक सुरक्षित, अधिक संरक्षित तथा समावेशी विश्व में योगदान देने का प्रयास करेगी। इस बीच ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों NSA की 16वीं बैठक आज नई दिल्ली में हुई। इसमें ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों ने दुनिया के सामने मौजूदा सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। इस दौरान पारंपरिक सुरक्षा के अलावा ऊर्जा, खाद्य आपूर्ति श्रृंखला और साइबर सुरक्षा तथा आतंकवादी नेटवर्क द्वारा इस्तेमाल की जा रही नई तकनीकों और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों पर भी चर्चा की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक सम्मान समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है। पत्रकार पी नारायणन को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्म विभूषण और पूर्व न्यायाधीश के टी थॉमस को समाज सेवा के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि सरकार एलनीनो के कारण मानसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने ये बात कही।
2: एलनीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है। और इसका मतलब ये है कि हमारी खरीफ की फसल, उस पर इसका असर पड़ सकता है और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना।
1: श्री चौहान ने कहा कि राज्यों को दलहन, मोटे अनाज और तिलहन जैसी फसलों को बढ़ावा देने की सलाह दी गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज दावा किया कि ईरान अपने परमाणु केंद्रों की व्यापक निगरानी के लिए सहमत हो गया है। इसके बदले अमेरिका हार्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की आवाजाही पर पाबंदियों में ढील देगा और कड़े नियमों के तहत रोकी गई वित्तीय रियायतें जारी करेगा। सोशल मीडिया पर राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरानी नेतृत्व ने मौजूदा कूटनीतिक बातचीत के दौरान लचीला रुख अपनाया है। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने परमाणु निगरानी ढांचे के दायरे से को लेकर अमेरिका के दावों को खारिज कर दिया है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने स्पष्ट किया कि ईरान ने अपने विशिष्ट परमाणु केंद्रों की अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसियों द्वारा निगरानी के लिए कोई सहमति नहीं दी है। पुरुष हॉकी में भारत ने FIH प्रो लीग के लंदन चरण के अपने पहले मैच में पाकिस्तान को 4-3 से हरा दिया। भारत की ओर से अभिषेक नैन, नीलकांत शर्मा, सुखजीत सिंह और राजेंद्र सिंह ने गोल किए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: to 70 kilometers per hour over Delhi, Haryana, Chandigarh and West Uttar Pradesh till tomorrow. And that is the end of this news bulletin.
1: FM 100.5 MHz पर यह आकाशवाणी देहरादून है। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि